आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 46 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि चुपके से विदा ले चुकी है और प्रातः अपनी हथेली में रोशनी का जादू लिए धरती पर आ रहा है। फलक तक गुलाबी सुनहरी प्रभात बेला ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे आसमान खामोशी में कोई संगीत गुनगुना रहा हो। सूर्य की नई किरणों संग नई ऊर्जा लिए हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हमारे श्रोता जो अपना रेडियो सेट ऑन कर चुके हैं उन्हें इंतजार होगा देश दुनिया की खबरों को जानने का, क्योंकि कुछ ही पलों में बजने वाले हैं प्रातः के 6। तो चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन

करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासवंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्ज पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई,

0: जो मौसम कोई भी हो, सर्दी गर्मी बरसात, हर वक्त प्रातः उठकर ही अपने कार्य क्षेत्र की ओर निकल पड़ते हैं और हमारे लिए उगाते हैं तरह तरह के अनाज जो होते हैं मौसम के अनुकूल। तो आज की कृषि चर्चा में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी किसान भाइयों के लिए जानकारी लेकर आए हैं भूमि शोधन के जैविक उपाय। तो आइए सुनते हैं भूमि शोधन के जैविक उपाय विषय पर जानकारी डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी से।
1: शुभ प्रभात। जैविक नियंत्रण या जैविक विधि से शोधन करना, चाहे बीज की बात हो या फिर जमीन की, ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जैव कारकों का प्रयोग भूमि और बीज उपचार के लिए होता है। ये पहले भी होता था लेकिन उसका तरीका अलग था। अब वैज्ञानिकों द्वारा दी गई सलाह या उत्पादित किए गए रसायनों के आधार पर या जैविक विधि के द्वारा किया जाता है। पौधशाला में जैविक विधि की बात अगर करें तो ट्राइकोडर्मा की विभिन्न तरह की प्रजातियां अब आ गई हैं। इसमें एस्परजिलस नाइजर को बीज शोधन एवं भूमि में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके प्रयोग में बहुत सावधानियों की आवश्यकता भी रहती है। जैविक नियंत्रण का अच्छा उपयोग तभी संभव है जब खेत में सड़ी खाद या फिर हरी खाद मिलाई गई हो और साथ ही साथ उग्र मौसम से रक्षित किया गया हो। सर्वप्रथम जैव पदार्थ को उस मिट्टी या फिर क्षेत्र विशेष का होना चाहिए। पौधशाला में कंपोस्ट के साथ साथ अन्य कार्बनिक खाद की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए जिसमें जैव पदार्थ की अच्छी तरह से वृद्धि हो सके। जिस भी जैव नियंत्रक का प्रयोग करना है उसमें उसके जीवित विषाणु की पर्याप्त मात्रा भी होनी चाहिए। इसके प्रयोग करने के बाद कुछ दिन तक पौधशाला में तेज वर्षा एवं धूप से बचाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उस नर्सरी बेड में किसी भी रसायन का प्रयोग बिना तकनीकी जानकारी के नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ जैव नियंत्रक मिलाते समय पौधशाला की मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए यह सुनिश्चित कर लें। इसका प्रयोग दो तरह से किया जाता है। पौधशाला को अच्छी तरह तैयार करके उसमें तैयार जैव नियंत्रक पदार्थ 15 से 25 ग्राम प्रति मीटर क्षेत्रफल के हिसाब से मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। उसके एक दो दिन बाद बीज की बुआई कर सकते हैं। जैव नियंत्रक पदार्थ से बीज का शोधन भी किया जाता है। इसके लिए 6 से 10 ग्राम तैयार मिश्रित जैव पदार्थ प्रति किलो बीज की दर से इस तरह बीज में लपेटें कि पूरा उसकी सतह पर ही चिपक जाए। जैविक बीज उपचार बीज के ऊपर परत चढ़ाकर बीज को भिगोकर, पौध को भिगोकर सूखे चूर्ण के साथ किया जा सकता है जो कि जैविक नियंत्रकों के स्वरूप पर निर्भर करता है। उस बीज को ठंडे में सुखाकर लगाएं। बीज को शुद्ध जैव पदार्थ से भी शोधित किया जाता है लेकिन यह प्रयोगशाला में किसी तकनीकी विशेषज्ञ या फिर तकनीकी जानकार व्यक्ति से ही करवाना चाहिए। इस तरह से शोधित करने पर 10 से 12 जीवाणु प्रति मिलीलीटर घोल की आवश्यकता होती है। ट्राइकोडर्मा पाउडर जो है 0.5% उसका अगर ले रहे हैं तो उससे बीज के उपचार के साथ 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र के दर से पौधशाला की बीमारियों, कुछ कीड़ों तथा सूत्रकृमि के नियंत्रण के लिए अच्छा है। जहरीले रसायनों की बजाय सब्जियों में वानस्पतिक तेलों एवं खनिज तेलों का कीट नियंत्रण के लिए उपयोग ज्यादा अच्छा माना जाता है। पौधशाला में ट्राइकोडर्मा की विभिन्न प्रजातियां सूडोमोनोस फ्लोरेसेंस और साथ ही साथ एस्परजिलस नाइजर का प्रयोग बीज शोधन एवं भूमि में प्रयोग किया जाता है, परंतु जैव पदार्थ के उपयोग करने पर कई सावधानियों की जरूरत पड़ती है। इसलिए जैव नियंत्रक मिलाते समय पौधशाला की मिट्टी में पर्याप्त नमी, जिसे हम ओट कहते हैं, वह होनी चाहिए, लेकिन यह ध्यान रहे कि मिट्टी गीली अवस्था में भी न रहे। जैविक विधि से भूमि शोधन करने पर पौधों की बढ़वार हो जाती है। बीज बुआई करने के बाद पौधशाला को अधिक तापक्रम, अधिक वर्षा और अन्य बाह्य प्रतिकूल प्रभावों से भी बचाना आपकी जिम्मेदारी होती है, इसलिए आप उसे भी बचाएं। यह ध्यान रखें कि जैविक नियंत्रण की ये विधियां जो अब हम अपना रहे हैं उसमें हमारे जो अवशेष हैं फसलों के, उसका भी बृहत्तर स्वरूप में प्रयोग किया जा सकता है मल्चिंग और अन्य विधियों के तहत। जो लोग केले की खेती कर रहे हैं उनके जो केले के तने होते हैं उनकी भी मल्चिंग उस खेत में कर देने से काफी कुछ लाभ बढ़ जाता है।
0: भूमि शोधन के जैविक उपाय, इस विषय पर अभी किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी।

0: मित्रता का प्रवाह और वीरों का आभूषण है क्षमा। क्षमा मांगने से कहते हैं अहंकार ढलता है और क्षमा करने से सुसंस्कार पलता है और आजीवन चलता है। आइए सुनते हैं आज का सुविचार।
1: क्षमा का महत्व। भारतीय संस्कृति सर्व कल्याणकारिणी है। इसके द्वारा न केवल अपने अनुयायियों के लिए ही अपितु समस्त ब्रह्मांड के लिए विश्व पोषक मंगलकारी प्रभाव उत्पन्न होता है। भारतीय संस्कृति की इस विशेषता का रहस्य हृदयंगम हो जाने पर उसकी समस्त विशेषताओं को समझने के लिए एक आधार प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को मानव विकास के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर जीवन मुक्त की अवस्था में प्रतिष्ठित करा देना भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। मानव जीवन को समुन्नत बनाने में क्षमा का विशेष महत्व है। हम नित्य प्रातःकाल बिस्तर से उठकर पृथ्वी माँ के ऊपर पांव रखते ही उससे क्षमा मांगते हुए कहते हैं, समुद्र मेखले देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्वमे। अथर्ववेद कहता है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, अर्थात पृथ्वी मेरी माँ है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। यह पृथ्वी सभी रत्नों की खान है। आजकल स्वार्थी लोगों द्वारा इसका इतना दोहन किया जा रहा है जो मानव जीवन के लिए ही नहीं अपितु समस्त प्राणियों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। क्षमा भारतीय संस्कृति की ऐसी संजीवनी है जिसकी शक्ति से मानव विकास के द्वार खुल जाते हैं। क्षमा ऐसा दैवी गुण है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। एक बार की बात है कि ऋषियों ने त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सबसे अधिक विनम्र या क्षमाशील है, इसकी परीक्षा करानी चाहिए। इस परीक्षा के परीक्षक के रूप में महर्षि भृगु से अनुरोध किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए महर्षि भृगु पहले ब्रह्मा जी के पास गए और उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद वे भगवान शिव के पास गए और वहां से भी वापस आ गए। बाद में वे श्री विष्णु के पास पहुंचे। श्रीहरि उस समय शयन कर रहे थे। महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के सीने पर जोर से चरण प्रहार किया। भगवान विष्णु उठकर बैठ गए और महर्षि भृगु के पैर पकड़कर बोले, ऋषिवर आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? इसी प्रसंग को कबीर रहीम ने अपने इस दोहे में इस प्रकार व्यक्त किया है, क्षमा वरण को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगु मारी लात। सीता जी की खोज में लंका गए श्री हनुमान को मेघनाद रावण की सभा में उपस्थित करता है। रावण से वार्तालाप करते हुए श्री हनुमान कहते हैं कि भगवान श्री राम विशाल एवं संवेदनशील हृदय वाले हैं, तुम माँ सीता जी को प्रभु राम के हवाले कर दो, वे तुम्हारे सब अपराध भूल कर तुम्हें क्षमादान दे देंगे। किंतु रावण नहीं माना और जो परिणाम हुआ उससे आप लोग भली भांति अवगत हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यस्य पार्श्वे क्षमा शस्त्रम वशगाः सर्वसिद्धयः, अर्थात जिसके पास क्षमा रूपी शस्त्र है सभी सिद्धियां उसके वश में हो जाती हैं। क्षमा की भी एक सीमा होती है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को अनगिनत कष्ट दिए। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका स्वयं जल गई किंतु प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। अंत में श्रीहरि स्तंभ से प्रकट होकर नृसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। जब भक्त पर विपत्ति आती है तब भगवान उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। वह श्री कृष्ण से वैमनस्य करता था। वह भगवान श्री कृष्ण को गाली देता था। श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करना चाहा। उनकी बुआ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बेटा तुम शिशुपाल का वध न करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ मैं तुम्हारी बात मानकर वचन देता हूँ कि मैं शिशुपाल के 99 अपराध क्षमा कर दूंगा, किंतु 100वें अपराध पर उसका वध कर दूंगा। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को लगातार गाली देता जा रहा था और श्री कृष्ण उनकी गाली को गिन रहे थे। जैसे ही 100वीं गाली पूरी हुई, भगवान श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। भारतीय संस्कृति

0: में अनेक उदाहरण है जो क्षमा की महत्ता को रेखांकित करते हैं।
1: क्षमा प्रेम का परिधान है और विश्वास का विधान है, सृजन का सम्मान है, नफरत का निदान है। सच ही कहा जाता है क्षमा बराबर तप नहीं। अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार, विषय था क्षमा। वाचन स्वर डॉक्टर आशाराम त्रिपाठी का था। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

जीवन में कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रभु से पूर्ण समर्पण तक की यात्रा ही आराधना है। यही भक्ति की सच्ची परिभाषा है, जहां संगीत साधना बन जाता है और प्रभु के लिए हमारे जो शब्द हैं वो प्रार्थना।

माँ की गोद में सारा जग सुकून पाता है। ममता की छांव है माँ, दुआओं का गांव है माँ, जितना कहें उतना कम है, अनमोल वरदान है माँ। आइए माँ के दरबार में ज्योत जलाएं।

सेवा समर्पण और निस्वार्थ प्रेम का दूसरा नाम है पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी के स्मरण मात्र से ही समस्त संकट दूर हो जाते हैं।

मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आप सुन रहे हैं 747 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी लखनऊ से वैशाली के साथ। और अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 167 में प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीताजी निषाद राज के साथ तीर्थराज प्रयाग और त्रिवेणी के दर्शन तथा स्नान पूजन के पश्चात भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचने का प्रसंग।

प्रयाग क्षेत्र को तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गंगा यमुना तथा सरस्वती के संगम पर स्थित इस पुण्य भूमि पर पहुंचकर सबके मनोरथ सफल हो जाते हैं। ऐसी पावन भूमि के दर्शन कर श्री रामचंद्र ने परम सुख का अनुभव किया। उन्होंने सीता, लक्ष्मण तथा सखा निषाद राज को तीर्थराज प्रयाग की महिमा कह सुनाई। सभी ने त्रिवेणी के दर्शन किए। वहां स्नान कर विधि पूर्वक शिव तथा तीर्थ देवताओं की पूजा की और फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। श्री राम ने भरद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम किया तो मुनिराज ने उन्हें हृदय से लगा लिया। आनंदातिरेक में आशीर्वाद देते हुए उन्हें यह प्रतीति हुई कि देवी सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम के दर्शन कराकर विधाता ने उनके संपूर्ण पुण्यों का फल लाकर आंखों के सामने रख दिया है। प्रेम सहित पूजन करके भरद्वाज जी ने उन्हें कंद मूल फल खिलाए और स्नेह सनी वाणी में अपने उद्गार प्रकट किए। आपके दर्शन कर

आज मेरी तपस्या, जप योग, तीर्थ सेवन और त्याग, वैराग्य सभी सफल हो गए। प्रभु दर्शन के अतिरिक्त लाभ और सुख की कोई अन्य सीमा नहीं है। जब तक मनुष्य मन, वचन और कर्म से छल कपट त्याग कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक कोटि उपाय करके भी उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र आप सुन सकते हैं 747 किलो हर्ट्ज के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार।

0: परिसरे नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य ध्यानकक्षस्य च उद्घाटनं करिष्यति। एतत् कार्यक्रमात् पूर्वं सः एकां सभां सम्बोधयिष्यति। समारोहात् अनन्तरं प्रधानमन्त्री हैदराबादे प्रायः 400-900 कोटिरूप्यकाणां अनेकासां विकासपरियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। श्रीमोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां 67-100 संख्याके राष्ट्रिय राजमार्गे चतुर्भागपरक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलाम् अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरम् एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरम् अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृत महोत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमन्त्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं संघटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले आयोजिते भव्ये समारोहे राज्यपालेन आर एन रविणा श्री सुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्चमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री केन्द्रीय गृहमन्त्री रक्षामन्त्री भाजपादलाध्यक्षः अनेके मुख्यमन्त्रिणः मन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडुराज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 वादने शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये नवमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20-100 विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुन्दा स्थले अद्य रजत जयन्ती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीयर्थविभागेन आगामिषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचण्डवृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इण्डियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30-200 धावनांकानां विजयलक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से। श्रोताओं, समय हुआ है सुबह के 7 बजे का और ये समय होता है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। दिन भर थककर भी जो परिवार की सेहत का ध्यान रखे, निस्वार्थ प्रेम का दूसरा नाम ही माँ है। माँ स्वस्थ रहे तो घर घर लगता है ना, और माँ की दुआओं में ही परिवार का स्वास्थ्य पलता है, ये तो सच है। तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में नीना सोनकर हमारे श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हैं। आइए सुन लेते हैं आज का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।

श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज का दिन बहुत खास है। आज है मदर्स डे, वो दिन जब हम उस शख्स के लिए कुछ पल निकालते हैं जिसकी वजह से हम हैं, जो हमें बिना थके बिना शिकायत के जीवन भर देती जाती है। लेकिन आज का विषय केवल माँ को धन्यवाद कहने तक सीमित नहीं है। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, यानी कि माँ का स्वास्थ्य। हमारे समाज में माँ को त्याग की मूरत माना जाता है। वो सबका ध्यान रखती है, पति का ध्यान, बच्चों का ध्यान, बुजुर्गों का ध्यान, पूरे घर परिवार का ध्यान, लेकिन इन सब के बीच वो अक्सर खुद को भूल जाती है। शायद इसलिए कि उसे बचपन से सिखाया गया है कि एक अच्छी माँ वही है जो पहले दूसरों का सोचे। पर आज जब हम स्वस्थ जीवन की बात करते हैं तो ये समझना बेहद जरूरी है कि माँ अगर स्वस्थ नहीं होगी तो परिवार भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह सकता। शरीर के स्तर पर देखें तो महिलाओं में हर उम्र पर स्वास्थ्य की अलग अलग चुनौतियां होती हैं। किशोरावस्था में हार्मोनल बदलाव, शादी और मां बनने के बाद शारीरिक तनाव और बाद में हड्डियों की कमजोरी, थायराइड, मधुमेह और हृदय संबंधी समस्याएं, ये सब बिना देखभाल के और ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन माँ अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज करती है। एक हल्का बुखार भी हो तो कहती है कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकान है। ये बस थोड़ी सी थकान ही अक्सर बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। माँ को पोषण युक्त भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित जांच की जरूरत होती है, लेकिन वो अपने लिए समय ही नहीं निकालती। जबकि सही मायनों में माँ की देखभाल करना सिर्फ डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अब मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो माँ चाहे वो गृहिणी हो या कामकाजी, दिन भर भावनात्मक रूप से थकी रहती है। एक तरफ घर की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ काम का तनाव, बच्चों की चिंता और कहीं ना कहीं अपने लिए गिल्ट कि अगर खुद पर ध्यान दे लिया तो कहीं मैं स्वार्थी तो नहीं बन रही, और ये सोच उसे मानसिक रूप से थका देती है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि हम उन्हें समझाएं कि स्वस्थ रहना स्वार्थ नहीं बल्कि कर्तव्य है। श्रोताओं, माँ को केवल अद्भुत, त्यागमयी और आदर्श कहकर पूजने से बेहतर है कि हम उन्हें मनुष्य समझें जिन्हें पोषण, विश्राम, आत्मसम्मान और ध्यान उतना ही चाहिए जितना कि किसी और को। माँ की सेहत को लेकर हमारा छोटा सा प्रयास भी बहुत मायने रखता है, जैसे कि रोज उन्हें समय पर भोजन देना, डॉक्टर से नियमित जांच के लिए ले जाना या सिर्फ ये पूछ लेना कि माँ आप कैसी हैं। ये बातें उनके दिल को राहत देती है और ये भावनात्मक स्वास्थ्य का भी एक बड़ा हिस्सा है। मातृत्व एक यात्रा है, प्रेम, संघर्ष और निरंतर देने की, लेकिन ये यात्रा तब और सुंदर होती है जब माँ खुद को भी उतना ही महत्व देती है जितना कि दूसरों को देती है। आज मदर्स डे पर आइए हम सब एक वादा करें कि हम माँ को सुपर वुमन नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखेंगे जो थक सकती है, जिन्हें प्यार चाहिए, जिनके लिए भी आराम जरूरी है। श्रोताओं, माँ की मुस्कान ही घर का सच्चा प्रकाश है, और अगर वो मुस्कान थकी हुई हो तो हमें जाग जाना चाहिए, क्योंकि माँ की सेहत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे परिवार की नींव है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक माँ से पूछिए, क्या आपने आज खाना समय पर खाया, क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं? और हाँ, बस इतना कहिए, माँ आप हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, इसलिए अब आपका भी ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।

सुनकर आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, और अब वक्त है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का। आज रात 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। सुबह 9:15 पर सामयिक चर्चा में आप सुनेंगे जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से ओम अवस्थी की बातचीत। सुबह 9:30 पर समात फरमाइएगा खसूसी उर्दू प्रोग्राम बैतबाजी। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुमताज पीजी कॉलेज लखनऊ के कमरुल साहब, सना खातून, एजाजुर रहमान और मंतशा खातून। मेजबानी की है शमशुल आरफीन ने। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे शाम 7:31 पर। प्रस्तुति होगी सुमोना एस पांडे और नीना सोनकर की। हिंदी कार्यक्रम में रात 8 सुनना ना भूलें डॉक्टर प्रवीण कुमार का हास्य काव्य पाठ। फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण समय होगा दिन में 3:30। आज इस कार्यक्रम में विषय है कैसा हो हमारा आहार और कैसी हो हमारी थाली। विशेषज्ञ होंगी मृदुल विभा, वरिष्ठ डाइटिशियन KGMU लखनऊ। संचालन सुभाष खन्ना का होगा। संस्कृत कार्यक्रम में दिन में 3:15 पर सुनना ना भूलें डॉक्टर प्रेरणा माथुर की वार्ता रामायणे आयुर्वेदा। सुबह 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट का राग गावती में वीणा वादन। बाल मंच कार्यक्रम में दोपहर 12 हमारे नन्हे मुन्ने सुनेंगे सेफ्टी टिप्स, सड़क पर सुरक्षित चलने के नियम। इस विषय पर यातायात उपनिरीक्षक विकास सिंह से ममता उपाध्याय की बातचीत प्रसारित की जाएगी। इसके अलावा उभरते बाल सितारे क्रम में बच्चे सुनेंगे अमेया सिंह का सितार वादन और उनसे ममता उपाध्याय की बातचीत। आज इतवार है में दिन में 1:15 पर सुनिएगा प्रतिभा त्रिपाठी की लिखी झलकी सफाई के कमाल। निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता होंगे अतिश कुमार श्रीवास्तव। दिन में 1:30 पर अक्षवट कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के अवसर पर आप सुनेंगे मातृत्व एक अक्षत शक्ति। इस विषय पर रचना गोविल, अर्जुन अवार्डी सेवानिवृत्त कार्यकारी निदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण से डॉक्टर अलका चौधरी की बातचीत। भिंडी की फसल में कीट रोग प्रबंधन, इस विषय पर डॉक्टर आशीष कुमार पांडेय से की गई भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 4 संकल्प कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा, रक्त रोग विशेषज्ञ KGMU लखनऊ से की गई भेंट वार्ता। विषय होगा जानिए क्या है अदृश्य दिव्यांगता हीमोफीलिया। भेंट करता होंगे मनीष कुमार। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोक भाषा अवधि में कहानी पाठ कहूं कम कहूं ज्यादा। कहानीकार होंगे लायक राम मानव। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में सफलता की कहानी क्रम के अंतर्गत हमारे किसान भाई सुनेंगे मेंथा उत्पादन विषय पर हरक चंद वर्मा से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम जिन्हें आप सुन सकेंगे 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी लखनऊ से। इसके अलावा आप आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ आप सुन रहे हैं वैशाली के साथ। हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा लेकर।

नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आप घर से निकले, आसमान साफ है, पेड़ झुके हुए हैं, खामोश हैं, पंछी चुप हैं, छाया ढूंढी नहीं मिली, पानी पिया वो भी गर्म। सुबह 8 बजे से ही सूरज ऐसे चमक रहा है जैसे आग के गोले धरती पर फेंक रहा हो। आपने भी महसूस किया होगा, आजकल दोपहर होते होते दीवारें जलने लगती हैं, रात को भी राहत नहीं और पंखा गर्म हवा देता है, कूलर भी हार मान गया और हम परेशान हो ये कह उठते हैं

कैसी गर्मी है। दोस्तों, ये है हीट डोम, एक ऐसा अदृश्य कैद खाना जिसमें शहर, गांव, खेत, जंगल सब फंस जाते हैं। तो आज की विविधा में बात, बचाएं सृष्टि को हीट डोम से। हीट डोम है क्या, ये क्यों बनता है, कितना खतरनाक है और सबसे जरूरी, हम सृष्टि को इससे कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, हीट डोम का मतलब है गर्मी का गुंबद। सोचिए, धरती के ऊपर वायुमंडल का एक बड़ा सा कमरा है। सामान्य दिनों में इस कमरे की खिड़कियां खुली रहती हैं, हवाएं आती जाती हैं, गर्मी बाहर निकलती है। लेकिन जब उच्च वायु दाब का एक विशाल ब्लॉक किसी क्षेत्र के ऊपर जम जाता है तो इस कमरे की खिड़कियां बंद हो जाती हैं। अब सूरज की गर्मी नीचे तो आती है लेकिन ऊपर जाने का रास्ता बंद हो जाता है, यानी कि गर्म हवा अंदर ही अंदर फंसती रहती है। हर दिन तापमान बढ़ता जाता है और धरती तंदूर बन जाती है। नीचे से गर्म हवा ऊपर उठती है लेकिन ये उच्च दाब उसे वापस दबा देता है। नतीजा, हवा गर्म होती चली जाती है और धरती पर हीट डोम बनता है। ये डोम कभी कभी तो कई कई दिनों तक टिका रह सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये हीट डोम पहले भी तो आते थे, तो अब इतना खतरनाक क्यों? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। कभी सोचा है सृष्टि ने हमें कितना कुछ दिया? हवा, पानी, मिट्टी, आसमान, फसल, जंगल और हमने उसे बदले में क्या दिया? जंगल काटे अपने चंद स्वार्थों के लिए, आज भी अंधाधुंध पेड़ों को काटने से हम जरा भी नहीं चूकते। नदियां दूषित की, कंक्रीट के जंगल बनाए, गाड़ियों और फैक्ट्रियों से धुआं छोड़ा, एसी चलाकर बाहर और गर्मी फैलाई। धरती बार बार चेतावनी दे रही है दोस्तों, लेकिन इंसान अब भी भाग दौड़ में लगा है। भारत के कई शहरों में तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कई राज्यों में गर्म हवाएं जानलेवा बन रही हैं। अगर समय रहते हम नहीं संभले तो आने वाले सालों में हीट डोम आम बात बन सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो जितना ज्यादा CO2 हम छोड़ेंगे, उतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, उतना ज्यादा आर्कटिक पिघलेगा, उतनी कमजोर जेट स्ट्रीम और उतने लंबे भयावह हीट डोम। ये एक दुष्चक्र है दोस्तों। हीट डोम सिर्फ गर्मी नहीं लाता, ये एक पूरी आपदा की चेन शुरू करता है और इसका पहला असर हम इंसानों पर पड़ता है। हीट स्ट्रोक में शरीर का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्ग, बच्चे, मजदूर और जो एसी का खर्च नहीं उठा सकते ना, उन पर पड़ता है। और दूसरा असर पड़ता है खेती पर। 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान में गेहूं, धान, दाल सब झुलस जाते हैं, फूल नहीं खिलते, परागण नहीं होता, फसल नहीं आती। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए कह सकते हैं कि ये सीधा अन्न संकट है। तीसरा असर इसका जंगलों पर पड़ता है। सूखी गर्मी में जंगल टिंडर बॉक्स बन जाते हैं। और चौथा असर पड़ता है पानी पर। नदियां सूखती हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्र गर्म होता है। गर्म समुद्र मतलब ज्यादा तूफान, ज्यादा बाढ़ और फिर उसी के बाद ज्यादा सूखा। हीट डोम अकेला नहीं आता, पूरी सृष्टि को हिला देता है। अब सवाल ये कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी है शहरों को ठंडा करें, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कम करने के लिए छतों को ठंडा बनाइए, सफेद पेंट करें, ग्रीन रूफ बनाएं। याद रखें, हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम करने में एक पेड़ की भूमिका 10 AC के बराबर होती है। पेड़ धरती का प्राकृतिक कूलर।

हैं दोस्तों। वर्षा जल संचयन करें, छोटी दूरी पैदल जाएं, सार्वजनिक वाहन अपनाएं, ऊर्जा बचाने वाले उपकरण इस्तेमाल करें। और दोस्तों, अगर हर घर की छत पर सोलर पैनल हो तो हम बिजली भी बनाएंगे और धरती को भी बचाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम 2030 तक कार्बन उत्सर्जन आधा कर दें तो धरती के ताप को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोका जा सकता है और उसके बाद हीट डोम कम आएंगे, कम रुकेंगे, कम तबाही मचाएंगे। तो आइए मिलकर संकल्प लें कि पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, प्रकृति से प्यार करेंगे और सृष्टि को हीट डोम से बचाएंगे। याद रखिए, अगर धरती बचेगी तभी जिंदगी बचेगी।

तो आज की विविधा में बस इतना ही। मिलेंगे इसके अगले अंक में अन्य विषय के साथ। कीजिए स्वीकार हमारा नमस्कार। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।

0: मुक्त भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: श्रोता, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। चंद पलों में आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।
2: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
3: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हुआ है विकास। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से है जारी। कई जिलों में जागरूकता रैली और संगोष्ठी के किए जा रहे आयोजन। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में किया गया राष्ट्रीय

0: लोक अदालत का आयोजन पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निस्तारण। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा कल हुई शुरू, आज आयोजित होगी परीक्षा का दूसरा चरण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है।
1: प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक लीग प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है।
0: प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण की स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में कल जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वहां एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर आम जन को जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्नाव में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बिजनौर और गोरखपुर जिले में कल मीडिया के लोगों को स्व जनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। बिजनौर की जिला जनसंख्या अधिकारी वान्या सिंह ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है।
2: स्वगणना कार्यक्रम है, ये 20 दिवसीय और 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आप सभी के माध्यम से हमने एक सहयोग की अपेक्षा की है कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, आप लोग भी अपना स्वगणना कराएं और आम पब्लिक को भी इसे करने के लिए मोटिवेट करें।
0: भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। श्री योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी और उनके मंत्रिमंडल को बधाई दी और उनके उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने लिखा है कि श्री अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृत काल में प्रवेश करेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के सभी जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और तहसीलों में कल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकरवाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। मथुरा के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है।
3: लोक अदालत में जो वाद निस्तारित किए जाते हैं उसमें कोई भी उसकी अपील नहीं होती और हमेशा के लिए वाद का निस्तारण हो जाता है और पक्षकारों के मध्य जो सौहार्द का माहौल बना रहता है। इसमें यह भी फायदा है, इसका भी सिविल वादों में कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।

0: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा कल से शुरू हुई। पहले दिन परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क रहा। आज परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित होगा। प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत एवं मनोविज्ञान सहित 5 विषयों और द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी एवं कला सहित 4 विषयों की परीक्षा आयोजित होगी। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र पाठी।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाए। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कल महाराणा प्रताप की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की 15 फीट से ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के साहस और राष्ट्र रक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेकर हमें राष्ट्र निर्माण में अपना सुनिश्चित करना चाहिए। हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में एक बच्चा और 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहा एक कैंटर डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसमें 3 लोग दब गए और मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में 2 अन्य व्यक्ति घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। ITF जूनियर सर्किट की 3री वरीय भारत की कार्तिका पद्म कुमार ने कल ITF जूनियर J30 लखनऊ टेनिस टूर्नामेंट में बालिका एकल की ट्रॉफी जीत ली। वहीं एक दिन पूर्व युगल खिताब जीत चुके ऋषभ सरोहा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए बालक एकल में भी विजेता होने का गौरव हासिल किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हुआ है विकास। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से है जारी। कई जिलों में जागरूकता रैली और संगोष्ठी के किए जा रहे आयोजन। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक वाद, विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निस्तारण। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा कल हुई शुरू। आज आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना।

0: स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मोहन वीणा वादन। कलाकार हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट। राग है गावती।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग गावती में मोहन वीणा वादन, कलाकार थे पंडित विश्व मोहन भट्ट। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी लखनऊ है, आप सुन रहे थे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, जिसे वाइंड अप करने का वक्त हो चला है। तो आप सभी को नमस्कार, श्रोताओं बने रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ और सुनते रहिए 747 किलोहर्ट्ज। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मामकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन S. नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।

0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
4: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
5: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल

0: में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त, अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हो रहे हैं और आज है दिन रविवार, तो आज लेकर हाजिर होते हैं हम बच्चों का साप्ताहिक इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम अंकुर। आइए सुनते हैं प्रोग्राम अंकुर।

जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, और आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे बिल्कुल मत बैठो।

0: और हिम्मत हार कर बैठना भी नहीं चाहिए। अगर दोस्तों हम हिम्मत हार कर बैठ गए तो भला बड़े बड़े काम कैसे कर पाएंगे। और हम देख रहे हैं सामने से नाजमा दीदी आ रही हैं। नाजमा दीदी, आपको भी हमारा नमस्कार और सभी बाल दोस्तों को हमारा प्यारा प्यारा नमस्कार।
1: नमस्कार निमचंद भैया और सभी नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों को हमारा भी नमस्कार। क्योंकि बच्चों आज है रविवार, मस्ती का दिन और बहुत सारी जानकारी हासिल करने का दिन। और बच्चों यदि आप अंकुर प्रोग्राम सुन रहे हैं तो बहुत सारी जानकारी आपको सुनने को मिलेगी।
0: तो ये बताइए आप जी, प्रोग्राम में आगे बढ़े इससे पहले ये बताइए, बरेली में घूमी है?
1: बरेली में बिल्कुल घूमे हैं निमचंद भैया, यहीं पैदा हुए हैं। और बरेली में नहीं घूमेंगे तो फिर कहाँ घूमेंगे?
0: सौदा सस्ती खरीदी है मध्य या महंगी वाली? आप तो सस्ती वाली मार्केट में ही हमने देखा है आपके लिए।
1: ऐसा मत कहिए निमचंद भैया, या तो आपने हमें देखा नहीं है।
0: नहीं देखा है, एक तरफ हमने देखा था ना
1: जी,
0: गोलगप्पे बिक रहे थे 10 रुपए के 4।
1: अच्छा।
0: और एक तरफ हमने देखा था बिक रहे थे 6। तो पता है आप कहाँ गई?
1: कहाँ गए?
0: पूछा आपने उनसे भैया कितने दे रहे हो 10 रुपए? हम तो आप 4 वाले पर नहीं गई थी 6 वाले पर गई थी नाजमा दीदी, पता है हमके लिए। और ये कहाँ की बात है पता है
1: जी?
0: कुतुब खाना।
1: अच्छा, बिल्कुल ठीक समझे आप। और देखिए जब हम कुछ खा रहे होते हैं या कुछ ले रहे होते हैं तो इतना तो भाई तोलमोल तो बनता ही है।
0: बनता है, लेकिन और एक बार आप ये भी कह रही थी कि एक बताशा खा रहे थे, जानने वाले आ गए तो आधा बताशा मुंह में रह गया। झिझक लग गई आपको वो। चलिए अच्छा। कोई बात नहीं, ये भी होता है, ये भी बहुत जरूरी है। और हम बाल दोस्तों को थोड़ा गुदगुदाएंगे नहीं तो काम भी नहीं चलेगा, है ना?
1: सही बात है।
0: तो चलिए बरेली की बात चली है तो आज जानकारी का विषय है बरेली जनपद के तहसील क्षेत्रों की जानकारी। साथियों बरेली जनपद के क्या कहने, झुमका सुरमा और फर्नीचर से मशहूर हुआ बरेली अब विस्तार कर चुका है, बल्कि यूं कहिए कि बहुत बड़ा विस्तार कर चुका है। और अंकुर प्रोग्राम की आज की पाठशाला में हम आपको बरेली के बारे में कुछ खास बताने जा रहे हैं। जी हाँ, तहसील क्षेत्रों की जानकारी आज आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों बरेली जिले में कुल 6 तहसीलें हैं और इनके नाम हैं आंवला, बहेड़ी, बरेली सदर तहसील, मीरगंज, नवाबगंज और पूर्व दिशा में स्थित तहसील फरीदपुर।
1: यानी कि नेमचंद भैया आपने बड़ी जानकारी की बात बताई है, हम बाल दोस्तों को फिर से रिपीट कर देते हैं, ये पॉइंट बहुत खास है बच्चों। बरेली जिले में कुल 6 तहसीलें हैं, इनका नाम है आंवला, बहेड़ी, बरेली सदर तहसील, मीरगंज, नवाबगंज और पूर्व दिशा में स्थित तहसील फरीदपुर।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात फरीदपुर की। बच्चों फरीदपुर कस्बा तहसील क्षेत्र का कस्बा है और जीटी रोड पर बरेली शाहजहांपुर रोड पर बरेली से करीब 25 किलोमीटर है।
1: और नेमचंद भैया अगर हम इतिहास से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताएं बच्चों को तो फरीदपुर का प्राचीन समय में परा कहा जाता था। ये लंबे समय तक कटहरिया राजपूतों के शासन में रहा। जब जहांगीर सिंहासन पर बैठा तो उसने फरीद खां को यहां का सूबेदार बनाया। फरीद खां ने फरीदपुर को फरीदपुर का नाम दिया। काफ़ी पहले की अगर बात करें तो फरीदपुर को परा नाम कठेरिया राजपूतों ने 17वीं शताब्दी में 1657 से 1679 के बीच बसाया था।
0: राजमा जी इतिहास में खो गई आप, बिल्कुल
1: बिल्कुल खो गए निमचंद भैया। और देखिए इतिहास तो है ही ऐसा विषय कि अगर हम पढ़े तो मन करता है और थोड़ा सा
0: बड़ा आनंद आता है और बड़ा कुछ सीखने को भी मिलता है।
1: जी हाँ
0: बच्चों, अब जानते हैं कि फरीदपुर में आखिर है क्या क्या, क्या क्या खास है भाई, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। बच्चों तहसील फरीदपुर में पचौमी गांव में अत्यंत पुराना मंदिर है और इसके अलावा बुखारा फरीदपुर रोड पर गोपाला शिव का मंदिर है, ये बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा सत्संग भवन मंदिर भी फरीदपुर में ही है, यहाँ पर भक्तजन खूब आते हैं। बाल मित्रों फरीदपुर एक विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ का रेलवे स्टेशन पीताम्बरपुर के नाम से है। किस नाम से है नाजमा दीदी?
1: पीताम्बरपुर के नाम से।
0: एक बार क्या था
1: जी,
0: एक साहब कह रहे थे कि हम बहुत दूर थे तमिलनाडु में, ठीक है
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा कि भैया फरीदपुर का एक टिकट दे दीजिए।
1: अच्छा,
0: बात करीब 20 साल पहले की होगी।
1: तो
0: वो कह रहे थे हमने कहा, लेकिन उन्होंने काफी अपना ऊपर से नीचे तक लिस्ट देखी लेकिन फरीदपुर का नाम नहीं मिला।
1: अच्छा,
0: तो वो कह रहे थे उन सज्जन से, बाबा इस स्टेशन का नाम फरीदपुर ही है या कुछ और है, मैं तो परेशान हो गया, फरीदपुर का नाम तो आ ही नहीं रहा।
1: अरे
0: तो उनको ध्यान आया कि बेटा इसका नाम पीताम्बरपुर है।

0: एकदम उन्होंने फिर टिकट दे दिया, बोले अरे बाबा थोड़ा पहले ही बता देते।
1: बिल्कुल
0: तो फरीदपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो पीताम्बरपुर के नाम से है। ठीक है बच्चों, और शिक्षण संस्थानों की अगर बात करें तो यहाँ राजकीय डिग्री कॉलेज सहित कई नामी गिरामी विद्यालय हैं। यहाँ का बहुत पुराना CAS इंटर कॉलेज के सामने लगने वाला रामलीला, हा, नजमा दीदी,
1: जी
0: बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बढ़िया लगता है, खूब रमाचहनी रहती है। और फरीदपुर तहसील क्षेत्र में लगभग 381 गांव हैं और दो
1: अच्छा
0: विकास खंड हैं, इनके नाम हैं भोता और फरीदपुर। फरीदपुर तहसील के कुछ बड़े गांव की बात करें तो इनमें प्रमुख हैं जेड़, रजऊ परसपुर, पढ़ेरा, बुधौली, नौगवां, शिवपुरी, तराखास और नगरिया विक्रम शामिल हैं।
1: बड़े पते की जानकारी आपने बता दी है निमचंद भैया। चलिए थोड़ा और भी कुछ बताते
0: जी
1: हैं बाल दोस्तों को। तहसील फरीदपुर के बाद अब चलते हैं तहसील नवाबगंज। बाल दोस्तों, नवाबगंज को प्राचीन समय में बिजौरिया नाम से जाना जाता था, परंतु नवाबगंज नाम आसफ़उद्दौला के शासन में बने एक बाजार को संदर्भित करता है। नवाबों के रुकने के कारण ये क्षेत्र नवाबगंज कहलाया। नवाबगंज के पास ही बसे हाफिजगंज को नवाब हाफिज रहमत खान ने बसाया था। सेंथल भी यहाँ का पास का ही प्राचीन स्थान है। बच्चों, इतिहास से पता चला है कि नवाबगंज को अवध के नवाब आसफ़उद्दौला ने 1775 से 1797 के बीच स्थापित किया था। ये बरेली पीलीभीत मार्ग पर बसा है। नवाबगंज के पास बसे ईद जागीर का प्राचीन शिव मंदिर इस क्षेत्र में लोगों की धार्मिक आस्था का केंद्र है।
0: बिल्कुल, और हमें याद आया इसके अलावा नवाबगंज के अधकटा नजराना गांव में भव्य अटल आवासीय विद्यालय है। ये थोड़े समय पहले ही बना है और ये स्कूल श्रमिकों के बच्चे के लिए समर्पित है, उनके लिए एक तरह से वरदान है।
1: अरे
0: नजमा
1: वाह,
0: दीदी, जो
1: क्या
0: हमारे
1: बात है
0: श्रमिक भाई हैं
1: जी।
0: उनकी ओर सरकार का ध्यान गया और इस स्कूल में उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर भी है और इसके अलावा पुराना हाल, हनुमान मंदिर और रामलीला यहाँ भी खूब भव्य लगती है। भाई क्या कहने।
1: नवाबगंज के बाद अब बच्चों को हम बता देते हैं तहसील आंवला के बारे में। साथियों, आंवला के नामकरण की बड़ी दिलचस्प कहानी है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में आंवला के पेड़ों से घिरा हुआ रहा होगा, है ना, पुराने दौर में। तो
0: जी
1: इसलिए
0: जी
1: आंवला
0: जी
1: के वृक्षों की अधिकता के कारण यहाँ का नाम आंवला पड़ा होगा, ऐसा होगा, ऐसा मानना होगा।
0: बिल्कुल ऐसा ही माना जाता है। और आंवला की सब्जी और अचार भी खूब बढ़िया होता है।
1: आहा हा भाई, क्या बात है,
0: खूब
1: अचार भी
0: टेस्टी
1: बढ़िया है।
0: होता
1: और आंवला कस्बा के बारे में अगर बता दें तो पूरा तहसील क्षेत्र अच्छा ही अच्छा है यहाँ का। आंवला क्षेत्र में तीन स्टेशन भी हैं, ये हैं विशारतगंज, रेवती, बहोड़ा खेड़ा और आंवला। किसी ज़माने में खेती और रेलवे स्टेशन की बाजार, मऊ चंदपुर की नदी किनारे की गांव का बाजार भी
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल,
1: आबाद
0: हम
1: था
0: समझ गए आपकी बात। रेवती बहोड़ा खेड़ा रेलवे स्टेशन की बात आपने की, तो वहां
1: जी।
0: पर जो रेवती का बाजार लगता है, मऊ चंदपुर का बाजार है। ये मऊ चंदपुर जो है वो नदी के किनारे है। और नाशमा दीदी,
1: बिल्कुल
0: किसी
1: सही
0: जमाने
1: समझे।
0: में ये जो आपने बाजारों के नाम लिए ना, ये बहुत आबाद थी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही
0: मिर्च
1: था।
0: जो है रेवती बहोड़ा खेड़ा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी में भरी जाती थी।
1: हालांकि गैनी और देवचरा का बाजार आज भी खूब चहल पहल से भरा
0: बिल्कुल, वो
1: हुआ
0: तो आपने
1: है।
0: वहां से दालें खरीदी हैं ना, सस्ती
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वाली।
1: सही। अब देखिए, खाने पीने की चीजें हर चीज सस्ती नहीं खरीदी
0: सही
1: जाती
0: मायनों में
1: निमचंद
0: देखा
1: भैया,
0: जाए नाजमा दीदी,
1: क्योंकि
0: तो
1: ये
0: हम भी
1: सेहत
0: जो
1: से संबंधित बात है, तो इसमें हम जरा भी
0: बिल्कुल
1: बात नहीं
0: बिल्कुल
1: वो
0: भाई,
1: करेंगे।
0: अच्छी दालें तो मिल जाती हैं, हम भी देवचरा ही
1: हाँ
0: जाती है जब समय मिलता है तो। और देवचरा के बाजार में जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि दालों के अलावा मिर्च है और एक चीज और सस्ती मिल जाती है नाजमा दीदी, पता है,
1: जी,
0: कपड़े।
1: अच्छा।
0: वो पन्नी ताल नहीं उन लोगों ने। सवेरे को सौदा भरी और संध्या को भैया ला दी और लइए, तो भी सोच रहे यार कुछ तो वजन कम होगा ही,
1: अच्छा, पन्नी
0: अगर
1: ताल नहीं।
0: 20, 30, 40, 50 रुपया बच गए
1: हाँ
0: अगर एक पीस में तो
1: अच्छा,
0: क्या बुरा है
1: हम तो समझ
0: ना।
1: रहे हैं, जब आपने कहा पन्नी तान ली तो हमने सोचा भैया आप तो बेचने के लिए दुकानें सज गई होंगी, लेकिन फिर बाद में
0: नहीं आज
1: सोचा
0: सजी है, वो रविवार को ही
1: अच्छा
0: होता है जहां तक हमारी जानकारी है। और इसके
1: जी,
0: अलावा यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी आज भी खूब चाव से खाई जाती है।
1: क्या बात है।
0: बच्चों, आंवला का धार्मिक ऐतिहासिक महत्व तो बहुत महत्वपूर्ण है और महाभारत काल में ये क्षेत्र बहुत शक्तिशाली था। बहुत पहले यहाँ के राजा द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद थे, जिनका राज्य यहीं से कंपिल फरुखाबाद तक फैला हुआ।

0: था। फरुखाबाद के बारे में तो सुना है आपने?
1: बिल्कुल सुना है।
0: हाँ, तो यहीं पर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था और यहाँ द्रोणाचार्य और पांडवों के यादगार स्थान है। और हमें याद आया गुरुगावा नाम का एक गांव है और ये गांव गुरु द्रोणाचार्य की याद में बना हुआ है।
1: बच्चों अगर बताएं हम आपको कि लिलौर झील भी इसी आंवला क्षेत्र में है और ये झील भी उसी काल की बताई जाती है। कहा जाता है कि पांडव अज्ञातवास में भी इसी क्षेत्र में रहे थे और पांडवों के बाद पांचाल अहिच्छित्र राज्य भारत के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों में रहा। इसके बाद ये क्षेत्र राजपूत राजाओं के अधीन रहा। अहिच्छित्र राजधानी के रूप में कई वर्षों तक रही। यहाँ पुराने अवशेष अहिच्छित्र किला और कौरव पांडवों के ज़माने की यादें और आपको बताया बच्चों हम रेलगाड़ी और कई महत्वपूर्ण वस्तुएं भी मिली हैं जो यहाँ सुरक्षित रखी गई हैं।
0: बिल्कुल रखी गई हैं। बच्चों आंवला की कहानी यहीं नहीं रुकी बल्कि आप ये समझिए कि सन 1192 में सुल्तान मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब बदायूं को जीता तब आंवला मौजूद था ऐसा माना जाता है। और यह भी पता चला है कि 1192 के आसपास यहाँ टकसाल नगर बनाया गया था और यहाँ पर सिक्के भी ढाले गए थे जिस पर आंवला खुदा हुआ है।
1: इतिहासकारों की माने बच्चों तो आंवला महत्वपूर्ण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और यहाँ पर जो किला है वो भी बहुत खास है हम आपको बताएं। और यहाँ से कठेरिया राजपूत बदायूं अवध तक और गंगा तक के क्षेत्र पर अधिकार रखते थे।
0: बिल्कुल रखते थे। और बच्चों आंवला के बारे में यह भी ज्ञात हुआ है कि बदायूं को दिल्ली के सुल्तानों ने एक सूबा यानी कि प्रदेश बनाया था लेकिन कठेरिया राजपूत दिल्ली के सुल्तानों से भिड़ गए और खूब संघर्ष हुआ और आखिर में सुल्तानों का वर्चस्व कमजोर हो गया। उसके बाद राजा खड़ग सिंह कठेरिया ने आंवला को अपनी राजधानी बनाया। और एक गांव है यहाँ पर अतरश्रेणी, तो अतरश्रेणी सहित कई नाव गांव यहाँ पर बनाए गए। और औरंगजेब के शासन में आखिरी वर्षों तक औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी राजपूतों का ये गढ़ आंवला आबाद रहा और राजा दुर्जन सिंह को यहाँ का अधिकार मिला। बच्चों बरेली का आंवला क्षेत्र पर सन 1730 में नवाब अली मोहम्मद खान ने आंवला पर अधिकार कर लिया। सन 1742 में दिल्ली के राजा हरनंद को परास्त करने के बाद रोहेलखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित किया है। इस दौरान भी आंवला रोहेलखंड रियासत की राजधानी रहा। बच्चों आंवला तहसील क्षेत्र में करीब 369 राजस्व गांव हैं और आंवला की सीमाएँ आसपास के क्षेत्रों से मिलती हैं। आंवला क्षेत्र में महाभारत काल के उत्तर पांचाल राज्य की राजधानी अहिच्छत्र के खंडहर आज भी मौजूद है उत्तर दिशा में, ठीक है। और भारी भरकम भीम की गदा भी यहाँ रखी है। इसके अलावा रामनगर झील को विकसित किया गया है और काम चल रहा है। ये आने वाले दिनों में पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। नाजमा दीदी भीम की गदा मैंने देखी है ना, ऊपर रखी है और बहुत भारी है।
1: अच्छा उठा मतलब ऐसा नहीं है कि हम और आप उठा सकते हैं उसको। बहुत भारी है।
0: बहुत भारी है भैया।
1: तो ये देखने
0: पत्थर की है,
1: जगह
0: बहुत
1: है।
0: पुराने पत्थर की बिल्कुल देखने की जगह है। आप यहाँ पर जाएंगे घूमेंगे तो आपको बिल्कुल
1: तो
0: आनंद आएगा।
1: छुट्टियां होने ही वाली है तो बच्चों को जाना चाहिए अपने माता पिता के
0: साथ। बिल्कुल जाना चाहिए बच्चों। आंवला के रामनगर में भगवान पार्श्वनाथ का प्रसिद्ध एक जैन मंदिर है जो बहुत ही भव्य है और दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं। और महाभारत काल के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप घूमिएगा अवश्य। भगवान पार्श्वनाथ ने यहीं पर तपस्या की थी ऐसा माना जाता है। तो आपने आज जाना कि बरेली जनपद की तहसील क्षेत्रों के बारे में जानकारी और आज हमने आपको बताया फरीदपुर नवाबगंज और आंवला की जानकारी। आगे के कार्यक्रमों में हम आपको बरेली जनपद की जो तीन तहसीलें और बची हैं बरेली तहसील सदर बहेड़ी और मीरगंज के बारे में बताएंगे। कार्यक्रम आप इसी तरह आगे भी सुनते रहिएगा। और नाजमा दीदी
1: जी भैया
0: बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अब मुस्कुरा रही हैं आप।
1: बिल्कुल इसलिए मुस्कुरा रहे हैं
0: बच्चे समझ गए होंगे
1: बातें करते करते बहुत देर हो चली है मनोरंजन का समय।
0: बिल्कुल तो आइए।

0: प्रति सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा।
1: भाई क्या बात है नेमचंद भैया, ऐसा बच्चों ही का देश मन है मेरा।
0: खुश हुआ होगा गाना सुन के, है ना? तो भाई हमें अपने देश भारत पर बहुत गर्व है ना?
1: बिल्कुल गर्व है।
0: और आपने देखा होगा कि शहर का जीवन हो या ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन हो, नाजमा दीदी गगरिया भर के लाओ थे पहले
1: पनघट से पानी भर करके, है ना?
0: बिल्कुल, वो दृश्य इस गाने में बन रहा था
1: जी,
0: कि किस तरह से गांव में जो गोबर होता है ना, उसके कंडे, कंडे समझ रही हैं आप,
1: उसको उपले
0: उपले
1: जी सही कहा,
0: कैसे थोपे जाते हैं, कैसे करके गोबर को सान के, मतलब जो है वो आपस में मिक्स करके ले जाते हैं पथनौरे में, उसके कंडे थोपे जाते हैं, तो बड़ा सुंदर दृश्य इस तरह के देखने को मिलते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है। और बाल दोस्तों, अंकुर की पाठशाला में अब जानकारी का अगला विषय है कि रेलवे की प्रवाद पुस्तक क्या होती है। तो वे क्या होती है प्रवाद पुस्तक, इसके बारे में आप समझिएगा आसान भाषा में। और लेकिन इससे पहले हम आपको इस पुस्तक के बारे में बताएं, खुलासा करें आखिर क्या होता है इसमें और क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम आपको ये भी बता दें कि नाजमा दीदी, रेलवे स्टेशन पर जो सूचनाएं बोली जाती हैं उनका भी अपना एक बड़ा महत्व होता है। ठीक है,
1: बिल्कुल सही है।
0: जैसे मान लीजिए सूचना बोली गई कि ट्रेन नंबर 1045 प्रयागराज हरिद्वार एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफार्म नंबर 3 पर आएगी। ठीक
1: ठीक।
0: अब उन्होंने सूचना बोल दी कि ये है गाड़ी नंबर कितना है, 1045। ठीक है, ट्रेन का नाम क्या है, हरिद्वार प्रयागराज एक्सप्रेस। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
1: बिल्कुल।
0: अब अगर वो लोग ये बोलते हैं, अनाउंसमेंट ये होता है कि हरिद्वार प्रयागराज एक्सप्रेस, नाम तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर उन्होंने ये बोला कि बरेली के रास्ते हरिद्वार से प्रयागराज को जाने वाली गाड़ी संख्या 1045 थोड़ी ही देर बाद प्लेटफार्म नंबर 3 पर आएगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गाड़ी किस रास्ते से जाएगी, हरिद्वार से प्रयागराज, बरेली के रास्ते। ठीक है, तो जो मुरादाबाद के यात्री हैं, बरेली के यात्री हैं, रामगंगा के यात्री हैं, रसोईया के यात्री हैं, पीताम्बरपुर साइड के यात्री हैं, या फरीदपुर है, तेलहर है, शाहजहांपुर साइड के जो यात्री हैं, वो इस ट्रेन में सफर कर सकते हैं।
1: तो
0: वो इसलिए क्लियर किया जाता है कि रास्ते कभी कभी दो भी होते हैं। मान लीजिए इस रास्ते से, बरेली के रास्ते से नहीं आई, दूसरे रास्ते से गई वो,
1: हाँ,
0: प्रयागराज के लिए,
1: एक जगह आने के, यानी कि रास्ता बदल गया,
0: बदल गया, लाइन उन्होंने चेंज कर दी, तो वो ये क्लियर की जाती है सूचना कि ये ट्रेन नंबर है, ये इस रास्ते पर जाएगी, और बरेली में अगर ये सूचना बोली गई रेलवे स्टेशन पर, तो ये 3 नंबर प्लेटफार्म पर आएगी। ठीक है,
1: यानी कि बच्चों को आपने बता दिया कि कौन सी ट्रेन किधर से आने वाली है ना।
0: हाँ, और हम बाल दोस्तों को ये भी बता दें कि थोड़ी ही देर बाद शब्द जो यूज होता है कि थोड़ी ही देर बाद ये गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 3 पर आएगी, तो थोड़ी देर का मतलब आप समझ रही हैं नाजमा दीदी, मतलब
1: वो आनी ही
0: आने ही वाली है। ठीक है, आउटर से गाड़ी
1: मतलब
0: पास हो चुकी है,
1: पक्की सूचना है कि गाड़ी आनी ही है,
0: आने ही वाली है, यात्रीगण जो है वो प्लेटफार्म पर थोड़ा

0: सावधान हो जाए और वहां पर पहुंच जाए। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए और हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, है ना, जब ट्रेन रुक जाए उसके बाद ही ट्रेन पर बैठे।
1: क्योंकि देखिए अब माहौल ऐसा बन रहा है, छुट्टियां होने वाली हैं, आपका सफर भी जारी रहेगा, बच्चे कहीं ना कहीं माता पिता के साथ जाना चाहेंगे, तो इन सावधानियों का बहुत ख्याल रखें कि पहले माता पिता को चढ़ने दें, फिर आप आराम से चढ़िएगा और ट्रेन पूरी तरीके से रुक जाए।
0: को झोरा गिर गया तो
1: हाँ, तो ये देखिए कितनी परेशानी, कोई अगर झोला छूट गया, बैग छूट गया, तो ये भी परेशानी होगी। तो नेमचंद भैया, जानकारी की गाड़ी हम आगे बढ़ाते
0: हैं। तो
1: रेलवे की परिवाद पुस्तक के बारे में हम बता रहे थे, और इसका मतलब यही है बच्चों, यात्रियों की शिकायत का सुझाव को दर्ज करने के लिए रखी जाती है ये पुस्तक। ये पुस्तक रेलवे के गेट मैन, स्टेशन मास्टर और चलती ट्रेनों में गार्ड और फाटक वालों के पास रहती है। इसमें यात्री अपनी समस्याओं को भी दर्ज कर सकते हैं।
0: तो नाजमा दीदी, ये भी बताया जाए कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो इस पुस्तक में लिखी जा सकती हैं, बताया जाए।
1: हाँ बिल्कुल बताया जाए।
0: देखिए बच्चों, ट्रेन की लेट लतीफी, गंदगी, एसी की समस्या और कर्मचारियों का व्यवहार आपके प्रति कैसा है, इस बारे में आप इस पुस्तक में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस पुस्तक में ये भी लिखा जा सकता है कि जो गेट मैन है उनका व्यवहार कैसा है आपके प्रति, अच्छी भाषा यूज हो रही है, आपके साथ मधुरता से बात कर रहे हैं वो, अगर कहीं पर आपको कोई लगता है कोई समस्या होती है तो इस बारे में भी आप इस पुस्तिका को मांग सकते हैं और लिख सकते हैं।
1: कहने का मतलब है कि उनका व्यवहार यात्रियों के प्रति मधुरता भरा है या नहीं, और यात्रियों के लिए आसानी से उपलब्ध है, और अगर कोई यात्री उनसे मिलता है तो वो संतोषजनक उत्तर देते हैं या नहीं, ये भी एक खास बात है। बताइएगा कहीं टहलाते तो नहीं है कि हम लिख देंगे कि नहीं इधर से उधर। हाँ
0: बात पकड़ ली आपने
1: जी। और ये सब इस पुस्तिका में लिखा जा सकता है, और इसके अलावा ये भी है कि यात्री लिखित में भी अपनी बात इस पुस्तिका में दर्ज करा सकते हैं।
0: बिल्कुल, अब ये तो हो गई शिकायत वाली बात, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पुस्तिका में लिखने से फायदा क्या है, भाई लाजमी प्रश्न उठेगा, है ना नाजमा दीदी। तो साथियों, अब बात आती है कि भाई लिखने के बाद होता क्या है आगे के लिए। तो आगे ये होता है कि जो भी शिकायत इस पुस्तिका में लिखी जाती है उसे संबंधित उच्च अधिकारियों को भेजा जाता है और उस पर सुधारात्मक कार्रवाई होती है। अगर कर्मचारी का व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं है तो बिल्कुल डरने वाली झिझकने वाली बात नहीं है, आप बिना झिझक के इस पुस्तिका में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
1: तो बच्चों, अगर कभी रेलवे से संबंधित कोई समस्या होती है तो आप अपने अभिभावक के साथ गेटमैन से इस पुस्तिका को मांग सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मांगे जाने पर रेलवे के गेटमैन आपको ये पुस्तिका देंगे जिससे आप आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। रेलवे फाटक पर जिधर से रास्ता निकलता है ना निमचंद भैया, उसी साइड में रेलवे द्वारा लिखाया जाता है कि परिवाद पुस्तक फाटक वाले के पास है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या होती है परिवाद पुस्तक।
0: बिल्कुल, बच्चों के समझ में आ गया होगा, और वो बड़ा बड़ा करके जिस दर से रास्ता निकलता है उधर इसी प्रकार से लिखवाया जाता है कि आसानी से समझ लें बच्चे, और अपनी जो भी शिकायत है अपने अभिभावकों के माध्यम से दर्ज करा दें। और नाजमा दीदी
1: जी,
0: माँ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे आपके सबके जीवन में, माँ की ममता अपरंपार होती है ना।
1: अरे ये माँ की याद कैसे आ गई?
0: अब माँ की याद आ गई, बच्चे भी समझ गए होंगे, आप भी समझ गए आखिर आज क्या खास दिवस है,
1: मदर्स डे है। बिल्कुल, बच्चों के लिए बहुत खास दिन, बच्चों माँ है तो सब कुछ है, माँ है तो बच्चों दुनिया ही निराली है। यही नहीं बाल साथियों, माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती है। माँ हमें प्यार, संस्कार, दया, करुणा और सही रास्ता बताती है, इसलिए बच्चों अपनी माँ का कहना माना करें। माँ कहे सही तो सही, जिस काम के लिए माँ मना करे तो वो काम कभी ना करें, क्योंकि बच्चों माँ वो होती है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर देती है। उसका प्यार निस्वार्थ और बड़ा ही अनमोल होता है। कहते हैं ना कि माँ तेरी ममता न्यारी है, तू सबसे प्यारी है, तेरी गोद स्वर्ग समान, तुझसे रोशन मेरा जहान।
0: और नाजमा दीदी
1: जी, भैया
0: जब बचपना था जी, तो कथरिया पर लेटा थे, कथरिया समझती हैं आप,
1: बिछौनिया
0: जो घर के कपड़े होते हैं पुराने ना
1: जी,
0: उनको जोड़ करके मिला करके बनाया जाता है, और जो हमारी पुरानी माता बहने हैं वो

0: बनाती थी। और इतना हम आपके लिए क्या बताएं कि माँ अपने आप स्वयं,
1: सूखे मतलब बच्चे को सूखे में सुला देती और
0: हाँ
1: खुद
0: हाँ बिल्कुल
1: गीले
0: बिल्कुल
1: में,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: तो
1: ये
0: कभी
1: माँ
0: कभी
1: की
0: याद
1: जी
0: करते हैं पुराना बचपन तो आंसू आ जाते हैं
1: बिल्कुल
0: कि माँ
1: अंजनी
0: की कितनी करुणा होती है बच्चों के प्रति, कितनी दयालुता होती है बच्चों के प्रति कि हमारे बच्चों को कोई कष्ट ना हो।
1: बिल्कुल सही
0: कभी कभी
1: कहा।
0: क्या होता था कि दवाई नहीं दी जाती थी बीमार होने पर, तो पिताजी से लड़ जाया करती थी माँ,
1: हाँ बिल्कुल
0: क्या कर
1: सही
0: रहे हो, लला को ले चलो चुप्पा। तो
1: देखिए
0: इसमें भी कहीं ना कहीं प्यार झलकता है।
1: बिल्कुल, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, ऐसा ही कुछ कह रहा है ये गीत।

0: नाजमा दीदी,
1: जी भैया,
0: ये जो गाना आपने सुनवाया ये बिल्कुल दिल और मन को झकझोर गया।
1: बिल्कुल सही कहा नेमचंद भैया। वाकई में माँ कितनी अच्छी होती है, कितनी प्यारी होती है, जितनी भी तारीफ की जाए बस वो कम ही है ना
0: बिल्कुल
1: नेमचंद भैया।
0: बिल्कुल। शाम को अगर कभी कभी आपने देखा होगा कि लेट हो जाते हैं तो माँ यही कहती है, लला को फोन कर लो,
1: बिल्कुल सही बात
0: कितनी
1: है,
0: देर माँ बड़ो,
1: मतलब
0: है
1: हर
0: ना।
1: तरीके से फिक्र करती है माँ
0: बिल्कुल
1: हमारी। और
0: बिल्कुल।
1: नेमचंद भैया, अब हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं बच्चों, इतिहास में हम चलते हैं और इतिहास में हम जानेंगे आदि मानव का जीवन कैसा था। प्यारे बाल साथियों, चलिए आपको इतिहास में लिए चलते हैं, वो भी आदिकाल में। और आदिकाल में कैसा था मानव, कहाँ रहता था, क्या खाता था, यही सब हम जानेंगे आदि मानव के जीवन के बारे में। बच्चों, ये उस समय की बात है, ना घर थे ना ही खाने को, सिर्फ कंदमूल खाया जाता था। बड़ा ही कठिन था आदि मानव का जीवन और बड़ा ही संघर्षपूर्ण था। ये बड़े ही लंबे चौड़े लोग हुआ करते थे बच्चों, हम आपको बताएं। और इन्हें कोई ज्ञान तो था ही नहीं। जंगली जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए बच्चों क्या करते थे कि पत्थरों की कुदरती बनी हुई गुफाओं में रहा करते थे, कच्चा मांस खाया करते थे और कंदमूल यानी के कुछ फल और पत्ते खाकर गुजारा करते थे। एक बार हुआ क्या बच्चों, खाना खाने के लिए आदि मानव झगड़ते हुए दो पत्थर एक दूसरे पर फेंकते हुए जब वे आपस में टकराए तो चिंगारियां निकलकर सूखी घास पर गिर पड़ी और वहां पर एकदम आग जल उठी। तो इस तरह आदि मानव को आग का पता लगा।
0: बिल्कुल पता लगा। और आग की खोज आदि मानव के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव थी, और इस आग से आदि मानव की बहुत बड़ी मदद मिली, बल्कि ये कहिए कि उसका जीवन ही सुधर गया। और आदि मानव के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ आग के बाद। क्या हुआ कि आग से उसे भोजन पकाने और ठंड से बचने में बहुत मदद मिली। इसके अलावा जब वो लोग आग जला देते थे तो जो जंगली जानवर हैं वो एकदम दूर भाग जाते थे, पास नहीं आते थे, उन्हें डर लगा रहता था इससे पहले कि कोई जंगली जानवर हमें खाए ना ले, है ना नजमा दीदी।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: उसके
1: बात,
0: बाद बहुत बदलाव हुआ, और फिर आदि मानव ने पत्तों और पेड़ों की छाल और बाद में जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकना शुरू किया। अब इससे क्या फायदा हुआ कि उन्हें ठंड नहीं लगी।
1: बिल्कुल। और उसके बाद समय बदलता गया, वो पत्थरों और लकड़ी तथा हड्डियों से नुकीले हथियार बनाकर पशुओं का शिकार करने लगे और साथ ही अपनी सुरक्षा भी। सुरक्षा और शिकार के लिए आदि मानव समूह बनाकर रहने लगा। धीरे धीरे यहीं से बच्चों समाज की शुरुआत हुई। बच्चों, हम समाज में रहकर ही बहुत कुछ सीखते हैं ना, इसलिए समाज बहुत ज़रूरी है। बाद में आदि मानव ने खेती करना और पशुओं का पालन सीखा। इसके बाद उनका जीवन जो था और भी आसान हो गया। आदि मानव का जीवन कठिन था लेकिन उसने धीरे धीरे खोज और अनुभव से सभ्यता की शुरुआत की। आज का आधुनिक मानव उसी विकास का परिणाम है।
0: तो अब बच्चे जान गए होंगे, और नजमा दीदी
1: जी भैया,
0: आज पुटरिया ना पता चली कुछ लाई हो नहीं लाई हो। देखिए स्टूडियो में सामने ब्रजेश भैया बैठे हैं,
1: जी
0: ये आपकी पुटरिया की तरफ देख रहे हैं
1: मतलब
0: और ये कह रहे
1: इंतजार
0: हैं कि
1: कर
0: ना, हाँ कि अगर नाजमा
1: रहे
0: दीदी कुछ लाई हो केरा की फरी तो इकल्ले मत खा जाइए वो।
1: नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आकाशवाणी में पुटरिया आए और वो खुले ना और कोई खाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं
0: बिल्कुल,
1: सकता
0: बड़ा अच्छा सोचती हैं आप आकाशवाणी के बारे में।
1: जी।
0: चलिए बढ़िया बात है, अब प्रश्नों की बारी है, तो प्रश्नों को नाजमा दीदी बताया जाए।
1: बिल्कुल बताया जाए बच्चों। आज का पहला सवाल है, आसमान सिर पर उठाना, यानी कि ये मुहावरा है और मुहावरे का अर्थ आपको बताना है बच्चों। दूसरा प्रश्न है कि बुल आई शब्द किस खेल से संबंधित है, बुल आई शब्द किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है, माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। पांचवा और आखिरी

0: प्रश्न है, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी प्रमुख नदी निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी प्रमुख नदी निकलती है? तो बच्चों, इन सवालों के जवाब एक हफ्ते में एक पोस्टकार्ड पर लिखकर हमसे हमारे पास भेज दीजिए।
1: बिल्कुल। और अब बारी है, पिछले रविवार को हमने आपसे कौन कौन से सवाल पूछे थे, ठीक है? तो अपने उत्तर मिलाइएगा। पहला प्रश्न आपसे किया गया था कि उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली किन्हीं तीन नदियों के नाम बताइए, ठीक है? सभी ने सही लिखा है, गंगा है, यमुना है, गोमती है, घाघरा है, बेतवा है, ये सब उत्तर प्रदेश से ही निकलती हैं। अगला सवाल आपसे किया गया था कि एक प्रसिद्ध कहावत है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, इसका अर्थ क्या है? तो बच्चों, सबका अपने मन के अनुसार चलना या सब लोगों की अलग अलग राय होना और समूह में एकता ना होना, मतलब अपनी ही बात को मनवाना या अहमियत देना, ये इसका अर्थ है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। और अगला शब्द आपसे पूछा गया था कि कम शब्द का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है अधिक या ज्यादा। और आखिर में एक धुन सुनवाई गई थी और आपसे पूछा गया था कि ये धुन किस गाने को संकेत कर रही थी? तो इसका सही उत्तर है, गाना था कौन दिशा में लेकर चला रे बटोहिया, शाम हो जाएगी, है ना नाजमा दीदी? वो जो दृश्य बनता है पालकी का, अरे वाह क्या कहने, नदिया के पार फिल्म की ये धुन थी। और कुछ पत्र आए हुए हैं नाजमा दीदी, ये पहला पत्र मेरे हाथ में है, पढ़ा जाए?
0: जी बिल्कुल पढ़ा जाए।
1: ये पत्र आया है कालीघाट से राम प्रसाद शर्मा और उनके बहुत सारे साथी, और करपिया फरीदपुर बरेली से हैं सुंदरलाल राजपूत, तेजपाल राजपूत और उनके बहुत सारे साथी। इनके पांच में से पांचों प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल ठीक हैं। पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: निमचंद भैया, ये देखिए हमारे पास बहुत सारे पत्र हैं, अभी इन्हें रख दीजिए, हम अगले संडे को पढ़ेंगे। और चलते चलते हम कार्यक्रम का पता बता देते हैं। कार्यक्रम अंकुर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड है 2430001।
1: बिल्कुल। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आकाशवाणी बरेली से यूं ही दिल का रिश्ता बनाए रखिए, प्रेम का रिश्ता बनाए रखिए और आकाशवाणी बरेली को अपना प्यारा प्यारा दुलारा दुलारा मित्र बनाइए और अंकुर कार्यक्रम को तो आपको दोस्त बनाना ही है। फिलहाल आज का ये हंसता मुस्कुराता हुआ खूबसूरत सफर बस यहीं तक, आगे लेते हैं।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अंकुर नाजमा और नेमचंद के साथ। ट्यून किया है आपने 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 9 बज रहे हैं और आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है गंगवार बाल चिकित्सालय निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
2: गंगवार हॉस्पिटल निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
3: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी।
3: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड।
2: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप वेंटिलेटर HFNC और ईयर वो मशीनें।
4: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए
2: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर क्रिटिकल थेरेपी हाइपोथेरेमिया।
3: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM बेड साइड इको अल्ट्रासाउंड की सुविधा।
2: साथ ही बच्चों में पीलिया सेप्टिक इन्फेक्शन निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा। बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
3: गंगवार हॉस्पिटल
2: निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
4: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
5: कार्यक्रम स्वस्थ बचपन लेकर हाजिर हूँ मैं मुकेश कुमार पांडे और मेरे साथ मौजूद है बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: पांडे जी आपको प्रोग्राम सुनने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार।
5: डॉक्टर साहब चूंकि माँ का दूध अमृत समान बताते हैं और ये भी कहते हैं कि जिस बच्चे को माँ का दूध मिलता है या जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो उसके लिए बहुत ही अनमोल तोहफा भी देती है और इसे टीका भी कहा जाता है, प्राकृतिक टीका।
6: जी जी,
5: तो आज क्यों ना माँ के दूध के बारे में बात की जाए।
6: देखिए माँ का दूध

0: जिसको हम ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, मदर्स ओन मिल्क, हर माँ का अपने बच्चे के लिए एक अलग तरह का दूध होता है। अगर कोई बच्चा प्रीमेच्योर है तो उस माँ का दूध अलग होता है, और जिस माँ का बच्चा मेच्योर यानी टर्म बेबी है उस माँ का दूध अलग होता है। इट इज़ टेलर मेड, मतलब बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से माँ को दूध होता है, और माँ का दूध ही बच्चे को पिलाना चाहिए। क्योंकि शुरू में दूध होता है वो थोड़ा कम होता है, जिसको कॉन्स्टम बोलते हैं, थोड़ा पीले रंग का भी होता है
1: जी।
0: तो उस दूध को कई बार अज्ञानतावश लोग डिस्कार्ड भी कर देते हैं, फेंक भी देते हैं निकलवा के, वो नहीं करना चाहिए।
1: यानी जो खीस कहा जाता है
0: जिसको
1: क्षेत्रीय भाषा में, वो आप बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है,
0: क्योंकि वो बच्चे की जो गट की प्राइमिंग है, जो आंतों की पूरी एक लेयरिंग है, वो प्राइमिंग होती है, और वो प्राइमिंग जीवन भर आगे काम आती है।
1: अच्छा।
0: तो माँ का दूध, पहला दूध जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो जरूर पिलाना चाहिए। वो एक प्राकृतिक टीका भी है और बच्चे के लिए बहुत आवश्यक भी है। शुरू में 2-3 दिन माँ का दूध थोड़ा कम होता है, क्योंकि बच्चे की ज़रूरत भी उतनी कम होती है
1: जी।
0: तो माँ ये ना सोचे कि उसको दूध कम हो रहा है, मेरा बच्चा भूखा है। अक्सर माँ के मन में ये ख्याल आता है कि मेरा बच्चा भूखा ना रहे
1: जी जी
0: तो वो कोशिश होती है उनकी कि कुछ और पिला दिया जाए, जैसे कि फॉर्मूला फीड है, डिब्बे का दूध है, या गाय का दूध है, भैंस का दूध, ये कभी भी ना करें
1: जी।
0: पहले दिन से ही, चाहे भले ऑपरेशन से बच्चे पैदा हुआ हो, माँ जब भी 1-2 घंटे में इस लायक हो जाती है कि थोड़ा सा सिर ऊंचा करके वो लेट सकती है, तो उस हालत में भी ये जो साथ में माँ के साथ जो और लोग हैं वो माँ की मदद करके और पहला दूध बच्चे को माँ का ही पिलाएं।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर विडंबना ये है कि जो बच्चे पूरे दिनों में पैदा होते हैं उस समय तो माँ के पास दूध होता है, आपने हालांकि बता भी दिया है, लेकिन पुनः एक बार हम इस बात को दोहराना चाहेंगे, और वो इसलिए लोगों के मन में एक ये बात रहती है कि ऑपरेशन से बच्चा हुआ, कम दिनों का है, तो इस समय माँ के पास दूध कहाँ से आया, इतने जल्दी दूध नहीं उतरता, तो इस बारे में क्या वैज्ञानिक तथ्य हैं, क्या उस समय भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने की क्षमता रखती है?
0: बिल्कुल, अगर बच्चे प्री टर्म समय से पहले पैदा हुआ तब भी माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि प्री टर्म बच्चों को तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ का दूध मिले
1: जी।
0: वरना उन बच्चों को बहुत सारे GIT इन्फेक्शन होने का डर रहता है, एक कंडीशन होती है नेक्रोटाइजिंग एंट्रोपोलाइटिस, जिसमें कि गट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे अगर बचाना है तो माँ का दूध ही बचा सकता है, एक चीज़। दूसरा, जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उनकी माँ का दूध, जो माँ जिनका टर्म बेबी है उससे बिल्कुल अलग होता है।
1: अच्छा।
0: प्रीटम माँ के दूध में आपको प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है, जो कि बच्चे को ज़रूरत है
1: जी।
0: और प्रीटम माँ का बच्चा, उसके लिए ज़रूरतें अलग हैं, जो टर्म बेबी है उसकी ज़रूरत अलग है
1: जी।
0: और उन दोनों माओं का दूध भी अलग होता है।
1: अच्छा।
0: तो दूध पिलाते समय अक्सर ये ख्याल आता है लोगों को कि दूध कम ना पड़ रहा हो, तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया वो देख लें। एक तो अगर बच्चा दूध पीने के बाद 2 घंटे सो जाता है
1: जी,
0: तो माँ का दूध पूरा पड़ रहा है। दूसरा, अगर 24 घंटे में बच्चा 5 से 6 बार यूरिन कर रहा है, पेशाब कर रहा है, तो माँ का दूध पूरा पड़ रहा है।
1: अच्छा।
0: तीसरा, अगर बच्चे का वजन बढ़ रहा है तो माँ का दूध पूरा हो रहा है, लेकिन शुरू के 7 दिन बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है
1: जी।
0: और 10वें दिन वजन उतना आता है जितना वजन का बच्चा पैदा होता है, तो 10 दिन बाद बच्चे का वजन बढ़ना शुरू होता है
1: जी। जी जी। डॉक्टर साहब, हम आगे भी आपसे और बहुत महत्वपूर्ण बातें जानने वाले हैं, अपने श्रोताओं के लिए बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे आपकी पसंद का वो गीत जो आज सबसे पहले हमारे श्रोताओं को सुनने को मिलने वाला है।
0: भूपेंद्र सिंह की आवाज में एक गाना है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता
1: जी। आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं, डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब की पसंद।

0: कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, वास्तव में बहुत ही प्यारा गीत है, आपने हमारे श्रोताओं को सुनवाया। अब ये भी बताइए डॉक्टर साहब कि जो माँ के दूध की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि बच्चा चाहे प्री टर्म हो या फिर फुल टर्म हो, चाहे पहले पैदा हुआ हो चाहे समय पर पैदा हुआ हो, उसकी माँ के पास दूध होता है और वो उस बच्चे के योग्य होता है। अब जो अस्पतालों में ये कहा जाता है कि डॉक्टर खुद डब्बे का दूध मंगा के पिलाते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई में डब्बे का दूध डॉक्टर मंगा के पिलाते हैं या ये एक सिर्फ मिथक है समाज में?
1: एक मिथक है, डॉक्टर्स भी कभी भी एडवाइज नहीं करते हैं कि आप डिब्बे का दूध पिलाइए। हर डिब्बे पे लिखा हुआ होता है कि माँ का ही दूध पिलाएं।
0: जी,
1: माँ का दूध सर्वोत्तम है और बच्चे के लिए विशेष है।
0: जी,
1: तो डॉक्टर्स एडवाइज नहीं करते और कभी किसी ने भूल बस अगर किया हो तो गलत।
0: जी जी बिल्कुल, तो ये तो एक मिथक है, भ्रांति है। माँ का दूध बच्चे के लिए जो उसकी आवश्यकता है उतनी क्षमता
1: में होता अनुरूप है,
0: उसके अनुरूप होता है और सर्वोत्तम होता है।
1: सर्वोत्तम
0: जी। अच्छा, अब ये और बताइए डॉक्टर साहब, कुछ लोग माँ के दूध के स्थान पर गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊपर का दूध या फिर बकरी का दूध या डब्बे का दूध पिलाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ?
1: देखिए, बच्चे की जिंदगी के प्रति एक खिलवाड़ है, ऐसा कभी भी ना करें, भूल कर ना करें। देखिए, हर स्पेसीज, अगर गाय का दूध है तो गाय के बच्चे के साथ सोना हुआ, भैंस का दूध है तो वो भैंस के बच्चे के साथ सोना हुआ। उसमें कई गुना ज़्यादा कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है जो कि गाय के बच्चे यानी बछड़े के लिए ज़रूरत होता है, मजबूत हड्डियों के लिए।
0: जी,
1: तो वो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बना
0: और वही हजम कर पाते हैं,
1: वही हजम कर पाते हैं और उनकी ज़रूरतें पूरी होती है। और जो बच्चे माँ के दूध पे नहीं होता है उनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी IQ भी 10 से कम हो जाता है।
0: अच्छा,
1: अगर किसी बच्चे का IQ 140 होता है और उसे अगर माँ का दूध नहीं मिला तो उसका IQ 130 रह जाता है।
0: यानी मानसिक स्वास्थ्य पर भी
1: इसका असर पड़ता है और जीवन में आगे इम्यूनिटी जो शरीर में डेवलप हो रही है उसके लिए भी माँ का दूध बहुत आवश्यक है। और माँ के दूध को अगर पिलाएंगे तो बच्चे को सांस की बीमारियाँ हैं, डायरिया है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, ये सब बीमारियाँ भी ना के बराबर होती हैं।
0: जी जी, अच्छा ये तो बात रही डॉक्टर साहब गाय भैंस के दूध की। लोग कहते हैं बकरी का दूध बहुत पौष्टिक है और बकरी का बच्चा भी छोटा होता है।
1: बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए।
0: जी जी।
1: ना कि ऐसे तो फिर कल को आदमी कहेगा शेरनी का दूध पिलाऊं मैं, शेरनी का तो बच्चा बहुत मजबूत होगा, शेर की तरह होगा।
0: जी,
1: तो ऐसा नहीं है, शेरनी भी अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाती है, गाय भैंस का दूध नहीं पिलाती।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बड़ी समझदारी की बात है जो हमें अपने आप से नहीं कम से कम उन प्राणियों से सीखने की जरूरत है जो इस पृथ्वी पर वाकई में अच्छा जीवन यापन करते हैं। आपके बच्चे का दूध उसकी माता के पास ही है जो सबसे उपयुक्त है। डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे हैं कि पहला दूध होता है वो एक प्राकृतिक टीका है, कैसे और किन बीमारियों से रक्षा कर पाता है?
1: देखिए, उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज और वो इम्यूनिटी के लिए चीज़ें होती हैं। दूसरा एक गट की प्राइमिंग होती है, तो गट में जो आपका बायोमा होता है मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं

0: बहुत सारे जिसमें कि कुछ पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक उन बैक्टीरिया फ्लोरा को मेंटेन करने के लिए पहला माँ का दूध बहुत जरूरी होता है।
1: क्या डॉक्टर साहब कभी ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जब ऊपर का दूध पिलाना ही पड़ता है, जैसे
0: माँ खत्म हो जाए?
1: जी जी,
0: माँ है ही नहीं तो मजबूरी
1: है। ऐसी परिस्थितियों में ही जो डब्बा का दूध है या ऊपर के दूध की बात
0: फॉर्मूला फीड पे बच्चे के वजन के हिसाब से, बच्चे की जरूरत क्या उस हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए, और फिर उसमें भी जो बहुत सस्ते दूध आते हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि उनमें बच्चे की न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं और दूसरा कुछ चीज़ें कम होती हैं।
1: जी, अब वो गीत जो हमारे श्रोता आपकी पसंद का सुनने वाले हैं कौन सा है?
0: एक बहुत ही अच्छा गीत है, मूवी है नया रास्ता, पोछ कर अश्क अपनी आँखों से,
1: मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं हम डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब की पसंद पर। और अब अगले कार्यक्रम में एक नई बात को लेकर के, एक नई जानकारी को लेकर के हम फिर से हाजिर होंगे और साथ होंगे डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब। नमस्कार,
0: धन्यवाद।

0: गंगवार बाल चिकित्सालय निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 9:15 हो रहे हैं और आइए अब सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए मोनाली ठाकुर का गाया ये गीत दम लगा के है शाह। इस फिल्म से वरुण ग्रोवर ने इस गीत को लिखा है, अनु मलिक की धुन।

फ्लाइंग जेट। इस फिल्म का गीत सुनिए सुमिधा करमरे की आवाज में। प्रिया सरारिया का लिखा यह गीत, सचिन जिगर की आवाज।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। और देखिए ना, चारों तरफ फूल खिले हैं और मत भरी रुत जवान है। इन मीठी स्वर लहरियों की तरंगों पर सवार होकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं।
1: पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, जग की लाज मन की मौज दोनों को निभाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

पंकज मलिक का जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम था मणिमोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेन्द्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रवींद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेन्द्रनाथ टैगोर से रवींद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म में बेहतरीन संगीत दिया था। आइए ये गाना सुनिए।

संगीत समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया। इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदनलाल सहगल

0: भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।
1: पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना।

1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे सुना जाता है।

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुन्नलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

आज इतने बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्य की लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज।

इसी फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था, हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी कुंदनलाल सहगल की आवाज, और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

सन 1941 फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये गीत

0: पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया, हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया, दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।
1: दो नैना मतवाले

0: है।
1: सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिकाई, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

सन 2006 में पंकज मलिक की जन्मशती पर एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

पंकज मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज जाने माने गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 10 बज रहे हैं और अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। और आइए श्रोताओं, अब हम सुनते हैं आकाशवाणी के दीवाने, जो कि एक विशेष सीरीज है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में। और इसमें आज हमारे मेहमान है अनोखे लाल मौर्य। तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी के दीवाने।
2: आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो चुके हैं, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। और वैसे मैं सभी कार्यक्रम सुनता हूं और आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। वैसे मैं 50 साल से आकाशवाणी को सुन रहा हूं। वैसे ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस है, विविध भारती है, सीलोन है, सभी मैं सुनता था। पहले बिना का गीतमाला सीलोन से आता था, 7:30 बजे शाम को लगाने बैठ जाता था, वो बहुत ही अच्छा लग रहा। संगीत सितारे कार्यक्रम आता था, बिना का गीतमाला, बहुत ही अच्छे कार्यक्रम चलते थे। और वैसे आकाशवाणी रामपुर भी सुनता था, नजीबाबाद भी सुनता था, लखनऊ भी सुनता था और दिल्ली भी सुनता था। और सबसे 1993 से आकाशवाणी बरेली से मैं जुड़ा हूँ और सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और मैं बराबर सुनता हूँ। वैसे जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है आकाशवाणी की। नमस्ते बरेली कार्यक्रम है और रसधारा कार्यक्रम आता है और आपकी पसंद कार्यक्रम आता है, अनुरोध गीत कार्यक्रम आता है, नारी संसार कार्यक्रम आता है, किसान वाणी आता है, युगवाणी कार्यक्रम आता है। सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

आप थे हमारे बरेली के नियमित श्रोता अनोखे लाल मौर्य, अपनी बात रख रहे थे आकाशवाणी के इस 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर, और श्रोताओं ट्यून किया है आपने 100.4 FM।

श्रोताओं, समय हो रहा है प्रोग्राम आपकी पसंद का, तो आप भी जुड़िए हमारे प्रोग्राम आपकी पसंद से। आप कीजिए कमेंट प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपनी पसंद का गीत को सुनने के लिए। प्रोग्राम लेकर हाजिर हो रहा हूं मैं, आपका अपना रेडियो दोस्त ब्रजेश। श्रोताओं, आपसे बस एक विनम्र अनुरोध यह है प्रोग्राम की शुरुआत पे ही कि प्लीज आप एक बार ही कमेंट कीजिएगा, एक बार से अधिक बार अलग अलग मैसेजेस में अपने नाम मत शामिल कीजिएगा, जिससे नामों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, सेम नाम हो जाते हैं और नए नए श्रोताओं के नाम शामिल होने में दिक्कतें होती हैं। तो बेहतर है ना कि अगर आपने एक बार मैसेज किया है तो 100% सबका नाम शामिल ज़रूर होगा। एक से ज़्यादा बार अगर आपने मैसेज कर दिया है तो दूसरे मैसेज को डिलीट कर दीजिए, है ना। तो बस यही एक अनुरोध है। बाकी गर्मियां अब शुरू हो रही हैं, मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। अपने इस उतार चढ़ाव भरे मौसम के बीच इस अनुरोध के साथ कि एक पौधा लगाइए, उसको बड़े प्रेम से लगाइए, उसको पानी दीजिए, अपने आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखिए, वो जड़ पकड़ने लगे और जब बड़ा होने लगे अपने बच्चों के साथ उसके पास जाइए, उसको सींचिए, उसको पानी दीजिए, है ना। और आज तो बड़ा ही विशेष दिन है, आज का दिन हम लोग मनाते हैं मदर्स डे के नाम, यानी हर उन माँ का। अगर माँ की बात की जाए तो माँ के लिए क्या ही शब्द कोई कहेगा। प्रेम की वो आकाश है जिसके नीचे हम सब रहते हैं, वो प्रेम जो अथाह है, जिसकी कोई सीमा नहीं है और जिसको किसी शब्द में बयां कर पाना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल क्या नामुमकिन है, है ना। तो ऐसे ही अपनी माँ को समर्पित करते हैं हम आज का ये विशेष दिन। और बेहतर हो इस दिन को हम और अच्छे से मनाएं, यानी कि एक पौधा अपनी माँ के नाम ज़रूर लगाएं, अपने अपनी माँ के हाथों से ही लगवाएं और उनकी सेवा करें। पौधा ये जब बड़ा होगा तो जैसे माँ की छांव होती है बच्चे पे, वैसा ही वो छांव देगा एकदम माँ की तरह ही। और देखा जाए तो ये प्रकृति भी हमारी माँ ही है, हम लोग इसे माँ का मातृत्व दर्जा देते हैं। तो प्रोग्राम में इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं प्रोग्राम को और शुरू करते हैं आपके कमेंट्स को पढ़ने का सिलसिला। ये मैसेज हम तक आ पहुंचा है माधरानी सिंध से, गांव छत्तो से मीर दानिश अयाज मुबारक और मीर जैन का। ये अगला मैसेज जो हम पढ़ रहे हैं, इसे भेजा है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो। इस गीत की फरमाइश करते हैं हमें कुरावली सदर बाजार से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल विनीत और सोनम वर्मा। गंजडुंडवारा से ये मैसेज हम तक आया है मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा, तौसीफ, तैमूर और कलीम का। नांदेल एतला महाराष्ट्र से आप हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल शुभम, दुर्गेश्वरी जायसवाल और आपके सभी साथी। पद्मा टॉकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से ये मैसेज हमें करते हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। हमारे निवेश होता है पुराना शहर बरेली से आप हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य। गंगानगर शिकोहाबाद फिरोजाबाद से ये मैसेज हमें किया है बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता, राम, श्याम, रवि, आर्यन, रंजीत, रमानंद और आपके सभी साथी। कृष्णा पार्क दिल्ली से ये मैसेज करने वाले हैं सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवानी, जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र ओबराय और आपके सभी साथी। मोतला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला और आरती गौरी ओम का भी मैसेज मिला हमें। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और आपके सभी साथी। मोहाली चंडीगढ़ सेक्टर 67 से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर, अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, चाहिल और विट्टा बजाज।

का मैसेज भी मिला। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म हिना का ये गीत, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं रविंद्र जैन ने और संगीत है रविंद्र जैन का ही।

0: टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: ट्यून किया है आपने 100.4 FM, सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। आप लोगों ने ढेर सारी पसंद अपनी भेज रहे हैं और आज मदर्स डे है तो माँ के लिए गीत सुनना चाहा है आप बहुत सारे श्रोताओं ने और ढेर सारे कमेंट भी आ रहे हैं। अगला मैसेज हमें किया है, बागपत से संजय ढींगिया नमन और अपार ढींगिया ने ये मैसेज हम तक पहुंचा है। कलानौर से मैसेज करने वाले हैं नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन और मयंक शर्मा। नथाना पंजाब से आप हैं हरजिंदर सिंह, चंदा, जसवीर, सीता और गीता। चौखुंडी बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आपके परिवार के सभी सदस्य। शोहारा जिला बिजनौर से मैसेज किया है हमें आसिफ चौधरी, रेहाना, अराफात अदीब और कदीर चौधरी। मलोट पंजाब से, पटेल नगर मलोट पंजाब से आप हैं रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू। उगहती कस्बा उगहती से मैसेज करने किया है हमें देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज, पंकज, प्रिंस, प्रशांत, कार्तिक, निर्भय और आपके सभी साथियों ने। ग्राम करेली से अगला मैसेज जो हम पढ़ रहे हैं इसे भेजा है इशाक अहमद अंसारी, अफसार अंसार, दिलदार, मोहम्मद अर्श और आरिश ने। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरड़ी से नाना जी लाम से मीना, तेजस, हर्षिता और आपके सभी साथी। पाकुड़ झारखंड से इस गीत को सुनना चाहा है उत्तम कुमार भगत, श्वेता किशुतासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद ने। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से मैसेज करते हैं रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान।

बदायूं उत्तर प्रदेश उगैती से ये मैसेज किया है हमें सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, सितारा साद समद और सादिक सिद्दीकी। वडीखेड़ा पंजाब से आप हैं पिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। मुरादाबाद महेशपुर खेम से मैसेज करने वाले हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद तानिश और आपके सभी साथी। हेल बाजार पानीपत से मैसेज कर गया है हमें नरेश मल्होत्रा नीटू ने और आपके साथ हैं लक्ष्य लाड़ू, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। शिवा कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गू और भाविक सिक्का। हितेंद्र जी का भी मैसेज फ्लैश हुआ है हम तक पीलीभीत से। और लसुड़िया नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से मैसेज करने वाले हैं गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। आप हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोर्ड। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घंटे घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री महत्रे, अंजलि कारवा, बारा साहेब कारवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय ट्वील और पीवी कुल थे। इस गीत की फरमाइश की है हमें सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया ने सिरसा हरियाणा खारिया ठाणी से।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर?
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

ट्यून किया है आपने 100.4 FM और सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं आपका अपना रेडियो दोस्त ब्रजेश। श्रोताओं, ये जो अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं, और हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के लगातार, आज मदर्स डे की विश के साथ ये मैसेज हमें किया है अनूप ओझा ने मॉडर्न विलेज, और आपके साथ हैं आपके सभी साथी। अगला मैसेज जो हम पढ़ रहे हैं, ये इस मैसेज हम तक पहुंचा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मेंद्र देवी जोगेश पुरी ट्विंकल डिंपल निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। नागपुर महाराष्ट्र से आप हैं कमल स्वाने अफजल संदीप मकर रामगढ़ कैन झारखंड से निपी स्वाने और आपके सभी साथी। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से मैसेज करने वाले हैं पुखराज बड़गुजर कैलाश गोवर्धन धरा घनश्याम बाबू और हसन सिक्का। इसी गीत को सुनना चाहा है लाल कुर्ती रोड रुड़की कैंट से और आप हैं राजेश वर्मा मंजू निशांत कौशिकी दीपाली युवान और आरके राजा। कोटिया कला दुर्ग से सुजाता साहू सीमा साहू सरसंजय और शशांक साहू का मैसेज भी मिला हमें। चनेसर गोट कराची से मैसेज किया है हमें अमर रमेश कुमार खत्री मास्टर किशन लाल खत्री और अमीन जफर सादिक शेख शंकर गुल शर्मा और आपके सभी साथी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा और आपके सभी साथी। आप हैं मानपुर मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान अताउर और हबीबुर रहमान। भिलाई छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है मुकेश शर्मा गौरव गरिमा और हर्ष आहूजा ने। रमेश चंद चौहान मोहिनी कल्पित बेगरवी और हिमाक्ष का मैसेज भी मिला है जोधपुर राजस्थान सूर्यनगरी से।

खुशबू कटीला दिल्ली से, आप हैं कमल बालूजा, मधु सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। ये मैसेज हम तक आया है गोपालगढ़ राजस्थान से एक धर्मेंद्र छिपा, कपिल ईशान और पूजा परिहार का। इस गीत की फरमाइश की है हमें दनेशपुर गंजुंडवारा ईटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, क्षमा परवीन और आपके सभी साथी। भोजपुर सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, जावेद राणा, राहत अकील अहमद और आपके सभी साथी। इस गीत की फरमाइश हम तक आ पहुंची है शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, राजा, चैतन्य में और मेगा मस्कीन से। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म यारा दिलदारा का ये गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है जतिन ललित का।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। प्रोग्राम के अगले गीत के लिए ये मैसेज हम तक आया है लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से, रामजी लाल, जीवनलाल रंजक, निम्मी, सत्यशिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और आपके सभी साथियों का। आप हैं सिकलापुर मौर्य मंदिर के पास से रतन माला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस प्रियांशी, पुष्पा, गौरव और चंद्रप्रकाश मौर्य, संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव का मैसेज मिला है हमें बघेरा दुर्ग से। और आप हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, अफजल अकमल, प्रवीण और जेहानुल होदा, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुआनकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से आप हैं नारायण इंगले, राजकुमार खचे और आशीष मुहेरकर, जगराव और अनारकली बाजार से ये मैसेज किया है हमें सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, सुच्चा सिंह, विनोदपुरी और जयपाल यादव, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी राय, दुबिया नवादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय, हीरामणि वर्मा, पारस मनी, पुष्पेंद्र और नुकेलाल वर्मा का मैसेज भी मिला हमें भाटपाड़ा छत्तीसगढ़ से। और आप हैं सैयद यूनुस नौवान, तनवीर मसरत और सैयद निजामुद्दीन, राजकमल, रेडियो श्रोता संघ जालना मराठवाड़ा से, दोतार जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते का मैसेज भी है। आप है पलारी छत्तीसगढ़ से नीतेश कुमार दिवांगन, दुर्गा पराग, तनुजा ईशान दिवांगन, दीवाना रेडियो लिसनर क्लब गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, कवरिया छत्तीसगढ़ से रोहन और आर्य जायसवाल का मैसेज भी फ्लैश हुआ। उत्तर नगर दिल्ली से मैसेज करने वाले हैं बोधराज खोरवाल, कमरालानी, गीतिका और भानु प्रकाश। गंज डुंडवारा से सेव वाटर सेव लाइफ के इस सुंदर मैसेज के साथ हमें मैसेज मिला है खिलू परवेज, इमरान अनाज, नवाजिश, दानिश, अमन अफरीदी और आपके सभी साथियों का। लाला जी चौबे, लाडी जी रिमझिम और सक्षम चौबे का मैसेज फ्लैश हो चुका है। लखनादौन मध्य प्रदेश से गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से आप हैं सद्दातार सिंह शेखावत, कंगीता संगीता कंवर।

चार रिंकी सिखावत और आपके सभी साथी। बुल्ढाना महाराष्ट्र से नरेंद्र वनी, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार का मैसेज भी मिला हमें, और ये मैसेज मिला अलीगंज ईटर से। आप मैसेज करने वाले हैं विपिन कुमार शाह के सपना, रविंद्र, राजेश, रमेश चंद्र, राजीव, प्रदीप शाह के, रंजीत, सिद्धार्थ कुमार, सुजाता, संगमित्रा, प्रज्ञा शाह के और प्रतिज्ञा और परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म प्रेम रोग का गीत सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं अमीर और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। ग्राम दुल्हापुर मुरादाबाद से आप हैं फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस। इस कार्यक्रम के अगले गीत की ही फरमाइश की है हमें गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती, जगदीश जौहरी और आपके सभी साथी। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र, सूरज कुशल और मुरली खूबचंद वर्मा। सतीश अनेजा विमला अनेजा मैसेज करते हैं चंडीगढ़ से। और आप हैं गंज डुंडवारा से कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, अयान उस्मान, यास्मीन यासीन और शमसुल कमर राही। संदीप मकर, ज्योति, मन्नत मकर, भरत, कमल सानी और आपके सभी साथी। आपने ये मैसेज किया है हमें पिंगावाला चौक गोराया से। शेरवानी गज टुंडवारा उत्तर प्रदेश से आपने आप हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर लुबना और आलिया अंसारी। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा, हादिया, शोएब, मुस्तफा। अमरावती से ही आप हैं शाहिद, असीफा, अल्फिया और सदफ सुफिया। चाईबासा झारखंड से इस गीत को सुनना चाहा है जीवन विश्वकर्मा, मंजू, नितिन सावन और सचिन, साथ में है शक्ति। एटा रोड गंज डुडवारा से बीपी गौतम, सरिता, एम कलीम और दबीरुल हसन का मैसेज भी फ्लैश हुआ। ये मैसेज मिला दहीगांव नांदुरा से घोंडू, भारतूरकर, मंगला, विवेक कुमार और प्रतीक्षा कोमल, समाधान और आपके सभी साथी। तिकड़ी कस्बा शीचगढ़ से आप हैं शाहरुख खान, हाशिम अरहम, किशबानूर,

अरविंद कुमार, गुड़िया, भव्या, निवेश और नीति कुमारी का मैसेज मिला है बेटी पट्टी मधुबनी बिहार से। आप मुरादाबाद से दुल्हापुर से ही हैं। मुकेश कश्यप, सीशाल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। प्रोग्राम के अगले गीत की ही फरमाइश हमें माँ के आज इस पावन दिवस यानी कि मातृ दिवस के उपलक्ष्य में किया है कस्बा अमीरगंज से आदर्श दिवाकर लव, उमेंद्रपुरी गोस्वामी और भाई कल्लू मिस्त्री। हलवाइया शेरकोट बिजनौर से हैं वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा नसरीन, रोजी बिट्टू और हिना कौशल का। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन। हकीकतुरा मऊ से इसी गीत को सुनना चाहा है मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीयूष स्वर्णकार। उसामा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से ये मैसेज हम तक पहुंचा है धरवीर कश्यप, उषा, ध्यानपाल, संजय, अनमोल, अंश, करिश्मा और मुस्कान कश्यप का। और ये अगला मैसेज जो हम पढ़ रहे हैं इसे भेजा है जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परवनी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रीतेश पूरा और आपके सभी साथी। यवतमाल महाराष्ट्र से ये मैसेज फ्लैश हो चुका है हमारे सामने और इसे किया है लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा और स्वप्निल लोखंडे साथ में है, रक्षिता लोखंडे। दुर्गा कॉलोनी हांसी से आप हैं राजू मिकलानी, बबीता, सुभाष, योगी डो और बब्बू डब्बू। भाटपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार, लोकेश जोशी, बैदेही, अंकिता जोशी, अनूप कुमार। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयंती कैम

खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल खब्बा गफार डाफर जी और आपके सभी साथी विनेश कुमार रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान का मैसेज भी मिला हमें, कह निकट चाहे बैंक सेंटर चनेटी और आपके सभी साथी। भक्कड़ पंजाब से मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक खलील रहमान, अली रहमान और आपके सभी साथी। आप हैं परवेज अहमद शुकुलपुरा बनारस से और आप सबने सुनना चाहा है फिल्म वारिश का ये गीत लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं वर्मा मलिक ने और संगीत है उत्तम जगदीश का।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। प्रोग्राम के अगले गीत के लिए ये मैसेज हम तक आ पहुंचा है जिला हिसार फरांसी से राजकुमार डूडी, प्रमोद, पुष्पेंद्र और आपकी सभी साथियों का। कदमा जमशेदपुर से मैसेज किया है हमें चिन्मय महतो, शिवांश मंडल और आपके सभी साथियों ने। ये मैसेज फ्लैश हुआ है फूले नगर वीर महाराष्ट्र से बेला प्रसाद जी, करवा गीतांजलि, करवा आकाश और आकांक्षा करवा का। राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग मैसेज करते हैं बटिंडा रोड डबवाली से। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक, उमर मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे का मैसेज भी फ्लैश हुआ। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल और भारती बघेल का मैसेज आया हम तक लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। आप हैं ऊंच बट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशीष वन्य और अनु गोस्वामी, साधुल शहर राजस्थान से राम कुमार रिवाल, चंद्रकला रिवाल और आपके सभी साथियों का मैसेज भी आया हम तक। चर डोगरी पिपरिया छत्तीसगढ़ से मैसेज किया है हमें दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जय किशन,

कुमारी साहू, इंद्रानी, माया साहू और आपके सभी साथी। छत्रपति संभाजी नगर, सुरेशवाड़ी, औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज स्वीट, अंशुमन और आर बेबी ओवी का मैसेज भी फ्लैश हुआ। गजानन येले, नवदीश, विश्वदीप और मनीषा येले का मैसेज हमें मिल चुका है। सिद्धार्थनगर, दरियापुर बावली से मुकेश गौतम, सुनील अमन और शालू गौतम मैसेज करते हैं। चंदौसी रोड, चमनपुर, उत्तर प्रदेश से मगर रोड, छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री मोहित, देविका, गजेंद्र और हिंस कुमार चंदन का भी मैसेज आया हम तक। और नाईवाला, हनुमानगढ़, राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा का मैसेज भी आया हम तक। आप हैं सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू निषाद और तरुण कुमार यादव का मैसेज है। और जेल रोड, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से आप मैसेज करते हैं। वाराणसी बेबी गेबी चौराहा से मैसेज करने वाले हैं अरुण कुमार मालवी और आपके सभी साथी।

गेबी चौराहा से मैसेज करने वाले हैं अरुण कुमार मालवी और आपके सभी साथी। चांदूर बिस्वा बुलढाणा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े, उषा और विशाल वानखेड़े का मैसेज भी आया। बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण मनीष, राहुल शर्मा का मैसेज पहुंचा है हम तक फगवाड़ा पंजाब नंगलखेड़ा से। नबी हसन अब्बासी, शहनाज नवेद, सुहेल रशीद, यशफ अनम, सिकंदरा राव से आप हैं मुनी मुबीन अब्बासी और आप नबी हसन अब्बासी जो मैसेज किया आपने हमें मरहरा दरवाजा एटा से। जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का मैसेज भी आया हम तक। कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, आसना मोहम्मद कैफ अंसारी और आपके सभी साथी। सनावत से किशोर कुमार सांवले, रेखा, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना, चारुई और प्रणम सांवले का मैसेज आया हम तक। और ये मैसेज जो हम पढ़ रहे हैं इसे भेजा है करेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू अंसारी, मुनाजिर अबरार, आशिक हुसैन अंसारी, अल्ताफ और आपके सभी साथी। दादरी भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कोनाल और आपके सभी साथियों का मैसेज फ्लैश हो चुका है। बाकरगंज फरीदपुर पानी की टंकी के पास से आप हैं सुनील बाबू, शिवम, अभय भी, अभयमीत, भगवान, देई, स्वाति और तान्या और सर्वेश साथी हैं सभी साथी। सुरेश चौरसी, सरोज, सुबोध, सलोनी, पूजा, पिंकी, बाबू शिवा, शिवानी और आपके सभी साथी हैं। फरुखाबाद, साहबगंज चौराहा, उत्तर प्रदेश से बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से सरिता चौरसी, सुमित, वीर, सुजाता, पंकज और पीहू साथ में है दिया कानपुरी। लोहरडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापति, मुनीश देवी, अर्जुन, अंजलि, नितिन, जगमोहन, सुधीर, नूतन, भुवनेश्वरी देवी, करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी का मैसेज भी फ्लैश हुआ है। और ये मैसेज फ्लैश हो गया है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी, मधुर कर, सदानंद कुमार, गौरव और आर्रव साथ में है अर्पिता। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद बंडलकर, वीणा, विविधा बंडलकर का मैसेज भी आ गया हम तक। शाहजी बोर्ड के नंदा बोर्ड के हनुमान उत्तम जगदाड़े का मैसेज आया। हिंगोली महाराष्ट्र से माखन वर्मा, चांदी भूपेश और दीपेश वर्मा का मैसेज आया। नांदघाट छत्तीसगढ़ से किरशाद अंसारी, कामरान, अरमान, नवेद, अजरा मैसेज करते हैं हमें मड़ियाहू जौनपुर से। और बनारस अनेई से आप हैं अब्दुल मजूद, मजीद अंसारी, नौरीन आफिया और आपके सभी साथी। जाकिर अंसूरी, मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब मुगीसापुर से आप हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू, निशा सविस्ता, मोहम्मद नसीम, पलक लुबना और यश मंसूरी। कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौर, सुरेश, आशीष, तन्मय, अपूर्वा और आपके सभी साथियों का मैसेज भी आया हम तक। बहेड़ी से आप हमारे नियमित श्रोता अंजुम भाई, खालदा बेगम और आपके सभी साथी। शाहरुख नूर अंसारी मैसेज करते हैं हररपुर मोटकली बरेली से, साथ में है फरियाद, शकील, मोइन, तस्लीम और आपके सभी साथी। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म राजा और रंक का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: तो श्रोताओ, ये तो था हमारा आज का आपकी पसंद कार्यक्रम। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा अपने ईमेल्स और अपने पत्रों के द्वारा। हमारा पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड है 243001। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है आपका पत्र मिला bareilly@gmail.com। तो श्रोताओं, प्रोग्राम आपकी पसंद आज यहीं तक। अब कार्यक्रम से मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त ब्रजेश को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 11 बज रहे हैं और अब समय हो गया है आपके अपने पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम में और स्टूडियो में स्वागत है मित्रेश श्रीवास्तव जी आपका। आपको भी नमस्कार।
2: नमस्कार आपको भी गजेंद्र जी और सभी सुधी श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। खैर मकदम, सत श्री अकाल, आदाब, और हम उम्मीद करते हैं सुस्वागतम
1: जी।
2: हाँ बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि मौसम का मजा ले रहे होंगे हर कोई।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने,
2: गर्मियों के मौसम में ठंड का आनंद ले रहे होंगे।
1: हाँ, इस बार बड़ा असमंजस में है इंसान। समझ में नहीं आता कि गर्म कपड़े पूरे वाले निकाले या फिर कभी कभार।
2: अरे मैं तो बाइक पे निकला तो लगा रही तो ठंड लग रही है जी। जैकेट वैकेट पहन के चलना चाहिए था मुझे जी। ये आलम है।
1: अच्छा, 2-3 दिन हो गए बरसात को।
2: हाँ,
1: लेकिन आज भी सुबह जब ड्यूटी के लिए हम आ रहे तो कुछ बाइकर्स वही वाले कपड़े पहने, जैकेट वगैरह पहने हुए।
2: ना पहन के आए तो तबीयत खराब हो जाएगी।
1: बिल्कुल
2: सही बात है, और धूप अच्छी लग रही है।
1: जैसा कि अभी कार्यक्रम की हम लोगों ने शुरुआत की है तो बड़े कहते हैं ना तारतम्य के साथ बड़े आराम से, इसी तरह से जीवन में जल्दबाजी मुझे लगता है कई बार खतरनाक और घातक हो सकती है। अब यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे, गति पे नियंत्रण नहीं रखेंगे, आपके अपने सदैव ये चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, और इसके लिए जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो वाहन अपनी नियंत्रित गति में चलाएं।
2: हर वक्त ये ध्यान रखें कि आपको घर लौटना है, कोई इंतजार कर रहा है।
1: बिल्कुल, अपने लिए ना सही, अपनों के लिए है ना। और हेलमेट है,
2: और अपनों के लिए ही नहीं भाई, दूसरों के लिए भी, ये भी कहना पड़ेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: कई लोग तो खुद अपनी गलती से दूसरों का एक्सीडेंट करा देते हैं।
1: बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट उठाया आपने।
2: रॉन्ग साइड से चले जाएंगे।
1: हाँ।
2: और कोई एकदम ईमानदारी से सभी नियमों का पालन करते हुए भी आ रहा होगा, उस बेचारे का एक्सीडेंट हो जाएगा।
1: तो खैर, ये हमारे श्रोताओं को हम बता दें कि ये जागरूकता संबंधी थोड़ी सी बातचीत इसीलिए की गई क्योंकि इस समय हम अपने सभी श्रोता बंधुओं को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि वो दोपहिया वाहन पर हेलमेट लगाएं और सीट बेल्ट पहने, इसके अतिरिक्त यातायात के नियमों का पालन करें और वाहन को नियंत्रित गति में चलाएं।
2: जी बिल्कुल,
1: तो ये जागरूकता संबंधी बात हमने अपने श्रोताओं से इसीलिए क्योंकि हमारा जोर रहता है कि आपकी जान अनमोल है।
2: बिल्कुल, और संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जा रहा है।

0: जा रहा है,
1: इसलिए प्रासंगिक भी था,
0: बिल्कुल
1: भी हमने कहा
0: जी। तो अब हम अपनी गति को थोड़ा और तेज करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि यहाँ पर जो गति है वो हमारे श्रोताओं को संतोष देने वाली गति है
1: जी, बिल्कुल।
0: ज्यादा श्रोताओं के पत्र शामिल होंगे, ईमेल शामिल होंगे,
1: नहीं कहेंगे कि टाइम खा गए।
0: हाँ, तो शुरू करें।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: आज का जो पहला ईमेल है वो गति से संबंधित ही है और यातायात के बारे में बात करते हुए है। वाहन नियंत्रित गति से चलाएं, जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। प्रस्तुतकर्ताओं को सप्रेम नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा के शानदार सफर में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: शुभकामनाएं आपको भी।
0: आकाशवाणी बरेली का शुभारंभ 17 जून 1993 को हुआ था, पर जो आपके पेज की एक पोस्ट है उस पर 17 जून 1991 है, कृपया इसमें सुधार कीजिए।
1: बिल्कुल, हो गया सुधार, समझ लीजिए।
0: 1 मई को फिल्मी फ्राइडे की प्रस्तुति में टिप्स अच्छे थे, आपकी पसंद प्रस्तुति भी अच्छी थी। 2 मई को अनुरोध गीत इन्होंने अमृता जी के साथ सुना, बहुत अच्छा लगा। ग्राम जगत में स्वयं सहायता समूह पर चर्चा ज्ञानवर्धक थी। 3 मई को अंकुर में रेलगाड़ी के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई मुनव्वर जी द्वारा। आपकी पसंद की प्रस्तुति भी अच्छी रही और अनुरोध गीत कार्यक्रम में शानदार गाने सुनने को मिले। युवाणी में जो वंश एक छात्र थे उनसे बातचीत की गई थी, और 4 मई को आपकी पसंद में जो प्रस्तुति का अंदाज था वो बहुत अच्छा था। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में मौसम को लेकर एक अच्छी प्रस्तुति रही। 5 मई को झुमका गिरारे में नीतू जी द्वारा मौसम पर एक अच्छी पेशकश रही। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में विश्व अस्थमा दिवस पर बहुत अच्छी जानकारियां मिली। 6 मई को आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, यह विषय अच्छा था। 7 मई को आपकी पसंद में नीतू जी ने ढेर सारे कमेंट के साथ प्रस्तुति दी, बड़ा अच्छा लगा। आपने झुमका गिरारे में सड़क के नियमों के बारे में बहुत बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं। सभी प्रस्तुतकर्ताओं को शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। हमारे ये जो श्रोता है वो विनेश कुमार जी है, निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से।
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबकी तारीफ भी लिखी है, और देखिए कमेंट ज्यादा शामिल करने का जो रिकॉर्ड आप बना रहे थे
0: जी,
1: अब नीतू जी भी उसमें आ गई हैं।
0: बिल्कुल, हम तो चाहते हैं,
1: तो ये अच्छी बात है,
0: है ना।
1: हाँ, सभी हम, हमारी पूरी कोशिश होती है हमारे सभी साथियों की
0: जी,
1: कि आप सभी श्रोताओं के ज्यादा से ज्यादा कमेंट शामिल किए जाए
0: जी।
1: तो देखिए अभी और भी सभी लोग यही कोशिश कर रहे हैं
0: जी।
1: तो फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी अच्छी शुरुआती लाइन जो आपने जागरूकता भरी लिखी है उसके लिए भी आपका आभार। और जो आप इतनी बारीकी से देखते हैं हमारे आकाशवाणी बरेली के, न केवल रेडियो सुनते हैं बल्कि सोशल मीडिया के जो पेज हैं वो भी ध्यान से देखते हैं
0: जी,
1: इसके लिए भी शुक्रिया है आपके लिए
0: जी। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी जी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर, अबरार हुसैन अंसारी और इनके तमाम साथी हैं
1: जी,
0: सब एक साथ मिलके लिखते हैं।
1: हाँ,
0: कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब।
1: आदाब आपको भी।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आप सभी स्टाफ को, सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
1: आप सबको भी बहुत बहुत बधाई।
0: हमें बरेली केंद्र के प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, सभी कार्यक्रमों को हम पसंद भी करते हैं। 3 मई के अंकुर कार्यक्रम में रेलगाड़ी के बारे में जो जानकारी दी गई थी वो अच्छी लगी, मगर इस दिन का आपका पत्र मिला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसमें किसी भी श्रोता का कोई मेल शामिल नहीं किया गया, सिर्फ लाइव कार्यक्रम करके कमेंट ही शामिल किए गए, किसी भी श्रोता का लिखित खत नहीं था।
1: अगर खत तो था,
0: अच्छा,
1: कुछ पत्र तो लिए गए थे। हाँ, लेकिन उस दिन लाइव किया गया था, तो उसकी एक वजह यह थी कि सबको, कई सारे श्रोताओं जो अभी उनको मालूम नहीं था कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पे हम वीडियो आमंत्रित कर रहे हैं, उस लिए भी एक मकसद था कि लाइव किए जाएं, और काफी समय से लाइव नहीं किया गया था इसलिए भी किया गया। और बाकी आगे क्या लिखते हैं?
0: आगे लिखते हैं कि अगर आप इसको लाइव कर देंगे तो रेडियो पर प्रसारित करने की क्या जरूरत है। अमृता जी और मुनव्वर जहां ने जो कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ पेश किए बहुत अच्छे लगे। सुरेश जी ने
1: तो पहले ये बता दें कि देखिए पिछली बार हमने लाइव किया, तो इस बार देखिए फिर हम पुराने पैटर्न पे आ गए।
0: बिल्कुल,
1: तो ये वेरिएशन होता रहेगा, वो आप लोगों के लिए ही है या हमारे लिए भी है।
0: बिल्कुल,
1: कुछ अलग करने का जो मजा है ना
0: जी,
1: वही हमें जिंदगी में कुछ आनंद देती है
0: जी। आगे बढ़ते हुए कहते हैं ब्रजेश जी ने, सुदेश जी ने इसी कार्यक्रम को पेश किया, फोन तो शामिल किए मगर किसी का कमेंट शामिल नहीं किया। शीशपाल जी, हरीश जी ने आपकी पसंद कार्यक्रम बहुत अच्छे से पेश किए, गाने बहुत अच्छे सुनवाई और वाणी कार्यक्रम में सवाल का सही जवाब होने के बाद भी हमारा नाम कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों? कभी कभी अगर छूट जाए तो कोई बात नहीं, मगर रोज रोज तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रसरंग कार्यक्रम में जानी बाबू कव्वाल को भी किसी दिन दिन में शामिल कर रहे हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी।

0: हेलो बरेली अच्छा खासा 55 मिनट का था, आपने 30 मिनट का कर दिया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। श्रोता मंच, रेडियो, हेल्पलाइन, सेहत की पाठशाला, स्वास्थ्य चर्चा, कवि गोष्ठी, ये सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। अच्छी प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, धन्यवाद आपका भी। और हेलो बरेली, 55 से 30 मिनट हुआ है, लेकिन हर रोज आपकी बात आकाशवाणी के साथ भी तो
0: बड़ा
1: एक
0: है
1: घंटे का हुआ है,
0: जी
1: और उसमें आप तारीफ भी कर रहे हैं, तमाम विषय
0: जी
1: आधारित हैं। तो
0: जी
1: हेलो बरेली और आपकी बात आकाशवाणी के साथ में मुझे नहीं लगता ज़्यादा अंतर है।
0: जी
1: हेलो बरेली में सिर्फ आप अपने गाने बताते हैं कि हाँ जी हमारी फरमाइश ये है, और फिर गाना सुना दिया जाता है, और इसमें आप उस विषय पे भी कुछ बोलते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो पैटर्न तो वही है। हमने मतलब सिर्फ इसलिए नहीं बंद किया कि हेलो बरेली बहुत पुराना प्रोग्राम है, इस वजह से उसको ना बंद किया जाए। और भी लोगों की अगर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया आती है कि हाँ भाई हेलो बरेली बढ़ाया जाए, तो बढ़ा देंगे। हम लोग तो श्रोताओं के हिसाब से ही चलते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: जी
1: और जहाँ तक आपने कहा है कि कुछ आपके कमेंट्स शामिल नहीं हो रहे हैं और आपके जवाब आप सही दे रहे हैं, नाम शामिल नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारे इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे होंगे युवाणी के जो प्रेजेंटर, वो ध्यान में रखेंगे अगली बार से, है
0: बिल्कुल
1: ना। तो क्योंकि हाँ ये जरूर होगा कि कई बार ये होता है कि भाई नए लोगों को मौका दे दिया जाए अभी, क्योंकि 10 लोगों ने सही जवाब दिए हैं, तो एक जो नए हैं उनका नाम ले लिया, और फिर आपका आपका हो सकता है इस वजह से किया हो, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इस बात पे थोड़ा ध्यान दिया जाए।
0: जल है तो कल है, जल ही जीवन है,
1: बिल्कुल है।
0: गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: 3 मई को अंकुर में लखनऊ शहर के बारे में जानकारी अच्छी लगी, और गीत जो सुनवाए गए थे मुनव्वर जी ने पेश किया था, कार्यक्रम बहुत अच्छा था, जनमंच और मनभावन की प्रस्तुति भी अच्छी रही। 4 मई को शीशपाल जी की अग्निशमन अधिकारी से जो बातचीत की गई वो काफी ज्ञानवर्धक थी, अनुरोध गीत की प्रस्तुति अच्छी लगी। 1 मई को इन्होंने फिल्मी फ्राइडे सुना, अच्छा लगा। 2 मई को हेलो बरेली में अमृता जी की प्रस्तुति अच्छी थी। 5 मई को झुमका गिरारे में नीतू जी की प्रस्तुति अच्छी रही। 6 मई को यंग बरेली में रोचना जी की प्रस्तुति काफी अच्छी थी। अनुरोध गीत की प्रस्तुति भी शानदार थी। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बरेली जंक्शन से गरीब भाई।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर। गरीब भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही आप लिखते रहिए। और ये अच्छा लगा, आप तो मेल पे स्विच हो गए हैं,
0: जी
1: पहले लेटर आते थे। हाँ लेकिन कई मायनों में अच्छा नहीं भी लग रहा है,
0: जी
1: क्योंकि खतों का सिलसिला कम हो गया है, वो नहीं होना चाहिए। अगर पोस्टकार्ड नहीं मिल रहे हो, एक समस्या हो सकती है। ईमेल तो भेज ही सकते हैं, आसान है, लेकिन खत भी भेजिए, क्योंकि मुझे लगता है आकाशवाणी इसके लिए जाना जाता है, खतों के लिए ही
0: बिल्कुल
1: आज भी संभाल के रखे हुए हैं।
0: बिल्कुल, जब तक हमारे ड्यूटी रूम में ढेर सारे पीले पीले चौकोर पत्र ना हो तो वो अधूरा सा लगता है, सुनसान सा लगता है।
1: जी बिल्कुल, तो वो हम लोगों के लिए धरोहर हैं, विरासत हैं, तो सिलसिला अभी भी जारी रखिए, क्योंकि वो मेल लिख दिया तो ये भी खैर सुरक्षित तो रहता ही है ईमेल आईडी पे, लेकिन पोस्टकार्ड भी सुरक्षित होते हैं भंडार के रूप में।
0: तो अब आगे बढ़े,
1: जी आगे।
0: आगे बढ़ते हैं। किसान रेडियो क्लब ग्राम पोस्ट ललहुआ जिला खीरी के हमारे श्रोता हैं विजयपाल यादव और इनका पूरा परिवार और क्लब के सभी सदस्य। आपका पत्र मिला, कार्यक्रम को पेश करने वालों को हमारी ओर से सादर प्रणाम स्वीकार हो।
1: प्रणाम आपको भी।
0: सभी ने निवेदन यह है कि आकाशवाणी बरेली से हमारा इतना लगाव हो गया है जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। जिस किसी दिन किसी कारणवश कोई कार्यक्रम छूट जाता है उस दिन हमें बहुत ही कष्ट होता है। मुझे ये लगता है कि मेरी कोई अमूल्य वस्तु खो गई है। आप लोगों के प्रेम और आप सभी की मधुर आवाज मुझे अपनी ओर खींच ले रही है। सबसे अच्छा कार्यक्रम किसान वाणी और आकाशवाणी के साथ आपकी बात बहुत ही अच्छे लगते हैं। 30 अप्रैल का इनको किसान वाणी और ग्राम जगत दोनों अच्छे लगे जो पेश किए कृष्ण पाल और कृष्णवीर जी ने। 2 मई को ही आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम जो 2 मई का था,
1: जी।
0: वो आप पिछली बार कब और क्यों हंसे थे इस विषय पर श्रोताओं की बहुत अच्छी बातचीत हुई। इस दिन मेरा फोन लग गया, बहुत ही खुशी हुई, बातों के साथ साथ दोबारा हंसे,
1: क्या
0: बहुत
1: बात
0: ही अच्छा लगा। और 3 मई का अंकुर कार्यक्रम रेलगाड़ी के इतिहास के बारे में और गर्मियों में शरबत और सत्तू का महत्व, इस पर जो जानकारी दी गई थी ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी।
1: क्या
0: बाकी
1: बात,
0: और भी कार्यक्रम अच्छे लगे इनको।
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे ही आप हमारे कार्यक्रम सुनकर हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, और यूं ही जिंदगी, है
2: अच्छे से चल

0: मिलती रहे, यही उम्मीद है।
1: बिल्कुल।
0: और सभी श्रोता, यहाँ पे कार्यक्रम के बीच में हम ये भी बता दें कि जो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस साल, तो उससे संबंधित आप अलग से पत्र भी लिख सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, ऑडियो भी भेज सकते हैं हमें।
1: बिल्कुल
0: तो आप देख रहे हैं, आप हमारे सोशल मीडिया जो हमारे हैंडल्स हैं उस पर कई सारे वीडियोज भी पोस्ट हुए हैं
1: बिल्कुल।
0: और ऑडियो भी चल रहे हैं। सुबह 10 बजे 5 मिनट का सेगमेंट है और 4 बजे भी है,
1: शाम को 4 बजे,
0: 4 बजे भी है, ज्यादा आएंगे तो और बढ़ा दिए जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो इसमें आप कोशिश करिए तो अच्छा लगेगा हमें, है ना?
1: बिल्कुल। तो आप अपना नाम और अपना पता बोलकर उसके बाद आकाशवाणी के साथ आपका कैसा रहा अब तक का सफर 90 साल का, और इन 90 साल में से कितना सफर आपने तय किया है आकाशवाणी के साथ, ये भी बताइएगा।
0: बिल्कुल हाँ, है ना? कब से सुन रहे हैं, क्या क्या सुनते हैं, कुछ यादें हो तो साझा करें।
1: आगे बढ़े,
0: बिल्कुल जरूर।
1: तो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं एकता क्लब सिंधौली, तहसील मीरगंज, जिला बरेली। इनका नाम तो अभी मुझे शो नहीं हो रहा है, फिर भी इनकी बात जो है वो पढ़ते हैं। हम सभी श्रोता आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं। केंद्र द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों की गुणवत्ता, जानकारी और प्रस्तुति शैली हम बेहद प्रभावित हैं। 4 मई को युववाणी में नेहा सिंह जी के साथ जो कार्यक्रम था, धूम धड़ाका गीत संगीत, ये इनको बहुत पसंद आया। गीतों का चयन और प्रस्तुति अच्छी थी। 5 तारीख को इन्होंने आपकी पसंद कार्यक्रम सुना। श्रोताओं द्वारा अपनी पसंद के गीत सुनना, विचार साझा करना बेहद खास लगा। सुबह 11:15 पर इन्होंने झुमका गिरारे कार्यक्रम सुना, बरेली शहर से जुड़ी रोचक जानकारियां मिली। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर श्रोताओं द्वारा भेजी जा रही 2 मिनट की वीडियो प्रस्तुतियां भी बहुत पसंद आ रही हैं। 6 तारीख को इन्होंने आविदा जी के साथ चक्रव्यूह कार्यक्रम सुना, जिसमें मोतीलाल नेहरू जी के बारे में जानकारी दी गई थी, ये जानकारी बेहद अच्छी थी। मेरा छोटा सा सुझाव है कि नए श्रोताओं को भी अधिक अवसर दिए जाएं ताकि और लोग भी कार्यक्रम से जुड़ सकें।
0: हाँ, तो बिल्कुल, हम तो कोशिश में यही रहती है हम लोगों की, नए श्रोताओं को मौका मिले। बल्कि हमने तो कह रखा है कि अगर किसी कोई श्रोता आज रिकॉर्ड करा लेते हैं तो फिर 1 हफ्ते बाद कॉल करें,
1: बिल्कुल,
0: ताकि दूसरों को मौका मिले।
1: किसानों से जुड़े कार्यक्रम में IVRI के डॉक्टर साहब द्वारा दी गई जानकारी और श्रोताओं के सवालों के सटीक जवाब उपयोगी लगे। विशेष रूप से हम कार्यक्रम प्रमुख श्री मिथिलेश जी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो आकाशवाणी बरेली केंद्र की पूरी निगरानी करते हुए लगातार बेहतरीन कार्यक्रम देने का प्रयास कर रहे हैं।
0: शुक्रिया।
1: उनके मार्गदर्शन में बेहतरीन गुणवत्ता के कार्यक्रम हम श्रोताओं तक पहुंच रहे हैं, जो बेहद सराहनीय है। साथ ही युववाणी कार्यक्रम अधिशासी जो गौरव सक्सेना जी हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो युवाओं के लिए एक से बढ़कर एक शानदार ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कार्यक्रम हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रस्तुति नई सोच युवाओं को आकाशवाणी से जोड़ने का शानदार कार्य कर रही है।
0: बहुत शुक्रिया आपका।
1: आकाशवाणी बरेली केंद्र के सभी अधिकारियों, उद्घोषकों, तकनीकी कर्मचारियों और कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सभी साथियों की मेहनत काबिले तारीफ है। आप सभी लोग अपनी आवाज, मेहनत और बेहतरीन प्रस्तुतियों से श्रोताओं के दिलों में खास जगह बनाए हुए हैं। आकाशवाणी बरेली केंद्र की पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे ये जो साथी हैं वो इमरान शेख, जीशान वारसी, मोहम्मद सोहेल, एकता क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस लंबे चौड़े मेल के लिए।
1: जी,
0: बहुत शुक्रिया आपका। काफी पुराने श्रोता हैं, तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए, काफी तफसील से आपने लिखा है
1: जी।
0: और हम उम्मीद करते हैं कि आपको और भी कार्यक्रम पसंद आएंगे
1: जी।
0: और भी आप जुड़िए, कुछ विषय भी हमें आप सुझा सकते हैं
1: जी।
0: जो आपकी बात आकाशवाणी के साथ है
1: जी।
0: तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: आगे बढ़ते हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहाँ से तिलक राज अरोड़ा जी कुछ कहते हैं। सप्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
1: आकाशवाणी के सफलतापूर्वक 90 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी माननीय अधिकारीगण और प्रिय उद्घोषक और श्रोता साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।
0: आपको भी ढेरों शुभकामनाएं हैं।
1: 26 अप्रैल का कार्यक्रम आपका पत्र मिला, इन्होंने सुना जो पसंद आया। कार्यक्रम में पत्र बड़े ही प्यार से शामिल किए गए, उत्तर भी सम्मान के साथ दिए गए। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे सफलता की ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। ये कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम है। 24 तारीख का इन्होंने सुना कार्यक्रम, नंबर 1 प्रस्तुति के साथ पसंद आया। और लिखते हैं, 2 मई को अनुरोध गीत कार्यक्रम अमृता जी ने पेश किया, फेसबुक पर पोस्ट शानदार लगी। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर श्रोता साथियों की फेसबुक और यूट्यूब पर प्रेषित पोस्ट भी प्रशंसा के योग्य है। 3 मई का कार्यक्रम आपका पत्र मिला, सुना इन्होंने, जो नीतू जी के साथ मिथिलेश जी ने पेश किया था। कार्यक्रम में सिर्फ कमेंट ही शामिल किए गए, ईमेल और

0: और पत्रों को नजरअंदाज कर दिया गया। अगर शामिल करते तो कार्यक्रम और भी ज्यादा अच्छा लगता।
1: चलिए कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे। और पत्र तो वैसे शामिल किए गए थे
0: जी।
1: हाँ, ईमेल उस दिन हमने, क्योंकि कमेंट्स ही इतने ज्यादा आ गए
0: जी
1: कि समय कम पड़ गया।
0: नमस्ते बरेली, और अनुरोध गीत झुमका गिरारे, आपकी बात लोक गीत रसरंग भजन लकी थ्री अंकुर और सभी कार्यक्रम मुनव्वर जहां जी ने, नेमचंद जी ने, नाजमा जी ने, मोहम्मद परवेज, हरीश मौर्य, अमृता सिंह, नीतू त्रिपाठी, सुदेश सैनिक, शीशपाल जी, ब्रजेश तिवारी, श्रृंगार शेखर पाठक जी, रोचना मिश्रा, शिप्रा मिश्रा, इन सब की बेहतरीन पेशकश के साथ हमने सुना और पसंद आए। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, और ऐसे ही तफसील से लिखते रहिए, और भी चीजें बताइएगा कि क्या कैसा लग रहा है, और कुछ विषय भी बताइएगा।
0: बिल्कुल,
1: आपकी बात आकाशवाणी के साथ के लिए।
0: हाँ, है ना। चलिए तो एक और विषय पर हाँ, बात करते हैं।
1: जी जी, जरूर।
0: हमारे एक साथी हैं एडवोकेट वारिस अली खान साहब, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को खान परिवार का प्यार भरा सलाम।
1: सलाम आपको भी।
0: अर्ज करें कुछ
1: इरशाद।
0: हाँ, ये हुई ना बात, जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है,
1: क्या बात,
0: खुदा उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है।
1: अरे,
0: आपका पत्र मिला जिसे आपने 3 मई को लाइव ब्रॉडकास्ट किया था, मुझे समझ में नहीं आया।
1: अरे,
0: मेरे ख्याल से आवाज का ये प्रयोग असफल साबित होगा, आप इसे प्री रिकॉर्डेड ही रहने दें।
1: चलिए, तो इस बार है वैसे ही।
0: बिल्कुल,
1: आपकी आपकी जो सलाह है सर आंखों पे, और वो भी हम पहले से ही समझ गए
0: जी।
1: हम मेल अब पढ़ रहे हैं,
0: हाँ,
1: लेकिन कहीं ना कहीं से हमारे दिल के तार जुड़े हुए हैं।
0: अच्छा, एक चीज और भी है मित्र जी, एक ढर्रा पर जब जिंदगी चल रही होती है तो कई बार मन में ख्याल आता है कि कुछ रास्ता बदल के देखा जाए। अच्छा, ऐसे में कुछ प्रयोग सफल भी हो जाते हैं,
1: कुछ तूफानी करने का एक जज्बा है।
0: तो और कुछ एक प्रयोग ऐसे होते हैं जो असफल रहते हैं। अब मुझे लगता है कि हमारे इन दोस्त को ये रास्ता अगर हो सकता है कि पसंद ना आया हो, लेकिन अगर इनका कहने का मतलब है कि सिर्फ कमेंट शामिल किए गए, अब अगर उसमें ईमेल भी शामिल किए जाते तो हमें लगता है कि ये पसंद आता तो अगली बार कभी भी
1: ईमेल भी कर लेंगे और क्या
0: है ना।
1: सही,
0: क्योंकि प्रयोग को तो असफल पूरी तरह नहीं कहा जा सकता।
1: हाँ, बल्कि कई बार ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि एक अलग से केवल लाइव ही करेंगे।
0: हाँ,
1: और रिकॉर्डेड तो ये आपका पत्र मिला कार्यक्रम अलग से रिकॉर्ड करेंगे
0: जी जी,
1: लेकिन एक सिर्फ लाइव करेंगे। हाँ भाई, आप लगातार आप हमसे बात करिए
0: जी,
1: कुछ देर तक, एक घंटे हम लोग बैठे रहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: है ना, ऐसा भी कर लेंगे।
0: इन्होंने 4 मई का आपकी पसंद, उसी दिन का आपकी बात आकाशवाणी के साथ सुना। मौसम बेईमान था, यानी बेईमान मौसम का आप पर क्या प्रभाव था, ये बड़ा अच्छा लगा टॉपिक।
1: क्या बात,
0: 5 मई को दोपहर 1 बजे से प्रसारित अनुरोध गीत और उसी दिन का आपकी बात आकाशवाणी के साथ भी बहुत अच्छा लगा। इस वक्त मुझे जो कार्यक्रम बहुत आकर्षित कर रहा है वो 5:05 पर भजन संध्या है। सुझाव देते हैं एक कि दोपहर 1 बजे से प्रसारित अनुरोध गीत के समय में परिवर्तन करें, इस कार्यक्रम का शाम का समय निर्धारित करें, और भजन संध्या में अगर अन्य धर्मों के डिवोशनल सॉन्ग बजे तो सोने पे सुहागा होगा। लकी थ्री का प्रसारण सप्ताह में 2 बार किया जाए, शेष अगले मेल में।
1: तो देखिए, अनुरोध गीत कभी कभी शाम को भी जाता ही है 7:30
0: जी,
1: 7:31 जब रेडियो हेल्पलाइन नहीं जाता है तो अनुरोध गीत जाता है, और बाकी शाम को अपने पास समय कम होता है क्योंकि 10 बजे अक्सर संसद की कार्यवाही की लाइव रिकॉर्डिंग जाती है, संसद समीक्षा है, विधानमंडल समीक्षा है
0: जी,
1: कई सारे दूसरे राष्ट्रीय या राज्य स्तर के महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं
0: जी,
1: इस और 9 से 10 विविध भारती जाना होता है, इसलिए हमारे पास शाम को समय कम है। उसके पहले शाम में युववाणी है, किसान वाणी, ग्राम जगत, ये सब कार्यक्रम है।
0: बिल्कुल,
1: तो इसलिए हमने अनुरोध गीत दोपहर में रखा है, और कई सारे श्रोताओं की ये डिमांड भी थी
0: जी
1: कि दोपहर में रखिए अनुरोध गीत, तो इस वजह से रखा गया है। दूसरी बात, जो आप भजन संध्या में अन्य धर्मों के डिवोशनल सॉन्ग बजे तो सोने पे सुहागा होगा, दूसरे भी संप्रदायों के गाने तो बजते हैं
0: जी,
1: अगर आप हमने खुद सुना है, हम लोग खुद उसको शेड्यूल भी करते हैं उसी हिसाब से
0: जी,
1: तो हमने सुना भी है, और सभी उसपे न केवल भजन बजते हैं बल्कि उसपे जो नाथ होते हैं वो भी बजते हैं, हर तरह के बजते हैं
0: जी।
1: तो और तीसरी चीज, लकी थ्री का प्रसारण सप्ताह में 2 बार किया जाए
0: जी,
1: तो खतों के संख्या बढ़ जाए तो हम 2 बार कर दें
0: जी,
1: है ना। लकी थ्री में खत आप लोग बढ़ाइए, आप भी खत लिखिए लकी थ्री में
0: जी।
1: फिलहाल मेल करने के लिए।

0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: मैत्रेय जी, अगला जो मेल है वो हमें कुछ शिकायत का मेल मिला है।
0: अरे बिल्कुल
1: बीरम गांव
0: स्वागत
1: गुजरात से
0: हो।
1: अजीत भावसार जी हैं।
0: हाँ, क्या बात।
1: लिखते हैं, आकाशवाणी बरेली के सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। झुमका गिरा रे, आपकी पसंद, आपका पत्र मिला, युववाणी, ये सभी प्रोग्राम अच्छे हैं। मुझे आपसे कहना है कि गजेंद्र जी अपने प्रोग्राम में स्टिकर कमेंट या आकाशवाणी के लोगो वाले कमेंट नहीं शामिल करते, लेकिन 28 तारीख के प्रोग्राम में आरजे ने वो सभी स्टिकर और आकाशवाणी के लोगो वाले कमेंट पढ़े। आप ये लोगों के स्टिकर वाले कमेंट शामिल करें या बिल्कुल बंद कर दें, तो भेजने वाले ही बंद कर देंगे। मेरी आपसे अनुरोध है कि सही निर्णय लेकर समाधान करें या फिर आपकी मर्जी। मित्रेश जी, जहां तक स्टिकर की बात है, हमारे कुछ श्रोता जो कमेंट करते हैं वो टेक्स्ट के साथ टाइप करते हैं, और जैसे ही हम अपने कमेंट ओपन करते हैं तो टेक्स्ट सबसे पहले उस पर हमें शो होते हैं, लेकिन जो कमेंट के साथ में कोई भी पिक्चर, मैसेज या स्टिकर वगैरह भेजते हैं
0: डाल देते
1: तो वो उसे ओपन होने में कई बार GIF इमेज होती है जो खुलने में नहीं आती। अब ऐसे में अगर उन्होंने अपने नाम लिखे हैं तो वो शो नहीं होते। इसीलिए कार्यक्रम को जब शुरू करते हैं तब ये कहते हैं हम अपने श्रोताओं से कि प्रिय श्रोताओं, आपके टेक्स्ट वाले कमेंट को ही हम वरीयता देंगे, पिक्चर मैसेज या अटैच करेंगे अपने कमेंट के साथ तो वो हमें दिक्कत करता है, इसलिए हम उन्हें शामिल नहीं कर पाएंगे।
0: हाँ, तो इसमें ये कह रहे हैं कि आप वरीयता नहीं, उनको खारिज कर दीजिए।
1: जी,
0: तो देखिए सर, खारिज नहीं कर पाएंगे हम
1: जी,
0: है ना। वरीयता भले हम देंगे
1: जी,
0: हम पहले जो टेक्स्ट वाले हैं उनको वरीयता देंगे, समय बच जाएगा तो उनको भी ले लेंगे।
1: अब
0: इतना हम आप कर ही रहे हैं
1: जी, बिल्कुल,
0: बाकी सब भी ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन खारिज करना हमारे लिए गलत होगा ये, क्योंकि वो भी तो कुछ सोच के ही कर रहे हैं कमेंट।
1: कमेंट का मतलब ही यही है कि आप टेक्स्ट टाइप कीजिए अपने नाम और अपना पता और अपनी पसंद का गाना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी जो जो भी श्रोता सुन रहे हो जो ये लोगो वाले स्टिकर कमेंट करते हैं
1: जी,
0: उनसे हमारी गुजारिश है कि आप लोग टाइप करिए,
1: टाइप कीजिए,
0: वो फोटो ना भेजिए, चाहे GIF ना भेजिए
1: जी, जी,
0: तो अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल आपकी ये जो सलाह है इस पे हम अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।
1: मित्रेश जी, अब आगे बढ़े
0: जी, जरूर।
1: कुछ कमेंट्स हमारे दोस्तों के मिले हैं,
0: बिल्कुल,
1: अगर आपकी इजाजत हो।
0: जरूर जरूर, क्योंकि मेल कई सारे हो गए, अब कमेंट्स भी ले लें, नहीं अच्छा। तो क्या पता अगली बार शिकायत मिल जाए, खाली मेल ही लिए इस बार।
1: हाँ, ये तो है। तो विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वाणी आरव, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही, प्रियांशी, सोनी हैं, दयानंद कॉलेज भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र से। आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम सुनना एक सुखद अनुभव देता है। यहाँ के कार्यक्रम सरल, ज्ञानवर्धक और दिल को छू लेने वाले होते हैं। संगीत, समाचार, लोक संस्कृति की झलक, सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। ये केंद्र न केवल मनोरंजन करता है बल्कि अपनेपन का एहसास भी कराता है।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपनापन आप भी कराते हैं हमें जब आप ऐसे कमेंट करते हैं, तो
1: जी
0: एक परिवार की तरह महसूस होता है।
1: भेरूलाल बख्तरिया, धाकड़, उनेल, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से लिखते हैं, आकाशवाणी बरेली के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। खास बात अगर की जाए कार्यक्रमों की तो झुमका गिरा रही और इसके अलावा आपकी पसंद, ये कार्यक्रम इनको बहुत अच्छे लगते हैं। ग्राम जगत में खेती किसानी संबंधित जानकारियां भी अच्छी लगती हैं।
0: बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आपको सभी कार्यक्रम अच्छे लगे, थोड़ा और विस्तार में लिखिए अगली बार।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: किशोर कुमार सांबले जी सनावत से, इनका मन मयूर खिल उठता है जब कार्यक्रम सुनते हैं आकाशवाणी बरेली से। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा जी को भी बहुत अच्छे लगते हैं कार्यक्रम, पूरे सप्ताह भर के कार्यक्रम इनको पसंद आते हैं और अपना कमेंट के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर करते हुए कमेंट कर देते हैं। बाकी रणजीत सिंह जी गोरखपुर से हैं, इनको भी आपका पत्र मिला कि पिछले पत्र में पूछा गया हेलो बरेली में आपकी बात आकाशवाणी के साथ में क्या अंतर है, तो हेलो बरेली कार्यक्रम में तैयारी नहीं करनी पड़ती, आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में श्रोताओं को पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, बस यही अंतर है। हमने कार्यक्रम नहीं सुना पिछले सप्ताह और जितना सुना उतना लिख रहे हैं। मंगलवार को इनको हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में मछलियों के लिए संतुलित आहार के विषय पर जो जानकारी थी वो अच्छी लगी, लोकगीत अच्छे लगे, दोपहर की सभा में रसरंग भी इनको अच्छा लगा। पूरा नहीं सुन पाते हैं क्योंकि 2:15 पे ये समाचार सुनते हैं,
0: है ना? पहले भी इन्होंने लिखा था,
1: कई बार निवेदन भी किया है दोपहर की सभा में दोपहर समाचार जोड़ दो, लेकिन आपने नहीं जोड़े।
0: देखिए, हर कुछ हर जगह नहीं मिल सकता है, कुछ ना कुछ तो रहेगा। दोपहर समाचार हमारे शेड्यूल में नहीं है, विविध भारती है, क्योंकि 2:30 बजे सदाबहार नगमे आता है विविध भारती से, बहुत सारे श्रोता वो सुनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से सुबह सदाबहार नगमे जाता था, सदाबहार गीत, और वो प्रोग्राम हटा है तो विविध भारती से प्रोग्राम जाता है वो सदाबहार नगमे, तो उससे जुड़ जाते हैं, इसलिए फिलहाल तो वो नहीं हो सकता। दूसरे आपने जो कहा है कि हेलो बरेली,

0: और
1: मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपकी बात के लिए मेहनत करनी पड़ती है,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: क्योंकि टॉपिक के अनुसार सोचना पड़ता है,
1: सोचना पड़ता है, तो क्या मेहनत केवल हम ही करेंगे?
0: हाँ ये भी सही
1: आप
0: है,
1: भी करिए थोड़ी
0: हाँ
1: मेहनत
0: आइए तो मिलजुल के मेहनत करते हैं, तभी तो कार्यक्रम अच्छे बनते हैं
1: जी बताइए, इतनी मेहनत की हमने और बताइए आधे घंटे बीत गए,
0: जी।
1: प्रोग्राम
0: तो
1: अपने आखिरी दौर पे
0: बिल्कुल
1: पहुंच
0: आ गया है,
1: गया।
0: तो कुछ दोस्तों के नाम पढ़ देते हैं।
1: हाँ बिल्कुल,
0: शाहजहांपुर के पास में मिर्जापुर के हमारे साथी हैं राम सिंह लोधी जी, इनको भी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। ब्रजेंद्र जी जयजान है, इनको भी अच्छे लगते हैं। नरेश मल्होत्रा जी नीटू हैं, इनको लाजवाब लगते हैं कार्यक्रम।
1: क्या बात है।
0: सदानंद मंदरकर जी हैं, वो तो तारीफ करते थकते नहीं है। दुर्गेश नागनपुरे और इनके परिवार के सभी साथी सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं, पूरे हफ्ते भर सुने इस बार इन्होंने। नरेश चंद्रा जी हैं, ये भी कहते हैं कि जो तरीका है आपका कार्यक्रम पेश करने का वो हमें जच जाता है। मुकेश शर्मा जी प्रोग्राम कम सुनते हैं, मगर जब भी जब सुनते हैं तो मजा आ जाता है।
1: क्या बात है।
0: बक्सीना दातागंज से विमल ठाकुर साहब भी प्रोग्राम सुनते हैं, सभी कार्यक्रम आज से नहीं बहुत पहले से सुनते हैं, अच्छे भी लग रहे हैं। और राजू माठे जी हैं, इनको भी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। नीतेश कुमार देवांगन जी लाजवाब बताते हैं कार्यक्रमों को। परवेज अहमद वाराणसी से कहते हैं कि नाम शामिल कर लीजिएगा हमारे।
1: चलिए कर लिया नाम शामिल।
0: शाहजी बोड़के जी को भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, और खास तौर पर इनको फिल्मी जो फरमाइशी कार्यक्रम होते हैं वो अच्छे लगते हैं।
1: क्या बात है, ऐसे ही सारे कार्यक्रम आप लोगों को अच्छे लगते रहें और आप हम लोगों के तारीफ के पुल बांधते रहें।
0: हाँ शिकायतें हो तो जरूर बताएं।
1: हाँ बिल्कुल
0: अब हम चलें?
1: बिल्कुल, अब तो चलना पड़ेगा।
0: बिल्कुल चलना पड़ेगा दोस्तों, पता नोट कर लीजिए पत्र लिखने के लिए। कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 2430001। ईमेल भी कर सकते हैं आप हमें,
1: हालांकि पत्र लिखते नहीं है आजकल, तो खत लिखने
0: अगली
1: लगे
0: बार
1: हैं।
0: लिखेंगे है
1: हाँ
0: ना, अभी
1: उम्मीद
0: हमने
1: है।
0: आज कई बार कहा है ना,
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो
1: आप पत्र
0: इतनी
1: लिखिए।
0: गुजारिश तो हमारे दोस्त मानेंगे।
1: जी जी जी
0: ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है आपका पत्र मिला bareilly@gmail.com, या फिर आकाशवाणी बरेली के पेज पे आइए, बड़ी मोहब्बत के साथ आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में कमेंट कर डालिए, दिल में जो है वो निकाल दीजिए। शिकायत है तो शिकायत कीजिए, तारीफ है तो तारीफ भी कीजिए, है ना, सुझाव है तो सुझाव दीजिए।
1: हाँ, और मन हो तो स्मार्टफोन उठाइए, वीडियो बनाइए, भेज
0: बिल्कुल
1: दीजिए।
0: हाँ, तो अब हमें भी चलना पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: अगले हफ्ते ढेरों बातें होंगी, आपकी प्रतिक्रियाएं सुझाव और आपकी शिकायतें शामिल करेंगे। तब तक आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखिएगा। और आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र
1: और मिथिलेश को दीजिए अनुमति,
0: कीजिए स्वीकार सब प्रेम,
1: नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आपका पत्र मिला। ट्यून किया है आपने 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 11:30। और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोकगीतों का। कार्यक्रम की शुरुआत में आपके लिए लेकर आ रहे हैं प्रकाश अरूता की मधुस्वर में ये लोकगीत।

बलमान सुदारी मिसराय औ पिंगुल गढ़ के बीच में मारू औ कैसे बलमा को चिठिया।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीतों का, और अभी आप सुन रहे थे ओम प्रकाश और साथियों के स्वर में मारू का गौना ये सुंदर लोकगीत। आइए अब सुनते हैं प्रतिभा दवे के मधुर स्वर में ये लोकगीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीतों का। अभी आपने सुना मनोरमा तिवारी और गोपाल सिंह परमार के स्वर में ये मधुर लोकगीत। अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं रुचि शुक्ला का गाया ये मधुर लोकगीत।

इसी मधुर लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोकगीतों का अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बज रहे हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं FM रेनबो के प्रोग्राम, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक, साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़ी की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के प्रवक्ता संवर्ग के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का 2रा चरण जारी है। आज की पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है। परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है तथा पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कल शाहजहांपुर में शहर की ट्रैफिक, पार्किंग और सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने मुख्य मार्गों पर दुकानों के बाहर सामान रखने और अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री खन्ना ने कहा कि रात 10 बजे के बाद DJ बजाने पर पहले जुर्माना लगाया जाए, फिर भी नियम न मानने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठक में रेडी ठेला संचालकों को वेंडिंग जोन में भेजने और सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए। उत्तर मध्य रेलवे के जौनपुर सेक्शन में चल रहे तकनीकी और रखरखाव कार्य के कारण मानिकपुर जंक्शन से गुजरने वाली 3 ट्रेनों का मार्ग अस्थायी रूप से परिवर्तित कर दिया गया है। इनमें सुपरफास्ट ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस और एक विशेष ट्रेन शामिल है। मानिकपुर स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक शिवेश मालवीय ने बताया कि ये ट्रेनें मानिकपुर जंक्शन के बजाय ओहन बांसा बाईपास मार्ग से चित्रकूट, बांदा और कानपुर होते हुए प्रयागराज की ओर जाएंगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति और रूट की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 1 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: जगा,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
4: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
5: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. जब स्वास्थ्य साथ होता है तो हर सपना आसान लगता है, लेकिन जब यही सेहत साथ छोड़ दे तो जिंदगी कठिन परीक्षा बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 100.7 MHz पर आपका वीकली हेल्थ शो हेल्थ एंड फिटनेस। श्रोताओं, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम अपने काम, जिम्मेदारियों और सपनों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी सेहत को ही पीछे छोड़ देते हैं, और शायद यही वजह है कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां धीरे धीरे बिना आहट के लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। लेकिन अच्छी बात है ये कि अगर जागरूकता हो, जानकारी हो और सही वक्त पर सही गाइडेंस हो तो इन बीमारियों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसी थॉट के साथ, इसी सोच के साथ आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है आपकी बेहतर सेहत और बेहतर जीवन को। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, यानी मधुमेह और उच्च रक्तचाप की, और इन महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान, चरक के मेडिसिन विभाग से। डॉक्टर साहब, FM रेनबो लखनऊ के इस मंच पर आपका दिल से स्वागत है।
6: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और आज हम बात करेंगे डायबिटीज और हाइपरटेंशन से जुड़े कुछ सवालों की, उसके बारे में जानने की। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए अपने शो पे।
3: तो श्रोता, ये तो आप जानते ही हैं कि एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो अगर आपके मन में डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो बिना झिझक हमें कॉल करिए। हमारे फोन नंबर वही पुराने वाले 0522-223-8852 और 0522-223-8845। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। दोपहर 1 बजे तक हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं, तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, तो आप डायरेक्टली डॉक्टर खान से बात करें और अपने सवालों के जवाब पाएं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, जो कि एक टाइम ये बोला जाता था कि बहुत कम लोगों में होने वाली

0: बीमारी है। कुछ लोग इसे हंसते गाते हुए बहुत सोफिस्टिकेटेड बीमारियों में से भी गिनते थे। ये आज इतनी कॉमन कैसे हो गई है?
1: देखिए, इसका मुख्य कारण जो इस वक्त हमें देखने को मिलता है वो ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा रोज़मर्रा की जो जीवन शैली है, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। जैसे बहुत देर तक ऑफिस में बैठे रहने से, जिसे हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, या कोई भी ऐसा मेहनत वाला काम जिससे हमारा पसीना बहे शरीर से, वो अब कम हो गया है। लग्जरीज या विलासिता जिसे कहें, वो हमारे जीवन में ज़्यादा आ गई है, जिस वजह से ये सारी बीमारियों का जो प्रेवलेंस है, जो इंसिडेंस है, वो पिछले कई सालों से, पिछले 2 डिकेड से बढ़ गया है।
0: तो डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या होते हैं? कई बार पता ही नहीं चलता है। कहा जाता है कि साइलेंट किलर्स होती हैं ये बीमारियां, क्योंकि आप ठीक ठाक हैं, आप काम भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर एक दिन आपको पता चलता है कि आपको तो हाइपरटेंशन है या आप तो डायबिटिक हो गए। तो क्या लक्षण होते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है?
1: जी, देखिए, अगर हम डायबिटीज की बात करें, मधुमेह की बात करें, तो इसमें जो सबसे इसके जो सबसे खतरनाक लक्षण या शुरुआती लक्षण जिसे हम कह सकते हैं, वो ज़्यादा यूरिन होना, ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा भूख लगना, और ज़्यादा भूख लगने के बावजूद भी शरीर का वज़न कम होना, और ज़्यादा प्यास लगना, इंस्पाइट के हम एडिक्वेट अमाउंट में हम पानी पी रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें ज़्यादा प्यास लगना, ये कुछ शुरुआती लक्षण हैं डायबिटीज़ के। जल्दी थक जाना, कई बार गांव के जो हमारे श्रोता जो गांव में हैं, उन्होंने अक्सर ये चीज़ इसको नज़रअंदाज ना करें कि अगर वो वॉशरूम जाते हैं, अगर उनके यूरिन में चींटियाँ लग जाती हैं, तो ये संकेत देता है कि आपको डायबिटीज़ है, आपको मधुमेह है, और आप तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से जाके अपने शुगर की जांच जितनी जल्दी हो सके वो कराएं। और अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें, तो हाइपरटेंशन में जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है, जो आज के समय में हमें देखने को मिलता है, वो स्ट्रेस है, तनाव है, नींद का पूरा ना होना है, और बाहर का जो प्रोसेस्ड फूड है। मैं ये नहीं कहता कि बाहर का खाना गलत है या ख़राब है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना, स्पाइसी फूड खाना, ये धीरे धीरे हमारे शरीर में हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे रक्तचाप को बढ़ा देता है।
0: डॉक्टर साहब, बहुत सारे कॉल्स हमें आ रहे हैं, और इससे पहले कि हम अपने पहले कॉलर से बात करें, एक बहुत छोटा सा इम्पॉर्टेंट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हमारे पहले कॉलर से कनेक्ट होते हैं।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट दोई रोड दुबग्गा।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
0: आपको अपडेटेड रखने के लिए, आपकी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए ही तो लेकर आते हैं हम ये प्रोग्राम हर संडे। ये प्रोग्राम यानी कि हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें खास तौर पर आप ही के लिए तो हम इनवाइट करते हैं एक्सपर्ट को, एक ऐसे एक्सपर्ट को जिनसे आप सीधे सीधे बात कर सकते हैं, अपनी शंकाओं के समाधान जान सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान, और डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो चलिए जानते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है और उनका क्या सवाल है। हेलो,
5: हेलो मैम, नमस्ते। पूरी टीम को हम श्रद्धा पूर्वक नमस्कार कर रहे हैं।
0: धन्यवाद, आपने इतना इंतजार किया। आप अपना सवाल पूछें सर।
5: मैम, हमारा सवाल ये है डॉक्टर से कि जो हाइपरटेंशन है, ये लाइफस्टाइल की बीमारी डॉक्टर बता रहे हैं
0: जी,
5: इसमें डॉक्टर साहब हम क्या अंतर खाएं मुख्य रूप से, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। और लाइफ स्टाइल, हम गांव में रहते हैं, ताजी हवा रहती है हम लोगों के आसपास, और कोई खास दिक्कत नहीं है, कोई नशा पत्ती भी भगवान की दया से नहीं है।
0: नहीं तो आपको हाइपरटेंशन है क्या? क्या डायग्नोज हुई है आपको हाइपरटेंशन?
5: हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत ज्यादा, 190 बता रही रीडिंग। अब हम यहाँ कार्डियोलॉजी में भी
0: जी
5: कराया, और यहाँ अपने सतीपुर में भी सरकारी अस्पताल में,

0: इसको कैसे नियंत्रित किया जाए डॉक्टर साहब, क्या चीज हम न खाएं जिससे कि ये हाइपरटेंशन।
1: बहुत ही अच्छा सवाल है, आप एक बार अपनी उम्र भी बता दीजिए डॉक्टर साहब को।
0: हमारी उम्र 50 से ऊपर है, 52-53 साल है डॉक्टर।
1: ओके, सो सर 52-53 इयर्स की एज, और जैसा कि आपने शुरू में बोला कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं। अब हम इनकी बात करें तो गांव में रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, किसी तरह का व्यसन नहीं है, हेल्दी खाते हैं, हेल्दी हवा में सांस लेते हैं, उसके बाद भी हाइपरटेंशन हो गई, अब ऐसे में क्या किया जाए?
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा इनका सवाल है कि ये गांव में रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटी भी है इनकी। देखिए मात्र काम करना, जो फार्मर्स है, जो हमारे किसान भाई हैं, जो खेतों में काम करते हैं, इसको हम एक उसमें नहीं ले सकते, व्यायाम की श्रेणी में नहीं ले सकते। जो बताया गया है उस व्यायाम के लिए, उसको ब्रिस्क वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग ऐसा है कि इतना चलना, इतना तेज चलना, अपनी कदम ताल को इतना तेज चलना कि चलते चलते हल्की सी सांस आपकी फूलने लगे। आप इतना चले, इतना इतनी अपनी स्पीड को रखें कि आप, कहते हैं हम लोग समझाने के लिए कि आप गाना ना गा सकें। मैं एफएम रेडियो पे हूं तो गाने से रिलेटेड ही बता रहा हूं कि आप इतना चलें कि आप तेजी से चलें कि आप गाना ना गा सकें, इसको ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। ये जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि खाने में, खास करके आप किसान भाई हैं हमारे जो है, जो गांव में रहते हैं, तो जैसे पापड़ हो गया, नींबू हो गया, अचार हो गया, ये चीज़ों का सेवन कम करें या ना करें। तीसरी चीज़ जो हाइपरटेंशन से रिलेटेड रहती है वो जेनेटिक्स रहती है। कई बार कुछ बीमारियां हमें विरासत में, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि केवल प्रॉपर्टी ही नहीं विरासत में मिलती, बीमारियां भी मिलती हैं, तो हाइपरटेंशन कई बार, जिसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, वो जेनेटिक भी होता है। वो चूंकि हमारे फैमिली हिस्ट्री रहती है, हमारे परिवार में हमारे माता पिता को किसी को रही होती है, वो हमारे जीन्स में ट्रांसफ़र होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम अपना ख्याल ना रखें, अपना देखभाल ना रखें, तो ये हो जाएगी। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको, इससे हम बचाव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने आमतौर पे मरीजों से जब हम देखते हैं तो सुनने में मिलता है कि ऊपर से नमक डालने की एक प्रचलन है, खास करके गांव में, कि जो खाना बनाए, जो भोजन बनाए, उसमें नमक जो पड़ता है वो पड़ता है, उसके ऊपर से एक्स्ट्रा नमक जिसे कहते हैं वो डाल देते हैं। ये चीज़ नहीं करनी है। भाई साहब आपने बिल्कुल आपने अच्छा काम किया कि अपने नज़दीकी स्वास्थ्य में जाके अपने आप को दिखाया, और मेरी यही कामना है कि आप दवाओं से और जो मैंने बताया एक्सरसाइज के नाम पे, जैसे योगा है, योगा का बहुत अच्छा प्रभाव आता है हमारे शरीर पे बीपी को कंट्रोल करने में, खास करके जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, इनहेल एक्सहेल करना, खास करके सुबह में अगर 10 से 15 मिनट अगर हम रेगुलर करेंगे तो इससे हमारे शरीर के अंदर मन शांत रहेगा, जब मन शांत रहेगा तो चीजें भी, हमारी बीपी भी कंट्रोल रहेगा। धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब, आपको और भी कई उपाय बताएंगे जिससे कि आप कंट्रोल कर सकें अपने बीपी को। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि 1 बजे तक लगातार आपके साथ हम बने हुए हैं इन द प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ हैं, तो चलिए जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो,
3: हेलो
1: जी, नमस्कार।
3: हेलो
1: जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछें। इनका फोन तो कट गया, लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि जो रेगुलर काम आप करते हैं, गांव में गए खेत पर काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि भाई हमारा तो घर 3 मंजिल का है, हमने 3 मंजिल सीढ़ियां चढ़ ली, हमारी एक्सरसाइज हो गई, इतना काफी नहीं है, तो क्या कॉन्शियसली सोच करके पूरी प्लानिंग से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या उसका दूसरा असर होता है शरीर के ऊपर?
2: नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए बीपी और शुगर ये जो बीमारियां हैं
1: जी,
2: तो जैसे कि मैंने कहा कि ये कुछ जेनेटिक्स से भी रिलेटेड है, इंस्पाइट के हम सारा प्रिकॉशंस लेते हैं उसके बावजूद भी ये बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग मैंने बात करी, साथ में ही एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, जो नई गाइडलाइंस आई हैं, जो नया ट्रीटमेंट का गाइडलाइंस आया है, उसमें ये है कि 150 मिनट्स टोटल पर वीक, यानी डेली 20 से 25 मिनट व्यायाम करने से हम डायबिटीज़ और बीपी के ऊपर, हाइपरटेंशन के ऊपर काबू पा सकते हैं।

0: तो सीधी सी बात है ये कि रेगुलर जो आप काम करते हैं उसे एक्सरसाइज में बिल्कुल मत गिनिए। सोच कर समझ कर जितना डॉक्टर साहब कह रहे हैं उतना टाइम जरूर डिवोट करिए एक्सरसाइज के नाम। डॉक्टर साहब एक और कॉलर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनसे बात करने से पहले हम ले लेते हैं एक बहुत छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।
1: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी,
2: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
0: 12:19 और ठीक 45 सेकेंड्स। प्रोग्राम का नाम हेल्थ एंड फिटनेस, चैनल का नाम FM रेनबो। मेरा नाम ज्योति और आज खास तौर पर आपके लिए, जी हाँ आप ही के लिए, हमने इनवाइट किया है हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान जी को, जो कि बात कर रहे हैं डायबिटीज और हाइपरटेंशन से जुड़े हुए आपके सवालों के बारे में, आपकी शंकाओं के समाधान कर रहे हैं, आपके सवालों के लगातार जवाब दे रहे हैं। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है हमें जल्दी से डायल करिए 2238852 पर या फिर 2238845 पर। इन नंबर से पहले जो लखनऊ का कोड है 0522, इसको ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल इनकी ही तरह। हेलो
3: हेलो
0: जी नमस्कार, नाम बताएं और अपना सवाल पूछें।
3: नमस्कार मैम जी, हम जगमोहन बोल रहे हैं।
0: जी जगमोहन साहब
3: जी, हम ये जानकारी चाहते हैं
0: जी
3: कि जैसे शरीर में मोटापे की भी कमी ज्यादा चल रही है और जब शरीर ठीक ठाक है और चलने में जैसे थकान से महसूस होती है और नसें जो हैं
0: झटपट
3: की आवाज आती है,
0: मतलब आपको थकान सी महसूस होती है। अपनी उम्र भी बता दीजिए एक बार आप।
3: हमारी उम्र 18 वर्ष है
0: जी। कितनी है आपकी उम्र?
3: जी 18 वर्ष की उम्र है और हड्डियां जैसे लगता है कि कमजोर होती जाती है।
0: तो 18 साल की उम्र में ही आपको बहुत लो एनर्जी फील होती है, हड्डियों में तकलीफ महसूस होती रहती है, और भी कोई परेशानी है जगमोहन जी?
3: जी और तो कोई परेशानी नहीं है
0: जी। बहुत अच्छी बात है कि और कोई परेशानी नहीं है, डॉक्टर साहब हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, 18 साल की उम्र में तो ये बोला जाता है कि इस एज में एक्सेसिव एनर्जी रहती है बच्चों में, स्पेशली जो प्री टीन्स हैं या टीनएजर्स हैं या यूथ, वो तो बबल करता है एनर्जी से, और अगर इसी उम्र में आपको ये महसूस होने लगे कि ताकत ही नहीं है, बड़ी थकान हो रही है, हड्डियाँ तकलीफ दे रही हैं, तो क्या वजह हो सकती है?
4: जी बिल्कुल बिल्कुल, जगमोहन जी जो उन्होंने अपनी उम्र बताई 18 साल तो काफ़ी यंग है, लेकिन हमें एक चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि चाहे हम डायबिटीज़ की बात करें चाहे हाइपरटेंशन की बात करें, ये कहीं नहीं लिखा है कि ये यंग्स में नहीं हो सकता है। जगमोहन जी ने बताया कि उनके हड्डियों में दर्द रहता है, उनको थकान से, जिसको हम बोलते हैं मैलेज एंड फटीग बोलते हैं, तो इसको नज़रअंदाज मत कीजिए जगमोहन जी। आप अपना एक रूटीन चेकअप करा लीजिए। रूटीन चेकअप में आप अपना एक रैंडम ब्लड शुगर या फास्टिंग शुगर एंड पोस्ट प्रैंडल शुगर, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद का शुगर, और एक HbA1c, और अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से जाके अपना एक BP नपवा लें। इन जांचों को कराने का मकसद ये है कि हम आप में शुगर और हाइपरटेंशन के लक्षण, क्योंकि ये लक्षण और भी कई बीमारियों में आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये अगर ये सिर्फ हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ के ही लक्षण हैं, और भी कोई शरीर में, जो कि आप यंग है, हो सकता हो कैल्शियम की कमी हो, तो अपने विटामिन डी लेवल्स भी करा लें, क्योंकि विटामिन डी लेवल का भी डायबिटीज़ से रिलेशन देखा गया है। तो आप विटामिन डी लेवल्स करा लें, अपने HbA1c लेवल्स हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग एंड पोस्ट प्रैंडल शुगर्स हैं, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से अपना BP नपवा लें, और इन रिपोर्ट्स को अपने जो भी डॉक्टर को आप दिखाना चाहें या चरक अस्पताल आना चाहें बिल्कुल आ सकते हैं, उन रिपोर्ट्स के आधार पर फिर आपके डायग्नोसिस या आपके आगे का इलाज किया जाएगा।
0: तो जगमोहन जी बिल्कुल इग्नोर मत करिए अपने लक्षणों को, जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर से सलाह लें और बहुत जल्दी से आप अच्छे हो जाए, ये हमारी शुभकामना है। हेलो नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाएं, आपकी आवाज़ बड़ी हल्की आ रही है।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: हाँ अब बेटर है। हाँ जी बताएं।
0: मेरा सवाल ये है कि डायबिटीज कैसे हो जाती है, अगर हो भी जाती है तो उससे बचने के उपाय क्या हैं?
1: आपकी उम्र कितनी है?
0: उम्र है 16।
1: और आपको कोई परेशानी तो नहीं है? स्वास्थ्य एकदम ठीक है आपका?
0: हाँ स्वास्थ्य तो ठीक है।
1: लेकिन हमारे जागरूक श्रोता होने के नाते ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि डायबिटीज हो क्यों जाती है?
2: जी देखिए, डायबिटीज़ होने का मुख्य कारण ये है कि जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, उससे हमारे शरीर में ग्लूकोस लेवल बढ़ जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि इन साहब की उम्र 16 साल है, काफ़ी यंग है। तो डायबिटीज़ की जो एक मिथ्या है कि डायबिटीज़ केवल बूढ़े अधेड़ उम्र के लोगों में होती है, ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ इन यंग भी होती है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, और ये टाइप 2, मैं अपने श्रोताओं से बताना चाहूँगा कि ये टाइप 1 ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपको आपकी उम्र कम है, मतलब 25 साल के नीचे हैं, और आपको ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा पेशाब, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा पानी पीने की वो हो रही है जबकि आप पी रहे हैं पानी, शरीर का वज़न कम होना, जल्दी थकान आना, सांस का फूलना, तो उसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए। इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं और ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। जैसा कि भाई साहब का सवाल था कि ये हो कैसे जाती है, तो जब इंसुलिन की मात्रा, जो कि हमारा बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज रिलीज़ करता है, ये शरीर में कम होने लगता है, तब शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए खान पान पर ध्यान रखना रहता है, और व्यायाम करना पड़ता है, और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना होता है।
1: डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर है, हालांकि मैंने आपका गाना बिल्कुल क्यू कर रखा है, आपने दो बेहद खूबसूरत गानों की फरमाइश की हुई है, तो वो गाने ज़रूर प्ले किए जाएंगे। लेकिन हमारे ये श्रोता जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, इनसे हम बात कर लें उसके बाद। हेलो जी बताएं। नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना सवाल भी पूछें प्लीज।
3: विमल सिंह बोल रहा हूँ।
1: जी सिंह साहब,
3: मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे पेट में दर्द, खाना खाता हूँ तब भी दर्द, नहीं खाता हूँ तब भी दर्द, ये लैटिन कई बार कमजोरी बहुत ज्यादा है।
1: उम्र कितनी है आपकी?
3: हमारी
1: 29 ईयर्स की एज। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, पेट में दर्द रहता है, खाना खाते हैं तब भी, नहीं खाते हैं तब भी, बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है आज के टाइम में।
2: जी जी जी, तो मे भी हो सकता हो कि पेट में इन्फेक्शन हो गया हो। पेट में इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है, जैसे कि आजकल मौसम भी बहुत बदल रहा है, कभी गर्मी हो जाती है और कभी अचानक से टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इन कारणों से भी खान पान के उस पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और जब हम इसे खा लेते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि अभी पानी जितना पी सकें वो पिएं, और अल्ट्रासाउंड हो गया और जो इससे रिलेटेड जांचें हैं वो अपने डॉक्टर को दिखा के फिर उसके बाद उसको आगे वो करें, इलाज करें अपना जाए।
1: तो दोस्तों, आपका ख्याल रखने के लिए, आपकी सेहत अच्छी रहे, इसलिए हम लेकर आते हैं हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें आज आपके साथ हैं जाने माने डायबिटीज और हाइपरटेंशन एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान साहब। आपके जो भी सवाल हैं आप डायरेक्टली इनसे पूछ सकते हैं, कोई भी शंका है उसका समाधान चाहते हैं, कोई सुझाव चाहते हैं तो भी आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। फोन नंबर्स हमारे वही पुराने 223-8852 और 223-8845। तो डॉक्टर साहब तो आपसे बात करेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने इनको एक प्रॉमिस किया था कि आपकी पसंद का सॉन्ग जरूर आज एफएम रेनबो पर प्ले होगा, तो डॉक्टर साहब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं और क्यों सुनना चाहते हैं?
2: देखिए, आज चूंकि मदर्स डे है, तो मैं मदर्स डे के उपलक्ष्य में मैं एक गाना मेरी माँ, अपनी माँ को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि माता ही एक जीवन में एक ऐसा इंसान के वो रहता है कि जो उसके पूरे फ्यूचर को शेप करता है। तो आज मदर्स डे के, हालांकि हर दिन हमें मदर्स डे मनाना चाहिए, पर चूंकि एक स्पेशल डे है, तो मैं जो गाना मैंने बताया आपको, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए बजा दिया जाए।
1: तो डॉक्टर साहब की माता जी को हम सबकी तरफ से भी मदर्स डे की ढेर सारी बधाइयां, और डॉक्टर साहब के साथ साथ हम सबकी भी तरफ से मदर्स डे का ये प्यारा सा गिफ्ट

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.
3: आपकी धड़कन हेल्दी रहे, आप स्वस्थ रहे, इसीलिए तो हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जरूर जो आपको अवेयर करें, आपको अपडेटेड रखें और आपकी लाइफ की क्वालिटी को सुधारने में मदद करें। हमारे साथ एक कॉलर बड़ी देर से है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या सवाल है। हेलो
4: हेलो
3: जी, नमस्कार।
4: जी

0: नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: मास्टर राधेश्याम बोल रहे डिस्ट्रिक्ट कारसन से।
2: जी राधेश्याम जी बताएं।
0: मुझे डायबिटिक है।
2: ओके।
0: मैं उसकी सुबह एक गोली लेता हूँ जो जेमर टू, और शाम को जल्ला ट्राई हो टेबलेट लेता हूँ।
2: ओके।
0: मेरा जो पीपी शुगर तो 121.3 है, लेकिन मेरे जो शरीर में हर समय जो थकान और कमजोरी बनी रहती है।
2: अच्छा, आपका ईमेल भी आया हुआ है राधेश्याम जी।
0: हाँ जी जी जी
2: जी। अच्छा हुआ आपका फोन लग गया, मैं बस आपका ईमेल लेने ही वाली थी।
0: चलो कोई बात नहीं, थैंक्स मैम।
2: तो डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे राधेश्याम जी को?
1: जी राधेश्याम जी, आपका पीपी तो ठीक है, आपने बताया 121 है तो ठीक है। जो थकान और कमजोरी की बात चल रही है, तो देखिए डायबिटीज का मतलब भूखे रहना नहीं होता है। ये हमारे समाज में एक कॉमन वो है कि हम भूखे रहेंगे तो शुगर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है। डाइट में आपको प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखनी है एज कम्पेयर टू दी कार्बोहाइड्रेट। अब सवाल उठता ये है कि प्रोटीन में आता क्या है? तो अगर आप शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं, तो शाकाहारी में जैसे पनीर हो गया और सोयाबीन हो गया, है ना, तो और जैसे सादा दही हो गया, है ना, बिना शक्कर वाला जो सादा दही घर का है, ये सारी चीज़ें प्रोटीन से रिलेटेड हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रेड मीट को अवॉइड करना है एंड फिश जो है फिश ज़्यादा मात्रा में लेनी है। तीसरी जो बात आती है कि विटामिन डी लेवल्स देखा गया है, जो भी स्टडी हुई है रिसेंटली, कि विटामिन डी लेवल्स कम पाए गए हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, तो विटामिन डी लेवल का कम होना भी एक कारण हो सकता है आपको थकान और कमजोरी लगना। तो मेरा आपसे जो आपको सजेशन रहेगा, सुझाव रहेगा, वो ये है कि अपनी प्रोटीन डाइट को बढ़ा दें, अपने विटामिन डी लेवल्स चेक करा लें, अगर वो कम है तो उसकी दवाई आती है उसको लेंगे तो इससे आपको मदद मिलेगी।
2: डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो।
3: हेलो नमस्कार मैडम
2: जी, कौन बोल रहे?
3: मैडम संजय बोल रहे।
2: संजय जी एक रिक्वेस्ट करूं?
3: हेलो
2: संजय जी एक रिक्वेस्ट करूं, मानेंगे आप?
3: हाँ बताइए मैडम।
2: प्लीज रेडियो से दूर हो जाइए।
3: ठीक मैडम, हाँ दूर हो
2: जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपना सवाल पूछे प्लीज।
3: मैडम हमको डाटा से डाटा, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून
3: डॉक्टर साहब। हमको आपसे ये सवाल पूछना है कि जैसे बीपी का जो एक नॉर्मल रेंज कितना होता है और कितने के बाद वो रिस्की हो जाता है
1: जी।
3: और दूसरा क्वेश्चन ये है कि शुगर जो आजकल बहुत एक कॉमन बीमारी हो गई है
1: जी।
3: तो इसका क्या ये प्रोग्रेसिव बीमारी है कि रिवर्स नहीं हो सकती अगर एक बार हो जाती है तो?
1: अच्छा,
2: दोनों ही सवाल बहुत अच्छे हैं इनके कि क्या शुगर हो गई या हाइपरटेंशन हो गई तो क्या सारी जिंदगी वो रहती है? बहुत अच्छे सवाल आपके।
3: इसका रेंज क्या है बीपी का जो है?
1: जी जी जी, देखिए मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जो नॉर्मल बीपी हम लोग मानते हैं वो 120/80, 120 ऊपर, जैसे हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, एंड 80 जो नीचे का डायस्टोलिक होता है, तो इसकी एक रेंज होती है 100-120 एंड 60-80 डायस्टोलिक जो है। तो जब बीपी हमारा 120 अबव, 120 और 130 की रेंज में रहता है तो ये नॉर्मल हम मानते हैं। यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर 126, 128, 129 या 130 तक आ रहा है तो इसको हम नॉर्मल मानते हैं कि भाई बीपी आपका सही चल रहा है। जब बीपी आपका जो है 130 अबव होने लगता है धीरे धीरे, तब जो है आप खतरे के उसमें आते हैं। तो एकदम से अगर बीपी आपका 130 अबव आ रहा है तो दवा देने की जरूरत नहीं है, उसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है और डाइट पे, इन सब पे ध्यान देके हम बीपी को वापस कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा सवाल जो आपका था कि शुगर क्या प्रोग्रेसिव बीमारी है, बिल्कुल शुगर जो है, देखिए शुगर और नॉर्मल हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें आप दवा लेते रहें और अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। दवा की डोज कम हो जाती है, दवा की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और वो आप कम मात्रा में लेते रहे, परहेज करते रहे, शुगर कंट्रोल रहेगी और अपना जीवन व्यापन आराम से कर सकते हैं।
2: मतलब आपको अपनी लाइफ को लीड करने में कोई समस्या नहीं होगी?
1: कोई समस्या नहीं,
2: लेकिन दवा लेते रहना जरूरी है।
1: दवा लेते रहना जरूरी है जी।
2: लेकिन डॉक्टर साहब एक बार अगर इनमें से कोई बीमारी हो जाती है तो मन में तो आ ही जाता है कि भाई अब समस्या हो गई है ना?
1: जी जी जी, असल में एक जहन में ये आ जाता है कि अब हम बीमार रहने लगे हैं। तो इसका यही मैं कहना चाहूंगा कि घबराए नहीं, अपने मन में कोई कुंठा ना रखें। ये जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप परहेज रखेंगे, अच्छी लाइफस्टाइल रखेंगे, खान पान का रखेंगे, तो आपको जीवन व्यापन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत नामी क्रिकेटर वसीम अकरम है, वसीम अकरम पाकिस्तानी बॉलर रहे, उनको भी डायबिटीज़ थी। हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में सोनम कपूर हैं, उनको तो टाइप 1 डायबिटीज़ थी, लेकिन देखिए सभी अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रोफेशनली भी और पर्सनली।

0: भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है।
1: तो बजाय ये सोच के कि अरे मुझे तो समस्या हो गई, उस समस्या को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, दवा सही समय पर लीजिए, डॉक्टर की सलाह लेते रहिए और एक्सरसाइज जरूर करिए। डॉक्टर साहब एक और कॉलर वेट कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रेक लेना तो बहुत जरूरी है।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
1: 12:39, वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहते हैं ना, अभी भी अच्छी खबर है ये कि हमारे पास 20 मिनट से ज्यादा है, तो हमें जल्दी से आप कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टली डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान साहब से, जो कि जाने माने डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन एक्सपर्ट हैं। तो चलिए जानते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन है और इनका क्या सवाल है। मुझे लगता है कि इनका कनेक्शन थोड़ा सा परेशान कर रहा है, बट नेवर माइंड। चलिए एक और ब्रेक ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे साथ कौन लाइन पर है।
4: बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
2: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
4: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
2: चरक हॉस्पिटल दुबग्गा हरदोई रोड लखनऊ, कॉल 666-444-444।
1: तो चलिए जाने हमारे साथ अभी कौन फोन लाइन पर कनेक्ट हुए हैं। हेलो, हेलो,
5: सलाम अलैकुम
1: जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
5: और डॉक्टर भाई को, तौसीफ भाई को सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम बहन, बताएं।
5: और बताइए भाई, आप कैसे हैं? ज्योति मैम आप बताइए कैसे?
1: जी हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी भी सेहत फर्स्ट क्लास बनी रहे, और इसीलिए तो
5: मैम हमारी आपसे बात नहीं हुई थी और काफी दिनों से, तो मेरा सवाल कोई नहीं है, मैंने कॉल किया आपको, बुरा लगा हो अगर, इसके लिए सॉरी।
1: अरे नहीं, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बस यूं ही कनेक्टेड रहिए।
5: डॉक्टर भाई और बताइए।
0: जी बहन मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, और अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने कॉल किया, बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता हमें इतने ध्यान से सुनते हैं, हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये भी जानकर अच्छा लगा कि इनका कोई सवाल नहीं है, इसका मतलब हमारा देश स्वस्थ हो रहा है और हमारे देश को स्वस्थ रखने के लिए तो हम करते हैं ये छोटा सा प्रयास जिसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस, जिसे हम बुलाते हैं हमारे देश के सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हेल्थ शोज में से एक। मोनू सेठ जी का ईमेल है मेरे सामने, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, खेल और व्यायाम में काम में दिन बीत जाता है, खूब पसीना बहाते हैं, तो क्या हमें फिर भी ये बीमारी हो सकती है?
0: देखिए सवाल इनका बहुत ही उचित है कि वही खेल और व्यायाम दोनों करते हैं उसके बावजूद भी बिल्कुल हो सकती है, ना होने का मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है। लेकिन ये कि ध्यान रखें अपना, फलों का सेवन ज़्यादा करें, बाहर का खाना कम खाएं, आप व्यायाम करते ही हैं, खेलते भी हैं, मे बी प्रोलोंगेशन हो सकता है कि प्रोलोंगेशन ऑफ द डिजीज के आपको ना हो, मतलब अगर होना है तो 20-25 साल 30 साल बाद हो सकती है, लेकिन अगर ये लाइफ स्टाइल रही तो शायद ना भी हो जाए।
1: तो सीधी सी बात है कि हम ये प्रोग्राम इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप जागरूक हों, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी को बीमारी होगी ही या फिर नहीं होगी, लेकिन अगर हो ही जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, मेडिकल साइंस की फील्ड में जबरदस्त R&D हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और उस वजह से बीमारियां बहुत जल्द काबू में आ रही हैं, बहुत जल्द उनके निदान हो रहे हैं। तो तकलीफ को अपने तक समेट कर रखने की बजाय डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, समय पर लीजिए और सलाह को फॉलो भी करिए। हमारे साथ अब कौन फोन लाइन पर है? नमस्कार।
6: नमस्ते मैम, ओम बाबू बोल रहे हैं।
1: ओम जी नमस्कार, सवाल पूछे अपना। जी
6: मैम, ये हमारे जो है 3 साल पहले पता चला था कि हमें शुगर है, और जब HbA1c और ये टेस्ट कराए तो करीब 13 के आसपास निकला था, और उसके बाद अपने खान पियन में थोड़ा सुधार किए और कुछ दिन तक 6 महीने के आसपास दवा चली, उसके बाद अब दवा

0: नहीं खा रहे हैं, लेकिन हर 3 महीने पे HbA1c टेस्ट कराते हैं, तो वही 7 के आसपास आती है, 7 साढ़े 7 के आसपास आती है, और 125 या 120 115 के आसपास
1: तो दवा
0: रहता
1: खाना बंद जो आपने की है वो क्या किसी के सलाह पे की है या फिर आपका शुगर कंट्रोल हो गया था तो आपने अपने आप से
0: है।
1: ये
0: हाँ,
1: डिसीजन
0: अपने
1: लिया?
0: हम कंट्रोल हो गया था तो अपने आप कर दिए, लेकिन इस समय ये ऐसी पोजीशन है, तो क्या इसमें उचित है दवा खाना कि थोड़ा और सुधारना है अपने खाने पीने के सिस्टम
1: बहुत
0: में?
1: अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब.
0: जी
1: अक्सर ऐसा होता है कि जब
0: बहुत
1: आप दवा लेना शुरू करते हैं तो फिर कंट्रोल में आ जाती है शुगर, तो उस टाइम ये क्वेश्चन आता है कि अब हम दवा क्यों खाएं.
2: जी.
1: इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, मैं यही अपने श्रोताओं को सलाह देना चाहूँगा कि खुद डॉक्टर ना बने. कृपा करके डॉक्टर जब कहे तभी अपनी दवा को बंद करें. भाई साहब का HbA1c 13 पॉइंट समथिंग था और वो घट के 7 साढ़े 7 आ गया. इसका मतलब है कि उन्होंने भी मेहनत की और आपके डॉक्टर ने भी मेहनत की, लेकिन अब आपने अपने मन से दवा बंद कर दी और आपका HbA1c 7 7.5 है. भाई साहब को ये नहीं मालूम कि 6.5 अबव जो है पेशेंट डायबिटिक कहलाता है. 6.5 अबव है तो पेशेंट जो है डायबिटिक, प्री डायबिटिक, डायबिटिक रेंज में आ जाता है. HbA1c लेवल शुड बी लेस देन 6.5. अब इनका HbA1c 7 7.5 आ रहा है तो इनको दवा की जरूरत है, लेकिन कम डोज की जरूरत है. ये कब बढ़ जाएगा इनको पता भी नहीं चलेगा. HbA1c यूजुअली हमारा 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज बताता है. तो
1: जी
2: कृपा करके मेरा सुझाव ये है कि जिन डॉक्टर साहब को आप दिखा रहे थे उनको वापस जाएं और उनसे सलाह लें. अगर मान लीजिए आप पहले 2 दवा खा रहे थे, हो सकता हो आपको एक गोली आधी गोली खानी पड़े, लेकिन आप अपने मन से दवा कृपा करके ना बंद करें.
1: डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्लीज अपने डॉक्टर खुद ना बने, क्योंकि ये वाकई खतरनाक हो सकता है. डोज एडजस्ट की जा सकती है, लेकिन शुगर की दवा और हाइपरटेंशन की दवा डॉक्टर साहब रोकनी नहीं चाहिए,
2: बिल्कुल नहीं रोकनी
1: बिल्कुल
2: चाहिए,
1: भी नहीं
2: बिल्कुल
1: रोकनी
2: नहीं रोकनी
1: चाहिए,
2: चाहिए.
1: और ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं. डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ है, ईमेल्स भी ढेर सारे आ रहे हैं, लेकिन अगर मैंने आपकी पसंद का एक और गाना नहीं सुनाया तो मुझे बहुत अफसोस हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो कम्युनिकेशन आपका और मेरा हुआ था उसमें आपने कहा था कि आपको 2 गाने सुनने हैं, एक मम्मी के लिए और एक अपनी बेटर हाफ के लिए. तो इससे पहले कि मैं गाना प्ले करूँ, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: मैं ये सॉन्ग अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहूँगा और बस, और मैं क्या
1: ऑलराइट, ये गाना ही सब कुछ कह देगा. उम्मीद करती हूँ कि आपकी बेटर हाफ ये प्रोग्राम सुन रही होंगी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं ये खूबसूरत गाना. और हमारे जो कॉलर इंतजार कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इंतजार और प्लीज.
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है.
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज. एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ.
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा.

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: 12:49 और ठीक 56 सेकेंड्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। और आज हमने हमारे स्टूडियोज में बुलाया है खास तौर पर डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान साहब को, जो कि जाने माने डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन एक्सपर्ट हैं। ये आज आपके सवालों के खुद जवाब दे रहे हैं। तो आपका कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं डॉक्टर साहब से हमारे फोन नंबर्स के जरिए। हमारे फोन नंबर्स वही पुराने 223-8852 और 223-8845। आप इनके जरिए जुड़ सकते हैं डॉक्टर साहब से और अपना सवाल पूछ सकते हैं बिल्कुल इनकी तरह। नमस्कार, नमस्कार दोस्त। हेलो जी, कौन बोल रही है? हेलो जी, अपना सवाल पूछे। जी जी, अपना सवाल पूछे।
3: मेरे पेशाब बहुत लगती है बाथरूम में, जब तक जाए जब तक हमारे पेशाब हो जाते हैं।
2: कितनी उम्र है आपकी?
3: 40 साल की है उम्र।
2: और कब से ये समस्या है?
3: ये हमारा ऑपरेशन हुआ था, 2-3 साल हो गए हैं। पित्त का ऑपरेशन हुआ था, पथरी का। जी, हमारा शुगर था लेकिन दवाई के जरिए से दवाई कंट्रोल कर लिया गया था।
2: तो उसके बाद आप शुगर की दवा ले रही हैं कोई?
3: इस टाइम तो हम कोई शुगर की दवा नहीं ले रहे हैं
2: जी।
4: देखिए, आपका सवाल है कि बार बार पेशाब जाना पड़ता है और पेशाब आप रोक नहीं पाते हैं, तो ये भी लक्षण हो सकता है वापस शुगर का ब्लड लेवल में बढ़ना। तो इसमें बहन आपको काम ये करना है कि अपना ब्लड शुगर नपवाना है खाली पेट, जिसे हम फास्टिंग कहते हैं, पोस्ट प्रैंडियल यानी खाना खाने के 1.5 घंटे बाद, और अपना एक HbA1c लेवल आपको चेक कराना है। साथ ही में अपने पेशाब की जांच आपको भेजनी है, जिसको हम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी या यूरिन RM भी कहते हैं। ये जांच देखने के बाद अगर इसमें कुछ गड़बड़ आती है तो उसी हिसाब से नियमावली आपका इलाज किया जाएगा। तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके ये जाँचें करा लें और तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करें, ये ठीक हो जाएगा।
2: डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो जी, हेलो
5: हेलो हेलो हेलो
2: जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना।
5: हेलो
2: जी, नाम बताएं प्लीज।
5: अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम
5: जी। शुगर है मतलब मेरे
4: जी,
5: तो मतलब रहता है 125-130 रहता है, लेकिन खाने पीने से बाद में भी बढ़ जाता है
4: जी। तो आपने अपना आपने HbA1c लेवल अपना कराया है?
5: जी करवाया।
4: कितना है?
5: ये तो मुझे नहीं पता सर, रिपोर्ट में होगा।
4: अच्छा अच्छा, देखिए भाई, आप जो बता रहे हैं ना कि आपका शुगर लेवल वैसे 120-125 रहता है और खाना खाने के बाद बढ़ जाता है, तो हो सकता हो कि अभी शुरुआत हो आपको डायबिटीज की, और इसमें एक HbA1c लेवल अपना करा लीजिए। उसकी रेंज को देखते हुए ये डिसाइड किया जाएगा कि आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, व्यायाम करने से, डाइट पे ध्यान रखने से ये कम हो जाएगा, या आपको एक गोली की ज़रूरत पड़ेगी। मे भी हो सकता हो आपको कम डोज में आपको ज़रूरत पड़े, तो अपना एक HbA1c लेवल लेके अपने नज़दीकी डॉक्टर साहब से संपर्क करें।
2: डॉक्टर साहब, मुनेश कुमार राज का ईमेल आया हुआ है भानपुर हरोवा जिला लखीमपुर खीरी से। ये पूछ रहे हैं कि अगर शुगर है तो क्या ग्लूकोज की ड्रिप चढ़वाना, आयरन सुक्रोज चढ़वाना या फिर मीठी सिरप, विटामिन की गोली लेना ठीक रहेगा?
4: बिल्कुल नहीं। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल आपका बढ़ा हुआ है या आप दवाओं पे कंट्रोल्ड है, तो कोई भी मीठा किसी भी प्रकार में, चाहे वो आप IV से लें, चाहे वो आप ड्रिंक्स में लें, बिल्कुल। आयरन सुक्रोज की जो आपने बात करी, तो देखिए आयरन सुक्रोज एक अलग ये प्रकार है

0: आयरन प्रिपरेशन का जो हम चढ़ाते हैं उन पेशेंट्स को जिनको आयरन की शरीर में कमी है। सुक्रोज
1: जी
0: का मतलब हर जगह, मैंने वही कहा कि डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है, आयरन सुक्रोज, सुक्रोज से कंफ्यूज ना हो, सुक्रोज यहाँ पे मीठा नहीं है, ये आयरन प्रिपरेशन है जो हम अनीमिया के पेशेंट्स में जिनको खून की कमी है उनको चढ़ाते हैं। और जहां तक रही बात शुगर ड्रिप की, तो ये नहीं चढ़ाना है, मीठा पानी नहीं पीना है और किसी भी प्रकार का मीठे का सेवन नहीं करना है।
1: डॉक्टर साहब, एक और सवाल इन्होंने पूछा है कि कौन से ब्लड ग्रुप में शुगर जल्दी हो जाता
0: नहीं,
1: है,
0: ऐसा कोई ब्लड ग्रुप अभी तक ऐसा नहीं
1: तो
0: है।
1: ये
0: ब्लड,
1: मिथ है।
0: ये मिथ है, ये मिथ है। शुगर जो होती है वो आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड, जेनेटिक्स होती है। जेनेटिक्स अगर फैमिली हिस्ट्री है माता पिता को, तो आप में चांसेस हैं कि आपको हो सकती है, आपको ध्यान

0: चढ़ाना है, मीठा पानी नहीं पीना है और किसी भी प्रकार का मीठे का सेवन नहीं करना है।
1: डॉक्टर साहब, एक और सवाल इन्होंने पूछा है कि कौन से ब्लड ग्रुप में शुगर जल्दी हो जाता है?
0: नहीं, ऐसा कोई ब्लड ग्रुप अभी तक ऐसा नहीं है।
1: तो ये मिथ है।
0: ये मिथ है। शुगर जो होती है वो आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड, जेनेटिक्स होती है। जेनेटिक्स अगर फैमिली हिस्ट्री है माता पिता को, तो आप में चांसेस हैं कि आपको हो सकती है। आपको ध्यान रखना, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जो डिपेंड करता है वो आपके लाइफस्टाइल पे, खान पान पे, पूरी नींद पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है।
1: डॉक्टर साहब, एक और कॉलर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
1: 12:55 और 27 सेकंड हो चुके हैं। लगातार आपके कॉल्स आ रहे हैं, लगातार आपके ईमेल्स आ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश हो रही है कि हम आपके कॉल्स, आपके ईमेल्स को शामिल कर सकें। तो डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो।
4: हेलो
1: जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना।
4: नमस्ते मैम, रामू बोल रहे हैं मैम।
1: जी
4: से, बक्सी तालाब से।
1: अपनी समस्या भी बता दें।
4: समस्या मैम ये है कि हमको कभी कभी घबराहट लगने लगती है।
1: उम्र कितनी है आपकी?
4: 40 वर्ष मैम।
1: घबराहट के अलावा और भी कोई समस्या है?
4: और मैम कोई समस्या नहीं है, जैसे कि डॉक्टर साहब से परामर्श लेना है।
1: घबराहट किस वक्त ज्यादा होती है? जब ज्यादा काम कर लेते हैं, ज्यादा सोच लेते हैं?
4: जी नहीं मैम, काम करते हैं जैसे दिन भर मजदूरी, तो शाम को घबराहट में।
1: अच्छा, थकान के बाद।
0: देखिए, घबराहट के आपका जो सवाल है कि आप दिन भर काम करते हैं उसके बाद भी घबराहट, तो मे भी हो सकता हो आपको एंग्जाइटी के सिम्टम्स हो सकते हैं और मे भी हो सकता हो कोई हार्ट रिलेटेड दिक्कत हो, तो ये बता पाना जो है आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह करें, उसको अपने पूरे लक्षण बताएं, अपनी समस्याएं बताएं, इसका निवारण हो जाएगा, इसे घबराने की बात नहीं।
1: डॉक्टर साहब, एक ईमेल हमारे सामने आया हुआ है सुनीता का, लखनऊ से। सुनीता पूछ रही है कि Type 1 diabetes, जिसमें इंसुलिन लेनी ही लेनी पड़ती है, क्या उसमें किसी तरह इंसुलिन से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि वो कम उम्र में होती है और बच्चों को एक्टिव रहना पड़ता है। मेरे बेटे को है और मुझे ये लगता है कि अगर कल को नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में उसे बाहर जाना पड़ा तो वो कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि अभी तो मेरे साथ है, मैं किसी तरह मैनेज कर रही हूँ।
0: जी जी, बहुत बहुत मैं रेडियो के माध्यम से आप पूरे रेडियो स्टेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ जो ईमेल आया है, देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमें ये जानना कि डायबिटीज़ के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों या कम उम्र के लोगों में देखी जाती है। इसमें शरीर की रक्षा प्रणाली गलती से इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को, जिसे हम बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास कहते हैं, वो नष्ट करने लगती है। तो इंसुलिन इसका इलाज है और इंसुलिन लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं सारे श्रोताओं से कहूंगा इंसुलिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन लेने से कोई प्रभाव नहीं आता है और इंसान अपनी पूरी जिंदगी प्रोफेशनली भी पर्सनली भी आराम से व्यतीत कर सकता है, हंसते खेलते व्यतीत कर सकता है।
1: डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी है मेरे सामने, ईमेल आया हुआ है रिंकी का। रिंकी जानना चाहती कि हाइपरटेंशन क्या टेंशन की वजह से हो जाती है?
0: जी नहीं, हाइपरटेंशन की वजह से नहीं हो जाती। ब्लड प्रेशर, बॉडी में जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो लगातार बहुत समय तक अगर आर्टरीज में बढ़ा हुआ रहता है, देन द पेशेंट स्टार्ट्स टू डेवलप हाइपरटेंशन। और इसकी कई वजहें होती हैं, जैसे कि तनाव का होना, प्रोसेस्ड फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना, प्रॉपर स्लीप ना लेना, अत्यधिक मात्रा में एक्सेसिव अल्कोहल लेना, ये सारे कारण हैं जिससे कि हमें डायबिटीज हो सकता है।
1: तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन, इन दोनों के लिए आपने कहा कि अगर एक बार हो गई है तो दवा जरूर लें, दवा अपने आप बंद ना करें। डॉक्टर साहब, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अंत में मैं चाहूंगी कि संक्षेप में आप हमारे श्रोताओं को अगर कुछ कहना चाहें तो।
0: देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी सावधानी और नियमित जांच और सही जीवन शैली, यही डायबिटीज़ और बीपी से बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है।
1: तो बस अपना ध्यान रखिए, और जैसे कि आज की चर्चा से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर आप अपने स्वास्थ्य पर टाइम खर्च करते हैं या फिर पैसे खर्च करते हैं तो ये दरअसल कोई

0: नहीं है बल्कि जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा निवेश है। तो दोस्तों अपने शरीर को समय दीजिए, नियमित जांच कराइए, तनाव से दूरी रखिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान साहब, आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी।
0: आप सबको याद दिला दूं कि ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया आकाशवाणी लखनऊ से। मार्गदर्शन सुश्री सुमोना एस पांडे जी का रहा, जो कि हमारी कार्यक्रम प्रमुख हैं। प्रोड्यूसर हैं श्री कुंवर बहादुर सिंह जी, और सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद विनय जी को। अगले रविवार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो लखनऊ 100.7 MHz।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे FM रेनबो के प्रोग्राम, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 1 बज रहे हैं। बैठे हुए हैं आप, एंजॉय कर रहे हैं संडे को, और अब हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अनुरोध गीत। श्रोताओं, आप सभी का ढेर सारा स्वागत प्यार, और आप सभी का स्वागत करते हैं तहे दिल से हम कार्यक्रम अनुरोध गीत में। आपके ये ढेर सारे पत्र बताते हैं कि आप हमारे इन कार्यक्रमों को कितना पसंद कर रहे हैं और कितना दिल के करीब है ये प्रोग्राम आपके और हमारे, ये गवाही दे रहे हैं आपके ये लेटर्स। आज रविवार की इस गुनगुनी दोपहर में प्रोग्राम अनुरोध गीत लेकर हाजिर हूं मैं, आपका अपना रेडियो दोस्त ब्रजेश। और आप जिन भी कामों में व्यस्त हों, अपने कामों के साथ ट्यून किया हुआ है आपने अपने रेडियो सेट पर 100.4 FM, और आपके रेडियो सेट पर हम पहुंच रहे हैं डायरेक्ट आपके करीब, आपके दिल के सबसे नज़दीक का कार्यक्रम अनुरोध गीत लेकर। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं हम इस प्यारे से लेटर्स के साथ, और जिसे लिखा है बरेली जंक्शन से पप्पू भाई, धवन, जमील भाई, मेराज, मोइन, अफजल, बब्बू भाई, फिरोज परवेज और वासियत भाई, हसीन भाई और आपके सभी साथी। प्रोग्राम की ही इस गीत को सुनना चाहा है हमें सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। गुरु नानक नगर मरोड़ पंजाब से पत्र हमें लिखते हैं राजीव सेतिया, रजनी आरती से और तनिष सेतिया। इस गीत को सुनना चाहा है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा ने। ये पत्र हमें भेजा है सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुल्ढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवने, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार नरवने ने। सनावत मध्य प्रदेश से ये पत्र हमें भेजते हैं दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार। बठिंडा रोड डबवाली से ये अगला पत्र हम तक पहुंचा है राजेंद्र आनंद अंजू और मोहित नारंग का। इस गीत की फरमाइश की है हमें औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजदीप और राशि पाटिल। ग्राम बगबुड़वा पथरिया नर से ये अगला पत्र जो हम तक पहुंचा है, इसे लिखा है नरेंद्र नेताम, कुसुम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम ने। मुकेश कासलेकर, दिनकर और विशाखा कासलेकर सुनना चाहते हैं अगले ही गीत को। कहां से पत्र लिखा आपने हमें? ग्राम जामठी, तहसील वरुड, अमरावती महाराष्ट्र से। ताज हुसैन अंसारी, गुलाम साबिर राही, मिराज जहां का पत्र मिला है हमें आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। दिल्ली के शहर मोरी गेट से ये पत्र लिखा है हमें कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। चंडीगढ़ से इसी गीत की फरमाइश की है सतीश अनेजा, विमला अनेजा और आपके सभी साथियों ने। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म साजन का ये गीत SP बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक के स्वर में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

ट्यून किया आपने 100.4 FM, दोपहर के बज रहे हैं 1:08 और सुन रहे हैं आप अनुरोध की प्रोग्राम के अगले गीत के लिए। यह पत्र हमें लिखा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश, मैंडी सौरभ, चाइना और

भगवान शर्मा। अगले ही गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है अयूब खान, इरम गुड़िया सोएब और नवेद खान ने सिंधौली करूला मुरादाबाद से, और सिंधौली मीरगंज से आप हैं जीशान बारसी। कस्बा बराला जिला अम्बाला से आप हैं रवि कुमार, राहुल, रणजीत, प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत, गुरशब्द, राहुल। लोनी दाबड़ तालाब लोनी से ये पत्र हम तक पहुंचा है रजा अहमद ईशान, आरिस और मरियम जहां का। इस गीत की फरमाइश की है हमें बिलासपुर देवरी खरुद से, और इस पत्र को लिखा है संतोष तलरेजा, आरती अर्चना, सोनू तलरेजा, कुंवर सिंह गुड्डू और रामदास। बिलासपुर देवरी खुर्द से ही आशा सिंह ऊषा, ज्योति सिंह तलरेजा का पत्र फ्लैश हुआ मिला हमें। कृष्णानगर टिबी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से इस गीत को सुनना चाहा है नाना डोंगर तिवेरा माताई, रीमाताई, सीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप हैं हरदेव, मिका बलविंदर, जयतेग और मिका विरक। कनेरा पटियाला से ही पत्र लिखा है हमें मुकेश भत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश भत्ता ने। दादर सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, असमा, सालिया, शोएब, मुजताबा, रऊफ और शाहिद भाई। गांधीबाग का कोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर का पत्र भी आया हमारे पास, और ये पत्र हमें मिला है गंजुंडवारा से, लिखा है इसे शमशुल कमर, शाहीन कमर, परिमल कासगन से आप हैं आबाद खान, गजाला खान और आपके सभी साथी। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म आशिकी का ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम श्रवण का।

आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत। प्रोग्राम के अगले गीत के लिए ये पत्र हमें भेजा है वजीरगंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से प्रेम कमल वासनी, सुशीला प्रभात, अमरी सलोनी, सचिन नीरू, देविका कार्तिक, वेदरिचा और ऐश्वर्य कमल वासनी। ये पत्र आया है हमारे पास, हमारे नियमित श्रोता हैं अशफ का चावनी होली चौक से, और आप हैं रामप्रसाद शर्मा, अजय शर्मा, मनोरमा देवी, रीता देवी की विनोद और वंश साथी हैं कनिष्का। बरेली जंक्शन से हैं गरीब भाई नासिर सादिक, विक्की भारद्वाज, प्रदीप पाल, नमन, हसीन और अनस। इस गीत को सुनना चाहा है कटरा चांद खा पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। गनगोला दातागंज से इस ये पत्र हमें भेजा है आलम खान, नेहा सालिम, आरिफ अलम शेर, वरी अहमद दहूर और मुशीर खां। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा और तद्रेंगी से भागवत वर्मा का पत्र भी मिला हमें। दिनेश वर्मा करुणा वर्मा का पत्र आया है हमारे पास रिंगनी छत्तीसगढ़ से। नवाबगंज से ये पत्र हमें भेजते हैं नसीम अहमद अंसारी, मेराज जहां, मुस्कान बी, रेहान, अलशिफा और मन्नत। ग्यासपुर बीसलपुर से ये पत्र हमें भेजा है आबिद अली, तबस्सुम और नेहनाज ने। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म पापा कहते हैं का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, संगीत है राजेश रोशन का।

आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ये पत्र हमें भेजा है ग्राम राजपुर थाना बहजोई संबल से नवदीप कुमार रिंगी और आदित्य ने। ये सेक्टर 2 आवास विकास कासगंज से पत्र हमें लिखते हैं पवन गौड़, कुसुम सुयेश, आशीष और राधिका गौड़। इस गीत की फरमाइश की है हमें ककराला बदायूं से मसरूर खान, सरफराज याकूब, विकास सक्सेना, करमवीर, प्रवीण, अनिल नगर, काजल, चंचला और रेखा कश्यप। ये पत्र हमें मिला है खमरिया छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं साबित खान, सत्या, सावित्री देवी प्रतीक, सधर्मेंद्र और मानस साहू। ये बड़ा ही खूबसूरत सा पत्र, बहुत नगीनों से जड़ा हुआ पत्र, हमारे बहुत नियमित श्रोता हैं आप। उल्ला जागीर बरेली से फजरुद्दीन अबरार अफजाल और आपके सभी साथी। करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब और नवेद खान का पत्र हम पढ़ रहे हैं। और कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ही ये पत्र हमें भेजा है शंकरपुर पोस्ट उसामा बदायूं तहसील दातागंज से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरज श्री साथ में है गुनगुन यादव। ये पत्र हमें भेजा है मौला हलवाइयां शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार, फरीदी इकबाल, फरीदी सितारा, नसरीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना कौसर ने। और

आप सभी ने, वो है फिल्म वीरधारा का। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर ने। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत है संजीव कोहली का। और सुनना चाहते हैं आप सभी, ये पत्र हम तक पहुंचा है इस गीत को सुनने के लिए। ग्राम अपोस बमरौली, तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत से आप हैं। श्री राम शरण दुबे, अवधेश कमलेश, सर्वेश, सुमन, सुजाता, काजल, अर्चना, सुषमा, अमित, अनिकेत और राधिका दुबे। कस्बा मीरगंज से कलू भाई, नईम, फहीम, नसीम, दानिश और आदर्श दिवाकर। ये पत्र आया हम तक मोला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर, जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी साथी। गजडुंडवारा से इसी गीत को सुनना चाहते हैं मुनव्वर लल्ला, नसरीन, अरबाज, शहबाज, पप्पू, अफसाना, मेजबी और आपके परिवार के सभी साथी।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत। प्रोग्राम के अगले गीत के लिए पत्र हमें भेजा है दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया और इनके सभी साथी। फूलबाग किला छावनी से इस गीत की फरमाइश की है हमें विशन दत्त भारद्वाज, शिव दत्त, गंगा दत्त, गोपाल, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु मिश्रा, भावना, देवकी देवी भारद्वाज, शिप्रा, नीलम भारद्वाज और श्री राम राठौर। भवाली नैनीताल से ये पत्र हमें लिखते हैं इकराम अली, फैजान, एहसान, शहनाज, गुलनाज, अप्पी, बॉबी और अजहर। बताइयूँ वजीरगंज लहरा लाडपुर से इस गीत को सुनना चाहा है होशियार मोहम्मद शेर, खुशमा भी, खुश भी, नूरजहां बेगम, संजुरन, जीशान, आसमीन और चांदनी भी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से ये पत्र लिखा है हमें प्रतीक राय, रोशनी, प्रांजल राय और आपके सभी साथियों ने। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दिल तो पागल है का ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है उत्तम सिंह का, आवाज़ है आशा भोसले की।

नया प्रोग्राम अनुरोध गीत, और प्रोग्राम अनुरोध गीत का अगला गीत जो है वो सुनना चाहा है आप सभी ने। श्रीनगर बहेड़ी से ये पत्र लिखते हैं लईक अहमद इदरीसी, अशरफ, अतीक, शिफाबी और यास्मीन। इस गीत को सुनने के लिए ये पत्र हमें लिखा है फ्रेंड्स कॉलोनी कौरतनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत, मनविंदर, गोलू काकू और जी एस रामगढ़िया। ये पत्र हमें भेजते हैं अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फुलमाली, दीपक कृष्णा और समर फुलमाली। इस गीत को सुनने के लिए ये फरमाइश की है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा, रियाज, रिवाकत, शामरीन, परवीज, रेहान, महिरा नूर और आपके सभी साथी जसपुर उत्तराखंड से, कस्बा आशीषगढ़ से आप हैं गुड्डू इदरीसी, फरहान इदरीसी और आपके सभी साथी। दौलतबाग मुरादाबाद से जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली नदीम और जुनेद अब्बासी। आप सबने सुनना चाहा है सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर के मधुर स्वर में फिल्म वारिस का ये गीत। गीतकार है वर्मा मलिक और संगीत है उत्तम जगदीश का।

रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध की ट्यून क्या है 100.4 FM। और श्रोताओं, प्रोग्राम के अगले और शायद अंतिम गीत के लिए ये ढेर सारे पत्र हम तक पहुंचे हैं। मनकारा मंदिर वीडियो कॉलोनी करगैना से आप हैं पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह, धर्मवीर, आशीष कुमार, अमर, हितेश, रूबी, एकता, दिव्या, ममता, ओमवती, खनक, नकुल, नैन्सी, सारांश और रचना भारती। लक्षणपुर से ये पत्र हमें भेजते हैं रामजी राव साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और आपके सभी साथी। हररपुर मटकली से शारुनूर अंसारी और इनके साथियों का पत्र भी मिला हमें। गंगवार रेडियो श्रोता संघ दलपतपुर पोस्ट चटिया बरेली से इस गीत की फरमाइश की है हमें ओमपाल गंगवार, अनीता, इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम पिपरिया नगरिया सोवरनी से अमन गंगवार, आशा संध्या और छोटी लाल गंगवार। अगला पत्र जो हम पढ़ रहे हैं ये हमें भेजा है खान रेडियो क्लब कस्बा जादोपुर पोस्ट भैरवपुरा से अनीस खान, मुनीश, आरिश, मुनाजिर, परवीन, आसकारा, शाह दरकशा और शाजिया खान। बेरड़ी से हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक और तनु करमकर का पत्र भी मिला हमें। अगला पत्र जो हम पढ़ रहे हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित का पत्र भी मिला हमें। अलीका डबवाली से आप हैं बसंत सिंह, जन, राजकुमार और कुलदीप गांधी। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। भाटपारा से आप हैं दारिका, प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार और दीपक कुमार वर्मा। इस गीत को सुनना चाहा है करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, तुलसी मस्कीन और जगमोहन प्रजापत ने। और महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडवा ग्राम लोहारी से आप हैं राहुल, राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी, महिमा वैद, नीतू और आपके सभी साथी। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म थानेदार का ये गीत जिसे गाया है बप्पी लाहिरी और अनुराधा पौडवाल ने। गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने, संगीत है बापी लाहिरी का।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं आगे के कार्यक्रमों के साथ। फिलहाल कार्यक्रम अनुरोध गीत में मुझे अनुमति दीजिए। कार्यक्रम में स्टूडियोज में दाखिल हो गए अगले कार्यक्रम करने के लिए मोहम्मद परवेज। आगे आप सुनेंगे आगे के कार्यक्रम मोहम्मद परवेज के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत ब्रजेश तिवारी के साथ। 104 FM पर ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है और आइए अब सुनते हैं रस रंग। ये पहला लोकगीत कल्पना एस बर्मन के स्वर में।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओ, 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं रसरंग। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में ये गजल।

0: हैं। देखिए, ये कई सालों से लोगों को मालूम है।
1: ये जानी बाबू और साथियों की आवाज में ये कव्वाली आप तक पहुंच रही है ओनली ऑन 100.4 FM पर।
0: प्लीज उसको बिल्कुल ना बताइएगा कौन है।

जब पहली बार बाहर के दौरे पे प्रोग्राम के लिए गया था, 2 महीने प्रोग्राम करने थे, 1 महीना और बढ़ गया, तो वो लड़की अपने पत्र में, खत में, लेटर में क्या लिखती थी,

श्रोताओं, 102.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रसरंग। आज 2:30 पर आपकी बात आकाशवाणी के साथ हम आज रिकॉर्ड करेंगे 2:30 पर, और हमारा आज का टॉपिक है मदर्स डे पर। यहाँ श्रोताओं, अपनी फोन लाइंस चालू रखना 2:30 पर। हमारा फोन नंबर है 0581 251720।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रसरंग। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.94 FM पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: जय गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

माँ की ममता भरी गोद का कोई अनमोल है और उसका कोई सानी नहीं है। जागृति फिल्म का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले की आवाज में। प्रदीप के बोलों को संगीत में ढाला था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म लाजवंती का ये गाना।

0: ए लो बच्चों आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम, तुम हो हमारे हम है तुम्हारे कैसे न मिलते चांद सितारे।
1: बाप हमें मामा जी करना तुमको पड़ा है नीचे उतरना।
0: अरे

0: मामा जी एक बात बताना, सच सच कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम न आए, आज तुम्हें हम कैसे भाए।
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ, बिल्कुल सच्ची सच्ची, ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पप्पी। ये

0: मामा जी नजदीक तो आओ, ये बुढ़िया है कौन बताओ, टुक टुक हमको ताक रही है, बैठी चरखा काट रही है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, ना ना यूँ ताना मत मारो, ये तो मेरी माँ है प्यारो।
0: मेरी माँ भी मामा प्यारे रहती है अवधेश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो।
1: हाँ हाँ मुन्नी, दूर नहीं अब तुझसे तेरी माता, तुझ पर तो उसकी ममता का साया है लहराता, एक तू ही क्या मुझको भी।

0: अवंती फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने के

सदाबहार नगमे प्रोग्राम की अगली पेशकश टैक्सी स्टैंड फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। और अब एक मीठा सा नगमा चंदन फिल्म से सुनते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ।

लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वही है जाना। लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन

मोहम्मद रफी का गाया। औलाद फिल्म का ये गाना बहार लेकर आया। शब्दों की मोती पिरोए मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन की खुशबू बिखेरी चित्रगुप्त ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना।

दिल से प्यारा ये गीत इशारा कर रहा है मुहर फिल्म का कि आज के कार्यक्रम की यही है अंतिम प्रस्तुति। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आपने सुना ये गाना, राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीत में पिरोया मदन मोहन ने। तो अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। अगला कार्यक्रम मन चाहे गीत बस थोड़ी देर में।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

गीतों के गुलदस्ते सजाए आपका चहेता प्रोग्राम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी को सादर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत करें तो हम बता दें कि बड़ा ही प्यारा सा गीत चुना है हमारे पहली पेशकश के रूप में हमारे इन सभी साथियों ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत अब्बासी और शहनबाज अब्बासी, आप सभी सुनना चाहते हैं आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत ने पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वाकई एक खत में क्या क्या समाया होता है, प्यार, इकरार, इंतजार और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। लव इन टोक्यो फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। इस गाने को सुनना चाहते हैं जयपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और रिफाकत, वरुण जरुड़का से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लव इन टोक्यो फिल्म का ये गाना।

लव इन टोक्यो का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश ने छू लिया है मन को। याराना फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसे सुनना चाहते हैं नोहर टाउन राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल, राजेश रोशन की धुन और ये प्यारा सा नगमा।

मन का मौसम बदल जाता है जब कोई हौले से आकर दिल छू जाता है। अब दिल छूते ही क्या होता है, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत करीब आती है, जो आ रही है इस गीत के साथ। आंखें फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत रचना रवि की है।

मनचाहे गीत प्रोग्राम का आखिरी नगमा बना है जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेचा और पूनम गगनेचा की पसंद का फिल्म आशा का ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना।

0: आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक P.S. कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ।
1: कहिए माँ जी।
0: ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको यह रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
1: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी।
0: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
1: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
0: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा ये लड़की नीला।
1: जी, आप कहते कहते रुक क्यों गई, कहिए ना।
0: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ। अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं, तो तुम उन दोनों की शादी करा देना। करा दोगे ना?
1: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
0: मेरी बात याद रखोगे ना?
1: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा।
2: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
3: हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है। अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
2: नहीं, लखपति? अरे क्या कह रहा है?
3: ये जरा गंभीर मामला है। देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
2: लगता है मारी तू दारू पीकर आया है। अबे सच कह दे, नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते के पड़ेगा तू। अरे 10 लाख रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिये का क्या संबंध है?
3: है, बहुत गहरा संबंध है। वही 10 लाख रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
2: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
3: तुमने कहा था ना, मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूँ। उसी के मुताबिक मैं वहाँ गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था। मैं छिपकर खिड़की के पास खड़ा हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
2: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने यह भी बताया था कि उसने धन कहां गाड़ रखा है?
3: वही तो मैं सुन नहीं पाया। उस वक्त पास से दनदनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
2: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन? और
3: नहीं भैया नहीं, खून करके जेल जाने से क्या फायदा। अब कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
2: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है। और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है।

0: आओ कंदस्वामी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
1: क्यों, क्या बात है पोस्टमास्टर साहब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है।
0: क्या किया जाए कंदस्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य।

0: पानी के बुलबुल ऐसा, एक न एक दिन सब यहां से जाएंगे ही, लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
1: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
0: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह गया था।
1: तार? कैसा तार?
0: लो, तुम खुद ही पढ़ लो ये तार। इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
1: है? ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भिड़ंत में दुश्मन की गोली से मर गया। भगवान, शिव कामी अम्माल का लड़का मर गया।
0: क्यों प्रेम स्वामी, इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है ना तुम्हें भी? उठो, जाकर ये तार शिवकानी अम्माल को दे आओ।
1: मैं दे आऊं? मैं खुद अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्टमास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? उनके इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर?
0: जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ही ऐसी है। उठो, जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को दे आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
1: चाहता हूं बाबूजी, चाहता हूं। ये कैसी मजबूरी है? शिव कामी अम्माल मुझ पर मां के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी, आज मैं अभागा उन्हीं के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, उन्हीं को दारुण दुख से तड़पाने के

0: माँ जी
1: आओ कंद स्वामी, आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना। आज सवेरे सवेरे ही आ गए, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या?
0: ड्यूटी? ड्यूटी आपका तार है माँ जी।
1: क्या कहा, तार? मेरा तार आया है?
0: जी हाँ, सीमा रक्षा के मोर्चे से है।
1: अरे तो क्या मेरे कुमार स्वामी का तार है?
0: जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए।
1: अभी करती हूँ। तार का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है?
0: नहीं तो
1: ये क्या, तार मेरे हाथ में दे दिया? मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये तार तो अंग्रेजी में है। बेटा तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया, कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ, यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला तार देने की क्या जरूरत थी, पागल कहीं का।
0: माँ जी बात यह है कि।
1: अरे बताओ ना, तार में क्या लिखा है, तार को इस तरह घूर क्यों रहे हो?
0: माँ जी तार में कुमार स्वामी ने लिखा है, लिखा है कि वो आज गांव पहुंचेगा, उसे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है।
1: अरे तो क्या मेरा बेटा आज आ रहा है? मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे बेटा तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों?
0: कुछ नहीं माँ जी, यही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
1: तो चले क्या? अच्छा कल अपना काम खत्म करके यहाँ जरूर आना, कुमार स्वामी से तुम्हारी जान पहचान करा दूंगी, खाना भी यही खाना। अच्छा
0: अच्छा तो...

0: ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदलकर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है?
1: और क्या कहता, शिवकामी अम्माल की हालत देखकर मुझे ये झूठ बोलना पड़ा।
0: तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
1: हाँ हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।
0: झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सच साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है। सोच लो, ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा?
1: नतीजा? एक बुढ़िया बीमार माँ के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी, मूछे और गाल पर मस्सा और फौजी लहजा, मुझे देर नहीं करनी चाहिए।

0: माँ
1: कौन है? अरे आप नानी, नानी देखो कौन आए हैं मोर्चे से।
2: हेलो नीला, हाउ डू यू डू? दो साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है। क्या हुआ माँ को? माँ
1: कौन? कुमार स्वामी आओ मेरे बेटे, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
2: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ? अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता।
1: बेकार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती, मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो?
2: मुझे पहचान लिया है क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।
1: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
2: माँ तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
1: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
2: कंद स्वामी कौन?
1: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
2: क्या कह रही हो माँ? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
1: बेटा तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला तुम जरा बाहर जाकर देखाओ कि कंद स्वामी आ रहा है या नहीं।
3: नानी माँ आज कोई नया डाकिया आया है, उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा सो वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं, कल रात वापस आएंगे।
1: कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर लें, एक ही दिन तो यहाँ ठहरेगा बेचारा।

0: भैया श्रृंगारम, भैया श्रृंगारम, गजब हो गया।
1: क्या हुआ हमारी?
0: वो डाकिया कंद स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया।
1: छल? कैसा छल?
0: कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया।
1: फिर?
0: फिर उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछे और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर।
1: उसकी ये हिम्मत!
0: अरे भैया आगे तो सुनो। तुम्हारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
1: सच कह रहा है तू?
0: हाँ भैया, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब सच साबित कर दिया है।
1: अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये खेल आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन ये डाकिया फिर भेष बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा।

0: ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी, जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकी का खेल आगे न बढ़े।
1: आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ। कंधु स्वामी जब फिर फौजी वर्दी पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना।
0: वाह, बहुत बढ़िया उपाय है ये, लेकिन सुनो, होशियार रहना।

0: कुली कुली।
1: ओह डैम इट, इस गांव के स्टेशन पर कोई कुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा।
2: अच्छा तो ये साला डाके आज फिर भेष बदल कर आया है, अभी खबर देता हूँ श्रृंगारम को।

0: Mom? Mother? Mummy? Where are you? Oh, silly old lady.
1: आइए आइए बाबू साहब, आज फिर
0: कौन? नीला? क्योरी छोकरी कैसी है, माँ कहाँ है?
1: वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ आज फिर क्या सॉन्ग भरा है? उस दिन जैसे नानी माँ धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ।
0: व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कह रही हो?
1: बस बस बंद कीजिए ये नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मूछें और मसा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मैं खुद उखाड़े देती हूँ।
0: ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ मेरी मूछें, दर्द हो रहा है। अरे ये बनावट नहीं, असली मूछें हैं, हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ?
1: कहाँ ना, वो डॉक्टर के यहाँ।
2: अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है, डाकिया कहीं का। कौन है तेरी माँ?
0: कौन? ओह सिंगाराम। हेलो, हाउ डू यू डू यू सिली कंट्री ब्रूट, आई मीन अंकल।
2: वाह, अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है। क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता, चोर उचक्का कहीं का।
0: अंकल ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं चोर उचक्का हूँ?
2: हाँ हाँ, डाक खाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूछे और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस ना समझ नीला को धोखा दे सकता है। लेकिन तू इस शिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है, तूने उस तार का असली मजबूत अम्माल को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चलाया। इस तरह आसानी से तूने शिवकामी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया। अब बोल कहाँ है वो धन, कहाँ गाड़ रखा है तूने उसे, पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल, वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है?
0: जमीन में गड़ा धन?
2: हाँ।
0: अंकल सिंगाराम ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो?
2: चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे, नहीं तो
0: तू क्या करेगा बदमाश, चला जा यहाँ से, मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं।
2: अबे अंदर कहाँ जाता है, पहले बता।
0: नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, हट जा मेरे सामने से।
2: अच्छा कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है तुझे, कुछ नहीं मालूम तो ले।
0: सिंगाराम तूने ये
2: चाकू के एक ही वार से ये दम तोड़ने लगा है, इधर नीला भी बेहोश हो गई है। क्या ये कहीं सचमुची कुमार स्वामी तो नहीं? शिवकामी के आने से पहले मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ भाग जाना चाहिए।

0: श्रृंगारम श्रृंगारम, मेरे भाई गलती हो गई, वो डाकिया कंद स्वामी नहीं कुमार स्वामी ही था।
1: है?
0: तुमने कुमार स्वामी का
1: कमीने, तूने मुझे गलत खबर देकर। कंद स्वामी कहाँ है?
0: डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से ये लथपथ कपड़े बदल डालो।
1: अच्छा मारी, तू भाग कर किसी को कंद स्वामी के पास भेज, उसे कहला दे कि शिवकामी बहुत बीमार है, उसे फौरन बुलाया है। मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूँ।
2: माँ जी, माँ जी,
0: ये क्या, ये कौन खून से लथपथ पड़ा है? अरे ये चाकू, तो इसे धीरे धीरे निकाल लो। हाँ, अरे ये नीला, नीला क्यों बेहोश पड़ी है? ये सब क्या हुआ, किसने ये खून किया?
3: हाँ कंद स्वामी, तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा है? कौन यहाँ गिर पड़ा है?

0: क्या कहा माँ जी, ये कुमार स्वामी है? मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं, मैं भाग आया। और
1: अरे पापी, मेरा सत्यानाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करो। अरे इससे तो ये अच्छा था कि तुम मुझे ही मार डालते।
0: माँ जी, मैं आपको क्या जवाब दूँ, मुझे कुछ भी तो नहीं सूझ रहा।
2: सब सूझ जाएगा कंदस्वामी, हम आ गए हैं।
0: कौन? इंस्पेक्टर साहब।
2: हाँ, हम ठीक मौके पर पहुंचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हथकड़ी लगा दो। क्या आपने इसे खून करते हुए देखा था? देखा था तो रोका क्यों नहीं?
3: बात ही है इंस्पेक्टर साहब, नीला होश में आ गई।
2: ए, कहां जा रहे हैं आप? रुकिए।
1: इंस्पेक्टर साहब, इसे श्रृंगारम ने मेरे मामा कुमार स्वामी की हत्या की थी, इसे नहीं चाकू भोंका, तभी कंद स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोकिए, वो भाग रहा है।
2: सिपाहियों, ये बदमाश श्रृंगारम भागने न पाए, पकड़ो। बेटी, तुमने क्या श्रृंगारम को खून करते हुए देखा था?
1: जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कंद स्वामी समझकर चाकू भोंक दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना, मामा की हत्या होते देखकर मैं दहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। कंद स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये निरपराध है। हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं।
2: अच्छा, श्रृंगारम एक बेकसूर को फंसाकर खुद बचना चाहता है। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। कंद स्वामी को छोड़ दो।
1: अरे, अरे, मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये अभी जिंदा है। बेटा, बेटा।
2: आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कह रहे हैं।
0: इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था। ये श्रृंगारम मुझे कंद स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे चाकू मारकर घायल किया। माँ,
1: मैं तुम्हारे

0: मेरे बच्चे।
1: माँ तुम रोती क्यों हो? माँ मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका, मैंने हमेशा तुम्हें परेशान ही किया, अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सब भूल माफ कर दो। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ माँ, माँ मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए,

माफ कर दो माँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ माँ, माँ मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें देख लिया मैं कितना भाग्यशाली हूँ, तुम्हारी गोद में तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ।

0: आइए पोस्टमास्टर साहब, अच्छा किया जो आप इस कंद स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं।
1: नीला, देखो तो कौन आया है।
0: क्यों कंद स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे? ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊं, उस दुष्ट शिंगारम ने ऐसी चाल चली कि
2: जो होना था सो हो गया। शिंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है।
3: पोस्टमास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना शिंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता, मैं तो बाल बाल बचा।
0: देखो गंदे स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
3: क्या कह रही हैं आप?
0: मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये ना समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
3: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
0: मैं क्यों माफ करूं? तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
3: आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ।
0: हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह हैं ना?
2: भाई मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
0: मैं कंद स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंद स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंद स्वामी, मंजूर है ना?
3: जी मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर।
4: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बैनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारीक, चंबलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा।

तो जब हम छोटे थे तब हम एक FM आती थी 60 रुपए की, 80 रुपए की, ऐसी छोटी सी मिलती थी, तो उससे हम सुनते थे। कई लड़के जो साथ के दोस्त थे साथ में सुनते थे। तो उस समय मनोरंजन का कोई और दूसरा साधन ही नहीं था, केवल यही एक आकाशवाणी था, तो इसी को सब सुनते थे। पूरे गांव में लोग गर्मियों में छतों पे रेडियो लेके बैठ जाते थे, तो किसी किसी के कभी कभी सेल डाउन होते थे, तो वो दूसरे वाले बराबर वाले को आवाज़ लगाते थे कि अपने रेडियो की जरा सी आवाज़ बढ़ा दो तो हम भी सुन लें। तो उनका रेडियो का सेल डाउन हो गया, पहले सेल वाले चलते थे। तो वहीं कुछ लोग ऐसे कंजूस होते थे जो खेत पे जा रहे हैं तो कंधे पे रेडियो रख लिया, तो इतनी धीमे आवाज़ कर ली सिर्फ उनके ही कान में सुनाई दे रही है, या आप उनकी चारपाई पे बैठे हैं तो इतना स्लो रेडियो चलता होगा सिर्फ उसी बंदे को सुनाई दे रहा होगा क्या बज रहा है, क्योंकि उसे 1 महीने की जगह 2 या 3 महीने सेल चलाने होते थे। तो आप बराबर में बैठे तो आपको सुनाई नहीं देगा ये क्या सुन रहा है रेडियो पर, इतनी धीमे आवाजी में कोई कोई चलाता था, और कोई कोई तेज आवाज में चलाता था दूसरे को सुनाने के लिए। तो ये अलग अलग तरह के ऐसे होते थे गाँव में। पहले हर घर में रेडियो होता था, लेकिन जब से मोबाइल फोन आया तब से कहीं ना कहीं रेडियो कम हो गया है। मोबाइल के शोर में रेडियो का शोर थोड़ा हल्का हो गया है, लेकिन ऐसा मत समझिए कि दोबारा नहीं, इसकी अभी भी चल रहा है अच्छा खासा, लेकिन इसका एक दौर और आएगा। जब आएगा, अभी आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, और ईरान इजराइल में युद्ध चल रहा है, बहुत से देशों में युद्ध छोटे स्तर पे बड़े स्तर पे हर जगह युद्ध चल रहा है। और जब भी आपको पता होना चाहिए बड़े स्तर पर युद्ध होगा तो ना ही मोबाइल फोन चलेगा ना ही कोई और सिस्टम, सारे सिस्टम ठप हो जाएंगे, तब केवल एकमात्र रेडियो ही आपका सहारा होगा, जिससे आप किसी भी तरह की सूचना प्राप्त कर पाएंगे या आप किसी भी तरह की मनोरंजन भी ले पाएंगे। वो केवल एकमात्र आपका सहारा रेडियो ही होगा, जो आपको समय समय पर सूचना देगा कि अभी आपको कहाँ जाना है, कहाँ पर आपको खाना मिलना है। अगर भयंकर स्थिति होती है युद्ध के दौरान, तो आपका एकमात्र सहारा ऑल इंडिया रेडियो ही होगा। तो आप समझ सकते हैं रेडियो क्या चीज़ है, और रेडियो का एक दौर और भी जल्दी ही आने वाला है। और अगर मेरे सबसे फेवरेट प्रोग्राम की बात की जाए, तो मुझे बचपन से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा एक ही प्रोग्राम था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता था, वो था हेलो फरमाइश। क्योंकि उसमें मैं ये सोचता था कि पता नहीं कहाँ से कॉल लगेगी, और वो बंदा जो बोलता था कि हम वो काम करते हैं, ऐसे ऐसे काम था, कोई बीड़ी बनाने का काम कर रहा है, कोई कहीं कुछ, तो अलग अलग तरीके के अलग अलग राज्य के लोगों को सुनने को मौका मिलता था, और पता लगता था ये बंदा क्या करता है, और फिर वो अपना फरमाइशी गीत सुनता था। तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हेलो फरमाइश ही था मेरा जो। और उसके अलावा बहुत से कार्यक्रम हैं, किसानवाणी है, युवाणी है, जो जानकारियों से भरपूर होते हैं, लेकिन मेरी पसंद तो हेलो फरमाइश ही था।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं सऊदी शिमला 4 FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है सऊदी शिमला 4 FM पर।
1: नमस्कार, मैं निर्भय वीरू यादव फरीदपुर बरेली से, और हम ऑल इंडिया रेडियो को 90 साल पूरे होते हुए देख रहे हैं। तो हमारा जो जब बचपन गुजरा था, तो तब से लेकर आज तक ऑल इंडिया रेडियो ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं।

0: आरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30 एनसीआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30 एनसीआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 107.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, क्योंकि अब न कोई दीवार न कोई दर बाकी है, क्योंकि अब न कोई दीवार न कोई दर बाकी है, फिर भी ये महसूस होता है कि घर बाकी है। हार जाऊं मैं कोई जंग ये मुमकिन ही नहीं, जब तलक माँ की दुआओं का असर बाकी है। श्रोताओं, प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आप सभी का स्वागत है और साथ ही मदर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, माँ वो अनमोल तोहफा है जिसकी हम लफ्जों में बयां नहीं कर सकते। वो खूबसूरत एहसास है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, दुआओं के साथ, मोहब्बत के साथ। आइए देखते हैं कि हमारे आज के पहले कॉलर कौन हैं।
2: देखते हैं कि हमारे ये पहले कॉलर कौन हैं। हेलो।
3: हाँ, हेलो।
2: नमस्कार साहब।
3: वंदे मातरम। नमस्कार सर।
2: वंदे मातरम। कैसे हैं?
3: बढ़िया सर।
2: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
3: मैं सर बनिया पारा धमतरी।

0: छत्तीसगढ़ राज्य से बोल रहा हूँ, रामचंद्र मखीजा कासर भाई।
1: क्या बात है रामचंद्र मखीजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। आज का हमारा टॉपिक है मदर्स डे पर, तो क्या कहना चाहेंगे माँ के विषय में?
0: हाँ सर, माँ के विषय में जितना भी कहा जाए कम है। माँ ऐसी शक्ति है जो अपने बच्चे को दुख कष्ट देखना सहन करना पसंद नहीं करती, बच्चा खुश रहे यही तीनत लगा के रखती है। और बच्चा जब पैदा होता है तो माँ का जन्म फिर से नया होता है, बच्चे का तो जन्म होता ही है, वो ऐसे कष्टों से होकर गुजरती है। इसकी माँ की हमें कदर करना चाहिए। हम बड़े हो जाते हैं माँ को भूल जाते हैं और अन्य दुनिया की जिंदगी में अपन हो जाते हैं। माँ को पूजना जरूरी है क्योंकि माँ के चरणों में ही जन्नत है। सबसे बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ सर, जब हमारे बनियापारा में टाकी रहती है, अभी भी है, 3 से 6 फिल्म देखने जाता था, बताया जाता था, फिर भी माँ क्या है 6 बजे साइकिल का जमाना था, साइकिल वाले आते थे, मैं पैदल जाता था तो बाहर अपना दरवाजे पर अखियां निहार के बैठी रहती थी बच्चे करके। मैं आ ही रहा था, फिल्म छूट गई है तो मैं पैदल था, तो साइकिलों की आवाज से बाहर आ जाती थी दूसरों की साइकिलों।
1: क्या बात है, क्या बात है, वाकई में
0: तो है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही माँ की।
0: और गर्मियों में पंखे, उस समय लाइट कटौती होती थी तो पंखे, हाथ वाले पंखे नहीं होते जो
1: जी
0: अपना बांस के बने हुए, वो बेचारी हिलाती थी, मच्छर न हो सोए बच्चा करके हाथ फेरती थी,
1: बिल्कुल
0: याद आते हैं। तो माँ को कहने मतलब हमें नहीं भूलना चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात रामचंद्र मखीजा जी आपने कही, माँ की अजमत को तो हम लफ्जों में बयां ही नहीं कर सकते। और किसी शायर ने खूब कहा भी है कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है।
0: और अपना आपने देखा भी है कि हमारे ग्रंथों में और शंकर भगवान जी, विष्णु भगवान जी मास की गोद में बच्चे बने हुए हैं, उनका ममत सतत तो देखिएगा
1: जी,
0: तो ये मास महिमा का वर्णन करना तो कठिन ही है।
1: जी बहुत धन्यवाद आपका,
0: आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे सभी को, और बच्चे माँ बाप सभी को पूजे, यही हमारी शुभकामनाएं है। आप गीत सुनाएंगे सर, दादी माँ फिल्म का है
1: जी।
0: जिसको न देखा हमने कभी उस भगवान की सूरत क्या होगी, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी।
1: जी धन्यवाद आपका, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: श्रोताओं, माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया होती है। उनके त्याग, प्रेम और संस्कारों का कोई मोल नहीं। माँ वो ताकत है, वो शक्ति है जो हर मुश्किल में हमारा सहारा बनती है और हर सफलता में सबसे पहले मुस्कुराती है। इस मातृ दिवस पर सभी माताओं को प्रणाम जिन्होंने अपने स्नेह और आशीर्वाद से जीवन को सुंदर बनाया। और श्रोताओं, देखते हैं कि हमारे आज के दूसरे कॉलर कौन है।
1: ये कॉलर कौन है? हेलो।
2: हेलो भैया, नमस्ते।
1: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
2: मैं शरद बोल रहा हूँ, शरद सक्सेना, बांके की छावनी इज्जतनगर बरेली से।
1: बहुत स्वागत है आपका। और आज का हमारा विषय है मदर्स डे पर, तो क्या उद्गार हैं आपके माँ के विषय में? माँ के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जी, माँ के विषय में ये कहना चाहूँगा कि माँ जो होती है बच्चे की सबसे पहली टीचर तो माँ ही होती है। जो भी बच्चा सीखता है सबसे पहले अपनी माँ से ही सीखता है।
1: बिल्कुल।
2: और हमें माँ का बहुत ज्यादा सम्मान करना चाहिए, पिता का भी, लेकिन माँ का करना चाहिए बहुत ज्यादा। और बच्चे के जीवन में माँ का एक बहुत ही अहम रोल होता है, मैं समझता हूँ। तो ये कहना चाहूंगा मैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही और हम आपकी बातों से पूरी तरीके से मुतासिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद सक्सेना जी। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
2: सुनूंगा कुरान शरीफ के ऊपर है, अल्लाह तू दिखा दे तरीका कुरान का।
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: देखते हैं कि हमारे ये कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर कौन है। हेलो,
1: हेलो, मैं शुमे खान बोल रही हूँ बरेली से।
0: शुमे खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। आज मदर्स डे है, तो क्या कहना चाहेंगी मदर्स डे के उपलक्ष्य में?
1: मदर्स डे पे बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जिनकी मदर है तो अपनी माँ को बस खुश रखें और उनके जो जो वो काम करती है उन्हें कुछ भी काम ना करने दें, उनका सारा काम बस अपने आप करें और उन्हें सरप्राइज दें, गिफ्ट दें और उन्हें हर तरीके से खुश रखें। तब तक हमारी मदर इस दुनिया में है, तब तक हम बहुत लकी हैं कि हमारी मदर इस दुनिया में है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात शुमे खान आपने कही। इस प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनेंगी आज आप?
1: मैं सुनना चाहूंगी लाडला मूवी का माँ मेरी माँ तेरा लाडला।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो। हम
0: जी, प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं आप?
1: सुनील कुमार बोल रहे हैं, चंद्रता से, जो 35 साल बरेली।
0: बहुत स्वागत है आपका सुनील जी। आप बराबर कॉल करते रहते हैं और आपकी कॉल्स हमारे प्रोग्राम में भी लगती है ना।
1: जी,
0: कोशिश कीजिए कि आप अपने खत भी हमें भेजिए, मेल्स भी भेजिए, और इसके अलावा हमारा
1: जी।
0: जो सोशल मीडिया पर प्रोग्राम आते हैं उसमें भी आप अपने कमेंट कीजिए। आपका ज्यादा लगाव मेरे ख्याल से फोन कॉल्स पर ज्यादा है।
1: मिल जाता है तो बातचीत हो जाती है।
0: आज हम मदर्स डे पर बात कर रहे हैं, तो माँ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: माँ के

0: ये कुदरत का दिया हुआ एक तोहफा है कि माँ है तो सब कुछ है आपके पास। अब आप ये सोचो जो आप चाहे वो खिलाएंगे, जो आप चाहेंगे वो पहनवाएंगे, जो आप खाएंगे वो खिलाड़ी कोई दुख होगा और उसको दूर करने की 100% कोशिश।
1: क्या बात है,
0: ये कुदरत का दिया हुआ एक नाकाब उपाय ऐसा कि हम तो ये कहें जिनकी माँ है जब तक जीवन है तब तक वो उपस्थित रहे हमारे साथ।
1: बिल्कुल, माँ की कदर करना, माँ की इज्जत करना, ये बहुत बड़ी नेमत है और इसको हमें नकारना नहीं चाहिए।
0: सर कोई भी तीर्थ कर लो, चाहे धामो आओ, मक्का मदीना हो, कहीं तो आओ, अगर माँ की इज्जत नहीं की तो हम लोग ऐसा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही सुनील कुमार जी। और फिर मुनव्वर राणा जी का ये शेर भी है कि माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि फिर से मैं फरिश्ता हो जाऊं। बहुत धन्यवाद आपका सुनील कुमार जी। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
0: माँ के ऊपर कोई सा भी गीत सुना देना।
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: देखते हैं कि इस वक्त हमारे कॉलर कौन लाइन पर हैं। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं आप?
1: सर, मैं एकता क्लब सिंधौली, तहसील मीरगंज, जिला बरेली से इमरान शेख बात कर रहा हूँ।
0: बहुत स्वागत है आपका। और आज का हमारा जो विषय है वो है मदर्स डे पर, क्या कहना चाहेंगे माँ के विषय में?
1: बिल्कुल, मैं जरूर कहना चाहूँगा माँ के विषय पर। माता को जो प्यार करें वो लोग निराले होते हैं, जिसे माँ का आशीर्वाद मिले वो किस्मत वाले होते हैं। लाख करो तुम पूजा और तीरथ करो हजार, अगर जो माँ को ठुकरा दे तो जीवन हो जाता है बेकार।
0: क्या बात है
1: सर, मैं यही पंक्ति शेयर करना चाहूंगा मैं।
0: बहुत शुक्रिया आपका। कौन सा गीत सुनेंगे इमरान शेख जी?
1: सर, मैं जय विक्रांता मूवी का गाना सुनना चाहूंगा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो,
1: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
0: हो रही है? और आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद, जिला बरेली, सुबह 9 से 3।
0: बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। कैसे हैं
1: बहुत बढ़िया है सर, आप बताएं आप कैसे हैं। परवेज भाई बोल रहे हैं।
0: जी? मैं परवेज बोल रहा हूँ।
1: बहुत समय के बाद आज आपसे बात हो रही है, स्काइप करने तो अच्छा लग रहा है। और जैसा कि आज आपका जो है मदर्स डे के साथ करने का,
0: जी
1: तो मदर्स डे पर तो जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि माँ दुनिया में ऐसी अनमोल नेमत होती है और जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए और जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होती है। उनकी अहमियत उन लोगों से पूछी जाए जिनकी माएँ नहीं होती, उनकी नजर में कितनी अहमियत होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी माँ तो होती है लेकिन वो उनकी अहमियत और उनकी देखभाल सही से नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगा कि जो चीज आपके पास है उसको सहज के रखना चाहिए, क्योंकि ये माँ ऐसी है जो जाने के बाद दोबारा कभी नहीं मिलती।
0: क्या बात है लाल मोहम्मद अंसारी जी, बहुत अच्छी बात आपने माँ के विषय में की। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बातें की बिन चिट्ठी बिन तार।
1: जी, क्योंकि सर जब भी बच्चा बाहर से काम पैसे या कहीं परदेश से आता है तो घर के और सारे

0: ये कहते हैं कि मेरे लिए क्या लेके आए, मेरे लिए क्या अच्छा लेके। माँ ही ऐसी होती है कि बेटा तुमने खाना समय पे खाया, अपना सेहत का ख्याल रखा, ये चिंता सिर्फ माँ ही को होती है और किसी को नहीं होती।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल मोहम्मद अंसारी जी, और सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: जी कौन बोल रही हैं आप?
1: देवी बोल रहे हैं कानपुर से।
0: देवी जी प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है और आज मदर्स डे है तो हम ये चाहेंगे कि मदर्स डे पर आप क्या कहना चाहेंगी हमारे श्रोताओं से?
1: चाहेंगे दुनिया की माँ बनी रहे, अल्लाह पाक सबको परवरदिगार बंदिश रहे, सब माओं की बच्चों से सबका साया रहे और माँ की लेकिन आज नहीं है दुनिया में एहसास होता हमें अपनी माँ का।
0: जी बिल्कुल, अनमोल तोहफा है कि अगर हमारे पास है तो उससे खूबसूरत कोई चीज नहीं है और अगर माँ नहीं होती है तो हमें बड़ा अजीब गरीब महसूस होता है ना।
1: माँ बहुत अच्छी चीज होती है, माँ सब कुछ होती है।
0: जी बहुत शुक्रिया बेबी जी। कौन सा गीत सुनेंगी आज आप इस मदर्स डे के उपलक्ष्य में?
1: कितनी अच्छी है, कितनी
0: है, कितनी है, प्यारी है।

श्रोताओं 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और आज का हमारा विषय है मदर्स डे पर। ढेर सारे कमेंट्स हमारे आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर आए हैं। आप हैं हमारे श्रोता विष्णु मिस्कीन, रितिका मिस्कीन, वाणी आरब, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्कीन, आरोही, प्रियांशी, सोनी, दयानंद कॉलेज भवानीपेट, सोलापुर, महाराष्ट्र से। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने लिख करके भेजा है। मदर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं, माँ के उस अनगिनत प्यार, त्याग और दुआओं को महसूस करने का दिन है जिसे वो बिना कुछ कहे हर रोज हमारे लिए जीती है। माँ वो होती है जो खुद थक जाती है लेकिन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए फिर भी खड़ी रहती है। जिस घर में माँ की दुआएं होती हैं वहाँ मुश्किलें भी धीरे धीरे रास्ता बदल देती हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बड़े घर तो बना लेते हैं लेकिन माँ के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय खो देते हैं। याद रखिए, जिस दिन माँ की आवाज़ सुनाई नहीं देती उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी अधूरी लगती है। मदर्स डे पर महंगे तोहफों से ज़्यादा ज़रूरी है माँ के पास बैठना, उनका हालचाल पूछना, उनके हाथ पकड़कर ये कहना कि आप हैं तभी मेरी दुनिया खूबसूरत है। माँ का प्यार किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि माँ खुद एक ऐसी दुआ है जिसे भगवान हर किसी को नसीब नहीं करते। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने लिख करके भेजा विष्णु मस्किन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कमेंट हमारे पास आया है, हमारे श्रोता हैं आप हैं आदर्श दिवाकर, लिखते हैं कि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है जो बिना कहे दर्द समझ ले वो सिर्फ माँ का प्यार है। खुद भूखी रहकर बच्चों का पेट भरती है, हर मुश्किल में हौसला बनकर साथ खड़ी रहती है। माँ की दुआओं से ही घर में बरकत रहती है वरना दुनिया की भीड़ में कौन किसका होता है। कस्बा मीरगंज बिजली घर से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, ओमेंद्रपुरी भाई कल्लू मिस्त्री, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरत मैसेज आपने लिख करके भेजा इस मदर्स डे के उपलक्ष में। और आप हैं हमारे श्रोता नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, यकीनन माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी, माथे पर नूर, आंखों में ठंडक, लफ्जों में मोहब्बत, आंखों में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शिफा और पैरों तले जन्नत है। रब हम सब की माओं को ताउम्र सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने लिख करके भेजा। आप हैं राम कुमार रेवाड़ सादुल शहर से, आप लिखते हैं कि मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ के बारे में क्या लिखें, माँ तो परमात्मा का रूप है, माँ धरती है, माँ आकाश है, माँ स्वर्ग है, माँ प्रकृति है, माँ परमात्मा है, माँ से बड़ा कोई नहीं, जिस घर में माँ है वो घर स्वर्ग है। वाकई में बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ आपने लिखकर भेजी, आपका बहुत धन्यवाद। आप हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, ग्राम चरौदा बार नवापारा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से ये कमेंट हमें भेजा है कि माँ का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, उनके त्याग, ममता और धैर्य से हमारा संसार संवरता है। मातृ दिवस पर

सिर्फ धन्यवाद नहीं, हर दिन उनके सम्मान में जीना सीखें। माँ हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि माँ के बिना घर घर नहीं होता। और ये कमेंट हमारे पास आया है हमारे श्रोता, बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने अपने नाम लिख करके भेजे हैं। हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, इसमें आपके विचारों का साझा करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, तो कोशिश करें कि इसमें अपने शब्दों को भी लिख करके ज़रूर भेजें। आप हैं हमारे श्रोता राजू कुमार, मदर्स डे पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाशवाणी परिवार की ओर से भी आपको बहुत शुभकामनाएं। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें ममता और छाया, समर्पण त्याग का परिभाषा है, जो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत शब्द कहा गया है। बच्चे भले ही माँ को भूल जाएं या उनसे दूर हो जाएं, लेकिन माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती, न दूर होती है। एक उदाहरण के तौर पर आपने देखा है कि जब जबलपुर में जो दुर्घटना हुई, माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। ज़्यादा क्या कहें, सबको मालूम है, माँ को सम्मान दीजिए, सबसे प्यारी यही दुआ है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत संदेश आपका, बहुत बहुत शुक्रिया राजू कुमार जी। आप हैं सुरेश चौरसिया फरुखाबाद से, माँ है मोहब्बत का नाम, माँ के चरणों में स्वर्ग और धाम। क्या बात है, बहुत प्यारा शब्द आपने लिख करके भेजे, बहुत शुक्रिया आपका। आप हैं हमारे श्रोता ईश्वर मेहर, गांव बटूनी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से, और साथ में सुमित्रा मेहर। मदर्स डे पर पूरे आकाशवाणी परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आप कहते हैं कि माँ हमें चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है, माँ हमने चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और ये कमेंट हमारे पास आया है, एयरपोर्ट रोड बंदना नगर इंदौर से, नारायण भाऊ खड़से, ललिता आशा रानी खड़से और इनके सभी परिवारीजन, आपने भी मातृत्व दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जितने भी श्रोताओं ने कमेंट भेजे और कुछ शब्दों को लिखकर भेजा, उसको हमने अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया। चलते चलते बस आपसे यही कहेंगे कि घड़ी भर भी मुझे तन्हा कभी होने नहीं देते, घड़ी भर भी मुझे तन्हा कभी होने नहीं देते, ये मेरे चाहने वाले मुझे सोने नहीं देते, मेरे सर पे मेरी माँ की दुआओं का जो साया है, सफ़र में भी ये कभी मुझे हादसा होने नहीं देते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लिसनर्स का।

श्रोताओं, चलते चलते बस इतना ही कहना चाहेंगे कि माँ वो खूबसूरत लफ्ज है जिसे कुदरत ने जना है, वो दुआ है, वो दवा है। श्रोताओं, कहते हैं कि कहानियों में हकीकत दिखाई देती है, जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, ऐ बूढ़ी माँ तेरे झुर्रियों चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। इसी के साथ कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आज का विषय था मदर्स डे पर। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5 बजे हैं और ये समय है कार्यक्रम विवरण का। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी इस सभा के शेष और कल की सभा में हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज शाम 5:45 पर आप सुनेंगे एक मुलाकात में भेंट वार्ता। डॉक्टर आशीष गुप्ता से बातचीत करेंगे मिथिलेश श्रीवास्तव। शाम 7 बजे आप सुनेंगे कानूनी सलाह में खास सामग्री में मिलावट संबंधी कानून। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रवीर कृष्ण चौहान और आपसे बातचीत करेंगे ब्रजेश तिवारी। शाम 7:31 पर सुनिएगा जनमंच। विषय रहेगा जीवन एक रंगमंच है। प्रतिभागी होंगे श्री स्पर्श पटेल, श्री अर्जुन सैनी और आपसे बातचीत करेंगे मिथिलेश श्रीवास्तव। ग्राम जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। इसमें चर्चा होगी जल संरक्षण पर और साथ ही होगा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम और लोक मंजरी। युवाणी का समय रहेगा शाम 6 बजे। इसमें कुछ खास है आज और साथ ही होगा ओबी और हेलो फ्रेंड्स। मन भवन आप सुनेंगे आज शाम 5:30 पर और 5:05 पर आप सुनेंगे भजन संध्या। श्रोताओं, आज रात 8 बजे आप सुनेंगे मुझे याद है जरा जरा। श्री चंद्रमौली मिश्रा से बातचीत करेंगे ब्रजेश तिवारी। एक नजर कल की सभा में हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला। 9:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल, प्रायोजक फोकस नेत्रालय बरेली। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम 11:30 पर।

वह 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दीवाने, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम। नमस्ते बरेली का समय रहेगा प्रातः 8:15 पर। इसमें ओवी फोन होगा, साथ ही बरेली की कुछ खास खबरें। सोशल मीडिया पर आधारित आपकी पसंद आप सुन सकेंगे कल प्रातः 10:05 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत सुनेंगे आप दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक। सबरंग का समय रहेगा सुबह 11 बजे। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:15 पर और उसके बाद 2:30 पर और रात्रि 9 बजे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। शाम 4 बजे आकाशवाणी के दीवाने, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम। 4:05 पर आपकी बात आकाशवाणी के साथ। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी संसार। इसमें चर्चा होगी गर्मी में पिएं तरल पदार्थ, किसी भी दुर्घटना होने पर करें मदद। वार्ता सुनवाई जाएगी, साथ ही होंगे किचन और हेल्थ टिप्स और इनसे मिलिए। शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, कुछ खास है आज, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आसफ अली सादात हुसैन मंटो की, साथ ही होगा ओबी और धूमधड़ाका। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत में चर्चा, अल्पसंख्यकों हेतु सरकारी सुविधाएं, वार्ता और साथ में होगी क्षेत्र संकलित कार्यक्रम और इसके अंतर्गत आप सुनेंगे लोकगीत। कल शाम 7 बजे आप सुनेंगे अक्षय भट्ट के अंतर्गत भेंट वार्ता। कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुन सकेंगे कल शाम 7:31 पर। रात्रि 8 बजे और 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, ये तो थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भजन संध्या। भजन संध्या में ये पहला भजन अनुप जलोटा के स्वर में आपके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, हरि ओम शरण व साथियों के स्वर में आपने सुना ये भजन, और आइए सुनते हैं अनुज लोटा का गाया हुआ ये प्यारा सा भजन।

ईश्वर की कृपा से ये शरीर प्राप्त हुआ है। अब इस शरीर को गुण रूपी रत्नों से सजाना हमारा कर्तव्य है। ज्ञान, ध्यान, तपस्या, प्रेम, सेवा, ये वो रत्न हैं जिन्हें एक बार प्राप्त कर लिया जाए तो सदैव साथ रहते हैं। दुनिया के अन्य रत्न शरीर छूटते ही हमें छोड़ देते हैं, तो क्यों ना उन रत्नों को प्राप्त करें जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहेंगे।

अभी हमारी श्रोता सुन रहे थे भजन संध्या। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, स्वदेश 4 FM पर। श्रोताओं, शाम के 5:30 हुए हैं और आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन भावन। अपना वो नहीं जो पास आ गया, अपना वो नहीं जो पास आ गया, पराया वो नहीं जो दूर चला गया। दूर या पास होने से कोई अपना पराया नहीं होता, अपना वो है जो दिल में समा गया। श्रोताओं नमस्कार, आदाब। कार्यक्रम मन भावन में हमारे सभी लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने दिल की बात, अपने भाव, अपने जज्बात, अपनी शब्दावली लिख करके हमारे पास भेजते हैं, उसको हम अपने प्रोग्राम मन भावन में शामिल करते हैं। ये पहला खत हमारे पास आया है विमल वर्मा का, मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से। आप लिखते हैं कि जरूरी तो नहीं कि इंसान प्यार की मूरत हो, जरूरी तो नहीं इंसान प्यार की मूरत हो, जरूरी तो नहीं कि इंसान अच्छा और खूबसूरत हो, पर सबसे सुंदर वो इंसान है जो आपके साथ हो जब आपको उसकी जरूरत हो। वाकई में बहुत प्यारी बात आपने लिख करके भेजी विमल वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लिखते हैं कि मोहब्बत की हवा जिस्म की दवा बन गई, मोहब्बत की हवा जिस्म की दवा बन गई, दूरी आपकी मेरी चाहत की सजा बन गई, कैसे भूलूं आपको एक पल के लिए, आपकी याद हमारे जीने की वजह बन गई। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी बात आपने लिख करके भेजी। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि एहसास तेरे होने का जिस पल नहीं होता, सांसों का सिलसिला भी मुकम्मल नहीं होता, और ज़िंदगी हमारी इतनी खूबसूरत ना होती जो तुमसे मिलने का इंतज़ार हर पल ना होता।

श्रोताओं, ये ख़त हमें भेजा है बरेली जंक्शन से गरीब भाई बिक्की भारद्वाज ने। आप लिखते हैं कि हर फूल महकदार नहीं होता, हर फूल महकदार नहीं होता, हर पत्थर चमकदार नहीं होता, दोस्ती करना संभल कर क्योंकि हर दोस्त वफादार नहीं होता। क्या बात, अगर आप किसी दोस्त की मुसीबत में काम आ जाएं तो वो यही कहेगा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। वाकई में दोस्ती का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है और विश्वास का रिश्ता है, और इसको बनाए रखें। कोशिश करें कि देखभाल कर ही अपने दोस्तों को बनाएं। बहुत शुक्रिया गरीब भाई आपका।

श्रोताओं, ये आखिरी खत हमारे पास आया है SN आर्य का, पंचशील नगर पीलीभीत बाईपास रोड बरेली से। अब लिखते हैं कि महोदय, आकाशवाणी केंद्र द्वारा मनभावन कार्यक्रम एक अच्छा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत मन को मोहने वाले गीत सुनवाए जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि किस्मत के खेल निराले भैया गाने को सुनवा दीजिए, क्योंकि फिल्म एक फूल दो माली के अंतर्गत साधना एवं संजय खान बलराज साहनी ने जो किरदार निभाए हैं वो बहुत ही खूबसूरत किरदार हैं और साथ में साधना जी की भूमिका सराहनीय है। वाकई में बहुत ही प्यारी फिल्म है एक फूल दो माली। बहुत बहुत शुक्रिया SN आर्य जी, सुनवाते हैं आपको ये गीत आपकी पसंद पर।

0: और श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम मन भावन यहीं पर संपन्न होता है। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात में भेंट वार्ता। और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आशीष गुप्ता और आपसे बातचीत कर रहे हैं मिथिलेश श्रीवास्तव।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं हूँ मिथिलेश श्रीवास्तव और हर बार हम अपने कार्यक्रम में किसी न किसी खास मेहमान को बुलाते हैं, तो आज जो मेहमान आए हैं वो बहुत ही खास हैं। और एक क्लू देते हैं, हिंट देते हैं आपको, वो अभी तक सबका इंटरव्यू करते आए हैं, आज हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। जी, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आशीष गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी स्टूडियो में।
2: नमस्कार।
1: तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, आकाशवाणी आप मुझे लगता है पहली बार आ रहे हैं
2: जी,
1: कैसा लग रहा है सर?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, और चूंकि मैं इलेक्ट्रो मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ और रेडियो जो है वो पहला माध्यम है इलेक्ट्रो मीडिया का, तो रेडियो के साथ आज इस तरह से आना और खुद अपना इंटरव्यू यहाँ पर करना, तो अपने आप में बहुत अच्छा एक विलक्षण अनुभव हो रहा है। और निश्चित तौर पर आपको बहुत बहुत बधाई भी आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर।
1: जी बिल्कुल, 90 वर्ष भी हो रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि इंटरव्यू अभी तक आप लेते आए थे, आज आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो कैसा लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है। और निश्चित तौर पर जब इंटरव्यू का जो एक मोटिव होता है वो यही होता है कि जब सार्थक चर्चा होती है तो जो श्रोता होते हैं या जो दर्शक होते हैं उनको कुछ ना कुछ पाने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि अगले 15 मिनट में हम लोग जो चर्चा करेंगे हमारे श्रोताओं को कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो उनके काम आएगा।
1: जी बिल्कुल। तो हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि डॉक्टर आशीष गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते आए हैं, और उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का पत्रकारों का एसोसिएशन है उपज, उसके भी आप चेयरमैन हैं। साथ में आप ओलंपिक संघ जो है जिला स्तर का, उसके चेयरमैन भी हैं, तो उसके अलावा उद्यमी भी हैं
2: जी।
1: तो इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे कर लेते हैं?
2: देखिए, बेसिकली तो हम तीन पीढ़ियों से व्यापारी ही हैं।
1: अच्छा।
2: जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने, उनके पिताजी ने जो है, मेरे दादाजी ने शंकर पुस्तक भंडार के नाम से एक धार्मिक किताबों की दुकान इस्टेब्लिश की थी।
1: अच्छा।
2: 1930 में।
1: अच्छा अच्छा।
2: लगभग 96 ईयर्स हो चुके हैं उसको।
1: लेगेसी है फिर तो।
2: हाँ, लेगेसी है अपने आप में। तो ये बरेली और कुमाऊं रीजन का एक अपने आप में एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर सभी दुर्लभ धार्मिक पुस्तकें जो है

0: मिलती हैं, जनरल बुक्स मिलती हैं। तो जो बचपन से जब मेरी एजुकेशन शुरू हुई तभी से प्रेमचंद, शरदचंद और इन सबको पढ़ते हुए हम लोग बड़े हुए। कॉमिक्स और तमाम जो मैगजीन है, बैलेंस है और नंदन है, चंपक है, प्रतियोगिता दर्पण, तमाम जो मैगजीन्स और मतलब किताबों से जो लगाव रहा, उस लगाव ने जो है मेरे को जो है पत्रकारिता की जो
1: तरफ मोड़ दिया,
0: तरफ
1: एक रुचि।
0: हाँ, एक रुचि थी।
1: हाँ, हाँ,
0: संपादक के नाम जो पत्र छपते थे वो,
1: हाँ,
0: उसको हम लिखते थे, जब वो छप जाते थे तो उसको कटिंग काट कर जो है पेस्ट कर लिया करते थे। जब वो छपना शुरू हो गया, एक थिंकिंग डेवलप हुई, तो मन किया कि उसी सिस्टम का पार्ट बनना है। तो उस सिस्टम के पार्ट बनने के लिए पत्रकारिता में आ गए। व्यापार चूंकि शुरू से खून में था, इसलिए वो सब चीजें हैं। और चूंकि पत्रकारिता में हम लोगों का एक नेटवर्क अच्छा हो जाता है, तो मन में ये विचार भी आया कि जहां जहां हम अपने संपर्कों के जरिए सामाजिक कार्यों को अच्छे से कर सकते हैं तो वहां वहां जोड़ा जाए। तो खेलों में रुचि थी, मेरा बेटा भी क्रिकेट का अच्छा शौकीन है।
1: अच्छा।
0: तो डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में पिछले 5 वर्ष पहले मैंने काम करना शुरू किया। वहां पर जो कुछ हो सकता है, बन पड़ सकता है, वो किया जाता है। इसके अलावा और जो सामाजिक संगठन है या जो अपने पत्रकार साथियों के लिए हित में कर सकते हैं, तो उस तरह से सक्रियता रहती है। तो एक तरह से एक तालमेल बैठाने में समय का तो अभाव रहता है, लेकिन आप अगर उसका दूसरा पक्ष देखेंगे तो आप जब भी किसी एक ही स्ट्रीम में काम करते जाएंगे तो हो सकता है कि उसके अच्छे और बुरे चीजों के सामने आने के बाद में आपके मूड में परिवर्तन हो। लेकिन मेरे साथ अच्छा ये होता है कि आज मैं अभी आपके साथ जो है स्टूडियो में पत्रकार के रूप में बैठा हूँ या इंटरव्यू दे रहा हूँ। हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद अपने व्यापार में, बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाऊँ, या शाम को हो सकता है किसी सामाजिक कार्य में जो है व्यस्त रहूँ, तो उसमें बड़ा एक अच्छा मुझे इनपुट मिलता है। मेरे एक डॉक्टर से चर्चा हो रही तो बोले आप तो हमेशा जो है वो डिफरेंट मोड में रहते हैं, तो कभी भी तनाव हावी नहीं होता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: आप जो है जब हो सकता है मैं यहाँ से जाने के बाद शाम को किसी शूटिंग रेंज में जो है बच्चों के साथ पुरस्कार वितरण समारोह में रहूं या बच्चों को कोई इसी और एक्टिविटी में रहूं, तो जो दिन भर का स्ट्रेस होता है वो रिलीज हो जाता है। तो एक मतलब ओवर हेक्टिक शेड्यूल भी है, लेकिन साथ साथ उसका फायदा भी है।
1: लाइफ को एक जो प्रवाह है जिंदगी का, उसमें
0: वो चल रहा है। तो इस वजह से इसी तरह से तीनों चीजों में संबंध में जो है स्थापित
1: होते रहते हैं
0: जी।
1: इसमें फिर अपने लिए समय कब निकाल पाते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए?
0: देखिए मैंने जो है एक शेड्यूल बना रखा है, जैसे
1: अच्छा।
0: मॉर्निंग होती है तो 3 अखबारों को पढ़ने का एक रूटीन बना हुआ है, बहुत लंबे समय से वो जीवन का हिस्सा बन चुका है। जब तक हम 3 अखबार पढ़ नहीं लेते, जब तक हमें शहर का मतलब, क्योंकि इस विधा में है इसलिए अखबारों में पढ़कर और तीनों अखबारों में उसी खबर को किस तरह से छापा गया, क्या उसमें नयापन आया, या हमने जो कवर किया था उससे आगे और क्या मतलब प्रिंट मीडिया ने उसको आगे कैसे बढ़ाया उस खबर को, इस तरह का रहता है। मॉर्निंग में जो मेरा अपना वेंचर चल रहा है न्यू स्टूडेंट नेटवर्क, उसकी टीम के साथ में जो मीटिंग हो जाती है, अपने संस्थान के साथ में जो मीटिंग हो जाती है, दिन भर की फॉरवर्ड प्लानिंग हो जाती है, वो उसके बाद फिर जो इनपुट्स आए हुए हैं, जो असाइनमेंट है या कोई बड़ी खबर कवर करना है, उसको कर लिया जाता है। बाकी जो बचा हुआ समय है उसमें कोई सामाजिक कार्यक्रम में कोई कार्यक्रम लगा हुआ है वो हो गया, बिजनेस को देखकर, और शाम का समय अपने भाई के साथ में,
1: शाम
0: तो मतलब
1: समय
0: थोड़ा सा कम समय मिलता है।
1: हाँ।
0: लेकिन मैंने कभी कभी ये करके देखा कि अगर मैं किसी चीज को स्किप करता हूँ और जरा समय देता हूँ, मुझे लगता ये है कि जब मैं तीनों चीजों के साथ रहता हूँ तो अब आदत पड़ गई है। हाँ, और उसी के साथ में अच्छा फील होता है।
1: हाँ,
0: और परिवार के लोगों को भी आदत पड़ गई कि ठीक है।
1: हाँ, छुट्टी लेते हैं आप?
0: छुट्टी तो कभी नहीं हो पाती,
1: कभी हो ही नहीं पाती है।
0: हाँ, मीडिया में कभी छुट्टी है नहीं।
1: हुँ।
0: और व्यापार में अगर मैं अपनी शॉप की बात करूँ तो वहाँ पर थर्सडे ऑफ रहता है, लेकिन थर्सडे को और चीजों में व्यस्त रहते हैं हम। जैसे आज थर्सडे है, आज मैं यहाँ पर हूँ और रियल एस्टेट वाला काम या तमाम और जो वाला काम है वो चल रहा है, तो वहाँ पर भी जाना होता है। लेकिन कोशिश ही करते हैं थर्सडे वाले दिन इवनिंग का टाइम जो है वो बच्चों के साथ में और परिवार के साथ कहीं बाहर जाया जाए और समय दिया जाए परिवार को।
1: बिल्कुल। जो इतने सारे हैं, पत्रकारिता है और बिजनेस है आपका और साथ में ओलंपिक संघ भी है, जो आप सामाजिक कार्यों की बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या करते हैं आप?
0: देखिए सामाजिक कार्यों में ये है कि एसएच जो टारगेट है वो, तो जैसे ओलंपिक एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ तो उसमें प्रयास ये करते हैं, क्योंकि ओलंपिक एसोसिएशन जो है एक अम्ब्रेला है, उसके अंतर्गत 36 खेल आते हैं जो ओलंपिक्स में रजिस्टर्ड हैं, और उन फेडरेशन के द्वारा जो खेलों का आयोजन किया जाता है उसमें खिलाड़ियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, वो कैसे अच्छे से आ सकते हैं, उनके रहने का खाने की व्यवस्था प्रॉपर है नहीं है, उसको हम लोग देखते हैं। साथ साथ जो निर्धन खिलाड़ी हैं वो कैसे आगे जा सकते हैं, कैसे अपना प्रतिभा को उभार सकते हैं, उसको हम प्रयास करते हैं। बरेली में हमने एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है। 2021 में हमने 49वीं नेशनल सीनियर हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया था, जिसमें 26 राज्यों से लगभग 600 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कोरोना के टाइम वो हुआ था, एक चैलेंज था, अच्छे से किया। उसका 2023 में हमने 45वीं जूनियर हैंडबॉल महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया। अभी रिसेंटली पिछले महीने ही हमने 54वीं जो है यहाँ पर सीनियर नेशनल हैंडबॉल टूर्नामेंट किया, तो मतलब हैट्रिक एक नेशनल आयोजन की बरेली में ओलंपिक एसोसिएशन ने लगाई है।

0: अपने आप में भारत का पहला शहर है जहां पर 3 नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन एक ही खेल के हुए हैं।
1: बिल्कुल
0: तो इस तरह से खेलों को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। बाकी पत्रकार एसोसिएशन में अपने पत्रकार साथियों के ऊपर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, या अभी हम एक मंथली बैठक का हमने एक आयोजन रखा है, उसमें हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनके बच्चों ने जो अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तो उनको प्रोत्साहित करना है। कोरोना के दौरान हमने जो है क्रेडाई, जो मेरे रियल इस्टेट एसोसिएशन है, उसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर बांटे थे, दवाइयां बांटी थी, जो वहां पर उस समय ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वरदान साबित हुए उन लोगों के लिए, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की उपलब्धता बहुत कम थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो संपर्कों के दौरान जो है मरीजों को भर्ती कराना या इस तरह की, मतलब बहुत सारी चीज जैसा जो अवसर मिल जाता है,
1: जो अवसर मिल जाता
0: हाँ,
1: है,
0: उस तरह से अपने संपर्कों के द्वारा जो है लोगों की जो मदद हो जाए।
1: जितनी कोशिश है कर सकते हैं उतना
0: जी जी
1: करते हैं।
0: उसमें आत्मिक संतुष्टि भी होती है और ये भी लगता है कि हाँ ठीक है, हमारे जो संपर्क हैं उसका हमने सही इस्तेमाल किया।
1: बिल्कुल सही बात है। और बात करें केवल जैसे कि बरेली के बारे में आपने बताया ही,
0: जी।
1: लेकिन बरेली में अभी और क्या फ्यूचर है, किस तरह से देखते हैं बरेली को?
0: देखिए बरेली जो है एक उभरता हुआ शहर है, मैं चूंकि जन्म से इसी शहर में पैदा हुआ हूँ, तो आप मान के ये चलिए कि बरेली जो है वो तरक्की प्रसव पीड़ा से गुजर रहा है, नई शहर कुलबुला रहा है। आप देख रहे होंगे सन 2000 में ये शहर जो था आज 2026 में एकदम बदल चुका है। 2000 से 2010 का एक समय जो था वो बदलते हुए बरेली का था, उसके बाद अब 2020 में यहाँ पर जो है, 21 में यहाँ पर एयरपोर्ट शुरू हुआ, एयर कनेक्टिविटी के बाद हम मुंबई से, माया नगरी से सीधे जुड़ चुके हैं। स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें बन चुकी है, इंक्यूबेशन फाउंडेशन से लेके और जो राधेश्याम कथावाचक के स्मृति सभागार बना है या फिर जो अर्बन हार्ट बना है, तमाम ऐसी चीजें हैं। उसमें कुछ चीजों में कंट्रोवर्सी भी है कि आपका कोई एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है वो अभी ऑपरेशनल नहीं है या कुछ है, लेकिन इस तरह की चीजें होती हैं,
1: प्रोसेस में है।
0: हाँ, मतलब एक बुजुर्गों की कहावत है ना कि लड्डू बनेगा तो चूरा होगा, लेकिन चूरा होने के डर से आप लड्डू बनाना नहीं छोड़ सकते।
1: बिल्कुल
0: तो बरेली के विषय में मैं ये कहना चाहूँ, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है और बरेली बहुत ही विलक्षण शहर है अपने आप में। और सबसे अच्छी खूबी यह है कि यहाँ पर जो भाषा लिखी जाती है वही भाषा बोली जाती है। आप यहाँ से 40 किलोमीटर दूर चले जाइए, बधाई हो, आपको भाषा बदल जाएगी। आप शाहजहांपुर की तरफ जाइए, भाषा बदल जाएगी।
1: बदल
0: पीलीभीत की
1: जाएगी।
0: तरफ जाइए, भाषा बदल जाएगी। देवनागरी जो बरेली में है वो एकदम शुद्ध बोली जाती है। ये शहर की खूबसूरती है। बढ़ता हुआ शहर है, दिल्ली बरेली के बीचों बीच है, 250 किलोमीटर दूर दिल्ली है, 250 किलोमीटर दूर लखनऊ है,
1: बिल्कुल
0: तो मतलब देश और प्रदेश की राजधानी के बीचों
1: बीचों
0: बीच
1: बीच में है
0: सारे
1: स्थित।
0: मौसम आपको यहाँ पर मिलेंगे, सर्दी गर्मी बरसात सारे मौसम यहाँ पर मिलेंगे। शांत शहर है, कभी यहाँ पे बहुत बड़ा कोई ऐसा तो उपद्रव हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, कुछ तरह की सामुदायिक सांप्रदायिक चीजें थी, लेकिन अब चूंकि सरकार का जो रुख है उसके बाद से अब यहाँ पर वो भी सब शांत। तो मेरे हिसाब से जो मेरा शहर बरेली है अपने आप में उसका भविष्य जो है बहुत उज्जवल है। यहाँ से बड़ी प्रतिभाएं निकली हैं, मून अजी तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने बड़े राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाई है। तो
1: बिल्कुल
0: निश्चित तौर पर आगे जो शहर बरेली है वो आपको अगले 5 या 10 सालों में और बड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
1: बिल्कुल। और खेलों में भी आगे आएंगे
0: जी,
1: कुछ?
0: बिल्कुल। खेलों में यहाँ पर रिदम है, जो एक मूक बधिर बच्ची है वो, उसने जो है वो मूक बधिर ओलंपिक में जो है बहुत अच्छा नाम रोशन किया है बरेली का।
1: जी
0: इसके अलावा यहाँ पर तीरंदाजी में है, या फिर यहाँ पर जो कमल सेन है, इंटरनेशनल शूटर है, और तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने बरेली को राष्ट्रीय फलक पर पहचान दी है। और जिस तरह से सरकार खेलों को लगातार बढ़ावा दे रही है तो निश्चित तौर पर बरेली में जो प्रतिभाएं हैं वो आगे आएंगी। और स्टेडियम में आप देखिए मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण हो चुका है, 10 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण हो चुका है यहाँ पर। इसके अलावा जिमनास्टिक का हॉल बनना है इस समय यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रतिभाओं को अगर मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो आगे जाएंगे। और चूंकि मैंने जैसा बताया ठंडी तासीर का शहर है बरेली,
1: ठंडी तासीर का है।
0: यहाँ पर जो है लोग जो है बहुत ज्यादा उपद्रव करने में या लिटिगेशन करने में या एजिटेशन करने में उसमें उन लोगों का बहुत ज्यादा वो नहीं रहता। व्यापारी अगर जो सरकारी सपोर्ट मिल गया तो ठीक है, नहीं गया तो अपने प्रयासों से आगे बढ़ जाएगा। यहाँ मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ, दीपक स्वीट्स वाले दिलीप गुप्ता जी हो गए, सिलेक्शन पॉइंट वाले नरेंद्र गुप्ता जी हो गए, तमाम ऐसे, या मेरे जी हैं धर्मेंद्र गुप्ता जी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बल पर जो है वो शहर में बहुत बड़े काम किए हैं और शहर को भी आगे बढ़ाया, अपना नाम भी आगे बढ़ाया। तो बरेली मैं मानता हूँ मतलब ऐसे लोगों का शहर है जो शहर को आगे ले जाना चाहते हैं। सरकारी प्रयास या सरकारी सहयोग निश्चित तौर पर मिलता है, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो वो अपने आप चाहते हैं कि शहर हमारा आगे बढ़े। आज बहुत अच्छी खबर मैंने अखबार में सुबह पढ़ी थी कि 2 जून से बरेली से दिल्ली के लिए फिर से फ्लाइट शुरू होने वाली है,
1: बिल्कुल
0: जेवर एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट शुरू होने वाली है। तो निश्चित तौर पर अब यहाँ पर संसाधन बढ़ेंगे, आप देखते होंगे।

0: कि शहर हमारा आगे बढ़े। आज बहुत अच्छी खबर मैंने अखबार में सुबह पढ़ी थी कि 2 जून से बरेली से दिल्ली के लिए फिर से फ्लाइट शुरू होने वाली है,
1: बिल्कुल
0: जेवर एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट शुरू होने वाली है। तो निश्चित तौर पर अब यहाँ पर संसाधन बढ़ेंगे। आप देखते होंगे कि फिल्मों की शूटिंग बहुत होने लगी बरेली में।
1: बहुत सारी
0: अलीगढ़ फिल्म की शूटिंग हुई, इसके बाद अब रिसेंटली एक और फिल्म की शूटिंग हुई। माया नगरी से सीधे कनेक्टिविटी का बहुत फायदा है यहाँ पर। तो आप जब वो लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो रंगमंच की प्रतिभाएं हैं उनको आगे आने का मौका मिलेगा। राधेश्याम कथावाचक जी की नगरी है बरेली। पूरे देश में जो रामलीला होती है वो राधेश्याम जी की लिखी हुई रामायण पे ही मंचन होता है उनका।
1: बिल्कुल सही बात
0: तो
1: है।
0: आप चाहे साहित्यिक रूप से देख लीजिए, चाहे और परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, बरेली अपने आप में एक बढ़ता हुआ शहर है।
1: बिल्कुल बढ़ता
0: और
1: हुआ शहर है
0: जी
1: और खेलों में भी आगे बढ़ ही रहे हैं।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: तो ओवरऑल अगर आप युवाओं को अगर कुछ संदेश देना चाहें जो पत्रकार बनना चाहते हैं
0: जी
1: वो और जो ओलंपिक में कुछ करना चाहते
0: जी
1: हैं उनके लिए अगर कुछ आप संदेश देना चाहें इंटरव्यू के आखिर में।
0: जी बिल्कुल। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि हमारा देश जो है युवाओं का देश है। एक बहुत पुराना नारा है, जिसो जवानी चलती है उसो जमाना चलता है। तो भारत में अच्छी बात यह है कि इस समय युवाओं की संख्या ज्यादा है। और बरेली के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कोई संदेश देना चाहूँ तो निश्चित तौर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी फील्ड है ये। जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले भी कि पत्रकारिता के साथ साथ अपने इनकम का कोई और सोर्स रखिए, लेकिन आप आएंगे कुछ सीखेंगे और ऐसा कुछ करिए जो आपके शहर को आगे ले जाने का काम करे। जैसे मैं जब भी रिपोर्टिंग करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि इसका लॉन्ग टर्म क्या फर्क पड़ेगा मेरे शहर पे या मेरे देश पर या मेरे प्रदेश पर। तो इसको ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता करिए, बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि हर विषय की जानकारी हो जाती है। जब आप आज मुझे 22 साल का लंबा अनुभव हो गया, तो 22 साल में मैंने त्रिशूल एयरबेस के अंदर जाकर भी देख लिया, आर्मी एयरबेस के अंदर जाकर भी देख लिया, दंगे में भी देख लिया, यहीं पर इसी बदायूं रोड पर बाढ़ आई हुई थी, बाढ़ की कवरेज भी कर ली। और मतलब तमाम जो ऐसी चीजें हैं, दंगा है, बाढ़ है, आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं से रूबरू होने का
1: सारे
0: मौका
1: अनुभव
0: मिलेगा।
1: मिल
0: तो
1: जाते
0: आप अगर
1: हैं।
0: जिंदगी में रोमांच चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका करा हुआ आपको बाद में लगे कि हाँ आपने समाज के लिए भी कुछ किया, तो पत्रकारिता निश्चित तौर पर आपके लिए है। इसके अतिरिक्त खेलों की अगर आप बात करेंगे तो खेलों में इस समय बहुत एक्सपोजर है। खेलों के द्वारा आपको सरकारी नौकरी मिलने में भी आसानी है। सरकार का बहुत अच्छा रुझान इस समय खेलों की तरफ है। देश और प्रदेश की सरकार लगातार खेलों को आगे ले जाने का काम कर रही है। तो सुविधाएं बहुत मिल रही हैं आपको। चैलेंजेस पहले से अमूमन कम हो गए हैं, क्योंकि अब
1: और अब
0: आपको
1: तो ओलंपिक में प्रदर्शन भी पहले से
0: हाँ
1: बेहतर
0: दो
1: होने
0: हजार
1: लगे
0: छत्तीस
1: हैं।
0: में इंडिया में ओलंपिक्स भी होने वाले हैं। तो आज से अगर युवा तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको आगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का मौका मिलेगा। मेरे द्वारा जो सहयोग किसी को चाहिए हो युवा को, उसके लिए मैं तैयार हूँ।
1: जी बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम श्रोता आपने जो बातें बताई हैं उससे जरूर लाभान्वित होंगे और अपने जीवन में कुछ करेंगे, कुछ आगे भी बढ़ पाएंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण बातें साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार सर।
0: धन्यवाद मिथिलेश जी।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे एक मुलाकात में भेंट वार्ता। आज के हमारे मेहमान थे डॉक्टर आशीष गुप्ता और आपसे बातचीत कर रहे थे मिथिलेश श्रीवास्तव। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी प्रज्ञा पाठक के साथ।

हाय नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल आदाब, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार आप सभी का। स्वागत करती है आपकी दोस्त प्रज्ञा पाठक आपका आपके अपने प्रोग्राम युववाणी में। दोस्तों, आज हम सब यहाँ उस हस्ती का बात करेंगे जिसकी वजह से आज हम हैं। आज बात होगी उस खुदा की जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो हमारी हर धड़कन को पहचानती है, हमारी माँ। चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। आज के दौर में हम युवा अक्सर अपनी सफलताओं का श्रेय अपनी मेहनत और स्मार्ट वर्क को दे देते हैं, लेकिन याद रखिए दोस्तों, आपके पहले कदम से लेकर आपकी पहली नौकरी तक आपके पीछे एक अटूट दीवार की तरह खड़ी रहती है जिसका नाम है माँ। जब दुनिया आप एक शक करती है, तब भी वे आप पर यकीन करते हैं। मंजिल दूर और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है, मार डालती है ये दुनिया कब की हम

0: में, लेकिन माँ की दुआओं में असर बहुत है। दोस्तों आज मदर्स डे है। सिर्फ एक स्टेटस डालना या केक काटना काफ़ी नहीं होता। आप अगर माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जब आप अपनी माँ के संघर्षों को आप अपनी ताकत बनाएं। क्या आपने कभी उनको गौर किया है कि आपकी माँ ने माँ की कितनी ख्वाहिशें हैं जो आप पूरा कर सकते हैं? आपके खिलौने या एक किताब के लिए जो उन्होंने कुर्बान कर दी हैं अपनी कितनी सारी ख्वाहिशें? माँ, आपका वो कौन सा सपना है जो आप पूरा नहीं कर पाएं? क्या आपने कभी उनसे पूछा है? आज संकल्प लीजिए कि आपकी कामयाबी उस सपने को पूरा करेंगी जो माँ का अधूरा रह गया है। याद रखिए, माँ को आपसे महंगे तोहफे नहीं, आपका थोड़ा सा वक्त और आपसे सम्मान चाहिए। लवों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लवों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। यूं तो मिल जाएंगे दुनिया में चाहने वाले बहुत, यूं तो मिल जाएंगे दुनिया में चाहने वाले बहुत, पर माँ जैसी मोहब्बत फिर अता नहीं होती। आइए आज हम सब एक वादा करते हैं कि हम अपनी माँ को कभी अकेला महसूस नहीं कराएंगे। हमारी सफलता की सीढ़ी उसके सम्मान से होकर गुजरेगी। किस्मत की लकीरें भी बदल जाती हैं जब माँ की दुआएं साथ चलती हैं। हर मुश्किल का रास्ता आसान हो जाता है जब सर पर माँ का हाथ होता है। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगी, हमेशा अपनी माँ के साथ रहिए। जैसे हम आपके साथ हमेशा बने रहते हैं और आपकी फरमाइशों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हम आज लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए आप ही का फेवरेट सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स। और इसमें देखते हैं हमारे पहले श्रोता कहाँ से जुड़ रहे हैं ताकि हम उनकी फरमाइशों को पूरा कर सकें। हेलो
1: हेलो
0: हेलो फ्रेंड्स, में आपका स्वागत है। आपकी बात प्रज्ञा पाठक के साथ हो रही है, क्या शुभ नाम है आपका?
1: जी नई मस्जिद करेले से इंतजार भाई अंसारी बात कर रहे हैं।
0: इंतजार जी कैसे हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं मैम, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे।
0: तो आप कह रहे हैं हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे। इंतजार भाई आप ये बताइए, आप हमारा अब तो रेगुलर श्रोता है, आप हमारे प्रोग्राम आप सुनते हैं, कैसे लगते हैं आपको हमारे प्रोग्राम?
1: जी मैम वैसे पहले से काफी बेहतर हो गए हैं
0: जी।
1: और मैम मैं अभी तक तो खैर लेटर नहीं लिख पा रहा हूँ
0: जी।
1: पहले मैंने लेटर लिखे थे मैम, अब इतना मुझे जैसे थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है
0: जी।
1: तो मैं लेटर
0: तो
1: लेके
0: आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। देखिए सोशल मीडिया पे हमारा पेज है ही आकाशवाणी बरेली से, आप उस पे एक्टिव रहा करिए, कमेंट्स वगैरह करते रहा करिए। हमारे जितने भी अधिकारी हैं और हम लोग हैं, सब लोग देखते हैं उन कमेंट्स को और पढ़ते भी हैं और ध्यान रखते हैं हमारे श्रोताओं की पसंद का।
1: बिल्कुल मैम, वैसे तो मैं फेसबुक के द्वारा मतलब अपनी फरमाइश दे देता हूँ
0: जी जी जी।
1: 10 बजे से जो 11 बजे तक प्रोग्राम चलता है उसमें बहुत बहुत दूर के शामिल भी होते हैं और उसमें कुछ मजा भी मैम आता है, इसलिए उसमें सारे लोगों की जो फरमाइशें पढ़ी जाती है ना
0: जी जी
1: लफ्जों के हिसाब से तो और मजा आता है, नाम आता है लोगों का तो दिल खुश होता है।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को हमारे साथ कार्यक्रम में जोड़कर, क्योंकि हमारा नहीं आप सबका भी प्रोग्राम है हमारे साथ। और अच्छा लगता है आप लोग जैसे जैसे कमेंट करते हो और डेली हमें कमेंट करते हो, हमें भी बहुत अच्छा लगता है
1: जी जी। बिल्कुल मैम बहुत अच्छी बात लगी हमें ये बात सुन के, दिल इतना ज्यादा खुश हो गया मैम कि बता नहीं सकते।
0: अच्छा ये बताइए, आज आपने हेलो फ्रेंड्स में कॉल किया है, क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: आज फिल्म का नाम है मोहब्बत, और कोई सा भी उसका गीत सुनवा दीजिए, सारे गीत अच्छे हैं मैम।
0: जी जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी फिल्म चुनी है और उसके सॉन्ग सारे ही अच्छे हैं। चलिए सुनवाएंगे हम आपकी पसंद से ये प्यारा सा सॉन्ग, सुनते रहिएगा साथियों युववाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: शुक्रिया।

0: आपकी चाय।
1: EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी?
0: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
1: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
0: ना भाई ना।
2: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, शुरुआत में मैंने माँ के ऊपर बहुत बातें कही और बहुत लोग इमोशनल भी हो गए होंगे, पर ये बात जरूर याद रखिएगा कि आपसे, आपकी जिंदगी से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। तो हम जब रोड सेफ्टी सप्ताह के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए कि एक पल की लापरवाही उम्र भर का रोना। तो लाइनें कहना चाहूंगी, घर से जब निकलो माँ का चेहरा याद रखना, घर से जब निकलो माँ का चेहरा याद रखना, सड़क के नियमों से गहरा नाता रखना। तुम्हारी जरा सी चोट माँ का कलेजा चीर देती है, तुम्हारी जरा सी चोट माँ का कलेजा चीर देती है। ये सड़क सुरक्षा ही है जो उसे खुशियां देती है। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं हमारे राजपाल राजपूत जी, जो हमें बता रहे हैं कि सड़क सुरक्षा हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, उसके नियम हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी है।
5: चलिए युवा साथियों, हम आपसे वादा करते हैं रोजाना किसी न किसी खास व्यक्तित्व को आपके बीच में जोड़ते हैं। से आज हमारे बीच में जुड़े हैं राजपाल राजपूत जी।
6: प्रज्ञा जी, सबसे पहले युवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मातृशक्ति दिवस है, इसलिए सभी मातृशक्तियों को चरणबद्ध प्रणाम।
5: जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपको कार्यक्रम में जोड़कर। आज एक खास भी प्रोग्राम हम आप, इसलिए मैंने आपको हमारे बीच में जरूर जोड़ा है कि हम जानना चाहते हैं कि UN ग्लोबल रोड सेफ्टी सप्ताह चल रहा है, तो कि आप ट्रैफिक पुलिस में हैं, मैंने आपको हमारे बीच में जोड़ा है ताकि हमारे जितने भी युवा साथी हैं वो ये गलतियां ना करें और आप उन्हें बता सकें कि एक युवा के लिए कितना ज्यादा जरूरी है जागरूक होना।

0: और बात को समझना कि देश का जो अगर युवा है वो अगर जागरूक होगा और इस बात को समझेगा तो हमारा देश कितना आगे जाएगा।
1: सबसे पहले आपका प्रियंका जी बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इस
0: जी
1: लायक समझा और मैं अपने युवा साथियों के लिए कुछ ट्रैफिक रूल्स के बारे में बता सकूं,
0: जी जी
1: आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा,
0: जी
1: मैं ट्रैफिक पुलिस में हेड कांस्टेबल हूँ। मैं अभी सोच रहा था कि हम लोग गांव से निकल के शहर में आए हैं जी, और गांव का हर व्यक्ति,
0: एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, कि आपने मुझे बताया आप गांव से हैं। मैं
1: जी
0: आपसे जानना चाहूंगी कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप इस लाइन में जाएं।
1: देखिए मैम, ये तो देख के आदमी सीखता है ये चीजों को, और ये अपने अंदर पहले से खुद एक जुनून होता है, तब आदमी उस रास्ते पे चल पाता है। सारी चीजें बनावटी नहीं होती, कुछ चीजें खुद में पैदा होती हैं, तब आदमी उन रास्तों पर चलता है, तब एक लाइन पकड़ता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
1: धीरे धीरे मैं इस लाइन में आता गया, और कुछ मेरे साथ साथ वाले साथी हैं और कुछ परिवार के सदस्य भी हैं जो
0: जी
1: पुलिस में है, तो धीरे धीरे एक मोटिवेशन मुझे मिलता गया और मैं आज यहाँ पर हूँ।
0: हमारे जितने भी युवा साथी हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? आप ट्रैफिक पुलिस में हैं और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं अपने युवा साथी से कहूंगा कि आज भी हम लोग जब शहर में रहते हैं तो देखते हैं कि गांव का 70% व्यक्ति अपने काम के लिए शहर में आता है,
0: जी
1: तो ज्यादातर संख्या जो होती है ट्रैफिक रूल फॉलो ना करने वालों की, वो देहात के लोगों की होती है, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है, कुछ जानकारी के अभाव में, कुछ थोड़ा सा अब नई जनरेशन आ गई है वो इन चीजों को मानती नहीं है, लेकिन नहीं, नई जनरेशन को सबसे ज्यादा मानना पड़ेगा, क्योंकि अब आप देखिए धीरे धीरे जो नए लड़के हैं वो स्टंटबाजी करते हैं, तो ये सब
0: जी
1: नहीं
0: जी
1: करना
0: बिल्कुल
1: चाहिए हमें।
0: बिल्कुल सर, मैं भी
1: हाँ
0: मन में यही सोच रही थी। मैंने सबसे पहले आपने बोला था कि आज मातृ दिवस भी है, वो ये भूल जाते हैं कि उनका उनकी माँ भी घर पर इंतजार कर रही है। जरा सी उनकी लापरवाही रोड पर उनको कितना ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ सकता है,
1: जी
0: कितना
1: जी
0: उनके लिए
1: बिल्कुल
0: नुकसान।
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा, जैसे आप जब भी शहर में आए या आपसे देहात में भी अगर चल रहे हैं, तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि घटना कहीं भी हो सकती है,
0: जी
1: कहीं भी मोड़ पे। भाई आजकल देहात में आप देखते हो यू टर्न और ये सब ज्यादा होते हैं, बहुत ही डेंजर टर्न होते हैं, तो वहां पे घटनाएं होने की बहुत चांस रहते हैं। हम आजकल नए
0: जी
1: नए जो क्रिएटर्स हैं वो सब दिखाते हैं गाँव देहात में साफ सफाई करते हुए मोड़ पे, मैंने कई वीडियो ऐसी देखी है, तो वो बहुत जागरूक वाला काम कर रहे हैं, उन मोड़ पर बहुत अचूक घटनाएं हो जाती हैं,
0: जी
1: सिर्फ इस वजह से कि हेलमेट ना पहनने की वजह से।
0: कई बार
1: और
0: बहुत शार्प टर्न होता है और हम हमारी स्पीड इतनी तेज होती है कि
1: जी जी
0: उसके सामने वाला वाहन हमारे उसमें लग सकता है और या फिर हम ही किसी चीज में भिड़ सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल।
0: जी जी
1: और मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूंगा बाइक वालों के लिए,
0: जी
1: बाइकर्स जो होते हैं, आदमी सोचता है कि इलेक्ट्रिक वाहन है तो
0: जी
1: उस पर हेलमेट लागू नहीं है, ऐसा नहीं है, आप स्पीड लिमिट है उसकी, लेकिन आपको हेलमेट अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी होता है,
0: जी
1: ना कि
0: बिल्कुल
1: आप
0: सही
1: इलेक्ट्रिक
0: सर
1: या पेट्रोल वाहन का एक वो देखे इशू देखे आप हेलमेट यूज नहीं कर रहे, वो गलत चीज है।
0: जी
1: तो और 4 साल के बच्चे के लिए भी हेलमेट जरूरी है,
0: जी
1: सेक्शन 194D के मुताबिक एमबी एक्ट की, 4 साल का बच्चा भी अगर गाड़ी पे चल रहा है बैठ के तो वो भी हेलमेट पहनेगा, ये नियम है। तो और दूसरा, ट्रिपलिंग बिल्कुल ना करें।
0: जी
1: और तीसरा, एक नया नियम आया है डबल हेलमेट का, शहर में आप जब भी जाएंगे तो आप डबल हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि अगर आप डबल हेलमेट प्रयोग नहीं करेंगे, अगर आपको किसी ने रोका भी नहीं, तो हो सकता है आपका कहीं सीसीटीवी कैमरे से चालान हो जाए। सिस्टम लगे हुए हैं जो बड़े बड़े चौराहे हैं शहर में, वहां पे सीसीटीवी कैमरे भी, वैसे उनसे चालान भी हो जाते हैं डबल हेलमेट के, तो आदमी सोचता है कि मेरे तो हेलमेट लगा था चालान हो गया, तो फिर वो हम लोगों से कई बार आगे पूछता है, तो हम उसे
0: जी
1: बता दें कि भैया आपका चालान डबल हेलमेट का हुआ है। तो
0: ओ
1: शहर में जब भी आप आए तो
0: जी
1: डबल हेलमेट, डॉक्यूमेंट और ट्रिपलिंग बिल्कुल ना करें, तीन
0: जी
1: सवारी बिल्कुल ना चले। और तीसरा, आदमी सोचता है कि गाड़ी पे दो जेंट्स एक लेडीज बैठी तो चालान नहीं होगा, ऐसा नहीं है, तीन सवारी काउंट, वो भी तीन सवारी में ही काउंट होंगी।
0: जी
1: हाँ, लोगों में वहम रहता है कि एक लेडीज बैठी तो वो चालान नहीं होगा, नहीं बिल्कुल होगा चालान, बिल्कुल होगा, अगर तीन सवारी है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तीन सवारी का चालान बिल्कुल बनता है उसका, इसलिए ट्रिपलिंग बिल्कुल ना करें, ये सब
0: अच्छा
1: नियम है बाइक वालों के लिए।
0: अच्छा अच्छा
1: जी हम लोग 50 रुपए का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, 500 रुपए का बनता है वो,
0: जी
1: 6 महीने
0: जी
1: की वैलिडिटी होती है उसकी, हर 6 महीने बनवाना पड़ता है वैसे,
0: जी
1: लेकिन उसका चालान कितने का, 10,000 रुपए का चालान है।
0: अरे
1: एक सबसे महंगा चालान पॉल्यूशन का है,
0: जी जी
1: नॉइस पॉल्यूशन,
0: हाँ,
1: गाड़ी में कोई
0: काफी लापरवाही
1: अंदर।
0: कर देते हैं लोग और पोल्यूशन का अपना सर्टिफिकेट नहीं बनवाते जिसकी वजह
1: जी
0: से। अच्छा, तो उसका 10,000 का चालान है सर।
1: जी जी दूसरा,

0: जब हम रेड लाइट पे पहुंचते हैं तो रेड लाइट पे कई बार हमने देखा होगा येलो लाइट ब्लिंक होती है,
1: जी
0: तो उस टाइम मतलब रेड लाइट काम नहीं, मतलब चालू नहीं होती। येलो लाइट का मतलब होता है आप देखिए, सावधान होकर चलिए। कई
1: जी
0: बार होता है जब येलो लाइट होती है तो हमें रुकना भी पड़ता है क्योंकि बराबर से ट्रैफिक निकल रहा होता है।
1: जी जी
0: दूसरा, जब ग्रीन लाइट होती तभी हमें चलना होता है, उसमें 3 सेकंड का टाइम दिया होता है। 3 सेकंड रेड लाइट होने से पहले 3 सेकंड का समय दिया होता है, तब रेड लाइट होती है। उससे पहले येलो लाइट होती है, हम येलो लाइट में स्पीड तेज करके निकलते हैं, वही घटना का कारण बनती है रेड लाइट
1: जी
0: पर
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अक्सर।
1: बहुत सारे लोग देखते हैं, अरे रेड लाइट होने वाली है जल्दी से निकलो।
0: जल्दी से निकलो तो
1: हाँ
0: उसी में घटना हो जाती है,
1: जी
0: तो वो 3-4 सेकंड का ही मतलब गेम होता है। तो उसे थोड़ा सा ध्यान रखें, रेड लाइट पर ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे तो कभी आपके पुलिस नहीं रुकेगी, कभी आपका चालान नहीं होगा।
1: जी राजपाल जी, राजपाल जी आज आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छी बातें बताई। हमारे जितने भी युवा साथी और जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं वो इन
0: जी
1: बातों पर मुझे लगता है जरूर जागरूक हों और ध्यान रखें, क्योंकि आपने इतनी अहम जानकारी उन लोगों को बताई है, साझा करी है हमारे बीच में, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके को हमारे बीच में जोड़कर।
0: सभी श्रोताओं का दोबारा से बहुत बहुत आभार। सभी लोग इस चीज का ध्यान देंगे और आपके प्रोग्राम के माध्यम से अपने यातायात नियमों का पालन करेंगे, जिससे आपका चालान ना हो। चालान बहुत महंगे हैं,
1: जी
0: और जी जैसे हमारा आधार कंपलसरी, उसी हिसाब से हमारा डीएल भी कंपलसरी है। 18 के बाद आप अपना डीएल बनवा लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि डीएल का चालान बहुत महंगा है। थैंक
1: ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल जी।
0: यू मैम।
1: चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले कॉलर कहाँ से जुड़े हैं। हेलो
2: हेलो,
1: हेलो फ्रेंड्स, में आपका स्वागत है, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से बोल रही हैं?
2: मैं शिखा खान बोल रही हूँ, बरेली।
1: कैसी हैं शिखा आप?
2: मैं कुछ नहीं, अभी पढ़ाई करती हूँ।
1: अच्छा, आप अभी पढ़ाई कर रही हैं, और कैसी हैं आप ये तो बता दीजिए आप हमें।
2: हाँ मैं ठीक हूँ, और हेलो फ्रेंड्स में सब कैसे हैं?
1: सब अच्छे हैं। अच्छा, आप पढ़ाई में क्या कर रही हैं शिखा?
2: अभी मेरा 9th में एडमिशन।
1: अच्छा, ये बताइए, आप युववाणी सुनती हैं, उससे आपको क्या क्या बातें आपको उसकी अच्छी लगती हैं? आप कभी सुनती हैं उन प्रोग्राम्स को? क्योंकि हम बहुत सारे आप ही लोगों के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे लोगों की रिकॉर्डिंग्स लेकर आते हैं। आपका क्या बनने का सपना है आप ये बताइए पहले शिखा।
2: मुझे टीचर बनने का सपना है।
1: टीचर बनने का? अरे वाह शिखा, तो हम बहुत सारे लोगों की ऐसे रिकॉर्डिंग लेकर आते हैं जिनको टीचर बनना होता है या फिर जो जिस भी फील्ड में जाना होता है, तो आप सुनती हैं उनको?
2: जी, सुनती जरूर सुनती हूँ।
1: अच्छा लगता है आपको?
2: जी अच्छा है।
1: अच्छा लगा, चलिए शिखा आप ऐसे ही सुनते रहिए। आप ये बताइए कि आज आपने हेलो फ्रेंड्स में कॉल किया है, क्या सुनना पसंद करेंगी आप?
2: मैं एक हसीना थी एक दीवाना था मूवी का सॉन्ग सुनना चाहूंगी, मुझे बेचैन पहली बार हमने राजी जाना।
1: जी जरूर सुनवाएंगे हम आपकी पसंद से ये सॉन्ग। आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो फ्रेंड्स,
0: हेलो फ्रेंड्स में आपका स्वागत है। आपकी बात प्रज्ञा पाठक के साथ हो रही है। कहाँ से बोल रही हैं, क्या शुभ नाम है आपका?
1: जी मैं उर्फी जावेद बात कर रही हूँ, बरेली पुराने शहर से।
0: उर्फी कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक।
0: आज काफी टाइम बाद आपसे बात हो रही है।
1: क्या ना, जी मैं बिजी रहती हूँ ना, तो मैं कॉल नहीं लगाती हूँ, लेकिन मुझे टाइम मिलता है तो मैं तुरंत कॉल लगाती हूँ।
0: अच्छा, आप किस में बिजी चल रही हैं इस वक्त?
1: एक्चुअली क्या है ना, मैं फैशन डिजाइनर हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा, तो आप फैशन डिजाइनिंग कर रही हैं, कर चुकी हैं आप या फिर कर रही हैं अभी?
1: नहीं मैं कर रही हूँ।
0: अच्छा, कर रही हैं। अच्छा, तो उसके लिए उर्फी ये बताइए कि जो भी बच्चे अगर फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? मतलब 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है इसमें या फिर ग्रेजुएशन के बाद?
1: डायरेक्ट ही एडमिशन नहीं मिलता है, ये तो सबसे ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे।
0: अच्छा अच्छा, तो उर्फी इसमें मतलब जैसे जो भी फैशन डिजाइनिंग करता है सबकी अलग अलग ट्रेड होती होगी, जैसे कोई फुटवेयर में जाना चाहता है, कोई ज्वेलरी डिजाइन करना चाहता है या फिर कोई आउटफिट डिजाइन करना चाहता है, तो सबको अलग अलग उसमें जाना होता होगा।
1: जी, सब अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं,
0: अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग।
1: डिफिकल्ट भी होता है ये।
0: अच्छा, फैशन डिजाइनिंग में आप कर रहे हो उर्फी, तो ये बताओ आपने कोई पेपर दिया इसके लिए? एंट्रेंस एग्जाम हुआ आपका?
1: जी।
0: अच्छा अच्छा,
1: चार्ट पेपर होते हैं, चार्ट पेपर।
0: हाँ हाँ,
1: तो उस पे डिजाइन किया जाता है, फिर हम अच्छा को दिखाते हैं कि ये डिजाइन कैसे है, तो टीचर सिलेक्ट करती है कि ये डिजाइन सही है या नहीं सही है। उस चार्ट पेपर से रिलेटेड फिर हमें कपड़े दिए जाते हैं, आप कैसे डिजाइन करोगे, तो फिर हम वो कपड़े डिजाइन करके दिखाते हैं, तभी हमारा सिलेक्शन होता है।
0: अच्छा अच्छा, उर्फी आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी, और हमारे जितने भी श्रोता आपको सुन रहे होंगे अगर उनको इस लाइन में जाना है तो उनको भी ये जानकारी मिलेगी और मैं उम्मीद करती हूँ उनको सही दिशा मिल पाएगी। अच्छा, ये आप बताइए, आज आपने आपसे बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई, लेकिन अब आपसे फरमाइश पूछी जाए, क्या सुनना पसंद करेंगी? आज आपने हेलो फ्रेंड्स में कॉल किया है।
1: जी मैं सुनना चाहूंगी, मूवी का नाम है शमशेरा और गाने के बोल हैंगे तेरा ये इश्क मेरा फितूर, तू जो भी कहे बन जाऊं मैं।
0: की पसंद से ये प्यारा सा सॉन्ग। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्त चलते हैं आज के सवाल पर, जहां हमने आपसे पूछा था कि इतिहास के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे। तो जिसका सही उत्तर है डेनिस डीटू, और हमें सही उत्तर मिला है सादर शहर राजस्थान से राम कुमार रेबाड़ का, सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्कीन ने, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह ने, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी ने, दतरंगी बाटापारा से हीरामणि वर्मा जी ने, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो ने, जयपाल यादव महोबा से राजकुमार डुड्डी, सोमेंद्र यादव, बीरूलाल वक्तरिया धाकड़ उन्नीन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, प्रवीण चौहान, फैजल इमाम बिहार से, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मेरठ से दिग्दर्शन गौड़, छत्तीसगढ़ से दिनेश कुमार वर्मा, फागू राम यादव, कीर्तनपुरी गोस्वामी, मराबा दरवाजा एटा से नवी हसन अब्बासी, हनमत शिंदे महाराज से, मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, मोहम्मद आमिर अंसारी। आज के सवाल का सही उत्तर दिया है इन सभी श्रोताओं ने। दोस्तों वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन अभी अपनी दोस्त प्रज्ञा पाठक को दीजिए आज के प्रोग्राम से अनुमति। नमस्कार साथियों।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे युववाणी। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत तेजपाल के साथ।

कार्यक्रम ग्राम जगत में सभी ग्रामीण भैया बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सब भैया बहनों को आपके भैया तेजपाल की राम राम। और सुनाओ भैया बहनों, कैसे हाल चाल हैं? हम तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सब भैया बहन स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनों काम धंधों करते होंगे। बात करें स्वास्थ्य की तो भैया, स्वास्थ्य को तो हमें विशेष ध्यान रखना होएगा, अपने खान पान को भी विशेष ध्यान रखना होएगा। जब हम अपनों खान पान सही रखेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और भैया बहनों, आज दिन है रविवार को, आज के दिन हमारे भैया बहन को इंतजार रहता है कि उनके मनपसंद लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक मंजरी सुनने को। तो लोक मंजरी कार्यक्रम में हम अपने भैया बहनों का लोकगीतों के माध्यम से मनोरंजन कराएंगे, और मनोरंजन तो करावेंगे भैया, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इससे अवगत करा देते हैं। जल संरक्षण, जल संरक्षण को अर्थ है पानी का बुद्धि

मानी से उपयोग करनो, पानी को बर्बाद होने से बचानो और भविष्य की जरूरतों के लिए उसके स्रोतों यानी कि जैसे नदियां हैं, झीलें हैं, भूजल है को संरक्षित करनो है। ये केवल पानी बचाने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि मीठे पानी के संसाधनों की रक्षा, प्रबंधन और प्रदूषण को रोकने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जल संरक्षण के मुख्य उद्देश्य और तरीके हैं जिनको हम अपने जीवन में अपनाकर जल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। जैसे नल बंद रखना चाहिए, रिसाव पानी को ठीक कर देना चाहिए और पानी को जो आवश्यकता अनुसार सीमित उपयोग करना चाहिए। बारिश के पानी को इकट्ठा करके भूजल स्तर को बढ़ाना है, लोगों को पानी के महत्व के बारे में बताने होगो और उन्हें पानी को बचाने के लिए प्रेरित करने पड़ेगो। जल संरक्षण करना बहुत आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी पर मीठे पानी की मात्रा सीमित है और बढ़ती आबादी के कारण इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। जल संरक्षण से पर्यावरण, कृषि और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। तो भैया बहनों, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम लोकमंजरी, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे कुछ भैया बहन हैं, उन्होंने अपने फेसबुक कमेंट और पत्रों के माध्यम से अपनी फरमाइशें व्यक्त करी हैं। नाज रेडियो क्लब बरेली से लिख रहे हैं निशार अहमद अंसारी, मजहबी निशार, बेटी नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसराद अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, तस्लीम रजा और पप्पू भाई। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेबाड़ व उनके समस्त मित्रगण। धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से लाल मोहम्मद अंसारी, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। ग्राम सिरोंधी अंगतपुर टावर के पास मीरगंज बरेली से लिख रहे हैं जाहिद सैफी, समीर सैफी, सोहेल साहेल और मुनिंद्र शर्मा पंडित जी। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, बेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही, स्वाति। तो भैया बहनों, इन सब की फरमाइश पे सुन लेते हैं सुंदरी कुमारी और सखियों की आवाज़ में, जिसके बोल हैं बिगड़ गई फैशन में दुनिया। तो आओ भैया सुन लेते हैं जो प्यारो सो लोकगीत।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: भैया बहनों, संदेश से पहले आप सुन रहे थे जो प्यारो सो लोकगीत, जिसके बोले बिगड़ गई फैशन में दुनिया, और जाकुसर दो सुंदरी कुमारी और सखियों ने। तो अगले लोकगीत को सुनने से पहले हम अपने भैया बहन को क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत हमने बातचीत करी है स्टाफ नर्स सुश्री सीमा चौहान से, जो बता रही हैं नन्हे मुन्ने बच्चों को के स्वास्थ्य को कैसे ध्यान रखें और समय समय पर टीकाकरण क्यों जरूरी है, इस संबंध में बातचीत करी। तो आओ ये सुन लेते हैं जो महत्वपूर्ण जानकारी।
5: कार्यक्रम ग्राम जगत के अंतर्गत भैया बहनों, हम किसी न किसी जानकारी से आपको रूबरू कराते ही रहते हैं, और आज हम पहुंचे हैं UPHC गंगापुरम में। यहाँ मैडम हैं, क्यों ना इनसे बातचीत कर लेते हैं स्वास्थ्य के संबंध में। जो भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति कैसे हमको जागरूक रहना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जी, आपका नाम क्या है?
6: मेरा नाम सीमा चौहान है, मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स के पद पे कार्यरत हूँ।
5: अच्छा, जिस केंद्र पे आप कार्यरत हैं उस केंद्र का क्या नाम है?
6: UPSC गंगापुरम है इस केंद्र का नाम।
5: अच्छा, इस केंद्र पर आप कितने समय से कार्यरत हैं?
6: मैं सन 2014 से यहाँ पे कार्यरत हूँ।
5: अच्छा, जानना चाहूँगा कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति हमको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, और इस समय जो आप टीकाकरण कर रही हैं किन किन बीमारियों से बचाव के लिए ये टीकाकरण का अभियान चल रहा है, बताएं मैडम विस्तार से।
6: टीकाकरण के लिए कई तरह के टीके लगाए जाते हैं बच्चों को, कई बीमारियों से उसका बचाव किया जाता है। जन्म के समय बच्चे को टीका लगाया जाता है, BCG लगाया जाता है, और पोलियो पिलाया जाता है, हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है।
5: अच्छा,
6: हेपेटाइटिस बी से बच्चे को पीलिया नहीं होता है, और पोलियो से तो आप जानते ही हैं, और BCG से बच्चे को TB की बीमारी और भी कई

0: जानलेवा बीमारियों से बच्चे का बचाव किया जाता है। फिर डेढ़ महीने पे लगाया जाता है।
1: अच्छा।
0: उसके बाद फिर ढाई मंथ पे लगाया जाता है, उसके बाद फिर थ्री मंथ पे लगाया जाता है, तीन से साढ़े तीन मंथ पे, फिर नाइन मंथ पे लगाया जाता है। नाइन मंथ के बाद में फिर 16 से 24 माह के बीच में लगाया जाता है, फिर 5 ईयर्स पे
1: अच्छा
0: लगाया जाता है, फिर 10 ईयर्स पे लगाया जाता है। ये कई बीमारियों से इनका टीके से बचाव बच्चों का किया जाता है।
1: अच्छा, जन्म से पहले जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस दौरान भी क्या बच्चे की माँ के लिए टीकाकरण होता है?
0: जी, उस समय भी बच्चे की माँ का टीकाकरण किया जाता है। अगर फर्स्ट बेबी है तो उसको 2 बार टीका लिया जाता है।
1: अच्छा।
0: फर्स्ट टाइम TD लगाया जाता है बच्चे की माँ को, उसके 28 दिन के बाद सेकंड टीका लगाया जाता है बच्चे की माँ को, TD का।
1: अच्छा, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और टीकाकरण तो आप कर ही रहे हैं, जैसे कि उनकी माताएं आती हैं तो उनके लिए आप क्या सुझाव देती हैं, जैसे कि बच्चों का कैसे ध्यान रखें, खान पान का कैसे ध्यान रखें और किन किन बीमारियों से बचाव हेतु कौन कौन सी सावधानियां बरतें?
0: बच्चे की माता को समझाया जाता है कि पहले तो वो बच्चे का खान पीन पे साफ सफाई का ध्यान रखें, समय समय पे बच्चे को टीकाकरण करवाती रहें। अगर बच्चे का किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से कोई टीका छूट जाता है तो केंद्र पर आकर उसके बारे में समझें और बच्चे को टीका लगवाएं।
1: दूसरा ये है,
0: माँ को फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सुझाव दिया जाता है।
1: अच्छा।
0: आपका बच्चा अभी छोटा है तो इसके लिए कई सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं माँ के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, जैसे IUCD लगाई जाती है 5 ईयर्स के लिए और एक 10 ईयर्स के लिए।
1: अच्छा।
0: और माँ को मालाएं दी जाती है, टैबलेट मालाएं आती है, उसको देते हैं डेट आने के 5th डेज से।
1: अच्छा।
0: तो उससे फुल मंथ वो खाती हैं, उसमें 28 टैबलेट का सर्किल होता है, उससे बच्चे के बचाव के लिए खाया जाता है।
1: एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ और जन्म के तुरंत बाद होता क्या है कि आज के दौर में बच्चे के मुंह में बोतल दिला दी जाती है, क्या बोतल से दूध पिलाना ठीक है?
0: नहीं, बच्चे को जन्म के समय तुरंत बाद माँ का दूध दिया जाता है और अच्छा है कि माँ का ही दूध दिया जाए, 6 महीने तक उसको पानी नहीं दिया जाता। अगर माँ का दूध किसी वजह से नहीं बन पा रहा है तो उसको गाय का दूध पिलाया जाए।
1: गाय का दूध पिलाने के लिए कटोरी चम्मच से पिलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है?
0: जी जी,
1: क्योंकि बोतल से आए दिन ये देखने में आ रहा है
0: इन्फेक्शन की संभावना रहती है।
1: जैसे कि 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसके लिए क्या कुछ खाने पीने में कुछ परिवर्तन होता है?
0: हाँ, जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तो बच्चे को जैसे थोड़ा थोड़ा सेरेलैक दिया जाता है, या थोड़ा सा दाल है, दाल में थोड़ा सा चावल मिक्स करके थोड़ा सा मल के वो बच्चे को दिया जाता है, जैसे थोड़ा सा केला है बच्चे को मल के थोड़ा सा हल्का हल्का थोड़ा सा खिलाना शुरू कर देना चाहिए और दूध भी पिलाना चाहिए।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई आपने। दूसरा ये है कि इस समय पे जो आप टीकाकरण कर रही हैं, इस समय पे जैसे कि बच्चों में जो संक्रामक बीमारियां हैं उनसे बचाव हेतु ही ये टीकाकरण चल रहा है
0: जी।
1: बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां होने का खतरा रहता है?
0: बच्चे के अगर टीकाकरण नहीं होता है तो बच्चे को पीलिया होने का खतरा रहता है, घेंगा की बीमारी होती, गलाघोंटू बीमारी होती है, उससे बचाव के लिए लगाया जाता है, TB की बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है, पोलियो की बीमारी के लिए बचाव के लिए लगाया जाता है, और भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बचाव के लिए बच्चे को टीकाकरण कराया जाना बहुत ज़रूरी है।
1: अच्छा, इसके प्रति बच्चे की माँ को साफ़ सफाई के प्रति जागरूक करती हैं, क्या साफ़ सफाई का ध्यान रखें?
0: बच्चे की माँ को साफ़ सफाई के बारे में बताया जाता है, बच्चे की दूध पिलाते समय हाथ साफ रखें, और अगर वो बोतल से पिला रही हैं तो बोतल को साफ़ रखें,
1: यानी कि गर्म पानी से,
0: गर्म पानी से बोतल को धुलें और उसे सुखा के धूप में तब बच्चे को दूध दिया जाए।
1: सीमा चौहान जी, हमारी आपसे बातचीत हुई और इस बातचीत के दौरान आपने बच्चों के स्वास्थ्य के संबंध में, टीकाकरण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया बहनों, अभी आप सुन रहे थे क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता के अंतर्गत स्टाफ नर्स सीमा चौहान के द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी को, बच्चों के स्वास्थ्य का कैसे रखें ध्यान, समय समय पर कराएं बच्चों में टीकाकरण। उम्मीद करते हैं कि हमारे भैया बहन इस जानकारी को सुनकर जरूर लाभान्वित होंगे। और भैया बहनों, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम लोकमंजरी।

0: तो अगले लोकगीत को सुन की फरमाइश हमको भेजी है गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर साइना हसन अक्सा नाजिया आफिया इब्राहिम सद्दाम मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी अजम यसफ नावेद हसन अब्बासी रसीद बारसी सहनाज अब्बासी सोहेल हसन अब्बासी जिला संभल तहसील चंदौसी ग्राम खुशालपुर से भरत सिंह रामवीर सिंह जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया मनोज कुमार कठेरिया गुड्डू विशाल संगम वैभव आदेश आदित्य अमित रेणु कुमकुम निव्या सरता अंतिमा व समस्त कठेरिया परिवार ने चर डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं दुर्गाराम साहू अजय कुमार साहू जय किशन साहू श्रीमती कुमारी साहू श्रीमती इंद्राणी साहू माया साहू कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय ऊषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय दुबिया नेवाद गाजीपुर से प्रतीक राय रोशनी राय प्रांजल राय ग्राम करेली भिंडी मोहल्ला बरेली से इशाक अहमद अंसारी अबरार अहमद अंसारी अंसार अहमद दिलदार अहमद मोहम्मद अर्स मोहम्मद आरिश तो इन सब की फरमाइश पे भैया सुन लेते हैं ओम प्रकाश भैया व उनके साथियों की आवाज में निधना को भात
1: भूड़ों पर पहुंच जाते हैं अभी काली पहाड़ी शहर बहुत दूर है और जब रास्ता भूल जाते हैं तो विजय सिंह ने कहा कि हे भाभी अब इसके आगे का रास्ता मुझे नहीं मालूम है

को आगे बढ़ा देते हैं विजय सिंह, तो जब उन वर्दियों में घोड़ा को बढ़ाया तो पोहे जो है इतर उतर को भाट ठाड़े भय कहन लगे रास्ता।

भैया बहनों, अभी आप ओम प्रकाश भैया व उनके साथियों की आवाज़ में सुन रहे थे निदना को भात। और अगले लोकगीत को सुन की फरमाइश हमको मिली है ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजयपाल यादव, शिखा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, दादरी गेट भिवानी से लिख रहे हैं कृष्णा मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा व समस्त मेहरा परिवार, ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसामा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज यादव, अमन यादव, कस्बा कोयलड़िया नवाबगंज बरेली से लिख रहे हैं राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन टेलर, अनुज अनमोल, कमलेश तुलाराम, अंकुश मौर्य, जिला पीतल नगरी ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं मुकेश कश्यप, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह। तो भैया बहनों, इन सब की फरमाइश पे सुन लेते हैं इंदु शर्मा की आवाज़ में जो प्यारो सुलोगी, जिसके बोल हैं हनुमत लंका गए हैं

अंगूठी लेकर राम की, हनुमत गए हैं लंका देखो अंगूठी लेकर राम की। इंदु शर्मा की आवाज़ में भैया बहनों सुन रहे थे जो प्यारो से लोकगीत। उम्मीद करते हैं कि हमारे सब भैया बहनों को पसंद आओ होगो। और भैया बहनों अब ज़्यादा समय ना बचुआ है कि अपने भैया बहनों से और बातचीत करें और मनोरंजन करावें, लेकिन अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने भैया तेजपाल को दे अनुमति। भैया बहनों राम राम।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी सलाह। आज का विषय है खास सामग्री में मिलावट संबंधी कानून, और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रवीण कृष्ण चौहान, और आपसे बातचीत कर रहे हैं ब्रजेश तिवारी।
1: यह है आपने 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। और श्रोताओं, आप तो जानते ही हैं कि हम हर वर्ग के लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं, और कार्यक्रमों की इन्हीं श्रेणी में एक कार्यक्रम है कानूनी सलाह। जी हाँ, हमारे सभी श्रोता कानूनी रूप से जागरूक हों, उनके क्या क्या अधिकार हैं और उनको क्या क्या उपचार प्राप्त हैं कानून के द्वारा, इन सारी चीजों पर हम बात करते हैं अलग अलग विषयों के साथ। इसी कड़ी में कानूनी सलाह कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे स्टूडियोज में पधारे हैं बरेली के एडवोकेट और विधि शिक्षक डॉक्टर प्रवीण कृष्ण चौहान, जिनसे हम बातचीत करेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में जो कानून है, क्या वो हमारे लिए कानूनी उपचार है, क्या क्या हमारे लिए कानूनी मदद है, इन सब पहलुओं पर। तो कार्यक्रम में डॉक्टर प्रवीण कृष्ण चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारा विषय है आज कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में कानूनी क्या क्या प्रावधान है, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले तो आप हमारे सभी श्रोताओं को एक ये बात बताइए कि जैसे खाद्य सामग्री हुई, वो सारी चीजें जो हम खाते हैं उन्हें लगभग खाद्य सामग्री कहते हैं, तो इसमें मिलावट जो है किस किस प्रकार से हो सकती है और इसके संबंध में क्या क्या कानून है, एक दिशा दृष्टि हमारे इस विषय पर दीजिए।
2: देखिए, सामान्यतः खाद्य विधियां जो होते हैं
1: जी,
2: उत्पादन, विनिर्माण और विक्रय से संबंधित होती हैं।
1: जी जी,
2: ठीक है
1: जी।
2: तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है कानूनों का कि खाद्य पदार्थों में होने वाले अपमिश्रण को, कानूनी भाषा में इसे अपमिश्रण कहते हैं, उसको रोकना व उसे ग्रहण करने वाले नागरिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, ये हमारा विधियों का प्राथमिक उद्देश्य होता है। अब बेसिकली ये अपमिश्रण क्या होता है, तो अपमिश्रण से तात्पर्य है किसी पदार्थ में किसी चीज को मिलाकर,
1: यानी कि मैं यहाँ बात रोकता हूँ, अपमिश्रण मतलब वो चीजें जो हम मिलावट करते हैं, वो चीजें।
2: हाँ,
1: तो जी,
2: अपमिश्रण से तात्पर्य है किसी पदार्थ में किसी चीज को मिलाना
1: जी,
2: या उसकी निकालकर उसकी गुणवत्ता का क्षरण करना।
1: अच्छा, यानी या तो कुछ ऐड कर दिया या उसमें से कुछ निकाल दिया
2: और उससे उसकी क्वालिटी को डिग्रेड
1: करना,
2: दैट इज जो है अपमिश्रण कहलाता है।
1: जी जी,
2: ठीक है। अच्छा, ये दो प्रकार से समानता होता है
1: जी।
2: एक तो जानबूझकर कोई व्यक्ति करता है किसी वस्तु को मिलाकर या हटाकर,
1: जी जी,
2: ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क,
1: हाँ,
2: मिल्क

0: अलग अलग तरह की चीजें मिलाई जाती हैं और
1: जी
0: उससे वो एक्सट्रैक्ट निकाल के
1: जी
0: उसको पतला किया जाता है,
1: हाँ
0: तो वो मिश्रण में आ जाता है।
1: जी
0: और दूसरा होता है दुर्घटनावश या संयोगवश,
1: जी
0: इसमें आपकी लापरवाही भी हो सकती है, अज्ञानतावश भी हो सकता है,
1: जी
0: अस्वच्छतावश भी ऐसा होता है,
1: जी
0: और पर्याप्त सुविधा के अभाव में भी कई चीजें खराब हो जाती हैं या डिग्रेड हो जाती
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: हाँ
1: अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे एक हल्के तौर पे, सतही तौर पे, जैसे गन्ने के जूस में बर्फ मिला के आदमी कहता है भैया एक गिलास जूस दे देना, और वो दुकानदार जो है जानबूझ के उसके बर्फ से ही भर दे और गन्ने का जूस डाले कम, तो लोग ठंडे के लालच में पी तो लेते हैं, लेकिन क्या वो भी अब मिश्रण
0: नहीं,
1: है?
0: देखिए अगर आपकी स्वेच्छा से वो बर्फ डाला गया
1: जी
0: है
1: जी
0: ठीक है तो
1: हाँ
0: देखा जाए तो उसमें आपत्ति नहीं है,
1: जी हाँ
0: लेकिन अगर वो जबरदस्ती आप उसको मना कर रहे हो फिर वो डाल रहा है
1: हाँ
0: तो वो
1: हाँ
0: एक एक जो है अनुचित।
1: अच्छा, बिल्कुल काम है, तो अच्छी बात, आपने बड़े ही हल्के और एक साधारण सतही तरीके से बताया कि श्रोताओं मिश्रण जो है वो दो तरीके से कर देते हैं, या तो आप जो पदार्थ है जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं खाद्य सामग्री उसमें कुछ मिला दिया गया हो, एड ऑन कर दिया गया हो, या फिर उसमें से कुछ निकाल लिया गया हो, जैसे दूध में से मान लीजिए कि क्रीम निकाल ली, या उस तरीके से उसका जानबूझ कर निकाल लिया गया हो, या मान लीजिए नकली दूध बनाने के लिए आजकल यूरिया और ये सारी चीजें, तो ये अपमिश्रण यानी कि मिलावट हुई। तो डॉक्टर साहब, अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये तो हुई भी खाद्य सामग्री और मिलावट की बात, तो कानूनी रूप से एक उपभोक्ता के पास क्या क्या जो है उपचार है?
0: देखिए पहले कई सारे कानून थे, जैसे
1: जी
0: खाद अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954,
1: जी
0: फल उत्पादन आदेश, मांस
1: जी
0: खाद, वनस्पति तेल,
1: जी
0: वनस्पति तेल पैकेजिंग का था, विनायक निष्कर्ष था, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश था,
1: जी
0: आवश्यक से निकल। वर्तमान में क्या किया, इन सारों को रिपील कर दिया गया, यानी
1: जी
0: हटा के एक नया कानून 2006 में हम लाए गए हैं।
1: अच्छा, ये
0: ठीक
1: छह
0: है,
1: हटा के एक नया आ गया,
0: हाँ एक नया कानून जिसको, तो आज की डेट में भारत में खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता संबंधी जो प्रमुख कानून है
1: जी
0: वो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,
1: अच्छा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम
0: मानक अधिनियम
1: जी,
0: जैसे इंग्लिश
1: अच्छा
0: हैं,
1: FSSAI,
0: हाँ जो 2006 में इसको पारित किया गया था।
1: जी
0: इसका वही है मेन काम, यह है कि जो इसके अंतर्गत अगर आप मानकों का पालन नहीं करेंगे या हानिकारक पदार्थों की मिलावट करेंगे
1: जी जी
0: तो आप पे सख्त कार्रवाई के प्रावधान
1: जी
0: हैं।
1: अच्छा एक बात बताइए, ये बड़ा एक सामान्य सी बात है कि क्या गंदगी भी इस कानून के अंदर, मतलब अगर मान लीजिए कि एक गोलगप्पे वाला है या फिर एक हर चीज की बात करते हैं कि वो कुछ हानिकारक चीज तो जो नॉर्मल चीज है उसको बनाने, लेकिन अगर वो उसमें साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहा है और मान लीजिए हाथ उसके गंदे हैं, तो ये सब भी मिलावट कानून के अंतर्गत आ जाएगा इस FSSAI में?
0: नहीं, अगर वो उसकी द्वारा अनहाइजीन रखा गया है और
1: जी
0: उसके द्वारा कोई बीमार हो तो निश्चित तौर पर वो इस कानून के अंतर्गत आ जाएगा और उसको
1: जी
0: सजा का प्रावधान है।
1: जी
0: इस कानून में आप समझिए 25,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक पुस्तकों के जुर्माने का प्रावधान है।
1: अच्छा
0: हाँ, और इसके साथ साथ मैं और बता दूं, इस कानून के साथ साथ जब इस तरह की कोई घटना होती है तो हम
1: जी
0: BNS के भी कुछ कानूनों को उसमें ऐड करते हैं।
1: जी
0: BNS में भी कई धाराएं हैं, 74-75 हैं
1: जी
0: अगर हम मिलावट करते हैं, और इसके अलावा 76-77 हैं अगर हम जो है औषधियों में मिलावट
1: तो
0: करते हैं।
1: BNS का मतलब ये हुआ है भारतीय न्याय संहिता,
0: हाँ जो पहले दंड संहिता कहलाती
1: जी
0: थी,
1: जी
0: वर्तमान में 2023 में भारतीय न्याय संहिता कहलाती,
1: जिसको हम लोग पहले इंडियन पीनल कोड
0: हाँ,
1: कहा
0: जी
1: करते
0: जी
1: थे।
0: जी
1: अच्छा
0: और उसमें सजा का भी प्रावधान है, छह
1: अच्छा
0: माह तक का कारावास का भी प्रावधान है उसमें।
1: अच्छा, तो आप जान रहे हैं, सुन रहे हैं कि भाई सजा का भी प्रावधान है, अर्थदंड भी है, और किस किस प्रकार से मिलावट हो सकती है और कौन कौन सी चीजें इसमें कवर हो सकती हैं, ये सारी बातों पर प्रकाश डाला डॉक्टर साहब ने। लेकिन क्या हमारे जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर या फिर आसपास लेबोरेटरी की अगर बात करें, या कानून के अंतर्गत कोई ऐसी भी प्रयोगशालाएं हैं जिनके तहत हम उस चीज को कवर करके और हम जो है मतलब उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये बात जान सकते हैं कि जिस चीज को हम कंज्यूम कर रहे हैं वो गुणवत्ता पूर्ण है कि नहीं?
0: जी हमारे यहाँ जो जिला स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी संस्थाएं बनी हुई हैं।
1: जी
0: 2001 का एक्ट जो आया
1: जी
0: उसमें द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई गई,
1: जी जी FSSAI,
0: हाँ वो ये जो है उसमें 22 मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन होता है जो
1: जी
0: राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है इसी को लेके।
1: जी
0: इसके अलावा हमारे यहाँ लोकल
1: जी
0: लेवल पे भी इस तरह के प्रावधान है
1: जी
0: जिसमें हम बोलते हैं कि एक शिकायत अधिकारी बनाया गया है।
1: जी
0: ठीक है,
1: जी
0: इस शिकायत अधिकारी को आप जाके अगर लोकल स्तर पे शिकायत करेंगे
1: जी जी
0: तो वो आपका समाधान करेगा
1: जी जी
0: और आप वेबसाइट पर भी जाके इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं
1: जी जी। तो जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया जिला स्तर पर और ये जो प्रयोगशालाओं के बारे में बताया, तो इसकी भी क्या कोई प्रक्रिया है, मतलब कि कैसे उन वहां अप्रोच करना है या
0: नहीं? सामान्यतः अगर किसी के साथ कोई इस तरह की चीज होती है
1: जी
0: तो वो एक तो है कि उपभोक्ता जो है
1: जी
0: वो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत की वेबसाइट दी हुई है
1: जी जी
0: वहां पे जाके अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकता
1: जी
0: है
1: जी
0: पहली बात
1: जी।
0: और दूसरी बात, लोकल स्तर पर अगर वो करना चाहता है
1: जी
0: अन्यथा
1: जी
0: की स्थिति में
1: जी जी
0: तो स्थानीय खाद्य अधिकारी जो है
1: जी
0: वो एक बनाया गया है हर जिले में
1: जी। ये तो आपने शिकायत करने का तरीका बताया, इस पे भी हम अगले चरण में आएंगे। अभी हम

0: बात कर रहे थे, जो अभी आपने कमेटी बताई और प्रयोगशालाओं की बात की, हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक आम उपभोक्ता सामान्य तौर पे, मान लीजिए कि उसको पता ही नहीं है कि जो चीज वो खा रहा है और जो कंटेंट का दावा किया जा रहा है कि भाई इसमें ये, मान लीजिए किसी ने किसी दुकान से एक मिठाई ही खरीदी और वो इस बात की गुणवत्ता जानना चाहता है कि ये मिठाई शुद्ध है कि नहीं है, तो वो आप मुझे बताइए कि कैसे इसको ही क्रॉस चेक करें।
1: नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, वो सैंपलिंग के माध्यम से उसका
0: जी
1: सैंपलिंग करके जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रोवाइड करा दे,
0: अच्छा
1: या वहां कंप्लेंट करे तो उनके लोग खुद आके सैंपल जो
0: अच्छा
1: कलेक्ट करके
0: अच्छा
1: वहां, और उसकी गुणवत्ता चाहिए अगर उसकी
0: यानी
1: गुणवत्ता।
0: कि यहां मैं आपको रोकते हूं कि यानी कि वो जिले में, हर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी होता है, वो उसको अप्रोच कर सकता है। अच्छा, अगर बिना कंप्लेंट किए कोई जानना चाहे कि कुछ जिला स्तर पे भी कोई राजकीय इस तरीके की प्रयोगशालाएं होती हैं?
1: जी होती हैं, और आपने देखा होगा अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह में आ जाता है कि सैंपल
0: जी
1: होली
0: यहां
1: के
0: से भी
1: टाइम
0: है।
1: पे,
0: हाँ हाँ हाँ
1: दिवाली के
0: हाँ
1: टाइम
0: हाँ
1: पे अक्सर आपने देखा होगा
0: जी
1: कि
0: जी
1: अधिकारी खुद ही एक्टिव हो जाते
0: खाद्य
1: हैं। हाँ,
0: नमूने
1: और
0: लेते हैं।
1: जगह जगह शॉप से नमूने ले
0: जी
1: जाते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: नमूने लेके यही वो वेरीफाई करते हैं
0: जी
1: कि जो खाद्य सामग्री दी जा रही है, सर्व की जा रही है, वो डिग्रेड तो नहीं है।
0: अच्छा
1: हाँ, तो डिग्रेड में मैंने जैसे आपको बताया कुछ जानबूझकर होती हैं,
0: हाँ
1: कुछ
0: कुछ
1: लापरवाही वश होती हैं,
0: हाँ
1: तो जहां लापरवाही वश होती हैं अगर लगता है तो उनको माफ भी कर दिया जाता है,
0: अच्छा
1: ठीक है, या उनके साथ जो है कम मतलब सॉफ्ट तरीके से पेश आ जाता है।
0: जी
1: लेकिन जो लोग इस तरह से जानबूझ के करते हैं, जैसे कोई नकली पनीर बना रहा है तो इंटेंशनली बना रहा है,
0: हाँ
1: एक जो है पनीर की अच्छे से आपने रख रखाव नहीं किया तो वो
0: हाँ
1: डिग्रेड हो गया, तो
0: हाँ
1: वो दोनों अलग अलग मैटर है,
0: जी
1: उसी
0: जी
1: हिसाब से उनकी सजा और उनके प्रावधान किया जाता
0: तो
1: है।
0: श्रोताओं, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने। डिग्रेड का मतलब ये कि अगर जो उसकी गुणवत्ता है, मान लीजिए कि दूध है वो या पनीर है वो 2 दिन पुराना है, 4 दिन पुराना है, तो उसकी गुणवत्ता खराब हो गई, लेकिन अगर वो पनीर ही नकली है तो ये जो जानबूझ का डिफॉल्ट है, इस तरीके की भी शिकायतें आती हैं मिलावट के संबंध में, और इनके लिए ही कानूनी उपचार है। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि ग्राहक जो है उसने मिठाई खरीदी या कुछ भी खरीदा और अपने जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से उस कंप्लेंट की या वहां पर सैंपलिंग के लिए किया या स्वेच्छा से भी सैंपलिंग कराई। अब बात करते हैं ये कि वो सैंपल में फेल हो गया, वो सैंपल फेल हो गया, अब इसके आगे का क्या स्टेप है?
1: अगर सैंपल में फेल हो जाता है तो प्रावधान नियम अनुसार
0: जी
1: जो भी वो वस्तु है उसी के हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी।
0: जी
1: कार्रवाई में जो है अर्थदंड जो है
0: जी
1: अलग, क्योंकि बहुत लंबा प्रावधान है, आप
0: जी
1: समझिए करीब 25-30 जो है इसमें सेक्शंस हैं,
0: जी
1: जो सिर्फ मतलब चैप्टर 10 जो है इस
0: जी
1: अधिनियम का
0: जी
1: वो सिर्फ शास्तियों की दंड की ही बात करता है,
0: अच्छा
1: तो उसमें 25,000 से लेकर 10 लाख रुपए का जुर्माना, जैसे मैं बता
0: मतलब
1: चुका
0: जिस
1: जो,
0: प्रकृति का है।
1: हाँ जिस प्रकृति, इसी तरह से BNS में जो धाराएं हैं
0: जी
1: उसमें सजा भी है और
0: जी
1: प्लस जुर्माना भी है, उसमें दोनों ही चीजें हैं, तो दोनों का मिश्रण। अब वो वस्तु स्थिति पर निर्भर करता है कि वो इंटेंशनली हुआ है
0: जी
1: कि वो बाई मिस्टेक हुआ है, उसी के हिसाब से वो अधिकारी अपनी रिपोर्ट देगा। अब वो सैंपल फेल कर जाता है
0: जी
1: तो उसी के अकॉर्डिंग जैसा भी वो मामला है
0: हाँ
1: उसके हिसाब से उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी।
0: लगाई जाती है। अच्छा, तो इसमें पेनल्टी के रूप में मान लीजिए कि अगर किसी ने, खाद्य विभाग ने किसी को इस बात की अधिकृत किया है या लाइसेंस दिया है, मान लीजिए कि वो इस चीज का संचालन कर सकता है और अगर उसका नमूना फेल हो जाता है, तो ऐसे में उसको लाइसेंस मिला हुआ है विक्रेता, उसके खिलाफ जैसे अर्थदंड तो हुआ ही हुआ, और इसके अलावा भी कुछ शास्तियां हैं?
1: हाँ, मैंने बताया BNS की जो धाराएं हैं
0: जी
1: वो उसमें अगर वो खाद्य पदार्थों के साथ जो है छेड़छाड़ करता है
0: जी
1: और उसको सेल करता है, मतलब दो
0: जी
1: तरीके, एक छेड़छाड़ करना खाद्य
0: जी
1: पदार्थों का अपमिश्रण करना
0: जी
1: और दूसरा ऐसे पदार्थ को सेल करना,
0: जी
1: दोनों अलग अलग सेक्शन है,
0: जी
1: तो दोनों में जो है आप समझिए 5,000 रुपए तक का अर्थदंड भी है,
0: जी
1: 6 महीने की सजा भी है
0: जी
1: और दोनों भी हो सकती हैं।
0: जी
1: और इसी तरह से अगर औषधियों के साथ ऐसा किया जाता
0: जी
1: है तो उसमें जो है सजा 6 महीने से बढ़ के 1 साल तक की हो जाती है
0: जी
1: और अर्थदंड भी बढ़ जाता है।
0: जी जी और जो है औषधि के साथ भी मिलावट हो सकती है, लोग इस तरीके से मिलावट करते हैं
1: हाँ, तो उसमें
0: तो
1: सजा ज्यादा है।
0: उसमें ज्यादा ज्यादा सजा है। हाँ, वो किसी के, श्रोताओं, वो किसी के जीवन से जुड़ी बात है, यानी कि आप बीमार हैं और आप ठीक होने के लिए दवा खा रहे हैं और पता चला वो दवा ही आपको बीमार कर देगी, तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई। तो ऐसे में जो मान लीजिए औषधि का विक्रेता है, उसको जिला स्तर पर लाइसेंस इशू किए जाते हैं और इस तरीके, तो उनके लाइसेंस के संबंध में भी कोई प्रावधान है?
1: कि अगर वो व्यक्ति पहली बार दोषी पाए जाते हैं
0: जी
1: तो सामान्यतः 2 साल तक के लिए निलंबित लाइसेंस किया जा सकता है,
0: जी
1: लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर दूसरी बार भी दोषी पाया जाता है
0: जी
1: तो उसमें आजीवन लाइसेंस निरस्त करने का भी प्रावधान है।
0: अच्छा, यानी कि फिर वो आगे से कभी विक्रय नहीं
1: नहीं
0: कर
1: कर
0: पाएगा
1: पाएंगे।
0: इस क्षेत्र में। डॉक्टर साहब, हमने बात की शिकायत कैसे लगे, नमूना कैसे लें और किस तरीके से शिकायतें करें। अब हम बात करते हैं कि एक आम आदमी के लिए, एक आम आदमी जिसको कि ये लगता है कि उसके साथ वो जो खाद्य सामग्री या जो भी चीज वो उपभोग कर रहा है वो मिलावटी है, तो वो उसकी शिकायत कैसे और कहाँ करें?
1: मैंने जैसे कि पूर्व में ही बताया है
0: जी
1: कि सबसे पहले जो उसकी वेबसाइट है हमारी FSSAI की,
0: जी
1: वहां आप जाएं, जो
0: जी
1: लोग जो है अवेयर है मतलब जो

0: कंप्यूटर से अवेयर है,
1: जी
0: इंटरनेट से अवेयर है,
1: जी
0: तो उसकी वेबसाइट जाए, वहां पे एक कॉलम रहता है शिकायत दर्ज करने का,
1: जी
0: आप जाइए वहां मेल डालिए और अपनी शिकायत दर्ज करा दीजिए, वहां से खुद आपको रिवर्ट आ जाएगा और एक्शन उस पर होगा।
1: जी
0: और दूसरा तरीका ये, आप इतना अवेयर नहीं है
1: जी,
0: तो आप व्यक्तिगत भेंट करके भी
1: जी,
0: जो जिला स्तर पर जो खाप सुरक्षा अधिकारी है उससे मिलें,
1: जी
0: और मिलने के बाद अपनी पूरी बात बताएं, अपनी शिकायत को, वो आपको बताएगा किस तरीके से हम कब आपके साथ जाएंगे, सैम्पलिंग कलेक्ट करेंगे, या आपके पास कुछ ऐसी कोई दुर्घटना हुई है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, गाजियाबाद की घटना है, दो बच्चे मृत हो गए मोमोज खा के।
1: अच्छा।
0: हाँ, उनके फादर उनके लिए मोमोज लेने गए
1: जी,
0: और उन्होंने वो मोमोज रात में खाए
1: जी,
0: और सुबह रात में ही उनकी तबीयत खराब हुई 1:30 बजे और सुबह डेथ कर गए
1: जी।
0: हाँ, तो फिर तत्काल प्रभाव से जो है उनको गिरफ्तारी हुई इस व्यक्ति की, और उसके सारे जो है मोमोज जो भी थे स्टॉल पे उनको तुरंत सैंपलिंग के लिए भेजा गया
1: जी,
0: और वो जो पता लगा कि उसमें उन्होंने इस तरह के कुछ केमिकल का यूज किया था
1: जी,
0: जो एक्चुअली पॉइजनस
1: अच्छा
0: थे
1: जी,
0: चटनी वगैरह में जो भी है, और वो जो है इतने हानिकारक थे और बहुत पुराने थे कि वो उसमें बच्चों की जान चली गई।
1: तो के साथ हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, आपने बात की कि भाई तरीका ये है, ऐसे ऐसे कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये उपभोक्ता निवारण जो अधिनियम है और उपभोक्ता भी संबंध डायरेक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है, तो इस नियम के तहत भी कुछ उपचार प्राप्त है। तो आप चलते चलते डॉक्टर साहब हमारे सभी श्रोताओं को ये बताइए कि किस तरीके से वो इन कानूनों का लाभ उठा सकते हैं, किन किन चीजों पे सावधानी बरतने की जरूरत है हमारे।
0: प्रथम बात, जहां भी आप कुछ खाद्य पदार्थ खाएं
1: जी,
0: तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें
1: जी।
0: दूसरा, जहां से आप कोई खाद्य पदार्थ खरीदें
1: जी,
0: अगर आपको ऐसा डाउट है
1: जी
0: कि ये मिलावटी है, नकली है या कुछ, तो तुरंत जो है या तो कंप्लेंट कीजिए, और सबसे बढ़िया है खाद्य सुरक्षा अधिकारी के उस पदार्थ के साथ आप उनके सामने पेश हो जाइए और उनको बोलिए सर ऐसे ऐसे मैंने यहाँ से इस दिन ये खरीदा था और मुझे डाउट है ये मिलावटी है या नकली है
1: जी।
0: वो तुरंत उसका चेक करा के खुद जो है
1: जी,
0: एकदम रिजल्ट सामने आ जाएगा।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने आपको जो है एक चलते चलते राय दी कि भाई इस चीज को सुनिश्चित कीजिए कि वो विक्रेता अधिकृत है कि नहीं है, साफ सफाई का ध्यान रखिए, और सारे ही उपचारों कानून के द्वारा हमें प्राप्त है उनका फायदा उठाइए भी अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ शोषण हो रहा है या गलत हो रहा है। तो आज कानूनी सलाह कार्यक्रम में इतना ही। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कानूनी सलाह में खास सामग्री में मिलावट संबंधी कानून। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर प्रवीण कृष्ण चौहान और आपसे बातचीत कर रहे थे ब्रजेश तिवारी। 100.4 FM पर ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है।
3: मैं अविनाश सिंह, जिलाधिकारी बरेली, आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 MHz पर। हमारे देश में जो जनगणना हो रही है वह दो चरणों में होनी है। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण, जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं, का कार्य चल रहा है, तथा द्वितीय चरण माह फरवरी 2027 में होगी। यह पूर्तियां डिजिटल मोड में होगी। प्रथम चरण की जो अवधि है वो 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक तय की गई है, तथा इसके पहले 7 मई 2026 से 21 मई 2026 तक स्वगणना हेतु तिथि निर्धारित है, जिसमें आमजन स्वगणना से संबंधित पोर्टल पर जाकर स्वयं ही अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा देश में पहली बार स्वगणना की विधि लाई गई है। इसमें कोई भी व्यक्ति सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल पर जाकर बड़ी आसानी से भारत सरकार द्वारा तय किए गए प्रश्नों के संबंध में जानकारी प्रदान कर सकता है। इस प्रक्रिया के अंत में एक ऐसी ID जनरेट होगी जिसे दिनांक 22 मई 2026 से दिनांक 20 जून 2026 के मध्य प्रागणक को प्रदान कर जनगणना की प्रक्रिया चंद मिनटों में ही पूरी की जा सकती है। इस प्रक्रिया में प्रागणक द्वारा उन्हें आवंटित हर उस मकान भवन को सूचीबद्ध करना है जिसमें कोई व्यक्ति रहता है या भविष्य में रह सकता है। साथ ही कुल 33 अधिसूचित प्रश्नों की जानकारी भी उसे प्रत्येक परिवार से लेनी है। प्रथम चरण में केवल परिवार से संबंधित जानकारियां ली जाएंगी, जबकि द्वितीय चरण में प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग जानकारी एकत्र की जाएगी। मकान सूचीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 33 प्रश्न अधिसूचित किए गए हैं, जिनके उत्तर प्रागणक प्रत्येक घर से प्राप्त करेंगे। इस जनगणना के कई फायदे हैं। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही सरकार आम जन मानस को लाभान्वित करने

0: के लिए योजनाओं का निर्माण करती है। इसके आंकड़े क्षेत्र विशेष के लिए भी योजनाएं तय करने में सहायक सिद्ध होते हैं, आधार का कार्य करते हैं। मेरा जनपद बरेली के सभी सम्मानित निवासियों से यह अपील अनुरोध है कि अपनी जनगणना स्वगणना के माध्यम से अधिक संख्या में करें तथा जब प्रगणक आपके घर जाएं तो उन्हें पूर्ण सहयोग एवं बिल्कुल सही सही जानकारी प्रदान करें। आपके द्वारा जनगणना में दिए गए चंद मिनटों का समय आगामी योजनाओं का निर्धारण करेगा, अतः अपना बहुमूल्य समय देकर सभी जानकारियां प्रगणक को दें, जिसके आधार पर सरकार आपके लिए आवश्यक एवं कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण कर सके। जय हिंद, जय भारत।
1: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सुगंध क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे।
3: पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज लखनऊ के जनभवन के गांधी सभागार में प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 6 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ये सभी राष्ट्र प्रथम के भाव और जनसेवा तथा सुशासन के संकल्पों के साथ सभी नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों की कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पेश है एक रिपोर्ट।

0: सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता, नकल विहीन और सुव्यवस्थित माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग में स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई और परीक्षा केंद्रों पर लगे AI कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। दो दिनों में कुल 1,92,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के चयनित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त OMR उत्तर पत्रिकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। धार्मिक महत्व के अलावा सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेन मिश्र ने आज अयोध्या में समिति की बैठक के बाद बताया कि श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: राम मंदिर परिसर को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने का कार्य लगातार जारी है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेन मिश्रा ने बताया कि मंदिर के मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अब परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ ही आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कार सेवकों की याद में बन रहा भव्य शहीद स्तंभ 15 जून तक तैयार हो जाएगा तो सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है। यही नहीं, परिसर में निर्मित हो रही आधुनिक म्यूजियम, 7D गैलरी और आकर्षक फसाद लाइटिंग की सुविधा श्रद्धालुओं को विशेष धार्मिक आनंद का अनुभव कराएंगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियुक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक की गुंजाइश कम होगी। श्रम संहिता के तहत समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। विभिन्न जिलों में जन जागरूकता रैलियों और संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हमीरपुर में मीडिया डे का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न मीडिया संस्थानों और पत्रकारों ने स्वगणना की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे जनगणना जैसे महत्वपूर्ण अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मदर्स डे के अवसर पर स्त्री वेलफेयर

0: फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंसर फ्री वुमेन भारत यात्रा आनंदी माँ एक जीवन बचाओ अभियान रैली का आज लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर श्रीमती पटेल ने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की मजबूती का आधार है। समय पर जांच और जरूरी सावधानी बरतने से कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। रैली में करीब 150 लोगों ने सहभागिता कर महिलाओं की सेहत, कैंसर जागरूकता और स्वास्थ्य भारत के संकल्प को लेकर समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। 1857 के पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा और क्रांति दिवस के उपलक्ष में आज मेरठ में जिलाधिकारी की अगुवाई में गांधी आश्रम से शहीद स्मारक तक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में सिविल डिफेंस, स्वयंसेवकों, आम जनमानस, स्कूली छात्राओं, विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता कर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर अमर शहीदों और वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये महासमर पराधीनता की बेड़ियों को छिन्न भिन्न करने का साहसिक और संगठित प्रयास था जिसने संपूर्ण राष्ट्र में आजादी की अलख जगाई। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का रुख बदल गया है। हल्की बारिश के बाद अब दिन के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने राज्य में आज से 14 मई के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव होने से कानपुर, आगरा और लखनऊ सहित आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेन चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 1,92,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेन मिश्र ने कहा परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपने ट्यून किया 100.4 FM पर आकाशवाणी का बरेली केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हुए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जनमंच। आज का विषय है जीवन एक रंगमंच है। प्रतिभागी हैं स्पर्श पटेल, अर्जुन सैनी और आपसे बातचीत कर रहे हैं मिथिलेश श्रीवास्तव।
4: नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव और कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है ये कार्यक्रम जो जनमंच है ये आप सभी श्रोताओं में से ही, आप सभी जो आम जनता है उनमें से ही किसी के लिए एक मंच है। आप में से कुछ लोगों को हम बुलाते हैं स्टूडियो में और एक विषय पे हम लोग परिचर्चा करते हैं। इसी सिलसिले में आज जो विषय है बहुत ही खास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का विषय है जिंदगी एक रंगमंच। जी हाँ, जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब उसके कलाकार हैं, पात्र हैं। अपने भूमिकाएं हम लोग यहाँ व्यक्त करते हैं, जीते हैं और बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कुछ है ये रंगमंच, जिंदगी और रंगमंच का तालमेल कैसा है, इसको कैसे हम और बेहतर तरीके से जी सकते हैं, कैसे जिंदगी के तमाम रंगों को हम कैनवास पे उकेर सकते हैं, इस पे बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है 2 खास मेहमानों को।

0: एक थिएटर से जुड़े हैं और एक स्पोर्ट्स से, और स्पोर्ट्स वो भी बेहद खास है, योग। जी हाँ, योग हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है ये किसी से छुपा नहीं है। और जो रंगमंच है थिएटर, वो कितना रंगीन है, जिंदगी के तमाम रंग किस कदर उसमें उकेरे जाते हैं वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो रंगमंच से हमारे साथ हैं स्पर्श पटेल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और योग प्रशिक्षक के रूप में हमारे साथ हैं अर्जुन सैनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।
1: धन्यवाद सर।
0: तो पहले तो जैसा कि रंगमंच से आप जुड़े हैं स्पर्श, आप कुछ बताइए, जिंदगी एक रंगमंच है कैसे?
1: नमस्कार सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर लाइन है कि जिंदगी एक रंगमंच है, और मैं ये इसलिए कह सकता हूँ कि रंगमंच में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग किरदार होते हैं, हर किरदारों के अलग अलग काम होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं। ऐसे ही जिंदगी में भी हम सबके अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं, अलग अलग किरदार होते हैं। तो रंगमंच और जिंदगी एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं।
0: बहुत जुड़े हुए हैं। अपनी जिंदगी में आपने कैसे फील किया इसको?
1: मेरे जिंदगी में सर, जैसे मैं थिएटर करता हूँ, तो थिएटर में मैं एज अ स्पर्श कई सारे किरदार निभाता हूँ, कई सारे पात्र करता हूँ। ऐसे ही जीवन में मैं स्पर्श एज अ बेटा भी हूँ, एज अ स्टूडेंट भी हूँ, एज अ थिएटर प्रैक्टिशनर भी हूँ, और मैं भाई भी हूँ।
0: भाई
1: तो
0: भी
1: ये
0: हैं।
1: मैं एक इंसान होने के साथ साथ कई सारे व्यक्तित्व, कई सारे किरदार निभा रहा हूँ।
0: कैसे निभा लेते हैं,
1: निभ जाते सर, यही जीवन है
0: निभ जाते
1: जी।
0: हैं। उनके लिए कोशिश कुछ करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। जैसे एक बेटे के रूप में जो आपके दायित्व हैं वो निभाने के लिए दूसरे बेटों को देखते हैं। जैसे आप कोई थिएटर पे कोई एक नाटक करना होता है, जैसे मान लीजिए बावर्ची का है, मान लीजिए तो दूसरे किसी बावर्ची से आप मिलते होंगे, वो कैसे एक्ट करते हैं, वैसे आप एक एनालिसिस करते होंगे। तो क्या बेटे के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए आप दूसरों को देखते हैं?
1: जी बिल्कुल, जैसे कि सर आपने कहा कि अगर मैं बावर्ची का किरदार करता हूँ, तो क्योंकि मैं बावर्ची नहीं हूँ, तो उसको सच्चाई से निभाने के लिए मैं एक असली बावर्ची से समझूंगा कि वो किस
0: हाँ,
1: तरह से
0: किस
1: करता
0: तरह
1: है।
0: से करता है।
1: ऐसे मैंने सर अपने जीवन में बेटे होने की चीज़ें हैं बहुत सारी अपने पिता से भी सीखी हैं, अपने बड़े भाई से भी सीखी हैं, तो वो धीरे धीरे सीख सीख के और करते करते वो चीज़ें आ जाती हैं
0: क्या सीखी है?
1: सर। जैसे कि बेटे होने का सबसे बड़ा दायित्व मुझे लगता है वो है पिता के प्रति सम्मान, और उनके किए हुए चीज़ों को, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि पिता मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो करते ही ना रहे, वो उन चीज़ों को शुरुआत कर दी उन्होंने, वो ठीक है, उसके बाद उनको मैं आगे ले जाऊँ, उनको बढ़ाऊँ। इस घर में जैसी जिम्मेदारी उनकी है, एक घर के चलाने वाले की, वो जिम्मेदारी मैं भी निभाऊँ, तो बस यही सारी चीज़ें हैं सर।
0: बिल्कुल, ये अपने आसपास से ही आदमी सीखता है ना। अर्जुन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो जिंदगी एक रंगमंच है, इस पे आपका क्या कहना है, क्या सोच है, क्या अनुभव है आपका?
1: हाँ सर, मेरा अनुभव यही रहेगा कि जैसे स्पर्श जी ने बताया था कि आज का जो समय है वो इसमें एक व्यक्ति बहुत से किरदार निभा रहा है। प्रकृति ने हमें, ईश्वर ने हमें इस दुनिया भेजा है, तो वो एक नाटक के तौर पे, एक जिम्मेदारी के तौर पे, क्योंकि हमें वहाँ ये चीज़ निभानी पड़ती है कि एक बेटे का किरदार कैसे निभाना है, एक हस्बैंड का कैसे निभाना है, एक भाई से कैसे निभाना है। तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें बहुत कुछ सीखने की भी जरूरत है। और आज का यूथ और ये जो चल रहा है, ये देश समय चल रहा है, उसके रिगार्डिंग
0: और आप तो सिखाते भी हैं,
1: जी।
0: मतलब जैसा कि आपका तो प्रोफेशन ही है स्पर्श, यहाँ रंगमंच है, आपको एक थिएटर करना है, एक्ट करना है। और आपके पास अर्जुन जी ये है कि जो बेटे के रूप में या भाई के रूप में जो रोल आपको मिला है, उसके अलावा एक अहम रोल मिला है गुरु का।
1: जी
0: आप सिखाते हैं,
1: जी
0: योग
1: सर,
0: सिखाते हैं, तो इस रोल को कैसे अदा करते हैं आप?
1: मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं अपने जीवन से। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आप अपने मुकाम तक ना पहुंच जाएं। तो हर व्यक्ति का एक मुकाम होता है, तो मैं अपनी शुरुआत अपने आप से करता हूँ, फिर मैं ये चीज अपने परिवार में करता हूँ। ऐसे मैं मैरिड,
0: काम क्या है
1: मुकाम एक ही है,
0: आपने?
1: अच्छा
0: हाँ,
1: इंसान बनना।
0: अच्छा इंसान
1: जी,
0: बनना। तो अब सवाल आएगा, अच्छा इंसान हम कैसे बन सकते?
1: अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छा करना, समाज को लेके चलना, परिवार को भी देखना, इन चीजों को लेके सबसे ताल

0: मेल बैठा हूँ कि
1: तालमेल।
0: जो रंगमंच है उसमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको ऐसे बेटे का किरदार कैसे निभाना है, पति का कैसे निभाना है,
1: जी जी
0: एक फादर का कैसे निभाना है।
1: तो आप कैसे निभाते हैं?
0: मैं अपनी दिनचर्या को ऐसे शुरुआत करता हूँ कि एक बेटे के रूप में कि मम्मी पापा की हेल्प करना, वाइफ की हेल्प करना, अपनी बेटी को लेके चलना, ऐसे योगा खुद करना, योगा बच्चों को भी कराना, घर में परिवार में कराना, और जो क्लासेस स्कूल में उनको लेके ये सारी चीजें करना।
1: इसमें ये जो रोल अदा करना है इसमें योग कैसे भूमिका निभाता है, कितना अहम है?
0: ये हर व्यक्ति के लाइफ में बहुत जरूरी है। ये
1: पहले तो योग है क्या यही बताइए, बहुत सारे लोगों को लगता है योग है बस वो अनुलोम विलोम है ना।
0: जी जी,
1: योग के बारे में एक बार फिर बता दीजिए।
0: योग व्यक्ति को एक स्वस्थ रखने का तरीका है,
1: स्वस्थ रखने का तरीका है।
0: तो आज के टाइम में जो व्यक्ति है बहुत सी चीजों से घिरता चला जा रहा है, ओबेसिटी है, हमारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो पनप रही शरीर के अंदर, उल्टा उल्टा खा रहे हैं, सही डाइट नहीं रख रहे हैं, खान पीन उनका बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुका है। तो मैं तो ये सभी श्रोताओं से यही बोलूंगा कि अपने खाने पीने को बहुत अच्छे से विशेष ध्यान दें, योग करें और स्वस्थ रहें,
1: योग करें और स्वस्थ रहें। अब योग, वही हम कह रहे हैं कि योग आखिर कैसे किया है, क्या कि क्या जिंदगी को मैनेज करना भी एक योग है?
0: जी, या आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में टाइम निकालना पड़ेगा इस चीज के लिए कि हमारे पास आज का टाइम ऐसा हो गया है कि हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं कि अपने खुद के लिए कि आधे घंटे एक घंटे हम योगा कर सकें, अपने आप को स्वस्थ रख सकें,
1: अपने आप को स्वस्थ रखने का खुद के लिए समय नहीं निकाल।
0: जी जी,
1: स्पर्श जी आप क्या कहेंगे, खुद के लिए समय निकाल पाते हैं?
2: हाँ सर, मैं तो निकाल पाता हूँ और मैं मानता हूँ कि खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। आपका सवाल बहुत सुंदर था सर कि क्या जीवन को मैनेज करना योग है। तो बिल्कुल है सर, इस भाग दौड़ भरे जीवन में जैसे भैया ने कहा कि अगर हम खुद के लिए समय निकाल पाए, हम परिवार के साथ समय बिता पाए, हम खुद को समझ पाए कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, हमारी क्या चीजें हम महसूस कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का योग है।
1: तो कैसे करते हैं आप मैनेज, कैसे अपने फैमिली के साथ कैसे समय बिताते हैं, अच्छा समय?
2: जी सर, मेरे परिवार में एक रूल है कि हम अगर घर पे सारे लोग हैं तो हम शाम का जो खाना होता है वो एक साथ ही खाएंगे।
1: अच्छा अच्छा,
2: चाहे हम लोग कहीं हो, वो अगर ऐसा होता है थिएटर में मुझे कोई बहुत लेट हो जाता है तो बात अलग होती है, नहीं तो हम ऐसा करते हैं कि हम डिनर हमेशा साथ करते हैं। जब परिवार साथ बैठता है उसके बाद हम लोग साथ खाना खाते हैं, बात होती है। और एक बहुत सुंदर चीज मेरे पिताजी ने शुरू करी मेरे परिवार में, जैसे गर्मियों को समय सर होता ना, तो हम लोग खाना पीना खाने के बाद मान लीजिए कि गर्मियों में तरबूज बहुत खाया जाता है, तो तरबूज काट लिया गया है, रख दिया गया है, और ऐसा नहीं किया कि आपको अलग बांटा है मुझे अलग, नहीं, एक जगह एक साथ काट के सब लोग इस थाली में खा रहे हैं।
1: अच्छा,
2: बातचीत हो रही है, कैसे दिनचर्या रहा, थिएटर में क्या रहा। तो इस तरह से सर मुझे तो बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट और समय मिलता है जिसमें मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, और ये बहुत मेरे परिवार की तरफ से बहुत अच्छा है कि वो मेरी चीजों को जानने की बहुत कोशिश करते हैं। और इंसान को जब इंसान अपने आप को समझा पाता है तो बहुत हल्का महसूस करता है। तो बस इस तरह से
1: बिल्कुल हम अपने आप को जब समझा पाते हैं तो हल्का महसूस करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या हम खुद को समझ पाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे अर्जुन जी, क्या हम खुद समझ पाए हैं?
0: नहीं, आज का टाइम ऐसा है कि इंसान अपने आप को नहीं समझ पा रहा है लेकिन दूसरों को समझा रहा है। मैं तो शुरुआत ये करता हूँ कि इंसान को पहले खुद को समझना चाहिए कि हमें अपनी दिनचर्या कैसे रखनी चाहिए, इस वातावरण को लेके कि जो चल रहा है टाइम में, कि इंसान अपने आप को टाइम नहीं दे रहा है, समय निकाल नहीं पा रहा है, परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि परिवार में जैसे रंगमंच हमारा प्रोग्राम है ये, तो रंगमंच का एक ही उसमें एक पात्र होते हैं, एक पात्र हो के कई कलाकार होते हैं उसमें निभाए जाते हैं। कहीं भी कोई चीज भूल होती है, गलती होती है, तो ये नहीं चीज वहां से खत्म हो जाती है, वहीं से चीज स्टार्ट होती है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए और अपने आप को टाइम देना चाहिए। अपने आप को देंगे टाइम तो आप घर परिवार समाज को दे पाएंगे।
1: इसमें एक बात आती है कि जिंदगी एक रंगमंच है, जैसा कि हमारा इस आज के प्रोग्राम का विषय है, और जिंदगी रंगमंच है, हमें एक न एक रोल मिला हुआ है। क्या हमें पता है कि हमें रोल मिला क्या है?
0: नहीं,
1: कभी
0: मैं तो
1: हम लोग कभी आपने सोचा है?
0: नहीं,
1: हम जिसे हम लोग अपने आप से सवाल करें कि हमें ये जिंदगी क्यों मिली है, ये अगर एक रंगमंच है तो हमारी

0: भूमिका क्या है? क्या हम बेटे के रूप में ही हमारी भूमिका है या फिर एक पति के रूप में ही भूमिका है? वास्तव में हमारी भूमिका क्या है आपकी नजर में? स्पर्श, हाँ पहले आप बताइए
1: मैं
0: अर्जुन जी।
1: बताना चाहूँगा सर
0: जी
1: कि हमें ईश्वर ने जब इस दुनिया पे भेजा है तो यही धर्म हमारा ये नहीं कहता कि आप अपने पिता का रोल अदा करिएगा या भाई का करिएगा। हमें एक समाज में, एक हम मनुष्य प्राणी हैं तो हमें एक समाज को भी लेके चलना पड़ता है। एक सबसे बड़ी बात आती है इंसानियत।
0: इंसान की।
1: अगर हम अपने घर तक ही सीमित हैं तो हम एक इंसान कहलाने लायक नहीं है। हमें अपने वातावरण में सभी को लेके चलना पड़ता है, सभी को देखना पड़ता है, तभी हम एक रोल अदा कर पाएंगे, ना कि हम एक घर का ही रोल अदा कर पाए। हमारे अंदर इंसानियत होना चाहिए, दूसरे के प्रति होनी चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, ये चीज।
0: जी हाँ, स्पर्श आप क्या कहना चाहेंगे?
2: सर, एक थिएटर में बहुत सुंदर चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। तो इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है सर कि जो परिस्थिति घट जाए या जो इन द मोमेंट चीज़ हो जाए उसको लेके आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं। तो सर मुझे तो लगता है कि हमारा जो किरदार इस जीवन में है वो डिफाइन नहीं है,
0: डिफाइन नहीं है,
2: वो बदलता रहता है, हम
0: बिल्कुल।
2: बढ़ते रहते हैं, नई नई परतें आती रहती हैं, तो उस तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। बस ये है कि रुकना नहीं है, चलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कुछ भी किरदार हो, चाहे जीवन में कुछ भी ऊंचा नीचा जो भी हो।
0: अभी तक आपको जो किरदार अभी आप निभाते आए हैं रंगमंच पे, थिएटर में कई सारे आपने प्लेस किए होंगे, कौन से किरदार के सबसे निकट पाते हैं अपने आप को?
2: सर एक किरदार था,
0: हाँ
2: एक कहानी है राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर की,
0: हाँ हाँ
2: जसमा ओढ़न,
0: अच्छा
2: एक जाति है ओढ़न,
0: हाँ
2: उड़
0: हाँ
2: जाती है, उसकी कहानी है। उसमें एक उनका सलाहकार होता है राजा का,
0: अच्छा
2: जो कि एक यूनिक होता है, ट्रांसजेंडर।
0: अच्छा अच्छा
2: जी, ट्रांसजेंडर होता है। तो उसकी भूमिका थी, उसका नाम बारोट होता है। उसके भीतर ऐसी बहुत सारी भावनाएं हैं। उसकी जो भावना ये है कि वो दूसरों से, वो अपने अंदर जो है उसे मतलब एक्सेप्ट नहीं करता,
0: अच्छा
2: बल्कि जो सामने देख लेता है, जो दूसरे में अच्छी चीज खूबी देख लेता है, बस उसको वैसा बनना चाहता है,
0: अच्छा
2: वैसा
0: अच्छा
2: होना चाहता है,
0: अपनी खूबी नहीं देखते हैं,
2: नहीं देखता।
0: अपनी अच्छाई नहीं दिखती,
2: नहीं
0: सामने वाले की दिखती,
2: जी,
0: अच्छाई दिखती।
2: अच्छा है।
0: ये
2: जी
0: तो बहुत अच्छी बात है उस करेक्टर की, है ना,
2: जी
0: क्योंकि आज के समय में हर कोई दूसरों की बुराई देखता है।
2: जी
0: अच्छा फिर आगे।
2: फिर सर जब, क्योंकि मैं इस सोशल मीडिया के सबसे हाईएस्ट दौर में बड़ा हो रहा हूं, तो मुझे एहसास हुआ कि सोशली हम लोग ज्यादातर वो करते हैं जो हम नहीं हैं, हम प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। तो मुझे उस करेक्टर की सबसे सुंदर बात ये लगी कि वो पॉजिटिव होने के बाद भी वो लोगों की अच्छाई या लोगों से सीख सीख के वो एक ऐसा बन गया कि वो खुद को भूल गया, वो खुद को नहीं रहा। तो जीवन में अच्छा सीखना, अच्छा मतलब बुरा सीखना जो भी है, बट उसने खुद की संवेदनाएं, खुद की सच्चाई उसको भुला दिया। तो वो करेक्टर सर मेरे साथ बहुत रहा, क्योंकि मैं जब बड़ा हो रहा था तो हम चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो मुझे भी एहसास हुआ कि हम खुद को नहीं जानते, हम समाज से या समाज हमसे क्या चाहता है हम वैसे बनने की कोशिश करते हैं। तो वो करेक्टर सर मेरे बहुत करीब रहा, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि खुद को जानना कितना जरूरी है, कितना अहम।
0: खुद को जानना कितना जरूरी है, बहुत अहम है। आपके क्या विचार हैं अर्जुन जी, आपके जीवन में जैसे योग है, ये कितना आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहा है अभी भी?
1: मेरे ही जीवन में नहीं, ये मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति के अंदर प्रभाव डालना चाहिए, और मेरे अंदर तो डालता ही ये कि इससे दिनचर्या जो होती है वो बहुत ही अच्छी आती है, कि अगर हम शुरुआत अच्छी करते हैं तो उसका अंत भी अच्छा ही होता है। आप योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे अपने जीवन में। ऐसे टीचर जब मैं बच्चों के करीब जाता हूँ तो बच्चे मेरे से बड़े खुश रहते हैं, वो इसी रिगार्डिंग खुश रहते हैं कि मैं उन्हें समझा पाता हूँ, उन्हें करा पाता हूँ अच्छे से, कि जिससे मेरा उनसे तालमेल बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर मैं ना भी जाता हूँ तो हमेशा याद करते हैं कि सर आप क्यों नहीं आए, कि सर आप छुट्टी ना किया करिएगा। हाँ
0: सही बात है। और कुछ ऐसे अगर आप योग बताना चाहें, कुछ ऐसे योग के मतलब आसन या फिर तरीके अगर आप बताना चाहें हमारे श्रोताओं को, जिसके जरिए वो अपनी दिनचर्या बेहतर कर सकें, जिंदगी और अच्छे से मैनेज कर सकें।
1: जैसे आपने बताया कि अच्छी दिनचर्या कर सके, तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि हर ये जो जिंदगी है वो तो बहुत भाग दौड़ वाली जिंदगी है, तो इंसान को मैं चाहता हूँ कि उसमें अपना थोड़ा सा टाइम निकालें मॉर्निंग का, और उसमें सबसे पहले अपने आप को कि अपने होने के नाते उसी पे आप वर्क करें और योग को अपनाएं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अपनी फैमिली के साथ रहें, बैठें, छत पे जाएं,

0: सुबह मॉर्निंग में आसन की बात करें, पद्मासन है, चक्रासन है, सूर्य नमस्कार है, मयूर आसन है। तो अगर ये आसन करते हैं तो ये ही नहीं, हमारी बॉडी भी फ्लेक्सिबल रहती है, डाइजेशन होता है वो भी अच्छा रहता है, किडनी लंग्स ये भी स्वस्थ रहेंगे। और ये कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में इंसान अपने आप से बहुत दूर जाता रहा है, वो इसलिए क्योंकि इंसान जो जा रहा है वो सोशल मीडिया में घुस गया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक आभासी दुनिया में हम लगातार जी रहे हैं और जो एक्चुअल हमारी लाइफ है, हम अपने परिवार में भी जैसा कि आपने बताया स्पर्श कि डिनर टाइम पे आप लोग साथ बैठते हैं, और लेकिन कई सारे घरों में परिवारों में ये आलम है कि डिनर टाइम पे साथ बैठे उन्हें कई दिन कई महीने हो जाते हैं। तो इस चीज़ को क्या आप देखते हैं कि सोशल मीडिया जो है या कहें स्मार्टफोन, इसने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है?
2: बिल्कुल कह सकते हैं सर, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि सच में बात तो यही है कि हम क्या है ये डिफाइन होता है कि हम कैसे सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, और यही सबसे जो बेसिक चीज़ है वो सोशल मीडिया ने छीन ली है। मैं क्या हूँ अब ये डिफाइन हो रहा है कि मुझसे सोशल मीडिया क्या चाहता है। तो इस वजह से हम जो अपनी भीतर की जो सच्चाई है, अपनी संवेदनाएं है, एम्पैथी है, काइंडनेस है, इनको छोड़ के कुछ और होते जा रहे हैं, और कुछ और होना सर हमें हमेशा अपनों से दूर कर देता है। क्योंकि और मैं तो चाहता हूं कि इंसान हमेशा अपनी अपने आप को सुने सर, जैसे हमने पहले बात की, बेसिक यही है, और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि इतनी छोटी उम्र में ये सीख मुझे मेरे गुरुओं ने या मेरे परिवार से मिली कि खुद को सुनना बहुत जरूरी है, खुद की आवाज़ सुनना बहुत जरूरी है, उससे आप अपने और अपनों के करीब रहते हैं
1: जी। और इसमें योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासतौर पर जो ध्यान मेडिटेशन है ना, तो इसके बारे में अगर कुछ आप बताएं अर्जुन जी, मेडिटेशन के बारे में।
0: मेडिटेशन एक वह क्रिया है जिसमें आप बैठ के शांत मन से आप एकांत में कहीं बैठ के कर सकते हैं। उससे ये होगा कि हमारी जो भी बेकार की चीजें होती हैं वो माइंड से स्किप हो जाती हैं और अच्छे विचार आते हैं उससे। हम कुछ भी नया कर सकते हैं, नई चीजें आती हैं हमारे माइंड में, और ये सीख हमारे घर परिवार हमारे छोटे लोगों को जाती हैं, क्योंकि पहले के लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ थे, आज के टाइम वो आ गया कि उनका जो वातावरण है बहुत ही ज्यादा बेकार होता जा रहा है, और टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं अपने आप को, योग व्यायाम ये सारी चीज छूटती जा रही है,
1: छूटती जा रही है।
0: तो उन्हें ये चाहता हूँ कि अपने छोटों के साथ बड़ों के साथ उन्हें बैठ के ये चीज करनी चाहिए, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, और जो हमारे स्मार्टफोन सोशल मीडिया ये भी दूर रहेगी,
1: ये भी दूर रहेंगी, क्योंकि इनके जरिए पहले तो जो रेडिएशंस हैं वो नुकसान करते हैं, दूसरे हमारे जो बच्चे हैं कम उम्र में ही उनको स्मार्टफोन पकड़ा दिया जाता है, तो और उससे रेडिएशन जाते हैं, उससे तो नुकसान पहुंचता ही है। बाकी अब वो एक कई सारे साइंटिफिक चीजें हैं, कई सारे कुछ हार्मोन डोपामाइन रिलीज होता है, इससे उन्हें खुशी बहुत ज्यादा मिलती है, महसूस होता है, मिलती नहीं है, और फिर उन्हें कहा जाता है खेलो तो उन्हें बुरा लगता है, स्मार्टफोन छीन लिया जाए तो बुरा लगता है। और जो हम लोग आज बात कर रहे हैं, जिंदगी एक रंगमंच है, इसके बारे में तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये क्या चीज है, वो उन्हीं वर्चुअल फील्ड में घूमता रहता है उनका दिमाग। तो ऐसे में क्या स्मार्टफोन को बैन कर देना चाहिए, एक लिमिट कर देना चाहिए?
0: जी जी सर,
1: हाँ, आप 6 बजे के बाद स्मार्टफोन नहीं यूज करना है, बताइए आप अर्जुन जी।
0: जी सर बिल्कुल, आपने सही कहा कि हर चीज की एक लिमिट होती है, चाहे कोई भी हुआ, बच्चे हुए बड़े हुए। आज का टाइम है कि फोन की कुछ चीजें ऐसी हम उसके आदि बनते जा रहे हैं, हमें आदि नहीं बनना है, हमें जरूरत के हिसाब से करना चाहिए। हमें जरूरत है कोई संदेश भेजना है या कोई वीडियो कॉलिंग भी हो रही, जो चीज अच्छी है वो बुरी भी है, तो मैं चाहूंगा
1: लिमिट कर दिया
0: जाए, चाहे बच्चों के साथ हो या खुद के साथ, हमें खुद टाइम देना चाहिए। मैं ऐसे स्पोर्ट टीचर हूँ, योगा टीचर भी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी यही करता हूँ कि अपने भतीजों को, अपनी बच्ची को फोन को दूर रख के मैं उसे फील्ड में ले जाता हूँ, मॉर्निंग में, सुबह में, शाम को भी, उससे उनके साथ खुद खेलता हूँ, उन्हें खिलाता भी हूँ। ये कहता हूँ कि बच्चों दूर रहो फोन से, कहने को मैं सच्ची कड़वी सच्चाई बताऊं कि मेरी जो बच्ची है वो भी फोन की जिद करती है, तो उसे कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल हो रहा है कुछ चीजों को लेके, तो मैं उसे स्किप करा दे रहा,
1: वहां चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे। हाँ, कई बार ये देखा गया कि चिड़चिड़े
0: जिद करते हैं
1: वो,

0: खाना खाते समय फोन चाहिए,
1: जी
0: या
1: जी
0: फोन नहीं तो टीवी चाहिए, तो
1: जी
0: ये तो वाकई।
1: हाँ
0: और क्या कुछ और करते
1: हाँ
0: हैं आप?
1: हाँ जी, जब मैं स्पोर्ट में गेम कराता हूँ बच्चों को, तो उनका मैंने देखा है, उन्हें मैं चीज़ें समझाता हूँ, उन्हें डाइट के बारे में बताता हूँ कि आप ये गलत चीज़ें ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं। हाँ,
0: बिल्कुल।
1: तो फास्ट फूड को जब आप स्किप करेंगे, मैं कहता हूँ जूस पीजिएगा, ड्राई फ्रूट लीजिएगा, फ्रूट लीजिए, अच्छे फल खाइएगा, ताज़ी सब्जियाँ खाइएगा। जो आप फ़ोन में लगे रहते हो, वो ये सबसे बेकार की चीज़ें आपकी गलत आदतें हैं और जो कभी नहीं जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे योगा करें, गेम खेलें, इसमें फील्ड भी अच्छी मिलेगी आपको, अच्छे लेवल पे भी जाएंगे, फोन आपको कुछ नहीं देगा, गलत चीजें भी सिखाता है थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा, और स्पोर्ट्स से जुड़े रहेंगे, योगा से जुड़े रहेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी जो दिनचर्या होगी बहुत अच्छी रहेगी और रंगमंच में वो एक अच्छी भूमिका भी निभा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। स्पर्श, आप क्या कहेंगे रंगमंच में, जिंदगी के रंगमंच में अच्छी भूमिका निभाने के लिए हमें क्या करना होगा?
1: सर, जिंदगी के रंगमंच में अच्छी भूमिका निभाने के लिए पहले तो हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जो बात आई सर, आपने बात की डोपामिन की, आपने स्मार्टफोन की बात की, तो सर वो एक स्टिमुलेशन होता है जो बहुत जल्दी सोशल मीडिया से दिमाग को मिल जाता है। जैसे पहले टेस्ट क्रिकेट होता था सर, तो अब भी होता है, तो उसमें लोग रातों रातों भर टेस्ट क्रिकेट देखते थे, उसका एंजॉय करते थे, मजा लेते थे, बट वो धीरे धीरे कम होते होते अब 20 ओवर पे आ गया है, 20 ओवर से 10 ओवर पे आ गया
0: दस
1: है,
0: ओवर पे।
1: क्योंकि वो जल्दी से वो चाहिए मजा। फील्ड में खेलते समय, भागते समय, जैसे अर्जुन भाई ने कहा, जो डोपामीन, जो गोल मारते समय जब बॉल बैट के बीच में आती है और सिक जाता है, वो जो डोपामीन होता है वो रियल डोपामीन है, जो बॉडी को चला रहा है, जो
0: बिल्कुल।
1: माइंड को और बॉडी को सही तरफ ड्राइव कर रहा
0: उसको क्या कर रहे हैं आजकल लोग, स्मार्टफोन या फिर टीवी पे उंगलियों से ऐसे
1: है।
0: बस
1: जी
0: कर दिया, वो स्क्रीन पे ही चला गया सिक्स,
1: चला गया,
0: उतने में खुश हो जा रहे हैं, क्या
1: वो
0: फायदा?
1: शॉर्ट डोपामीन हो गया सर।
0: शॉर्ट डोपामाइन, बस आपकी उंगलियां हिल रही हैं और कुछ नहीं, बाकी तो आप बैठे हुए हैं चुप मार के, दिमाग में एक वर्चुअल बन गया। तो
1: जी
0: इसमें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए।
1: जी
0: बाकी और क्या कर सकते हैं हम लोग आपके मुताबिक, जिंदगी की जो जिंदगी को मैनेज करने के लिए
1: जी
0: आपके हिसाब से? अभी तक तो आपने काफी कुछ बताया,
1: जी
0: आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जैसे सभी साथियों को जो युवा हैं?
1: सर, मैं थिएटर के थ्रू एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे मैं रंगमंच करता हूँ, तो अगर मैं कोई करेक्टर निभा रहा होता हूँ, तो वो करेक्टर अगर उतनी सच्चाई से नहीं आता, तो ऐसा लगता है कि एक इंसान केवल शब्द बोल रहा है। तो पहली चीज़ तो हमारी अपनी सच्चाई, खुद के प्रति ईमानदारी,
0: ईमानदारी।
1: और दूसरा बाकी सारी चीज़ें, जैसे थिएटर केवल एक्टर से और डायलॉग से नहीं बनता, उसमें सेट्स, लाइट्स, परफॉर्मिंग एक्टर क्या कर रहा है, उसके जीवन में क्या घट रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। और सर, मुझे लगता है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, लाइफ को बेटर बनाने के लिए। मैं भी कभी कभी आगे पीछे चीज़ें हो जाती है, मैं भी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो मेरा मैसेज बस यही है कि खुद को जानो, खुद को समझो, अपने प्रति ईमानदार रहो, परिवार के साथ समय दो और थोड़ा ठहरो। जल्दी से भागने वाली चीज़ें स्टेल हो जाती हैं, ठहरने वाली चीज़ें हमेशा अच्छी रहती हैं और उनको समझ पाते हो, देख पाते हो।
0: जी बिल्कुल। आपका आखिरी कमेंट क्या रहेगा अर्जुन जी?
1: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा ये संदेश ये रहेगा कि इस रंगमंच में इंसान को जो भूमिका मिली हुई है, तो वो यही है, घर तक सीमित नहीं है, हमारे चारों तरफ हो रहे एनवायरनमेंट, वातावरण को लेके उसमें भी बड़ा तालमेल बैठाना चाहिए। जैसे हमें कि एनिमल के प्रति है, एनवायरनमेंट के प्रति है, किसी बड़े बुजुर्ग के प्रति है, तो हमें वो भी किरदार निभाना है, हम घर तक सीमित नहीं है।
0: अपनी ड्यूटी समझनी होगी
1: जी सर,
0: तभी हम,
1: हाँ, अपने कार्य को समझना है।
0: तभी हम अपने अपने ही साथ साथ दूसरों की जिंदगियों को भी बेहतर कर
1: जी
0: सकेंगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप दोनों के माध्यम से जो हम मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तमाम श्रोताओं को, वो मैसेज पहुंचा होगा कि जिंदगी को अच्छे से मैनेज करिए और जो रंगमंच हमें मिला है, ईश्वर ने हमें दिया है, उस पे अपनी भूमिका अच्छे से निभाएं और इस दुनिया को जो ईश्वर ने हमें इतनी बेहतरीन दुनिया दी है, इसको और भी बेहतर बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप दोनों का यहाँ आने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: शुक्रिया, धन्यवाद सर। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम जनमंच, विषय था जीवन एक रंगमंच है। प्रतिभागी थे स्पर्श पटेल, अर्जुन सैनी, और आपसे बातचीत कर रहे थे मिथिलेश श्रीवास्तव। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर।
3: के दीवानों के लिए एक हम छोटा सा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, इसका

नाम है आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ, आप अगर आकाशवाणी के दीवाने हैं, आप सब में दीवानगी है आकाशवाणी के प्रति, तो आप मोबाइल उठाइए, अपना वीडियो बनाइए और वीडियो में बताइए कि आपने पहली बार आकाशवाणी को कब सुना, और अपनी एक यात्रा के बारे में बताइए कि कब कब सुनते रहे, किन हालातों में सुने, रेडियो का कौन सा सेट आपने इस्तेमाल किया, और भी बहुत कुछ आप बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ड्यूरेशन आपके वीडियो की 2 मिनट होनी चाहिए। और जो लोग वीडियो नहीं बना पाएं वो ऑडियो भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा तो माध्यम ही है रेडियो। तो आपकी जो वीडियोज़ हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ेंगे, जो भी चुनिंदा अच्छे अच्छे वीडियो होंगे। तो और कहाँ भेजना है ये भी नोट कर लीजिए, आकाशवाणी बरेली @gmail.com। आकाशवाणी में एक

0: bareilly@gmail.com, आकाशवाणी में AKSHVANI बरेली BARREILLY, आकाशवाणी बरेली @gmail.com इस ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है। मात्र 2 मिनट का वीडियो शूट करना है, सेल्फी ले सकते हैं या फिर किसी से रिकॉर्ड करवा लीजिए सामने से। तो जल्दी से जल्दी आप अपने वीडियो भेजिए, हमें आपके वीडियोस का इंतजार है, क्योंकि आकाशवाणी की दीवानगी चारों तरफ फैल रही है और उसके दीवाने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार
1: श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के संबंध में, पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिनकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज कार्य, विज्ञान और तकनीक, लोक कल्याण और नागरिक सेवा, उद्योग और व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं असाधारण योगदान पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी निर्जातीय समूह, पेशे, पद और लिंग के हों, इन पुरस्कारों के योग्य हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://award.government.india पर किया जा सकता है। इसमें मांगी गई जानकारियों को भरकर व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकित हो सकते हैं। इन पुरस्कारों के संबंध में जारी नियम एवं दिशा निर्देश https://padmawards.government.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम मुझे याद है जरा जरा। चंद्रमौली मिश्रा से बातचीत कर रहे हैं ब्रजेश तिवारी।
2: 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और श्रोताओं हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा। ये वो कार्यक्रम है जो दिखाता है कि कैसे हम याद करते हैं अपने उन सभी संजोए हुए पलों को अपने श्रोताओं के साथ, जो उनके जीवन में कहीं ना कहीं तैर रहे हैं रेडियो को लेकर के। और चूंकि आकाशवाणी पूर्ण कर रहा है अपने 90 वर्ष की यात्रा, और इस 90 वर्ष की यात्रा में इतनी ढेर सारी लम्हे और सुखद अनुभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि उनको अगर हम एक सूत्र पिरोए तो उनकी एक इतनी सुंदर माला निकल के आती है हमारे जीवन में, जो एक बड़ा ही सुखद अनुभव हम सभी को देती है। ऐसे ही सुखद अनुभव अलग अलग श्रोताओं के साथ, जो एक लंबे अरसे से हमें सुन रहे हैं, हम लेकर आते हैं कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा में। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियोज में पधारे हैं चंद्रमौली नारायण मिश्रा जी, जो कि एक लंबे समय से रेडियो को सुनते हैं। इनके अपने जीवन में रेडियो से जुड़े कुछ प्रसंग हैं, और चूंकि चंद्रमौली नारायण मिश्रा जी एक पेशेवर हैं, MBA करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और बताते हैं कि उनके जीवन में रेडियो का बहुत अहम योगदान रहा है उनके यहाँ तक के सफर में। तो चंद्रमौली नारायण मिश्रा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार सर, मैं चंद्रमौली मिश्रा
2: जी।
3: सर, आज रेडियो का जो हमारे जीवन में महत्व है,
2: जी जी,
3: वो समझ लीजिए कि हम लोग पुराने समय में एक मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण साधन था।
2: अच्छा, उस पे हम पहुंचेंगे, लेकिन अच्छा ये बताइए हमारे श्रोताओं को कि आपको याद आता हो धुंधले में कि पहली बार आपने रेडियो कब सुना था, अगर याद आता है तो।
3: पहली बार हमारे पिताजी ने 93-94 में,
2: जी
3: थोड़ा हो संभालने में जब हमें याद आ रहा है, तो फिलिप्स का एक रेडियो था
2: जी,
3: पिताजी ने खरीदा था और बोला था कि फिलिप्स का रेडियो और साइकिल,
2: हाँ,
3: ये अगर किसी के घर में रहता था,
2: हाँ,
3: तो उसे पहले बहुत बड़ा आदमी समझा जाता था।
2: उस दौर की बात है।
3: उस दौर से हमने इन सब चीजों का मतलब मनोरंजन का
2: तो आप जैसे आप शुरू में सुनते थे तो उस समय क्या समझ में आता था आपको, क्या उस समय आपको लगता था रेडियो को लेकर?
3: रेडियो ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल जीवंत कोई सामने बैठ के हमसे बात कर रहा हो, और सामने चीजें चल रही हो और उस चीज को हम बिल्कुल फील कर रहे हो, वो चीजें जहन में बिल्कुल बस जाती थी एकदम। हाँ।
2: अच्छा, रेडियो की बात आपने की कि भाई हम कोई सामने बैठ के बात कर रहा है, एक इसको दूसरे नजरिए से देखें तो उस दौर में बिजली बड़ी कम आती थी और बहुत प्रमुख जगह ही आती थी, और सूचना का भी एक बहुत प्रमुख माध्यम अगर कह लीजिए, लिमिटेड रिसोर्स थे, तो उस पे समाचार और ये सारी चीजें सुनना,

0: चीजों से जुड़ी कोई बातें या ऐसा?
1: एक बार ऐसा इंसिडेंट था कि न्यूज़, मतलब मैं सुन रहा था
0: जी
1: और वो न्यूज़ सुनते सुनते लाइट चली गई,
0: हाँ
1: और लाइट चली गई तो न्यूज़ जैसे ही बहुत अच्छी न्यूज़ की थी, राजनेता की न्यूज़ थी,
0: हाँ
1: और वो न्यूज़ सुनने सुनते वो जैसे ही मैं, मतलब मेन जो न्यूज़ सुनाने जा रहा था
0: हाँ
1: वो न्यूज़ पहले ही वो लाइट चली गई,
0: हाँ
1: और वो वही चीज़ पिताजी वहाँ दूसरी जगह रेडियो पे सुन रहे थे, तो
0: अच्छा,
1: वह मैं जाके तुरंत
0: वहां
1: वहाँ पे,
0: कंटिन्यू कर
1: हाँ
0: लिया।
1: वो जैसे ही बंद हुआ शांत माहौल हुआ और
0: हाँ
1: उस रेडियो की आवाज पूरे कमरे में गूंजने
0: हाँ
1: लगी, ऐसे लगा कि कहीं कोई बाधा नहीं हुई है, इन्वर्टर भी था नहीं पहले, नहीं
0: हाँ
1: तो डायरेक्ट टीवी उससे कनेक्ट हो जाती, लेकिन
0: हाँ
1: वो मेन चीज मैं मिस नहीं कर पाया,
0: हाँ
1: उस
0: और
1: रेडियो से मैं
0: वो
1: सुन
0: सुन
1: लिया।
0: लिया। अच्छा, ये भी होता था ना कि पहले लोग अपनी अपना रेडियो होता था सबके पास, तो कोई उसको मतलब बड़ा थोड़ी तेज आवाज
1: तेज
0: में
1: करके,
0: कितने
1: हाँ
0: सुनता
1: कि जिसके
0: है
1: दूसरा भी
0: ना,
1: सुन ले,
0: दूसरा भी
1: और
0: सुन ले।
1: हाँ
0: कोई उसमें ऐसे भी होते थे कि बहुत धीमे करके, कि सेल ज्यादा दिन चले अपने कान में लगा के खुद ही सुन रहा
1: हाँ कुछ विशेषज्ञ लोग थे तो वो
0: है
1: इस चीज को, दो दिन
0: और
1: ज्यादा चले लेकिन
0: ज्यादा दिन चले
1: वो
0: इसलिए।
1: चलता उतना ही था।
0: तो ये भी एक अपने आप में देखिए क्या दौर था, कि लोग अपनी अपनी रेडियो से अपनी अपनी समाचार सुन
1: अपने
0: रहे
1: अपने,
0: हैं,
1: हाँ
0: है ना।
1: रेडियो
0: बहुत,
1: बहुत बड़ी चीज थी और बहुत महत्व था अपने समाज।
0: अब चूंकि आकाशवाणी इस 90 साल की अपनी यात्रा पूरी कर रहा है इस साल, और आज के इस भागते दौड़ते बड़े जीवन में, इंटरनेट की इस दुनिया में, एक क्लिक से सब कुछ पा लेने के इस दौर में, जब सब कुछ इतनी आसानी से उपलब्ध है, ऐसे में रेडियो की क्या भूमिका समझते हैं आप?
1: वर्तमान समय में देखिए हर आदमी के पास अपना अपना जरिया हो गया है
0: जी
1: मनोरंजन का,
0: जी
1: तो वो एक दूसरे से बिल्कुल एकदम अटैचमेंट खत्म हो गया
0: जी
1: है।
0: जी
1: पुराने समय में रेडियो के समय में एक रेडियो रहता था, 10 लोग सुनते थे, तो दस
0: जी
1: लोग की बातें सुनना, उनसे कन्वर्सेशन करना,
0: जी
1: उनसे कम्युनिकेशन करना, सारी चीजें बहुत आसान, और उनका लगाव जो
0: मतलब
1: था
0: प्रेम होता
1: प्रेम,
0: था,
1: हाँ
0: प्रेम
1: लगाव
0: होता
1: प्रेम
0: था
1: बहुत होता
0: कि
1: था,
0: 7 बजे अब न्यूज़ आ रही है तो आदमी सब
1: हाँ एकदम
0: काम।
1: सब काम छोड़ के एकदम
0: आज
1: रेडियो के
0: भी
1: किनारे बैठ
0: हमारे
1: जाते
0: जो
1: थे।
0: किसान साथी हैं, जो खेतों पर काम करते हैं और अपने साथ रेडियो लेके जाते हैं, और हमारी उनसे बात होती है अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, तो वो हमें बताते हैं कि भाई आज भी हम आपके कार्यक्रमों से हमें पता चलता है कि इस समय गन्ना में ये रोग है, इसके लिए ये दवाई
1: बिल्कुल
0: लगाए।
1: बिल्कुल,
0: अब चूंकि शहरों में और हर जगह सारी चीज आधुनिकता ने तो हर जगह पकड़ा है, लेकिन वो वैल्यू, वो स्थान कि जो उम्र में बड़ा है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोई उम्र में उससे छोटा व्यक्ति हम अपने आप को बड़ा कहलवाने
1: बड़ा
0: लगेगा,
1: कहलवा रहेगा।
0: ऐसा नहीं है। एक एक समय के साथ एक ही अपना यात्रा है, एक अनुभव है। अच्छा, अब बात करते हैं, आपने अपने जीवन में जब पढ़ने लिखने लगे तो कैसे रेडियो आपकी मदद किया और कैसे आप आगे बढ़े? और
1: रेडियो ने, मतलब समझ लीजिए कि जब हमारे समय में ये इंटरनेट वगैरह इतना नहीं था, जब हम लोग
0: हाँ
1: पढ़ते थे, जो
0: जी
1: शुरुआत
0: जी
1: की थी, इंटरनेट का ज़्यादा विकास तो 2000 के बाद हुआ,
0: जी जी
1: और हम लोग उस समय 2000 के आसपास 14-15 साल के
0: जी
1: हो गए
0: जी
1: थे, तो हम लोग का बेसिक ये था कि अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए
0: जी
1: हमने रेडियो को, कई चीज़ें थी
0: जी
1: वो शुरू हुई थी उनको हम लोग बहुत ध्यान से सुनते थे,
0: जी
1: और उसमें वो चीज़ें और वो चीज़ों को बताया जाता था जो हम नेट पे सर्च करना पड़ता था बाकायदा, अब आज के समय में एक चीज़
0: जी
1: बोल के,
0: जी
1: और जो बोलेंगे वही आएगा,
0: जी
1: लेकिन वहां पे जो आपको सुनना है
0: जी
1: उससे 10 चीज़ें वो एक्स्ट्रा बता देता था
0: पहले ही।
1: पहले ही, तो वो सारी चीज़ें जो रेडियो का था बहुत अलग ही वो साथ था,
0: जी
1: लेकिन आज के समय में वो चीज़ नहीं है, वो आप जो आप टॉपिक डालोगे नेट पे वही सर्च
0: सब
1: करके
0: हाँ
1: वही
0: वही
1: आएगा।
0: मिलेगा। और बिल्कुल सही बात है, जो ज्ञान या किसी विषय पे अगर बात कर रहे हैं हम, तो वो विषय शोध के साथ आता था, उसके पीछे की एक लंबी शोध है, रिसर्च है, तब वो रेडियो पर, और ऑथेंटिसिटी को बहुत प्रमुख माना जाता था। कहा जाता था कि रेडियो से अगर जब तक कोई समाचार ना प्रसारित हो तब तक वो सच नहीं माना जाएगा,
1: हाँ लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं
0: ऐसा
1: है,
0: नहीं है।
1: सोशल मीडिया पे 80%
0: हाँ
1: चीजें जो हैं वो
0: जी
1: भ्रामक थी,
0: कुल
1: लेकिन पहले पूरा उसके पीछे सत्यता रहती थी, उसके
0: बिल्कुल
1: बाद क्योंकि नेशनल चीज था वो
0: चीज था।
1: और उसके पीछे वो थी सत्यता,
0: हाँ
1: वो कहीं भी भ्रामक कोई
0: अच्छा,
1: उसमें न्यूज नहीं था।
0: ये जो 90 साल का स्पैन हुआ, और आज भी क्या चंद मौली जी को ये लगता है कि रेडियो उनकी जीवन में वही स्थान रख?
1: स्थान तो देखिए रखता ही है लेकिन कम हो गया है, अब कम हो गया है सुनना,
0: जी
1: क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में इंटरनेट पे डिपेंड हो गया है,
0: जी
1: सारी चीजें जब उसमें से मिल जा रही हैं, तो अगर या आपके घर में पुराने परिवेश के लोग हैं
0: जी
1: और वो सिस्टम चल रहा है
0: जी
1: कि वो लोग चला देते हैं वो सुन लेते हैं, तो
0: जी
1: आपको
0: जी
1: ना चाहते हुए वो सब चीजें सुनना पड़ रहा
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो अगर आपके घर में बूढ़े
0: इस
1: बुजुर्ग
0: तरीके
1: लोग हैं, इस
0: तरीके
1: तरह के लोग
0: हाँ
1: हैं, तो आप उससे अछूते नहीं रहेंगे,
0: जुड़े हुए
1: हाँ
0: हैं
1: जुड़े हुए हैं, मजबूरी में जुड़े हों,
0: या
1: इच्छा
0: स्वेच्छा
1: से,
0: से।
1: स्वेच्छा से जैसे भी है अंडर राइटर हूँ।
0: अच्छा, अब एक बात बताइए कि आज इस लेवल पे एक मल्टीनेशनल, एक इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और रेडियो सुन के बड़े हुए, और आज के इंटरनेट का दौर हम सब देख ही रहे हैं कि लोग कहां से कहां क्लिक में, तो ऐसे में आपको ये फील नहीं होता है कि मतलब भाषा शैली हुई, चाहे बहुत सारे शब्दानुबोध हुआ है ना, शब्द शब्दकोश हुआ, निजी शब्दकोश हुआ, इन सब की बढ़ोतरी में रेडियो का

0: योगदान रहा आपके जीवन में?
1: बिल्कुल बिल्कुल, इन सब चीज़ों का योगदान रहा रेडियो। देखिए, रेडियो से ना केवल ज्ञान में ही बढ़ोतरी हुई,
0: जी
1: बल्कि वो प्रॉपर जो जिस समय पे जो शब्दों का चयन होना चाहिए
0: जी
1: और जिस शब्द का उपयोग होना चाहिए,
0: जी
1: उन शब्दों को रेडियो के माध्यम से हमने अपने जीवन में करा,
0: उतारा
1: उतारा। लेकिन आज की पीढ़ी जो रेडियो से अछूती रह रही
0: जी
1: है,
0: उनसे।
1: उसके शब्दकोशों को और अपने शब्दकोशों को हम अगर तुलना करते हैं, तो हम अपने आप को कहीं अच्छा मानते हैं।
0: हाँ
1: वो
0: बिल्कुल।
1: उसके लिए काफी हद तक रेडियो उत्तरदायी है,
0: हाँ,
1: क्योंकि आज वो
0: और
1: चीजें
0: हम लोग
1: नहीं
0: देखते
1: है।
0: हैं ना, बहुत सारी चीजों की शॉर्ट फॉर्म हो गई है
1: अब
0: अब।
1: हम देखते हैं कि हैप्पी बर्थडे अगर किसी को विश करना है, तो वो हैप्पी बर्थडे भी पूरा नहीं लिख रहा है, HBD लिख दे रहा है। और जन्म दिवस और ये सब की कल्पना करना उन लोगों से इस तरीके के शब्दों की, तो अब उम्मीद
0: बहुत
1: कम ही है।
0: उम्मीद ही कम है,
1: तो
0: क्योंकि उन्होंने वो चीजें देखी नहीं
1: नहीं
0: है,
1: देखी, ना सुन
0: तो
1: रहे हैं,
0: हाँ ना सुन रहे हैं, ना उसका महत्व जान
1: तो
0: रहे
1: एक
0: हैं।
1: उदाहरण के लिए इस चीज का मैंने उपयोग किया कि भाई अब हम लोग अगर कहते हैं तो भाई जन्म दिवस की या जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, इस तरीके की पोस्ट अब आप देखिएगा
0: बहुत
1: बड़ी
0: कम हो गए हैं,
1: रेयर होती जाएगी
0: रियर
1: थोड़े
0: हो गए,
1: समय के साथ।
0: पुराने
1: तो
0: लोग ही यूज कर रहे हैं जो
1: हाँ,
0: उस चीज को जीवंत
1: तो
0: मानते हैं।
1: भाषा के उत्थान में भी रेडियो का अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल,
1: ना। अच्छा, अब हम आते हैं एक दूसरे पॉइंट पे, जो आपने जिक्र किया हमसे अभी माइक के पीछे कि आप खेलते भी रहे, मैदान से जुड़े रहे, खिलाड़ी रहे। तो आप आज जब मैदानों को देखते हैं और जब बचपन में आप अपने समय में मैदानों को देखते थे, क्या फील होता है आपको?
0: वर्तमान समय में देखिए मैदान पे वो चीजें नहीं है। वर्तमान समय में एक तो युवा पीढ़ी है वो इन आधुनिक साधनों में फंस के रह गई है, ग्राउंड पे जाना उसका बहुत कम हो रहा
1: हो
0: है।
1: गया है
0: लेकिन पहले समय में आदमी अगर बच्चे थे तो
1: जी,
0: उसमें 10 में से 8 9 बच्चे हमेशा ग्राउंड पे मिलते
1: खेलते ही
0: थे, खेलते ही
1: मिलेंगे।
0: मिलते थे।
1: हाँ,
0: मतलब शारीरिक श्रम बहुत जरूरी था
1: जरूरी था।
0: और वो मैंडेटरी था, या समझ लीजिए वो उस समय की डिमांड थी।
1: हाँ,
0: लेकिन आजकल आदमी वर्तमान साधनों में फंस के उसी घर में वीडियो गेम हुआ,
1: मतलब
0: इंटरनेट हुआ,
1: वर्चुअल गेमों में
0: वर्चुअल,
1: फंस
0: हाँ
1: गया।
0: सिर है आधुनिक, उसमें फंस के
1: हाँ
0: एकदम उसका शारीरिक विकास खत्म हो गया है।
1: बिल्कुल। अच्छा, हम लोग भी देखा करते थे भाई अपने बचपन में जब मैदान में खेलने जाते थे, खास तौर से मान लीजिए इन्हीं गर्मी के दिनों में छुट्टियां हो जाए,
0: एक ही ग्राउंड पे 10 10 पिचें बनती थी,
1: दस दस पिच हो गई,
0: किसका
1: किस
0: कैच
1: और
0: कौन
1: दस
0: पकड़ रहा है पता ही
1: पता ही
0: नहीं
1: नहीं
0: है।
1: चल रहा है किसकी
0: हाँ
1: बॉल कहाँ चली जा
0: कहाँ
1: रही
0: चली जा रही है, अपनी बॉल चौहा चल जा रही है और दूसरे का कैच पकड़ ले रहा है, वो बाद में पता चल रहा है जिसका पकड़ रहा भैया मेरा छक्का जा रहा था
1: ये तुमने पकड़
0: और हम
1: लिया
0: खुश हो रहे हैं कि हमने अपनी पकड़ ली।
1: और आज स्थिति है, इतना बड़ा वो प्राइम मैदान,
0: हाँ
1: वो प्राइम मैदान खाली पड़ा है,
0: खाली पड़ा है,
1: और इतना कई बार दुख होता है कि वो एक मुख्य पिच होती थी जिस मैदान में हम खेलते थे,
0: बिल्कुल,
1: उस मुख्य पिच पे जिस दिन खेलने को मिल गया, अगर मिल
0: हाँ
1: गया,
0: हाँ
1: उस समय तो मिलता ही नहीं
0: बहुत
1: था,
0: सौभाग्य अपने आप को
1: लोग
0: समझते थे,
1: डांट उठ के
0: बहुत
1: भगा देते थे,
0: भगा
1: बोले
0: देते
1: नहीं
0: थे,
1: तुम लोग साइड के लो, और अगर खेल गए तो वो दिन बड़ा स्पेशल दिन होता
0: हाँ
1: था,
0: ऐसा लगता था बिल्कुल इंटरनेशनल मैच खेल लिए
1: खेल
0: हो,
1: लियो
0: सेलिब्रिटी हो गए
1: हो
0: हो।
1: गए। आज जब मैदान को नजदीक से देखते हैं हम अगर अपनी बात करें, तो वो पिच खाली पड़ी रहती है और मैदान से
0: कोई खेलने वाला नहीं है,
1: शायद इसी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे के मोटापा और देश देश
0: हाँ
1: दुनिया की बीमारियां और ये सारी चीजें मैदान।
0: स्थिति में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। लेकिन जो रेडियो था और इन सब चीजों का महत्व था वो आज के समय में एकदम जो पुराने लोग हैं समझ पा रहे
1: जी।
0: हैं।
1: अच्छा, अब आप आधुनिक युग से भी जुड़े हुए हैं, आप एक इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसे स्टेप्स और उठाएं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम और रेडियो से अब जोड़ पाएं, शायद युवा पीढ़ी को जोड़ पाएं, क्या?
0: रेडियो से स्टेप में मान लीजिए कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा परिवार से शुरू करिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ा है
1: जी।
0: और बाहर तो उसके जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो व्यस्तताएं बढ़ती जाती हैं, तो उसमें वो चीजें ध्यान नहीं ले। लेकिन इस चीज को जैसे पुराने समय में स्टार्ट
1: जी
0: सुबह
1: जी
0: दिन की शुरुआत
1: हाँ
0: करते थे
1: करते
0: उसी
1: थे,
0: के
1: हाँ
0: साथ,
1: उसी तरीके
0: तो
1: से।
0: वही चीज अपने घर से अपनाएं, और जब आप घर से अपनाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका परिवार उस
1: जी
0: चीज
1: जी
0: को कितना भी इग्नोर करेगा लेकिन एक ना एक दिन उसको कैच करेगा और
1: हालांकि
0: समझेगा।
1: हम आपको बताते चलें कि आकाशवाणी, और अगर आकाशवाणी बरेली की बात करें तो, और सभी जगह हम हर वर्ग के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे आकाशवाणी बरेली की बात करें तो बच्चों के लिए अंकुर है, युवाओं के लिए युववाणी है, महिलाओं के लिए नारी संसार है, किसान साथियों के लिए किसान वाणी है, जो संगीत सुनना चाहते हैं उसके लिए आपकी पसंद है अनुरोध गीत है,
0: नहीं तो
1: और
0: इसमें आपको खुद थोड़ा सा अंदर से इंटरेस्ट अगर होगा
1: जी
0: तो इन सब चीजों में अपने स्तर का जो आपका प्रोग्राम है उसको सुनना शुरू करेंगे तो
1: जी
0: आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो धीरे धीरे आप सारी चीजों को सुनना पसंद
1: इन्वॉल्व
0: करेंगे।
1: होगा
0: लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें तभी बढ़ेगा जब आप शुरुआत अपने
1: शुरुआत से।
0: इंटरेस्ट से करेंगे।
1: अच्छा, चंद्रमौली नारायण मिश्रा जी, अपने घर में अपनी नई पौध को रेडियो के प्रति प्रेरित करते हैं या करेंगे?
0: बिल्कुल,
1: जी
0: मैं यही चाहूंगा कि मैं अपने चाहूंगा क्या,
1: जी
0: मैं मतलब अपने घर में
1: हाँ
0: चला भी रहा हूं,
1: जी
0: क्योंकि हम लोग तो इस जनरेशन और
1: दोनों
0: पुराने
1: का
0: दोनों का हम लोग कॉम्बिनेशन है, तो हमने अपने समय में इसी उम्र तक बहुत समय बदलता हुआ देखा और अच्छा माहौल था
1: जी।
0: लेकिन

0: दिन प्रतिदिन पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा उत्तरदायी हम ही लोग हैं,
1: जी
0: क्योंकि हम लोग किसी भी खूबसूरत जगह पे जाते हैं
1: जी
0: और उसकी खूबसूरती को बेकार करने में पूरा सहयोग करते हैं।
1: जी
0: जितना गंदगी, जितना बोटल्स वगैरह सारी चीजें वहां फेंकते हैं
1: जी जी
0: और उस चीज को वहीं फेंक के आ जाते हैं और चाहते हैं कि वहां की खूबसूरती बरकरार
1: बनी रहे,
0: कैसे रहेगा जब हमारे द्वारा ही वो चीजें बेकार हो रही हैं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: कैसे वो चीजें सही हो सकती
1: जी
0: हैं। लेकिन आदमी समझता नहीं है, उसको चाहिए सब कुछ अच्छा, लेकिन अपनी तरफ से
1: कोई एफर्ट नहीं है,
0: एफर्ट करना चाह रहा है, बस यही है।
2: जी हाँ श्रोताओं, चंद्रमौली जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आप कहीं जाइए, किसी भी जगह जाइए, जिस प्रकार हम अपने घर को साफ रखते हैं वहां उस जगह को उसी तरह साफ रखने की आवश्यकता है। प्लास्टिक हम सबके जीवन में घर कर गया है, तो प्लास्टिक से बिल्कुल दूरी बना लें। अब धीमे धीमे तालाब सूख गए, नदियां सूखती जा रही हैं, नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं, टोटी से पानी आना धीमे धीमे कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। अगर यही हाल रहा तो अब समय आ गया है अलग जगाने की। हम अपने बच्चों को जो हमें मिला है वो हैंडओवर करें, जो हमको जिस रूप में मिला है वो उसी रूप में समर्पित करें। इसके लिए जरूरत यह है कि हमको वो काम नहीं करना है, कोई दूसरा क्या कर रहा है पहले बात की बात है, पहले हम कचरा ना फेंकें, हम जहां खुद से शुरुआत। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो चंद्रमौली नारायण मिश्रा जी, आज आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी।
3: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे मुझे याद है जरा जरा। आज के हमारे मेहमान थे श्री चंद्रमौली मिश्रा और आपसे बातचीत कर रहे थे ब्रजेश तिवारी। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं गुरुवाणी, जिसे अपनी खूबसूरत आवाज दी है अवतार सिंह ने।

राम राम राम राम राम जाप, राम राम राम राम राम जाप।

रखन को प्रभु माई बाप, रखन को प्रभु माई बाप। नारी गुबार

अवतार सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे इस खूबसूरत मधुर और आध्यात्मिक एहसास यानी गुरवाणी को। और इसी के साथ ही जो सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण, और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट।

फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज है आतिफ असलम की, गीत के बोल लिखे हैं अरशद कामिल ने और संगीत निर्देशन है प्रीतम का।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, दो कैबिनेट मंत्री और चार राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद

0: औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे

0: को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरीकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाज शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए, चीनी ताइपे पहले और इटली

टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित

0: प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

आपके लिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राम और श्याम फिल्म का गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की थी। शकील बदायनी ने इस गीत को लिखा था और नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी। ये रास्ते हैं प्यार के, यह फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुन रहे हैं।

ये रास्ते हैं प्यार के इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे। बोल राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे और संगीत से सजाया था इस गीत को रवि ने। यह है भीगी रात फिल्म का गीत। मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं।

भीगी रात फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुरी की आवाजों में। बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी रोशन ने। आपके लिए कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं शिकारी फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर उषा मंगेशकर की हैं, फारूक कैसर ने इस गीत को लिखा है और जी एस कोहली ने धुन बनाई है।

शिकारी फिल्म का गीत लता मंगेशकर उषा मंगेशकर के आवाजों में आप सुन रहे थे। फारूक कैसर के बोल थे और जीएस कोहली की धुन थी। आपके लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। मोहम्मद रफी की आवाज में साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ ये गीत लीजिए, सुनिए।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप वासना फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे चित्रगुप्त। आपके लिए कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं बड़ा आदमी फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, रचना प्रेम धवन की है और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

रहे थे रचना प्रेम धवन की थी, संगीतकार थे चित्रगुप्त। मोहम्मद रफी की आवाज में, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में लीजिए सुनिए SH बिहारी का लिखा गीत। संगीतकार हैं OP नैयर, फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी।

रूबी नैयर के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया गीत। इसी गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। और देखिए ना, चारों तरफ फूल खिले हैं और मत भरी रुत जवान है। इन मीठी स्वर लहरियों की तरंगों पर सवार होकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं।
1: मिलन को जा

के फनकार कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

पंकज मलिक का जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम था मणिमोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेन्द्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रवींद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेन्द्रनाथ टैगोर से रवींद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म में बेहतरीन संगीत दिया था। आइए ये गाना सुनिए।

संगीत समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया। इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया।

0: भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।
1: पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना।

सन 1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे सुना जाता है।

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुन्नलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

आज इतने बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्य की लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज।

इसी फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था, हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी कुंदनलाल सहगल की आवाज, और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

सन 1941, फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये गीत सुनिए।

पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया। हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया, दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी

सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिकाई, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

पंकज मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

भारतीय डाक विभाग ने सन 2006 में पंकज मलिक की जन्मशती पर एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

आज के फनकार कार्यक्रम आज जाने माने गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता

0: रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय

0: श्रृंगार शुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
2: This is Akashvani. In tonight's broadcast of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a Veena recital by Vidwan D. Srinivas. Accompanying him on Mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas, Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hain. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, श्रीनिवास ने 7 साल की उम्र में अपनी माँ श्रीमती डीएल तुलसी के मार्गदर्शन में वीणा शिक्षा का श्री गणेश किया। 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादी विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
2: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन From Telangana was born into a musical lineage. He began the art of Veena at the age of 7 under the guidance of his mother Srimati D. L. Tulasi. By the age of 9 he was a child prodigy. The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication he is a top grade Veena artist with Akashvani. And recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. Emani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of Veena music. As an educator, He has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
1: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
2: In tonight's broadcast, Vidwan D. Srinivas is accompanied on mridangam by Shri Yashwant Hampi Holi. And on Ghatam by Shri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas ne apne Veena Vadan ki shuruaat Raag Gola mein Mysore Vasudevachar ki ek rachna se kar rahe hain jo Adi Taal mein nibadh hai.
2: Vidwan D. Srinivas begins his Veena recital with a composition of Mysore Vasudevachar in the Raag Gola set to Adi Taal.

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदिताल त्रिस्र गति।

0: ये था कन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तनियावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास

0: अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास कंक्लूड्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ सदाशिव ब्रह्मेंद्र इन द राग आहिर भैरवी सेट टू आदिताल।

0: इसके साथ ही आज की रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha and was

0: brought to you from the Delhi station of Akashvani.
1: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।